0: यार गोरी,
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
3: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
2: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
4: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। और दोस्तों, मैं क्या कहूं, कर मनुज शिव की आराधना, कर मनुज शिव की साधना, भर अंतर में शिव की भावना, देखना शिव भक्ति उतर जाएगी, शिव भक्ति उतर जाएगी मन में और शिव से हो जाओगे तुम अपने पर में। तो जब हम किसी भी इष्ट को या किसी भी शक्ति को बार बार अभ्यास करके अंदर की तरफ खींचते हैं दोस्तों, तब हमें उसका आभास होने लग जाता है। और यही आभास हमें कराता है, यही अनुभव हमें कराता है शिव पुराण, जिसके सुनने मात्र से, जिसके पठन मात्र से हम सबका जीवन सफल हो जाता है, हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं, क्षम्य हो जाते हैं, हमें ईश्वर क्षमा कर देता है, हमारे अपराध क्षमा कर देता है, ऐसा पुराण है। तो हमारी यही मनोरथ है, भावना है कि जो जो भी इसको सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ तक भी है आवाज़ जा रही है, ईश्वर उन सब के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, उन सब के घर में प्रसन्नता रहे, उनका जीवन फूल की तरह से खिला रहे और उनके सभी कार्य ईश्वर सिद्ध करें, यही हमारी मंगल कामना है। और उनके सभी दुखों का विनाश भगवान शिव करें। इसी भावना के साथ हम अपने स्टूडियो में आपको शिव पुराण सुनवाने के लिए डॉक्टर लीना सिन्हा जी को बुलवाते हैं। आज भी हमने डॉक्टर लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है, वो हमारे स्टूडियो में ही उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में आपने बहुत ही सुंदर वर्णन कार्तिकी की महिमा का किया था, बताया था कि वो कितने बलशाली हैं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण लगी वो ये था कि कार्तिकेय जब भी कोई बड़ा कार्य करने जाते थे तो अपने माता पिता को नमन करके जाते थे, उनका आशीर्वाद लेके जाते थे। अब हमारे समाज में इस भावना की अत्यधिक आवश्यकता है। ये प्रेरणा देता है हमारे नवयुवकों को और हमारी युवतियों को कि जो घर में, परिवार में हमारी युवतियों के, जो जहाँ पर हमारी लड़कियाँ शादी होकर जाती हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं वो उनके माता पिता हैं, आप उनका आशीर्वाद प्रतिदिन लें और अपना कार्य आरंभ करें उनके आशीर्वाद से ही। और हमारे जो नवयुवक हैं वह भी प्रत्येक कार्य के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें, इससे उनका कार्य सफल होगा और उनके परिवार में हमेशा प्रसन्नता रहेगी, हमेशा खुश रहेंगे, वो उन्नति करेंगे, उन्नति रहेगी, लक्ष्मी अवश्य ही वहाँ पर रहेगी, विद्यमान रहेगी, कभी भी अभाव, किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, क्योंकि संस्कार पड़ गए हैं, ईश्वर के जो वरदान है वो उस घर में उतर गया है। और जहाँ ईश्वर का वरदान उतर जाए, जहाँ ईश्वर की कृपा दृष्टि पड़ जाए, तो उस घर में तो किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता, न प्रेम का, न अन्न का, न धन का, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता दोस्तों। तो हमें और क्या चाहिए इस जीवन में, छोटा सा जीवन है, इसको स्वर्णिम बना लें, सुंदर बना लें, सुंदर सा उपवन बना लें अपने मन को, अपने जीवन को, और वो बनेगा ईश भक्ति द्वारा, शिव भक्ति द्वारा। तो लीना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बड़ा स्वागत है। और आप हमें अब इस शिव पुराण में कथा आगे कैसे बढ़ती है, हम सब के लिए क्या संदेश है उन प्रसंगों से, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो सके, कि क्योंकि हमने जन्म लिया है मनुष्य रूप में, तो मनुष्य रूप में यदि जन्म लिया है तो मनुष्य के जैसे कार्य भी हमें करने चाहिए, वरना तो ये सब कार्य जो हम कर रहे हैं ईश्वर की भक्ति के अलावा, वो सब तो जानवर भी कर रहे हैं, उसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। तो उनको करते हुए ही अगर हम अपना जीवन काट रहे हैं, फिर तो हम व्यर्थ कर रहे हैं अपना जीवन, मनुष्य जीवन जो इतनी योनियों के बाद में हमको मिला है। अब हमको अपना जीवन सफल कैसे बनाना है, वह उस वो जो पद्धति है वो हमें शिव पुराण बताता है। तो हम जो भी सीखते हैं इससे, जो भी संदेश लेते हैं, उससे हम मनुष्य कहलाने योग्य ही बन जाएं तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। कम से कम मानवता तो अपने हमारे अंदर रहनी चाहिए, मानवता की दृष्टि से ही कार्य करें, आपस में व्यवहार करें, घर में, बाहर, समाज में, संसार में। तो उस सब के लिए ही हम ये कथा सुनना चाहते हैं। तो लीना जी हमें बताइए कि यह कथा कैसे आगे बढ़ती है। अब
1: मंजू जी, रुद्र संहिता के कुमारखंड का 12वां अध्याय हम लोग सुन रहे हैं। अब इस 12वें अध्याय में सभी देवी देवता जितने भी हैं सब किसका किसकी स्तुति कर रहे हैं? ये
0: कार्तिकेय
1: की। अब कार्तिकेय जो है वो कहाँ पहुँचते हैं? अपने कैलाश पहुँचते हैं, भगवान शिव और पार्वती के पास। अब देवता गण कहते हैं कि इस प्रकार तारकासुर को मारकर वर देकर अपने चराचर सहित हम सबको आपने सुखी कर दिया है। अब आप शिव जी के घर कैलाश में जाकर माता पिता का दर्शन कर। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनका चमर डुला रहे हैं। इंद्र आदि सभी देवता कार्तिकेय की यथा योग्य सेवा कर रहे हैं और प्रसन्न होकर चारों ओर घूम रहे हैं। शिव जी की जयकार करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने वहां मंगल ध्वनि की। वहां शिव शिवा को देखकर सभी विष्णु आदि देवता शीघ्र भक्ति से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम करने लगे। विनम्र कुमार ने भी विमान से उतरकर प्रसन्नता पूर्वक शिव जी तथा सिंहासन पर बैठी हुई जगत जननी शिवा को भी प्रणाम किया। हे नारद, प्राण प्रिय अपने पुत्र उस कुमार को देखकर वे दोनों शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। महाप्रभु शिव जी ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाया और प्रेम से उसका माथा सूंघा तथा स्नेह से हाथ से छुआ। आनंदित होकर शिव जी ने उस महाप्रभु तारकारी कुमार का मुख चूमा। फिर पार्वती ने अपनी गोद में बैठाकर माथा सूंघकर उसका मुख चूमा। हे मनारद, उन दोनों स्त्री पुरुषों का लोकाचार करते हुए बड़ा प्रेम भरा। उस समय शिव जी के घर में अनेक प्रकार का उत्सव मनाया गया। चारों ओर से जय और नमः शब्द सुनाई पड़ रहा था। हे मुनि, उसके बाद विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों ने शिव जी को प्रणाम कर शिव सहित कुमार की स्तुति की। अब देखिए, शिव भी कुमार की स्तुति कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि क्या इससे शिव जी छोटे हो गए? नहीं, बल्कि उन्होंने पुत्र के पराक्रम की स्तुति की। अब देवतागण कहते हैं, अब देवतागण क्या कहते हैं? कहते हैं, देव देव महादेव भक्तानां भयप्रद, नमो नमस्ते बहुशः कृपा कर महेश्वर, अद्भुताते महादेव महालीला सुप्रदा, सर्वेषां शंकर सतां दीनबंधो महाप्रभु, वयं मूर्धियश्चाज्ञा पूजायां ते सनातनम् आवाहनम् न जानीमो गतिम चैव प्रभो अद्भुतां, गंगा सलिल धाराय हियाधाराय गुणात्मने नमस्ते त्रिदशेशाय शंकराय नमो नमः। वो कहते हैं कि देव देव महादेव, भक्तों को अभय देने वाले दयालु महेश्वर, आपको अनेक प्रकार से नमस्कार है। हे महादेव, हे दीन बंधु महाप्रभु, सभी सज्जनों का कल्याण करने वाली आपकी लीला आश्चर्यकारक है। हे प्रभु, हम अज्ञानी मूर्ख बुद्धि आपके स्थाई आवाहन को, आपकी अद्भुत गति के कारण को नहीं जानते, क्योंकि जब तक कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ था, जब शिव और पार्वती का विवाह हो गया था तो शिव पार्वती अपने आनंद लोक में थे। तो उस समय देवतागण बड़े विचलित हो रहे थे कि अब क्या होगा, कि हजारों वर्ष से ये दोनों सिर्फ रति कार्य में ही संलग्न हैं, तो कार्तिकेय का जन्म नहीं हो रहा है, अब हम लोगों का क्या होगा? तारकासुर आतंक मचा रहा है, वो धैर्य नहीं रख रहे थे, अधीर हो रहे थे। तो इसलिए अपने आप को अब वो कोस रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव ने उनकी हर प्रकार से सहायता की, कुमार को जन्म दिया और कुमार का पालन पोषण भी हुआ दिव्य प्रकार से, और कुमार के द्वारा तारकासुर का वध भी हुआ। तो समय आने पर सब कुछ होता है, हम असमय ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। अधिकांश लोग यही काम करते हैं कि समय की प्रतीक्षा नहीं करते, धैर्य धारण नहीं करते और परेशान होने लगते हैं, उदास होने लगते हैं, खींचने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं कि अरे हमारा काम ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन समय आने पर सब कुछ होता है। समय पाए तरवल फले, कातक सींचो नीर, कि तरवर तो समय आने पर ही फलता है, चाहे तुम कितना भी पानी देते रहो। तो यहाँ पर कार्तिकेय का जन्म जब समय आता तभी होता, और तारकासुर का वध भी जब समय आता तभी होता, तो असमय अरण निरोधन करने से कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हम मूर्ख बुद्धि आपके स्थाई आवाहन को आपकी अद्भुत गति के कारण नहीं जानते। गंगा जल को धारण करने वाले सबके आधार त्रिगुणात्मा त्रिदेशों के स्वामी शिव जी के लिए नमस्कार है। वृषभ ध्वज महेश गणों के स्वामी सर्वेश्वर देव तथा तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। हे नाथ, सभी लोगों का संहार करने वाले रक्षक तथा रचयिता देव।

0: वेश त्रिगुणेश तथा शाश्वत आपको नमस्कार है। संग्रहित परेश शिव परमात्मा निष्प्रपंच शुद्ध उत्कृष्ट मायावी तथा अव्यय आपको नमस्कार है। दंडधारी काल स्वरूप पास को धारण करने वाले वेद मंत्रों में चर्चित सैकड़ों जीव वाले आपको नमस्कार है। भूतम भव्यम भविष्यं च स्थावरम जंगमम च यत् तब देहात् समुत्पन्नम सर्वथा परमेश्वर पाही नह सर्वदा स्वामिन प्रसीद भगवन प्रभो वयम ते शरणापन्ना सर्वथा परमेश्वर क्षितिकंठाय रुद्राय स्वाहाकाराय ते नमः अरूपाय स्वरूपाय विश्वरूपाय ते नमः शिवाय नीलकंठाय चिताभस्मांग धारिने नित्यम नील शिखंडाय श्रीकंठाय नमो नमः सर्वप्रणत देहाय संयम प्रणताय च महादेवाय सर्वाय सर्वार्चित पदाय च त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नील लोहित आत्मा च सर्वभूतानां सांख्य पुरुष उच्यसे। अब देखिए क्या कहते हैं वे कि देवगण कि भूत वर्तमान भविष्यत स्थावर जंगम चर अचर हे परमेश्वर ये सभी आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हे प्रभु भगवान स्वामी हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर हम सब प्रकार से आपकी शरण में आए हैं। आप शितिकंठ रुद्र स्वाहाकार निर्गुण सगुण तथा संसार के समस्त रूपों वाले आपको नमस्कार है। शिव नीलकंठ चिताभस्म को धारण करने वाले शाश्वत नील शिखंड तथा श्रीकंठ आपको नमस्कार है। सबके प्रणम में संयम से विनम्र महादेव सर्व तथा सभी द्वारा पूजित चरण आपको नमस्कार है। आप सब देवताओं में ब्रह्मा रुद्रों में नील लोहित सब प्राणियों की आत्मा है। सांख्य मतावलंबी आपको ही पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु नक्षत्रों में चंद्रमा ऋषियों में वशिष्ठ तथा देवताओं में इंद्र हैं। आप वेदों में ओंकार हैं। हे महेश्वर हमारी रक्षा करें। तुम संसार के हित के लिए सब प्राणियों को तृप्त करते हो। शुभ अशुभ के निरीक्षक महाभाग महेश्वर देवेश हमारी वृद्धि कीजिए। हम आपके आज्ञाकारी हैं। हे देव देव आपके हजारों करोड़ों रूप हैं। हम आपके अंत को नहीं पा सकते। आपको नमस्कार है। अब हजारों करोड़ों रूप कैसे हो सकता है एक का? वही है अद्वैत भाव कि सभी के अंदर परमात्मा अंश रूप में आत्मा रूप में विराजमान है। तो जितने प्राणी उतने शिव जीवो केवल शिव की स्थिति है कि जीव केवल शिव स्वरूप है और इसलिए जीव भी नमन के योग्य है। शिव तो नमनीय है। तो अभी देवगण उनकी स्तुति करते थक नहीं रहे हैं। वो प्रशंसा पर प्रशंसा किए जा रहे हैं क्योंकि शिव पुत्र ने तारका स्वरूप का वध करके उन लोगों का उद्धार किया है, देवताओं का उद्धार किया है। जब भी कोई असुर बदशाली होता है तो वो सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण करता है और फिर स्वर्गाधिपति असुर बन जाता है और स्वर्गाधिपति इंद्र को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है अपने देवताओं के साथ। तो इसलिए वो बहुत परेशान होते हैं। घर जिसका भी छीन लिया जाता है वो तो परेशान होगा ही और इंद्र का घर है स्वर्ग, देवी देवताओं का घर है स्वर्ग। अगर उस घर को छीन लिया किसी ने तो परेशान तो होंगे ही। अब उस परेशानी से मुक्ति दिलाई है कार्तिकेय ने और कार्तिकेय कौन है? शिव के पुत्र हैं। इसलिए शिव की जो है पूजा हो रही है, शिव का नमन वंदन हो रहा है।
1: लीना जी आपने अभी जो बात कही कि जिसका घर छीना जाता है उसको फिर दुख तो होता ही है, तो ये समाज में भी देखा जा रहा है कि किसी भी गरीब की संपत्ति को कोई जो बलशाली है समाज में जिनके पास बल भी है और धन भी है वो उसको डरा धमका कर उसकी संपत्ति हड़प लेते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। गांव के जो सीधे साधे लोग हैं वो अशिक्षित हैं, उनको पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। उनसे झूठे, क्योंकि वो अशिक्षित हैं, उन पे झूठे अंगूठे लगवा कर उनके जो थोड़े बहुत खेत हैं जिनसे वो गुजारा करते हैं उसको भी हड़प लेते हैं, उनके छोटे छोटे जो मकान हैं उनको भी हड़प लेते हैं और वो सड़क पर आ जाते हैं। तो अभी जैसा कि आपने कहा है कि यदि ऐसा अत्याचार होता है कि किसी को किसी से भी संपत्ति हड़प ली जाती है, तो उनका मारने उनको मारने वाला भी ऐसे पाथकों को खत्म करने के लिए भी कोई ना कोई उनसे अधिक वीर ऐसा पैदा होता है योद्धा जो उनको समाप्त कर लेता है। क्योंकि समय तो आएगा, समय तो आता है, क्योंकि अधर्म का नाश होना है, पापी का नाश होना।
0: जिन्होंने भी ऐसा किया है या कर रहे हैं वे भी पातकी ही
1: पातकी हैं,
0: वे भी अधर्मी हैं।
1: तो उन पातकों का नाश करने वाला कोई ना कोई तो धर्म को मानने वाला, धर्म की पताका को फहराने वाला योद्धा आएगा ही कभी ना कभी। इसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। हाँ। वो ये ना सोचें कि हमें अमर हैं इस धरती पर, हम कभी मरेंगे ही नहीं और हमें उपभोग करेंगे इसका, तो ऐसा कभी नहीं
0: तो
1: होता।
0: ये यही असुर बुद्धि है
1: जी।
0: इन्हीं को नरपशु नर पावर की संज्ञा दी गई है। यही नर प्रेत भी नर पिशाच भी यही कहलाते हैं जो मनुष्य रहते हुए मनुष्य का खून चूसते हैं। तो मनुष्य शरीर में अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमारे जैसा पापी अधर्मी कोई नहीं है। मनुष्य वह है जिसने अपने मन को जीत लिया है और जो धर्म पर खड़ा है वह मनुष्य है, जिसके अंदर सत्य है, अहिंसा है, दया है, प्रेम है, अक्रोध है, वह मनुष्य है। लेकिन जो धर्म की स्थापना नहीं करता अपने हृदय में वह अधर्मी है। जो दूसरों को पीड़ित करता है वह अधर्मी है। तो ऐसे अधर्मी का नाश सुनिश्चित है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, लेकिन वह अधर्मी विनष्ट होगा ही। तो अभी देखिए शिव की स्तुति चल रही है। तो अब कहते हैं कि आपके हजारों करोड़ों रूप हैं और हम आपके अंत को नहीं पा सकते, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा इस प्रकार विष्णु आदि सभी देवता बार बार प्रणाम करके और स्कंद को आगे करके खड़े हो गए। सर्वेश्वर स्वयं प्रकाशित दयालु शिव जी देवताओं की स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं से शंकर परम ईशान दीन बंधु सत्पुरुषों के सहायक शिव प्रसन्न होकर के कहने लगे। अब शिव क्या कहते हैं, हे हरे हे विधे देवा वाक्यम में सुनुत आदरात सर्वथा अहम सदाम त्राता देवानाम वह कृपा निधि दुष्ट हंता त्रिलोकेश शंकरो भक्तवत्सल कर्ता भर्ता च हर्ता च सर्वेषां निर्विकारवान यदा यदा भवेद् दुःखं युष्माकं देव सत्तमा तदा तदा माम यूयम वै भजन्तु सुखेत्वे। अब शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा हे विष्णु आदि देवताओं मेरी बात को आदर से सुने। मैं सदा सज्जनों का रक्षक आप देवताओं के लिए कृपा निधि हूँ। मैं दुष्टों का नाशक तीनों लोकों का स्वामी कल्याणकारक भक्तों का प्यारा विकार रहित सृष्टिकर्ता पालनकर्ता और सबका विनाश करने वाला हूँ। हे देवताओं जब जब आपको कोई दुख हो तब तब आप लोग सुख प्राप्ति के लिए मेरा भजन करें। और फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि इस प्रकार आज्ञा पाकर विष्णु आदि देवता मुनीश्वरों के साथ प्रसन्न होकर शिव तथा शिव कुमार को प्रणाम करके शिव पार्वती तथा कुमार के सुयश का वर्णन करते हुए हे मुनि वे सब आनंदित होकर अपने अपने घरों को चले गए। परमेश्वर शिव जी भी पार्वती कुमार तथा अपने गणों के साथ उस पर्वत पर आनंद से रहने लगे। हे मुनि कुमार कथा का तथा शिव जी का सुखद एवं दिव्य यह सब चरित्र तुमसे कह दिया गया है, तुम बतलाओ अब और क्या सुनना चाहते हो। तो ये स्वामी कार्तिक चरित्र गर्भित शिव और शिवा के चरित्र वर्णन का 12वां अध्याय समाप्त होता है जो रुद्र संहिता के कुमार खंड का है। तो इसमें कुमार के पराक्रम का वर्णन किया गया है, उनके अतुलित बल का वर्णन किया गया है। और उनका अतुलित बल कहाँ से आ रहा है, शिव और पार्वती के द्वारा आ रहा है। शिव और पार्वती कौन है, वह परमेश्वर हैं और परमेश्वरी हैं। अगर देखा जाए तो यह सारा संसार शिव और शक्ति का खेल ही है। अगर शिव और शक्ति का खेल नहीं होता तो कुमार का जन्म नहीं होता, और कुमार का जन्म नहीं होता तो तारकासुर का वध नहीं होता, तारकासुर का वध नहीं होता तो फिर देवी देवता ऐसे ही परेशान होते रहते। तो देवत्व के उदय के लिए, धरा पर स्वर्ग के अवतरण के लिए शिव और शक्ति की महती आवश्यकता है। जिस दिन हम शिव और शक्ति को पूजने लगेंगे, उनका नमन करने लगेंगे, तो इस धरती पर फिर से देवत्व का उदय संभव है। और हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शिव प्रसन्न है तो शक्ति प्रसन्न है, शक्ति प्रसन्न है तो शिव प्रसन्न है। तो शिव और शक्ति कौन है, हमारे अंदर की आत्मा और हमारे अंदर के परमात्मा, सब कुछ अपने ही अंदर है। कहते हैं देहो देवालय प्रोक्त, यह देह क्या है? देवालय है। यह शरीर क्या है? मंदिर है। इस मंदिर में कौन भगवान है? तो वो शिव और शक्ति ही भगवान है। इस शरीर रूपी मंदिर में जिस दिन हम उनकी आराधना करने लगते हैं तो हम स्वयं सुंदर बनने लगते हैं, क्योंकि मंदिर में हम जब भी प्रवेश करते हैं तो अपने पैर धो करके जाते हैं, फूल पत्ती लेकर के जाते हैं अपने आराध्य को चढ़ाने के लिए। तो उस फूल को अपना मन बना लें, सुमन मन, सुंदर मन हमारा फूल बन जाए, और उसके बाद परमात्मा के चरणों की आराधना करनी है तो फूल लेकर के जाएं, अपने मन की पावनता, अपने मन की निर्मलता को गंगा स्वरूप बना लें तो गंगा जल भी हमारे अंदर ही है। और शरीर रूपी दिव्य मंदिर में हम परमात्मा और परमेश्वरी को बसा लें तो इस मंदिर में भगवान की भी कमी नहीं होगी, और आराध्य की आराधना में जब समय बीतने लगेगा तो साधना अपने आप प्रतिफलित हो जाएगी और हम साधक ईश्वर के गुणगान में रम जाएंगे तो हम ही भक्त बन जाएंगे। और भक्ति में नंदी कितना सुंदर उनका रूप है और कितना सुंदर उनका चरित्र है कि नंदी के ही कान में सभी जा करके कहते हैं अपनी बातें। क्यों? क्योंकि नंदी को भगवान शिव बहुत मानते हैं और नंदी जो कहता है वो शिव तक सुनाई देता है, इसलिए हमें भगवान का नंदी बन जाना चाहिए। फिर देखिए कितना सुंदर यह दृश्य होगा, ये दुनिया कितनी सुंदर होगी अगर भक्ति उतर जाएगी हर मन में हर जन में।
1: लीना जी एक छोटा सा प्रश्न है, अब कुछ स्त्रियां हैं जो उपवास रखने के बाद भी, जैसे शिव अब सावन में सोमवार रखती हैं, तो वो जो है शिवालय नहीं जा पाती क्योंकि उनके घर में काम बहुत है, उनके घर में गाय भैंस है और जो है काम पर जाने वाले बच्चे भी हैं, उनके जो है पति देव भी हैं, तो उनको इतना समय नहीं मिलता कि वो शिवालय नहीं जा पाती, तो वो घर पर ही कैसे पूजा करें, कैसे उसको घर को ही शिवालय बनाएं, बस इतना समय में प्रश्न है जो।
0: बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया है।
1: हाँ।
0: देखिए भगवान की भाव से आराधना होती है, भगवान की मन से आराधना होती है। अगर हमारी भावना सुंदर है तो गंगा हमारे ही अंदर है, पुष्प हमारे ही अंदर है, और हर चीज जितना चीज भगवान को चाहिए सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे इसी शरीर में भगवान का वास है। तो हम अपने मन से अपनी भावनाओं से भगवान शिव की आराधना करें, उनकी साधना करें तो सब कुछ हमें यहीं मिल जाएगा। अब प्रहलाद कहाँ विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए जाता था? कहीं मंदिर तो जाता नहीं था। जब मंदिर नहीं जाता था लेकिन आराधना तो विष्णु भगवान की हो रही थी, तभी तो प्रहलाद के लिए उन्होंने नृसिंह रूप तक धारण कर लिया। तो असंभवम संभव कर्तुम उद्यते, असंभव को भी संभव कर देते हैं भगवान जब हम भगवान की भक्ति में भावना से विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ये भावना ही हमारे अंदर क्या बनती है? विश्वास। विश्वास ही हमारे अंदर आस्था का रूप लेती है, आस्था ही हमारे अंदर श्रद्धा का रूप लेती है, और श्रद्धा से भावना से जब हम भगवान को पुकारते हैं आर्त स्वर से तो भगवान हमारे हृदय में ही उपस्थित हो जाते हैं, नीलकंठ बन जाते हैं, और हम उन नीलकंठ के की आराधना मन से करने लगते हैं तो वो वहीं खुश हो जाते हैं। वो जानते हैं कि हाँ हम किस कारण से उनके मंदिर नहीं आ पा रहे, तो शरीर रूपी दिव्य मंदिर में हम भगवान की आराधना करें और भगवान को प्रसन्न कर लें।
1: एक और प्रश्न मेरे से पूछा गया था कि जो बाजार में जो शिवलिंग मिलते हैं छोटे छोटे पूजा के स्थलों पर, क्या वो स्त्रियां अपने घर में वो शिवलिंग स्थापित कर सकती हैं अपने पूजा घर में और उस पर जल चढ़ा, जल और पुष्प और बेल पत्र वगैरह चढ़ा सकती हैं?
0: बिल्कुल कर सकती हैं। भावना हमारी गहरी होनी चाहिए, शिवलिंग ले आए और गंगा जल से उसे धो करके हम अपने उस पर, लेकिन शिवलिंग को कभी भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि शिवलिंग बाहर ही रहता है। तो हम अपने घर के बाहर या छत पर कहीं भी शिव चौरा बना करके उसमें शिवलिंग रख दें और वहां उनकी आराधना करें तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। और पांच चीजें शिव को बहुत प्रिय है, बेलपत्र प्रिय है, बेलपत्र अगर मिलता है तो बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, शहद से अगर हम आराधना करते हैं तो मिठास हमें मिलती है। हम भगवान शिव को जो चढ़ाएंगे वही हमारे स्वभाव में उतर जाएगा। शहद चढ़ाएंगे तो मिठास हमारे अंदर आएगी, दूध चढ़ाएंगे अगर पुत्र की

0: गरीबों को खिला देना चाहिए। लेकिन यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान शिव को जब हम दूध चढ़ाते हैं तो समझिए पूरे सृष्टि को हम चढ़ाते हैं। भगवान शिव पूरे सृष्टि के हैं और पूरी सृष्टि में जो भी दीनहीन है सब तक उनकी कृपा बरसती है। लेकिन अगर हम गरीब को पिलाते हैं तो एक ही गरीब का उद्धार होता है, लेकिन भगवान शिव को जब हम चढ़ाते हैं तो संसार के समस्त दीनों का उद्धार होता है। तो इसलिए भगवान शिव को दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। और मैंने सावन में ये भी देखा है कि पॉलिथीन के साथ वो चढ़ा देते हैं, इसलिए उनकी भावना ये रहती होगी चलो भाई दूध गंदा ना हो, हम शिव पर भी चढ़ा रहे हैं एक पंथ दो काज। लेकिन ये उचित नहीं है क्योंकि पॉलिथीन में दूध अगर हम चढ़ाते हैं तो भगवान के शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। शिवलिंग पर अगर दूध चढ़ाना है तो हमें दूध लोटे में डाल करके और चढ़ाना चाहिए। दूध में जल डाल करके भी बहुत लोग चढ़ा देते हैं, जल बाद में चढ़ाई दूध चढ़ाई
1: दूध पहले।
0: हाँ, दूध जितना जितना जितना हम भगवान को देंगे उतना उतना हम वापस
1: पाएंगे।
0: कहते हैं तुम एक पैसा दोगे वह 10 लाख देगा, वही बात है। भगवान शिव तो भोलेनाथ है, हम अगर भाव से उनको एक पैकेट दूध चढ़ाते हैं तो हमें उसका 10 गुना लाभ मिलता है।
1: अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि शिवलिंग को पूजा स्थल में ना स्थापित करके बाहर उनको पधारना चाहिए। तो जैसे पूजा का एक क्या नाम तुलसी का एक गमला है और उसी के पास
0: उसी में नहीं रखना,
1: हाँ तो उसी के पास एक और गमला लेकर उस खाली गमला लेकर उसमें उसको पधार सकते हैं।
0: कारण
1: खाली गमले
0: ये
1: में
0: है कि तुलसी विष्णु भगवान की प्रिया है। और विष्णु भगवान के साथ तुलसी अच्छी लगती है। तो भगवान शिव को स्थापित करना है तो बेलपत्र के पास भी हम रख सकते हैं, और नहीं तो शिव चौरा रख ले तो उसमें भी हम
1: एक गमला ले लें खाली जी, और उसमें अलग से पधार दें उसमें, और उसी में फिर वो पूजा करें, है ना, ये बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर। तो मेरे जो श्रोता हैं जो महिलाएं हैं उनके इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि उन्हें पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है कि वो मंदिर नहीं जा पाते, वो दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, पर घर में ही पूजा कर लें। अगर ला सकती हैं तो बाज़ार से छोटा सा ये शिवलिंग लाकर बाहर किसी खाली गमले में अपने आंगन में आगे या पीछे उसमें रखकर उसमें पूजा कर लें, उसी में जल चढ़ा लें। और जैसे कि बताया है कि यदि दूध और पानी मिलाकर चढ़ाएं तो पहले लोटे में दूध डालें यथाशक्ति और फिर उसमें तब जल भरें और तब श्रद्धापूर्वक उनको अर्पित करें। तो जो भी आपके पास है सामग्री उसी को अर्पित करें, ये भगवान शिव उसी से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और कोई आपका कोई ऐसा प्रश्न हो तो हमें आप पत्र द्वारा भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो लीना जी, अब ये क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। लीना जी, आपका सारे श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: कि आपने इतना ज्ञान दिया। श्रोताओं, अब मुझे भी इस एपिसोड को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए क्योंकि अब समय नहीं है कि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। तो अगले एपिसोड में पुनः हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

लग जा गले, ए लग जा गले, दुनिया चले छम छम छम छम छम छम छम। ए गढ़ हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रगा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा है। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूय अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
0: बिन बुलाए मेहमान।
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है K P square L H B P अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
2: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए
2: जी
3: है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
0: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
0: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो
4: अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है. तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है. जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है. और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है. जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा, तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार. संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है. और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर. नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है. और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है. और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो वो बनता है गुप्त चित्र. अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी.
4: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है. और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है. और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है. उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है. और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती.
3: बिल्कुल.
4: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है, तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं. फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं. अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है. तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं. तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है. इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं. तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे. अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें, तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है. हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं, और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा. हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं. और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों। तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
3: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थिर प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थिर प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं। हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे निर्णय ले लिया, तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे।
3: बिल्कुल।
2: इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
3: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी
3: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी।
3: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
3: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
5: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: नमस्कार, रेडियो मानवरत्न नायक सुसाध्य शिमला वार्ड पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों कथाओं को हम आप तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं और हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती है रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल कार्यक्रम आत्मदर्शन में हम आपको बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंगों के बारे में जो महाभारत में समाहित हैं। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से हमने कथा जानी, ऋषि चवन और सुकन्या के बारे में जाना, राजा उशनीर की कथा हमने जानी, किस तरह से राजा उशनीर की परीक्षा ली थी इंद्रदेव ने, ये कथा हमने पिछले एपिसोड में जानी थी। तो आज आगे बढ़ते हैं और रागलेखा दासी जी से जानते हैं कि आज कौन सी कथा वो हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं। जी,
1: आज हम अष्टावक्र जी का जन्म और उनके साथ साथ का वृतांत सुनेंगे।
0: जी,
1: तो उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत समझे जाते थे। निरंतर फल मूलों से संपन्न रहने वाले आश्रम मुनि का है। उद्दालक मुनि का कहो नाम का एक सिद्ध शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्दी सब वेद पढ़ा दिए। अपनी कन्या सुजाता भी उसे ब्याह दी। कुछ काल बीतने के बाद सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोर वेद पाठ कर रहे थे, उसी समय वह बोला, पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु ये ठीक ठीक नहीं होता। शिष्य के बीच में इस प्रकार आक्षेप करने से पिताजी को बहुत क्रोध आ गया। तब वो गर्भ में है और बोल रहे हैं, तो उन्होंने ये उदरस बालक को श्राप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें किया करता है, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई। उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोर धन लाने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहाँ वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया। शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। उद्दालक को जब ये समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इस विषय में कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को उसका कुछ पता न चला। वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेत केतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी तो उद्दालक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहाँ श्वेत केतु आए और अपने पिता की गोदी में से खींच कर कहा, ये गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेत केतु की इस प्रतिपत्ति से उनके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। उससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई। उसने शाप के भय से सब बात बता दी। वो सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेत केतु से मिलकर ये सलाह की, हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चले। ये यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है, वहाँ हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुँच कर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने पूछा, आप लोग को प्रणाम है, हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है, केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुम्ब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ, तुम मेरी ओर से ये सूचना महाराज को दे दो। द्वारपाल बोला, अच्छा मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहाँ जाकर आपको विद्वानों को योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहाँ अष्टावक्र ने कहा, राजन आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है, वे ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। ये बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत धर्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वे बंदी कहाँ है, मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेता ब्राह्मण देख चुके हैं, तुम उसकी शक्ति को ना समझ कर उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार सभी उसके सामने हतप्रभ हो गए। उस पर अष्टावक्री ने कहा, मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा। तब राजा ने अष्टावक्री की परीक्षा करने के लिए विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव 12 अंश 24 पर और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है वही बड़ा विद्वान है। ये सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसने पक्ष रूपी 24 पर ऋतु रूपी 6 नाभि मास रूपी 12 अंश और 3 रूपी 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने ये प्रश्न किए, सुने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जन्म लेने के बाद किसने गति नहीं होती, हृदय किसने नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है। अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से भरती है। ये सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं, मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं है, मैं तो आपको वृद्धि मानता हूँ, वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, तो मैं आपको मंडप के द्वार सौंपता हूँ, यही वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूम कर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम कर रखा है, किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन नदी के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ। राजन, जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरज कर इस प्रकार ललकारा तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, क्षत्रियों का नाश करने वाले देवराज इंद्र एक ही वीर हैं और पितरों के ईश्वर यमराज भी एक ही हैं। अष्टावक्र बोले, इंद्र और अग्नि ये दोनों देवता हैं, नारद और पर्वत ये देव ऋषि भी दो हैं, दो ही अश्वनी कुमार हैं, रथ के पहिये भी दो ही होते हैं, और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाए हैं। पृथ्वियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा है, पृथ्वी में 13 दीपों वाली बतलाई गई है। इस प्रकार बंदी ने आधा श्लोक कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी से आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे, अग्नि वायु सूर्य ये 3 देवता 13 दिनों के यज्ञों के व्यापक हैं और वेदों में 13 आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचार में पड़ गया, किंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी रही। ये देखकर सभा के ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, अष्टावक्र जी की कथा जान रहे हैं और किस तरह का उनका जन्म रहा, किस तरह का जीवन बीत रहा है, ये सारी बात हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। और अभी रागलेखा दासी जी हमें अष्टावक्र जी की कथा सुना रही है कि किस तरह से जन्म लेने से पहले से ही उनका जो टोकना था या उनकी जो बातें थी वो पहले से ही बोल पाते थे और किस तरह से उनका नाम अष्टावक्र पड़ा, आगे की कथा भी हम जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी आगे बताएं।
1: जी अष्टावक्र ने कहा, राजन, ये बंदी शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबा चुका है, अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए। बंदी ने कहा, महाराज, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ, मेरे पिता के यहाँ आपकी ही तरह 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है, उसी के लिए मैंने जल में डुबाने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोग भेज दिया है, वे सब अभी लौट आएंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं, उनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव जी से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। बंदी ने कहा, राजन, वरुण के पुत्र होने से मुझे डूबने का कुछ भी भय नहीं है। अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिताजी कहो के अभी दर्शन करेंगे। समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल के बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में पहुंच गए। उनमें से कहोड़ ने कहा, मनुष्य ऐसे कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं, जिस काम को मैं नहीं कर सका वही मेरे पुत्र ने करके दिखाया। राजन, कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है। बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेके समुद्र में कूद पड़ा। तदनंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र जी की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिताजी की पूजन किया और श्वेतकेतु के सहित अपने आश्रम को लौट आए। वहाँ पहुंचकर कहोड़ ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस रमंगा नदी में प्रवेश करो। बस अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई उनके अंग सीधे हो गए और उनके संसर्ग से वह नदी भी

सुगंधित नाम वाले कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, आर्य मैं यह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से पुष्प ले आइए, मैंने कामरेक वन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूँ। भीमसेन से ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूल को लेकर धर्मराज के पास चली गई। राज महर्षि द्रौपदी का आश्रय समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा से जिस और वायु उसे उड़ाकर लाई थी उसी और फूल लेने के लिए फिर तेजी से चले। उन्होंने धनुष और पहने बाण ले लिए। थोड़ी दूर जाने पर गंध मादन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा केले का बगीचा दिखाई दिया। महाबली भीम नरसिंह के समान गर्जन करते हुए झपट कर उसके भीतर घुस गए। उस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता चल गया। उन्होंने सोचा कि क्योंकि वायु पुत्र है हनुमान जी और वायु पुत्र ही भीमसेन है तो भीमसेन के इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है मार्ग में उनका कोई तिरस्कार कर दे या उन्हें शाप दे दे। तो इस रक्षा करने के विचार से उन्होंने केले के बगीचे से होने जाने वाले सकरे मार्ग को रोककर लेट गए। जम्बाई लेकर अपनी पूछ फटकारते थे, उसकी प्रतिध्वनि सब और फैल जाती थी। ये शब्द मत वाले हाथी के गर्जना को भी दबाकर पर्वत पर सब और फैल गए थे। उसे सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो गए और वे कारण के ढूंढने के लिए उस केले के बगीचे में सब और घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानर राज हनुमान दिखाई दिए। महाबली भीमसेन निर्भय होकर उनके पास चले गए। भैया मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? हनुमान जी बोले, तुम हो कौन और किस लिए इस वन में लेटे हो? भीमसेन ने कहा, वानर राज आप कौन है और इस वानर देह में आपने क्यों धारण की है? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत गुरु वंश से उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुंती के घर से जन्म लिया है और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ। लोग मुझे वायु पुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है। हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूँ, तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो तो मैं इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही है, तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। अच्छा। मैं बल पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा। हनुमान जी ने कहा, हे अनग तुम रोष न करो, बुढ़ापे के कारण मुझे उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूछ हटाकर निकल जाओ। भीमसेन अवज्ञा पूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान जी की पूछ उठाने लगे, किंतु वे उसे तस तमस भी न कर सके। फिर उन्होंने उसे दोनों हाथों से उठाना चाहा, किंतु वे असमर्थ थे। तब उन्होंने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करके उनसे कहा, वानर राज आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने जो कटु वचन कहे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान नाम का बंदर हूँ। इस प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीव से थी। अयोध्यापुरी में राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे ये वर मांगा कि हे शत्रुदमन, जब तक इस भूमंडल पर आपकी पवित्र कथा रहे तब तक मैं जीवित रहूं। भीमसेन सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए मुझे इच्छा अनुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थान पर गंधर्व अप्सराएं उनके चरित्र सुना सुना कर मुझे आनंदित करती रहती है। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं, मनुष्य के लिए अगम्य है, इसलिए मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसलिए कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता, तुम्हें श्राप दे देता, इसलिए क्योंकि ये दिव्य मार्ग देवताओं के लिए है, इसमें मनुष्य नहीं जाते। और तुम्हें यहाँ जाने के लिए आए हो, ये सरोवर तो यही है। भीमसेन बोले कि आज मेरे समान कोई बड़ा भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की है, आपके दर्शन से मुझे बड़ा ही सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरी करनी होगी। समुद्र को लौटते हुए आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूँ, इससे मुझे संतोष होगा और आपके प्रश्नों पर विश्वास भी हो जाएगा। भीमसेन के इस प्रकार कहने से हनुमान जी ने मुस्कुराकर वह रूप दिखाया जो समुद्र लांघते समय उन्होंने धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया।
लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक

0: कर गए। उस समय अतुलित कीर्तिमान हनुमान जी ने विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वह केला बगीचा आच्छादित हो गया। वह विशाल रूप देख कर बड़े विस्मित हुए भीमसेन और उनके शरीर में रोमांच हो आया। हनुमान जी का वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पहाड़ जान करता था। भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। मैंने आपके शरीर को महान विस्तार देख लिया, अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। मेरे मन में तो आज यह बड़ा आश्चर्य है, राम जी को रावण के समय युद्ध करना पड़ा, उस लंका को तो उसके योद्धा और वाहनों सहित आपके ही बाहुबल में सहज ही नष्ट कर सकते थे। रावण तो अपने परिकर के सहित अकेले आपसे ही लड़ने में समर्थ नहीं था। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी बोले, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है, ये अदम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था। सारे लोगों को कांटे के समान चलाने वाला उस रावण को यदि मैं मार डालता तो राम जी को एक कीर्ति कैसे मिलती। रघुनाथ जी ने सेना के सहित उस राक्षस अदम का वध किया और सीता जी को अपनी पुरी में ले आए। लोगों में उनका सुयश फैल गया। अब तुम जाओ, देखो ये सामने वाला मार्ग सुगंधित वन को जाता है, वहाँ तुम्हें यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित कुबेर का बगीचा मिलेगा। स्वयं ही जल्दी से पुष्प चयन मत करना, मनुष्य को तो विशेष रूप से देवताओं का मान करना ही चाहिए
1: जी।
0: फिर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए शरीर को सिकोड़ कर वानरराज हनुमान ने दोनों भुजाओं से भीमसेन को छाती से लगाया। इससे तत्काल ही भीमसेन की सारी थकावट दूर हो गई और वह सब प्रकार से अनुकूलता का अनुभव करने लगे। तो हनुमान जी बोले, तुम्हें मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होना चाहिए, तुम भ्रातृत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हस्तिनापुर में जाकर कुछ धृतराष्ट्र के पुत्र को मार डालो, ये भी मैं कर सकता हूँ। तुम चाहो तो पत्थरों से इस नगर को नष्ट कर दूं और अभी दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास ले आऊं। महाबाहु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर दूं। भाई और सुहृद होने के नाते मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। जिस समय तुम शक्ति और बाणों से व्याप्त शत्रु के सेना में दुष्ट सिंहनाद करोगे, उसी समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जन को बढ़ा दूंगा और अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसा भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उसे सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उसे मार दिखाया और वही अंतर्ध्यान हो गया।
1: जी, बहुत सुंदर प्रसंग श्रोताओं, भीमसेन और हनुमान जी की जो भेंट हुई, मुझे कहीं ना कहीं याद आता है कि कभी टीवी सीरियल्स में मैंने ये देखा है। तो जब आप रागली की तस्वीर सुना रही थी तो वो पूरी छवि मेरे सामने आ रही थी। बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है दोस्तों कि किस तरह से भीमसेन और हनुमान जी की जो भेंट हुई, बहुत ही सुंदर प्रसंग हमने अभी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जाना। आगे और भी प्रसंग हैं, कथाएं हैं जो हम जानते रहेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण
1: जी। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में महाभारत में समाहित और भी कथा प्रसंग रागलेखा दासी जी से हम जानते रहेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइफ।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ अपने साथ और आपके पास। जी हाँ, देखिए सुबह सुबह का टाइम है, शो की करते हैं शुरुआत। और आपको बता दूँ, आज देखिए ये जो प्रोग्राम है ये 2 घंटे का है, क्योंकि अब से ना मैं आपके पास 2 घंटे के लिए आती हूँ और बहुत सारी करती हूँ बातें, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे। जी हाँ, हर दिन आपके साथ रहती हूँ और इसी के साथ साथ और बहुत सारी होती हैं बातें, चाहे बात करें हेल्थ की, चाहे बात करें फिटनेस की, योगा की, मेडिटेशन की। इसी के साथ साथ आपको बता दूँ कि देखिए हम बात ज़रूर करते हैं यहाँ पर क्विज की भी, और बात होती है स्पोर्ट्स की भी। तो जी हाँ, बहुत सारी बातें लेकर के आपके पास आ जाती हूँ। मॉर्निंग की करते हैं खूबसूरत सी शुरुआत, और आज क्या है कुछ खास वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनेवरेट नाउ 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ आपके पास और बातें हमारी चल रही हैं। तो अभी फिलहाल सेगमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, वो है दिल धड़कने दो। और इस सेगमेंट में बात होती है आपकी हेल्थ और फिटनेस की। जी हाँ, तो हेल्थ और फिटनेस की होंगी बहुत सारी बातें, आपको बस इसी तरह से जुड़े रहना है और ढेर सारे मैसेज करते रहने हैं। जी हाँ, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए यहाँ पर गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं और प्रोग्राम की देखिए जो अच्छा आपको लगता है ये भी मुझे बता रहे हैं, तो दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ साथ देखिए मैं आपको बताती हूँ हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारा सेगमेंट है दिल धड़कने दो। और दिल धड़कने दो में अभी फिलहाल बात हो रही है इस गर्मी के मौसम की। जी हाँ, देखिए गर्मी का ये जो मौसम है ना, ये अपने साथ कई सारी बीमारियाँ लेकर के आता है। ऐसे में अपने आप को, खुद को ठीक रखना ज़रूरी है। अब देखिए इन दिनों क्या होता है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एनर्जी कम रहती है और पेट की गड़बड़ी आम हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं पूरे सीज़न बिना डॉक्टर के आप इसे बिता दें पूरा सीज़न और आपकी इम्यूनिटी भी दमदार बनी रहे, तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होगा। हर सुबह खाली पेट आपको जो है कुछ फ्रूट्स का या कुछ फल का से सेवन जो है वो करना है। अब देखिए क्या होता है ना कि जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपकी सेहत बनी रहती है, इम्यूनिटी बनी रहती है, और इम्यूनिटी बनी रहनी ज़रूरी है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और आपको बता दूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली आप मार्केट में जाएंगे तो लोकल फ्रूट है, आपको आसानी से सीजनल फ्रूट आपको मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप बाद में कहें कि साक्षी ये तो फ्रूट है ही नहीं, ये तो इतने महंगे हैं। महंगे भी नहीं है और सेहत के लिए भी अच्छे हैं, इसीलिए आप तक ये सारी जानकारी लेकर के आती हूँ। चलिए बताऊँगी इसके बारे में कौन से ये फ्रूट्स हैं, लेकिन फिलहाल ले दी हुई छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मारे ब्रश 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल सेगमेंट दिल धड़कने दो में हम कर रहे हैं ढेर सारी बातें। जी हाँ, सेगमेंट दिल धड़कने दो जो कि आपके लिए लेकर के आती हूँ, जिसमें हम करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी बातें, हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी बातें। जी हाँ, अब बात मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे सीजनल फूड्स की, जिससे आप खाली पेट लेते हैं तो आप जो है भाई इस गर्मी के मौसम में आपकी सेहत बनी रहेगी। तो अगर आप सुबह सुबह सुबह खाली पेट अगर लेते हैं पपीता, तो भाई सुबह की शुरुआत आपकी काफी अच्छी होगी। समझ लीजिए कि आपका पाचन जो तंत्र है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और इस गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, देखिए पपीते में पाया जाने वाला जो पेपेन एंजाइम होता है, ये ना सिर्फ खाना पचाने में मदद करता है, बल्कि अगर आपको एसिडिटी है या फिर कॉन्स्टिपेशन है या फिर कोई भी, अगर देखिए आपको रिलेटेड कोई ब्लोटिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सब में राहत दिलाता है। अब बस इसे खाना कैसे है, आपको सुबह एक कटोरी ताज़ा पपीता जो है खाली पेट खा लेना है और बस देखिए कमाल का जादू जो है ये फिर होने लगेगा। इसी के साथ साथ अगर आप गर्मियों में ये जो गर्मियों का राजा फल है ये खाते हैं, तब भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ मैं बात आम की नहीं कर रही हूँ, राजा फल इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि फलों का राजा तो वैसे आम है, नो डाउट आम है, लेकिन भाई जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आपको मिलता है वो है वाटरमेलन। जी हाँ, यानी कि तरबूज, जिसमें करीबन कुछ 92% तक पानी मिलता है हमारी बॉडी को, और जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मियों में उसे बचाता है, इसके खतरे से हमें बचाता है। लेकिन अगर आप रोज तरबूज खाएंगे तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, जो टेम्परेचर है, वो बैलेंस में बिल्कुल रहेगा। और इसे बस क्या करना है, सुबह खाली पेट एक कटोरी आपको तरबूज जो है वो खाना है। लेकिन याद रखें, खाली पेट दूध या पानी आप तुरंत बिल्कुल भी ना लें जब आप तरबूज खाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्योंकि पानी की तो देखिए जरूरत भी नहीं होती, तो दूध भी मत लीजिएगा। आपको क्या करना है, बस तरबूज खाना है और बस हो गया। अब इसमें आपको 92% तक पानी जो है ये मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ साथ बात करें अब देखिए फलों के राजा की, जो मैं कह रही थी, और वो है आम। आम जो है इसे फलों का राजा तो कहा ही जाता है, जो गर्मियों में इसका स्वाद जो है देखिए हर एक को पसंद आता है, हर कोई आम खाना पसंद करता है और ये कई सारे गुणों से भरपूर भी है। विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं बल्कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करते हैं। जी हाँ, तो देखिए अगर आपको भी चाहिए ना एनर्जी, आम खाना शुरू कर दीजिए। बस आपको क्या करना है, पका हुआ आम जो है वो लेना है। बस आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे सीमित मात्रा में खाना है, क्योंकि ये शुगर जो है इसमें थोड़ी हाई होती है, इसलिए आपको कम ही खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए आम में थोड़ी सी गर्मी भी होती है, तो आपकी बॉडी पे जो है देखिए आपको हो सकता है कि कई लोगों को ये समस्या रहती है कि अगर आम ज़्यादा खा लेते हैं तो उनको जो है थोड़े दाने हो जाते हैं या फिर उनको जो है पेट खराब होने की समस्या रहती है। तो बहुत ज़्यादा मत खाइए, कम इसकी जो क्वांटिटी है ना उसमें खाइए, तो आपको नुकसान नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा, आपकी बॉडी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। चलिए कुछ और फ्रूट्स के बारे में भी आपको बताऊंगी जो कि खाली पेट आपको ले लेने चाहिए। कौन से हैं फिलहाल बताती हूँ कुछ ही देर में, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. फिलहाल चल रहा है हमारा सेगमेंट दिल धड़कने दो. जी हाँ, दिल धड़कने दो मैं आपसे बातें करती हूँ आपकी हेल्थ और फिटनेस की. जी हाँ, और यहाँ पर आपको बता दूँ कुछ फ्रूट्स के बारे में आपको बता रही हूँ. ये जो लोकल सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं ना, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए. और गर्मी में तो ज़रूरी भी है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो मज़बूत बनी रहे, क्योंकि तो ये बहुत सारी बीमारियाँ ना अपने चपेट में ले लेती है. और अगर आप भी चाहते हैं ना कि ये जो बीमारी है आपको अपने पेट में बिल्कुल भी ना ले, तो उसके लिए आपको अपना ख्याल तो रखना पड़ेगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली पेट अगर आप कुछ फ्रूट्स लेते हैं तो आपकी सेहत बनी रहेगी, जैसे कि पपीता, तरबूज. साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आम की, तो ये भी अच्छा है. लेकिन अब बात आती है दूसरे फ्रूट की. जो हमारा जो है अगला फ्रूट है वो है मेलन. जी हाँ, खरबूजा. खरबूजा भी तरबूज की तरह ही शरीर को ठंडक रखता है, ठंडे में रखता है आपके शरीर को, साथ ही पानी की कमी से बचाने में भी काफ़ी मदद करता है. इसमें पोटाशियम है, फाइबर है, विटामिन सी है, और इसमें जो है आपकी बॉडी को देखिए जो एनर्जी देने वाले कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी ना सिर्फ बॉडी के लिए हेल्पफुल है बल्कि आपकी त्वचा को भी चमकदार बनाते हैं. कुछ ऐसे पोषक तत्व भी हैं. अब इसे खाना कैसे? सुबह नाश्ते से पहले आप एक कटोरी खरबूजा ज़रूर खाएं. अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सारे फ्रूट्स को एक साथ ना खाएं. एक दिन आपने जो है खरबूजा खाया, एक दिन तरबूज खाया, एक दिन आम खाया सुबह ब्रेकफास्ट में, एक दिन आपने जो है पपीता खाया, तो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं. अब अगले फ्रूट की बात आती है और वो है हम सभी का फेवरेट सेब. जी हाँ, देखिए सेब जो है इसको अक्सर सर्दियों का फल माना जाता है, लेकिन गर्मियों में भी इसका असर जो है वो शानदार है. इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो गर्मी के मौसम में होने वाली थकान और कमजोरी से बचाता है. और वैसे भी कहते हैं ना, an apple a day keeps doctor away. इसीलिए अगर आपको डॉक्टर से रहना है दूर, अपनी रखनी है इम्यूनिटी मजबूत, तो खाइए ढेर सारा सेब, ढेर सारा एप्पल, ताकि आपकी सेहत बनी रहे. सुबह खाली पेट आप एक ताज़ा सेब ज़रूर खाइए, छिलके समेत खाइए ताकि फाइबर मिले. जो बहुत सारे लोग हैं जो छिलका पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए छिलके के साथ खाने के लिए, तो उससे फाइबर आपको मिलेगा. नहीं तो मर्जी वैसे आपकी है, खा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसी के साथ साथ कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, जैसे कि फलों को आपको खाली पेट खाने से देखिए उनके पोषक तत्व जो है वो जल्दी और बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में अब्जॉर्व होते हैं. तो इसी के साथ आपको पहले कुछ नहीं खाना है, आपको खाली पेट खाना है. इसी के साथ साथ एक ही फल रोज़ आपको खाना है. आपको जो है बारी बारी हर दिन आप जो है अपना फल जो है वो बदलते रहिए, सारे मिक्स मत कीजिए, एक एक करके खाइए. फलों को आप काट कर देर तक बिल्कुल भी ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है. ताज़े फल ही डाइट में आप शामिल कीजिए, जो आप हाथ के हाथ उसको काट के खाएं. फल खाने से के तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना है, कम से कम 30 मिनट के गैप के बाद ही आपको पीना है पानी, इससे पहले आपको पानी नहीं पीना है. चलिए, ये तो रही हमारी हेल्थ और फिटनेस की बहुत सारी बातें. और इसी के साथ तो देखिए आप होंगे और भी बहुत सारी बातें, अपने प्रोग्राम तो लेकर आ ही जाती हूँ, लेकिन अब करते हैं आगे बातें. स्ट्रेच प्लीज़ हमारा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में मैं करती हूँ आपके साथ मेडिटेशन, योगा की बातें. जी हाँ, अब देखिए हमने अपनी सेहत का ख्याल तो रख लिया, हमने ये तो पता कर लिया ना कि किस तरह से आप अपनी फिटनेस को बनाए रखेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी जो है अच्छी है, बनी हुई है, और आप अच्छे से अपनी फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों का ख्याल रखना और योगा करना, मेडिटेशन करना. उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या कौन कौन से ऐसे योगा आसन है जो आपके लिए अच्छे हैं, बताऊँगी कुछ ही देर में. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी। अब देखिए, बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जो है स्ट्रेच प्लीज। चलिए, इस सेगमेंट में बातें हमारी चलती हैं, आपको योगा के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, योगा जो है ये एक शब्द नहीं है, एक जिंदगी का तरीका है। ये सिर्फ बॉडी को ट्विस्ट या स्ट्रेच करना इसमें नहीं होता है, ये अपने मन को, अपनी सांसों को और अपनी सोल को एक रिदम में लाना होता है। जब हम योगा करते हैं, हम सिर्फ हेल्दी नहीं बनते हैं, बल्कि हम खुद को और ज़्यादा अपने करीब लाते हैं, स्ट्रेस से दूर जाते हैं और सुकून के पास चले जाते हैं। योगा का मतलब है जुड़ना, जी हाँ, अपने आप से, अपनी एनर्जी से और इस पूरे यूनिवर्स से, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या फिर अनुलोम विलोम। हर पोस्चर के पीछे एक पर्पस होता है, फिट बॉडी, काम माइंड और पीसफुल सोल। तो बस रोज आप कुछ मिनट अपने निकालिए, अपने जिंदगी के, आप कुछ पूरे दिन के एक आपको कुछ मिनट निकालने हैं और आपका जो है, देखिए ये ध्यान जो है आपको केंद्रित करना है और उसके बाद आपको शुरू करना है अपना योग, क्योंकि योग से अगर आप जुड़ जाते हैं तो बस आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और आप देखेंगे, देखिए आपकी ज़िंदगी जो है ना, बिल्कुल एक नया मोड़ ले लेगी, एक बैलेंस जो है आ जाएगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इससे बन जाएगी। तो चलिए, योग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, योगा इम्पॉर्टेंट है, पोस्चर कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, योगा आसन कितने ज़रूरी है, कौन कौन से योगा आसन करने चाहिए, ये सारी बातें आपके साथ ज़रूर करूँगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हुए छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनवरेज फ्रॉम 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातों के साथ मैं आ जाती हूं यहां पर आपके पास। और प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में टाइम चल रहा है हमारे खूबसूरत से सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज का, जिसमें बात करती हूँ योगा के बारे में। जी हाँ, देखिए योगा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और योगा जो है एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब बात करते हैं हम एक ऐसे योगिक प्रैक्टिस की जिसने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि वर्ल्ड हेल्थ मैप पर अपने आप को प्लेस किया है। एक ऐसी योगिक ये प्रैक्टिस है। जी हाँ, ये देखिए ऐसा ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर करें, इससे जो है आपकी एनर्जी जो है ये बरकरार रहती है। और आज मैं बात कर रही हूँ सूर्य नमस्कार यानी कि सन सैल्यूटेशन की। सूर्य नमस्कार एक पूरा बॉडी वर्कआउट है, बिना किसी मशीन के इसे किया जाता है। जी हाँ, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। 12 स्टेप्स में ये जो योगिक प्रैक्टिस है यानी कि सूर्य नमस्कार जो है ये डिवाइडेड है, और साथ ही ये आसन जो है ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को स्ट्रेच करता है बल्कि आपके माइंड ब्रेन साथ ही आपके ब्रेथ को और सोल को भी एक बैलेंस में लाता है। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब किस तरह से इसे किया जाता है, यानी कि इसके कौन कौन से जो है, देखिए इसमें अलग अलग क्योंकि डिवाइडेड है, 12 अलग अलग पोजेज में ये डिवाइडेड है। तो अब बात करते हैं क्योंकि स्टेप्स जो है इसके 12 स्टेप है। पहला स्टेप है प्राणायाम यानी कि प्रेयर पोज। सीधे खड़े हो जाएं आप पहले और दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने दोनों हाथ जो आपके चेस्ट के बिल्कुल सामने होने चाहिए। ये आता है पहला स्टेप जो है प्राणायाम आसन। और इसके बाद आता है अगला यानी कि स्टेप जो है वो है हस्ताउत्सानासन, यानी कि सांस लेते हुए दोनों हाथ जो है ऊपर आपको उठाने हैं और पीछे थोड़ा सा आपको बेंड करना है, आपकी जो कमर है वो हल्की सी बेंड होगी। अब आपको अपने हाथों को रेज करना है और पीछे की तरफ आपको बेंड करना है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आता है, देखिए आपका जो है पादहस्ता

अश्व संचालनासन। जी हाँ, इसको करने के लिए आपको अपने राइट लेग आपको पीछे लेके जाना है, लेफ्ट लेग आपको फोल्ड करना है और चेस्ट जो है आपको ऊपर रखनी है। और ये है हमारा चौथा पोज। और पांचवा पोज आ जाता है प्लैंक पोज, यानी कि डंडा आसन। दोनों पैर पीछे आपको ले जाने हैं, सीधा बॉडी प्लैंक जो है ये बन जाए, इस तरीके से आपको ये पोज करना है। जिसके बाद सीधा सीधा आते हैं हम अगले हमारे स्टेप पे, जो है आपका अष्टांग नमस्कार। जी हाँ, इसमें क्या करना है आपको, चेस्ट, चिन और दोनों घुटने जमीन पर आपके 8 पॉइंट टच करते हैं। ये है हमारा अगला आसन। इसके बाद आ जाता है कोबरा पोज, यानी कि भुजंगासन। इसके बारे में चलिए आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ रोजाना। और साथ ही अभी फिलहाल हमारी बात चल रही है सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में योगासन की, और आपको बता रही हूँ 12 स्टेप जो कि आते हैं सूर्य नमस्कार में। बात कर रहे हैं 7वें स्टेप की, जो है भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। सांस लेते हुए आपको चेस्ट ऊपर उठानी है, और पहले आपको लेट जाना है, उसके बाद जमीन पे, उसके बाद आपको जो है आपको चेस्ट ऊपर लेके जानी है, और हाथ के सपोर्ट से आपको इस तरह से करना है। तो कोबरा पोज जो है ये मेंटेन होता है। इसके बाद आता है माउंटेन पोज, यानी कि आपका जो है वो आता है पर्वतासन, यानी कि हिप्स ऊपर हील नीचे, इन्वर्टेड वी शेप आपको इससे बनानी होती है। जिसके बाद अश्वासन जालासन एक बार फिर से हम करते हैं 9वें स्टेप में। लेग आपको लेफ्ट लेग, पहले जो है आपने देखा होगा कि हमने राइट लेग से किया था, अब लेफ्ट लेग की बारी, आगे लेके जाना है, और उसके बाद आपका जो राइट लेग है वो पीछे होगा, लेफ्ट आगे होगा। और सेम जैसे कि हमने 4th स्टेप में किया था कि आपको ये फोल्ड करना है, चेस्ट ऊपर की तरफ आपको रखनी है, और ये हमारा हो गया जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जो अश्वासन जालासन है इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से आ जाता है यहाँ पर, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आसन, और वो है पादहस्तासन। दोनों पैर साथ आपको लेके आने हैं, और उसके बाद झुक जाना है। ये आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपकी फुल बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 11वें स्टेप में हम आते हैं हत्सा उत्सानासन पे, और सांस लेते हुए आपको फिर से दोबारा से खड़े होना है, और हाथ को ऊपर लेके जाने हैं। जिसके बाद आपके जो फर्स्ट स्टेप है वो एक बार फिर से आता है, यानी कि जो प्राणायाम आसन है वो फिर से आता है, फिर से आपको हाथ जोड़ने हैं, और यहाँ पर आप बिल्कुल शांत रहेंगे, और साथ ही ग्रेटफुल भाव के साथ आपको जो है ये जो पूरा सूर्य नमस्कार है इसे ख़त्म करना है। ये सिर्फ एक, देखिए एक पूरा एक पूरा जो स्टेप से बनता है ना, ये पूरा ये 12 स्टेप के साथ एक सूर्य नमस्कार बनता है, और इसी में अगर आप सिर्फ ये एक आसन कर लेते हैं ना, मानो जैसे आपने पूरे योगासन जो है अपने कर लिए हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँ तो ये बॉडी का एक कम्प्लीट वर्कआउट है। लेग्स, आर्म्स, बैक, चेस्ट सब जो है इंगेज होता है। इससे आपकी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, पोस्चर, और साथ ही कोर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। सांस के फ्लो के साथ मूवमेंट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लंग्स के लिए, और हमारे ब्रीदिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और जिनको बॉडी टोन करनी है ना अपनी, यानी कि टोनिंग आपको करनी है, आपकी स्किन टोन अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। माइंड को ये शांति और क्लैरिटी देता है, स्ट्रेस से दूर करता है, और एनर्जी देता है भरपूर मात्रा में। आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाता है, और इम्यूनिटी देता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ाना अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका दिन पॉजिटिव रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम करेंगे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि अब टाइम जो है ये हो चला है अगले सेगमेंट का। कौन सा है ये अगला सेगमेंट बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कमाल के गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: मारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ हर दिन, यानी कि डेली आपके साथ 2 घंटे यहाँ रहती हूँ, बहुत सारी करती हूँ बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं क्योंकि अब हमारे अगले सेगमेंट का टाइम है। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद साक्षी। जी हाँ, पावर प्ले विद आरजे साक्षी में हम करते हैं बहुत सारी बातें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, बहुत सारी स्पोर्ट्स अपडेट आपके पास लेकर के जरूर आती हूँ। अच्छा, अब एक आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचाने वाली हूँ। जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ एक बहुत ही कमाल के मूवमेंट के बारे में, और ये एक नहीं बल्कि दो हैं। सबसे पहले आता है खेलो इंडिया, और इसी के साथ साथ दूसरा है फिट इंडिया मूवमेंट। देखिए, नए भारत का ये स्पोर्टी अंदाज है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक विजन है जिससे हमारा देश एक फिट, एक्टिव और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। बात करें खेलो इंडिया प्रोग्राम की, ये लॉन्च हुआ था योर 2018 में। इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आजकल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, स्पोर्ट्स भी एक प्रॉमिसिंग करियर बन चुका है, पर कई टैलेंटेड बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, कोचिंग या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। जी हाँ, खेलो इंडिया का मेन गोल है ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना और स्पोर्ट उनको जो है खेलने के लिए सपोर्ट करना। अब होता यह है कि स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ये स्कीम इंश्योर करती है कि हर एक यंग एथलीट को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपना टैलेंट दिखा सके। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे भी किए जाते हैं, तो एनुअल खेलो इंडिया गेम्स स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल का नेशनल गेम्स इनको कहा गया है। इनका ये गेम्स होते हैं जहां देश भर के टैलेंटेड प्लेयर्स कम्पीट करने आते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो सिलेक्टेड एथलीट्स को कुछ 5 लाख रुपए पर ईयर तक दिए जाते हैं एज अ स्कॉलरशिप उनको मिलते हैं, और या फिर हो सकता है कि 8 साल तक उनको ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और इक्विपमेंट्स के लिए भी दिया जाता है। जिन बच्चों में टैलेंट है वो देखिए, टैलेंट जो है कभी छुपता नहीं है, और सरकार इसीलिए ये मूवमेंट को लेके आई है ताकि जो बच्चे टैलेंटेड है वो पीछे ना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। बात करें देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो छोटी सिटीज और टाउन में मॉडर्न स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं और ज्यादा। इनफैक्ट सर्टिफाइड कोचेस, टैलेंटेड जो स्काउटिंग है और साथ ही परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे फीचर्स से एथलीट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है। ये मूवमेंट सिर्फ मेडल जीतने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक माइंडसेट क्रिएट करता है जिसमें हर बच्चा स्पोर्ट्स को सीरियसली जरूर लेता है। तो अगर आप में भी है ये बात तो आप भी जुड़ जाइए इस मूवमेंट के साथ। चलिए, फिलहाल आज हमने जाना है कि ये जो खेलो इंडिया मूवमेंट है ये क्या है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या है, ये कब लॉन्च हुआ और इसे किस तरह से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्यों देना चाहिए और क्यों जरूरी है इसके साथ जुड़ना, चलिए बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता रही हूँ एक बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, हम बात करें हमारे सेगमेंट पावर प्ले विद आरजे साक्षी के, इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अब जी हाँ, खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सरकार जो है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है, वो हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, ना सिर्फ स्कूल लेवल के बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के, कि उनका जो हिडन टैलेंट है वो हिडन ना रहे बल्कि देश के लिए वो देखिए आगे बढ़ते रहे, कोई भी चीज़ की कमी ना हो इस गैप को पूरा करने के लिए, कि उनको सही कोचिंग मिले, सही इक्विपमेंट मिले, सही जगह खेलने के लिए, ताकि वो जो है अपने टैलेंट को और ज़्यादा उभार सके और ज़्यादा जो है वो अच्छे से सीख सके। इसीलिए खेलो जो है मूवमेंट जो है वो लेकर आई। इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। जी हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये 29 अगस्त 2019 यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन इसे लॉन्च किया गया, और ये इनिशिएट किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज के देखिए जो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है, इसमें फिटनेस एक लग्जरी नहीं नेसेसिटी बन चुकी है, और इसी थॉट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फिट इंडिया मूवमेंट। इनफैक्ट देखिए, इस मूवमेंट के लिए पीएम मोदी ने खुद कहा था कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया का मकसद है हर भारतीय को हेल्थ और वेलनेस के प्रति अवेयर बनाना, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई ऑफिस गोइंग या कोई रिटायर अगर हो चुके हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना कि भाई हम ये सोचते हैं कि खेल कूद वाली बात है तो सिर्फ बच्चों को ही करना चाहिए, हम बच्चों को आगे कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे जो आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, हर किसी को फिटनेस जो है ये ज़रूरी है उन्हीं के लिए, और ये नेसेसिटी हमारी, कोई ये जो है लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत जो है अब बन चुकी है। अब बात करें इस मूवमेंट के गोल की, तो देखिए फिजिकल फिटनेस जो बहुत

बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। रोजाना एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग और वॉकिंग जैसी डेली हैबिट्स को इंकरेज करना, मेंटल वेलनेस के प्रति थोड़ा सा और सजग होना, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और हेल्दी रूटीन प्रमोट किए जाते हैं इसी मूवमेंट के अंदर। इनफैक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस और मिनिस्ट्री सभी को फिट इंडिया सर्टिफाइड जो है बनाया जा रहा है, जहां रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज कंपलसरी कर दी गई हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप और फिटनेस स्कोर ट्रैकर जैसे टूल्स भी जो है वो लोगों को डिजिटली एक्टिव बनाए रखते हैं। आज हर स्कूल में फिटनेस वीक्स और हर ऑफिस में वेलनेस ब्रेक और साथ ही हर मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक क्लब शुरू हो गए हैं। फिट इंडिया अब एक मूवमेंट से ज्यादा एक लाइफस्टाइल जो है ये बन चुका है। जब हर गली में फुटबॉल घूमेगा, जब हर बच्चा योगा करेगा, जब हर स्कूल में एक खिलाड़ी पैदा होगा, तभी तो इंडिया ट्रूली बनेगा फिट भी और हिट भी। चलिए इसी के साथ ये तो बात रही हमारे आज के सेगमेंट में। देखिए स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं और ये दोनों ही चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना, इस मूवमेंट के बारे में पता होना स्पोर्ट्स के बारे में। और क्योंकि देखिए यही जो स्पोर्ट्स है ना, पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आजकल ये दोनों ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आप खेल कूद करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अपने फोकस उस पर भी रखते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो अगर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो यही एक करियर ऑप्शन है, बल्कि अब करियर ऑप्शन आपका स्पोर्ट्स में भी है। और इसीलिए सरकार जो है ऐसे कुछ मूवमेंट्स लेकर के आ रही है आपके पास, ताकि आप फिट भी रहे और हिट भी। चलिए इसी के साथ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आगे और भी होंगी बहुत सारी बातें, एक बहुत ही खास सेगमेंट जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ, और सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। तो चलिए जल्दी से अपने मोबाइल फोन्स रखिए तैयार, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ आपसे सवाल, कुछ सवालों के जवाब आप देंगे और उसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि क्या ट्रिक है इसमें, यानी कि कैसे सवाल होने वाले हैं और इससे क्या फायदा आपको मिलने वाला है, बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। जी हां, बातें हमारी चल रही हैं और अभी बात करें हमारे अगले सेगमेंट की जो कि है बहुत ही ज्यादा कमाल का। जी हां, बात कर रही हूं हमारे अगले सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद की। और इस सेगमेंट में आपसे पूछती हूँ कुछ सवाल और आपको दे रही है कुछ जवाब। और जी हाँ, जिसके सवालों के जवाब सही रहे और पूरे महीने आप कंसिस्टेंट होकर जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं, तो देखिए मैं आपको बुलाने वाली हूँ रेडियो मानव रचना और आपको मौका मिलेगा यहाँ रह के मेरे साथ लाइव बातचीत करने का और सभी आरजे से मिलने का भी। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पर आज का क्या है पहला सवाल ये आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले भाई रेडी होने का भी वक्त देना होगा, बिल्कुल देना होगा, क्योंकि आपके मैसेजेस आ जाते हैं कि साक्षी पहले बता तो दो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब शुरू होने वाला है हमारे सेगमेंट का पहला सवाल आने वाला है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। और देखिए, अब मैं आपके साथ रहती हूँ 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, और होती हैं हमारी बहुत सारी बातें। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैं ना अब ये सेगमेंट्स लेकर आती हूँ आपके लिए। जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं दिल धड़कने दो, ये हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। और उसके बाद आता है स्ट्रेच प्लीज सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की। और फिर आ जाता है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। और इसी के साथ साथ आ जाता है हमारा आखिरी, जो कि है कौन बनेगा सेहतमंद, और इसमें हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग क्विज, आपसे सवाल जो है वो आपसे पूछती हूँ मैं, और जवाब आपको देने होते हैं फटाफट, और जो देगा सही जवाब हर महीने कंसिस्टेंट रोके और बिल्कुल सही जवाब देगा, उसको मिलेगा मौका यहाँ मेरे साथ लाइव बातचीत करने का, रेडियो मानव रचना आने का, और साथ ही सभी आरजे से मिलने का भी। इसी के साथ साथ फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, पहला सवाल आपसे पूछती हूँ, और बड़ा ही वैसे तो आसान सा सवाल है, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप और इसका जवाब जो है वो दीजिएगा, क्योंकि सवालों के जवाब ना बहुत ही आसान है और आप आसानी से दे भी देंगे। पहेली है बड़ी आसान सी, और पहेली है रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। चलिए, ये है आपकी पहेली और इसका देना है आपको जवाब, और जल्दी से झटपट से दीजिए जवाब, क्योंकि आपके जवाबों का इंतजार मुझे है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, बड़ी आसान सी आज मैंने पहेली पूछी है, आपको फटाफट से जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ एक बार फिर से पहेली में दोहरा देती हूँ, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देंगे आप, और उसके बाद आपको बताने वाली हूं क्यों है ये इतना जरूरी। चलिए बात करेंगे इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में करते हैं हम बहुत सारी बातें. फिलहाल बात करें हमारे सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में. एक बहुत ही खास पहेली मैंने आपसे पूछी है, बड़ी आसान सी पहेली, मतलब इस पहेली में ना जवाब है. अच्छा मैं आपको बता दूँ कि एक बार पहेली मैं दोहरा देती हूँ और उसके बाद आप देखिए जल्दी जल्दी जो जवाब आया ना, जिसका सबसे पहले जवाब आया वो भी आपको जरूर बताऊंगी. पहेली है, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं. तो देखिए इसका जो जवाब है ना इसी पहेली के अंदर है. भाई देखिए प्यास जो है ये बहुत ज्यादा हमें लगती है गर्मी के इस मौसम में, और आपको भी ये पहेली सुन के तो लगी गई होगी. जी हाँ, बॉडी का यानी कि हमारे शरीर का 70% पानी जो है ना यही हमारी बॉडी में होता है. जवाब है पानी जो कि है इसका सही जवाब. और जिस जिसने मुझे जवाब दिए हैं, देखिए पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप मुझे फटाफट से जवाब भेजते हैं. अब देखिए किसी ने कुछ लिखा है तो किसी ने कुछ लिखा है. किसी ने लिख के दिया है कि हमारी बॉडी में 70% खून होता है, तो किसी ने लिख के दिया है कि पानी होता है. तो भाई जिस जिसने पानी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है. और साथ ही साथ जो सबसे पहला जवाब जिसने मुझे दिया है वो और कोई नहीं, हमारी लिसनर है. जी हाँ, जिनका नाम है मोनिका जी. मोनिका जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है और बहुत तेजी से आपने दिया है जवाब. देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपको अपनी उंगलियां जो है ये चलानी होगी ताकि आप फटाफट से मेरा सवालों का जो है मेरे जवाब आप दे सके, पहेली का जवाब दे सके. तो चलिए कौन बनेगा सेहतमंद में, जो हमने पहला सवाल पूछा उसका जवाब दिया हमारी लिसनर मोनिका जी ने. चलिए एक और आपसे पहेली पूछने वाली हूँ और आपको बता दूँ, देखिए पानी की हम बात करें, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए. और आपको बता दूँ हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है. और ऐसे में अगर आप सेहतमंद रहेंगे ना तो देखिए आप ही को फ़ायदा है इससे, और पानी पीते रहना है. और ज़रूरी नहीं है कि देखिए आप ना सिर्फ लिक्विड डाइट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पानी पीते रहे, सिर्फ पानी पानी आपको पीना है. आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, आप जूस कोई पी सकते हैं. लिक्विड डाइट इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, लेकिन जो पानी काम करता है ना वो और कोई नहीं करता. ऐसा होता है ना कि हमें जब प्यास लगती है तो हमारी जो प्यास है सिर्फ और सिर्फ पानी ही बुझा सकते हैं. आप कितना भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, आप कोई भी जूस ले लीजिए, लेकिन जो पानी से हमें सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है. पानी की ज़रूरत सभी को होती है, पानी ज़रूरी भी है. चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर रहती हूँ आपके पास 9 बजे तक रोजाना, यानी कि अब हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ मैं 7 से 9 बजे तक। बहुत सारी हो रही हमारी बातें। सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में, मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ पहेलियों के जवाब। और देखिए, आप सही सही जवाब तो दे रहे हैं। अब अगली पहेली का वक्त हो गया है और यहाँ पर अगली हमारी पहेली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से मेरा नाता, बताओ क्या हूँ मैं कहलाता। ये है ये पहेली और फटाफट से आपको इसका जवाब जो है वो देना है। और आपको बता दूं, मैं एक बार फिर से पहेली दोहरा देती हूं ताकि आपको ये ना लगे कि साक्षी ने पहेली तो बताई लेकिन क्या बताई, हमें याद क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि एकदम से ना हम भूल जाते हैं ना, कभी एकदम से हम याद करते हैं अरे क्या था, फिर एकदम से भूल जाते हैं। चलिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। अब आपको इस पहेली का देना है जवाब। मैं कर रही हूँ आपके जवाबों का इंतजार, फटाफट से दीजिए जवाब और अभी फिलहाल कहीं मत जाइए। और नंबर एक बार बता देती हूँ आपको फिर से, 8010781078। इस नंबर पे आपको देने हैं जवाब। जो सबसे पहले सटीक जवाब देते हैं, देखते हैं कौन है वो लोग। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनवरेश्रा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत कहानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूं. और आपको बता दूं, आपके लिए कमाल के प्यारे प्यारे सेगमेंट्स भी लेकर के आती हूं और उसमें हम करते हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल सेगमेंट चल रहा है हमारा कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक पहेली जो है मैंने आपसे पूछी है, इसका जवाब जिसने सही दिया, सटीक दिया और रोजाना जो जवाब देगा एक महीने तक रेगुलर रहकर कंसिस्टेंट रहकर, उसको मौका मिलेगा हमारे रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आने का और लाइव बातचीत करने का और हमारे सभी आरजे से भी मिलने का. तो चलिए आप दीजिए पहेली का जवाब. एक बार फिर से पहेली जो है मैं दोहरा देती हूँ. सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता. जी हाँ, इसका जवाब आपको देना था और इसका सबसे पहले जो जवाब दिया है हमारे लिसनर बबलू जी ने जवाब दिया है. जी हाँ, बहुत सारे जवाब यहाँ पर मेरे पास आए हैं लेकिन जो सबसे पहले सटीक सही जवाब आया है वो आया है हमारे लिसनर बबलू जी का, जिन्होंने लिखा है कि ये जो है इसका नाम है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज. बिल्कुल सही जवाब है आपका. ठीक है, हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और ज़रूरी है एक्सरसाइज करना. ये हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए. ये इनफैक्ट आपकी एक अच्छी हैबिट है. अगर ये इनफैक्ट एक अच्छी हैबिट है अगर आप इसे रोज़ाना करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल जो है ये बदल जाती है. चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनवरेश्रा 107.8 एफएम. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, रोजाना सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ और इसी के साथ बातें आपसे करती हूँ बहुत सारी। अच्छा, अभी ना मैंने आपको पहली पूछी और कई सारे जवाब भी आपके आए हैं और आपको इस तरह से पार्टिसिपेट करना, देखिए यही इम्पॉर्टेंट है कि हम जहाँ भी हम कुछ कर रहे हैं ना, मतलब एक पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए और साथ ही इससे हमें खुद भी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज बहुत सारी हमने बातें करी हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में हमने बहुत सारी जानकारी जो है मैंने आपको दी है और आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो जाते हैं आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि अब आने वाली है RJ दीक्षा जो करेंगी आपसे बहुत सारी बातें। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: This

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। बातें होती हैं सेहत के बारे में, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन इस हेल्थ को बचाने के लिए, इसको संवारने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, और कोशिश तब होगी जब आपको सही कोई एडवाइस देगा। सो आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। और आज हम ऐसे ही कुछ विषय पर बात करने वाले हैं जो कि जुड़ा हुआ है डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए या फिर मोटापे को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ नई दवाइयों के बारे में, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र का। डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा जी फॉर हैविंग मी हियर एट रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम।
0: जी, तो सबसे पहले सर आपसे सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कौन सी दवाइयाँ क्या यूज होंगी जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पर सबसे पहला सवाल यही है कि डायबिटीज और ओबेसिटी, जिसको आजकल डायबेसिटी कहा जाता है, क्या है ये, आपस में कैसे कनेक्शन है इन दोनों का?
1: जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल टर्म चल रहा है डायबिसिटी, जो कि कोई नया टर्म नहीं है, काफ़ी पुराना टर्म है। डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, और इट इज़ ए नॉट ए न्यू टर्म, इट इज़ ए ओल्ड टर्म, बट ये कह सकते हैं आप कि हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ के केसेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ओबेसिटी भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारी कंट्री के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है हमारी कंट्री के लिए डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी बोथ। अब आप देखेंगे कि जिनको ओबेसिटी होती है उनको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिनको हम बोलते हैं कि जो कि नॉन इन्फेक्शन के बिना होती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, और जिनको ओबेसिटी होती है रिस्क ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल ओबेसिटी के लिए और डायबिटीज़ के लिए भी रिसेंटली बहुत सारी हमारे देश में 3-4 दवाइयाँ आ गई हैं, और इस देखा होगा आपने काफ़ी हाइप भी, और सोशल मीडिया के थ्रू भी उनके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, तो दे आर इंटरलिंक्ड सिंस लॉन्ग, बट ये कह सकते हैं कि अब इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्लोबल कंसर्न भी और हमारी कंट्री के लिए भी कंसर्न है, तो हमको डायबिटीज़ को भी कम करना होगा और ओबेसिटी को कम करना होगा। तो अगर हम ओबेसिटी पे काबू पा सकते हैं तो 100% हम डायबिटीज़ के केसेस को भी कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी ओबेसिटी जिनको है उनको डायबिटीज़ का खतरा नॉर्मली ज़्यादा ही रहता है, और ओबेसिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जन्म लेकर आती है, क्योंकि आप सिर्फ डायबिटीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है जो कि टिक टिक कर रहा है और कभी भी आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। डॉक्टर साहब, डायबिसिटी की बात जब आप कर रहे हैं, ये शब्द जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग अब इसके बारे में बात करने लगे हैं, अब ओबेसिटी से डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से आगे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, ये हमें विस्तार से बताइए।
1: जैसे कि अगर किसी को एक बार आपने देखा होगा, एक तो जेनेटिक एंगल भी होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें रिस्क ऑफ वेट गेन का खतरा होता है, जिसमें जिनकी मदर्स को डायबिटीज़ होता है, तो आप देखेंगे उनको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बच्चों को भी ज़्यादा होता है, और उनका वेट गेन की संभावना भी ज़्यादा होती है। लेकिन नॉर्मली भी आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है, पिछले मैं बोलूं कि 25-30 साल में, तो जो हमारी लाइफ अर्बन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले रूरल लाइफस्टाइल ज़्यादा थी, पहले लोग रूरल में ज़्यादा रहते थे, अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसा कि देखते हैं कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी, जिसको एक बार वेट गेन होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आपका वेट गेन एक सीमा से बाहर चला गया है, आपका BMI बहुत ज़्यादा हो गया है, कि जो आपका देखें BMI 25 से ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों का 30 से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे देश में अभी ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी 25 करोड़ लोगों को हमारे देश में ओबेसिटी है, डाटा में ले देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा नंबर है। तो जिसको एक बार जिसका वेट गेन हो जाता है, तो उसको वापस वेट को लूज करना इतना आसान नहीं है, इट इज इजियर सेड देन डन। तो आपको सारी बातें पता होती हैं, आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन उसको फॉलो करना और उसको इंप्लीमेंट करना बहुत टफ है। दैट इज वाई वी ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। तो अगर आप अपने वेट को कम कर पाते हो, तो आप इसको, जो हम बात करें बीमारियों की, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज आती है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल का इशू आता है, फिर फैटी लीवर आता है, फिर हाइपरटेंशन आता है, फिर किडनी के इश्यूज आते हैं, उसके बाद आपका ब्रेन के इश्यूज भी आते हैं, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप एक अपने वेट को, कोई व्यक्ति कंट्रोल करने पे ज़्यादा ध्यान दे, फिजिकल एक्टिविटी करे, सीडेंट्री लाइफ को छोड़े, और अवेयर भी रहे, और आप देखेंगे कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आपको पता भी चलता रहता है क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार डॉक्टर के पास जा पाएँ, लेकिन अगर आप अवेयर रहते हैं और आप आज की टेक्नोलॉजी को सही दिशा में यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने वेट के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि खुद आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, इससे पहले की जो सारी चीज़ें होती हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लेस अदर देन मेडिसिन, वो आप घर पर कर सकते हैं। तो अगर ये कोई करता है तो ये सारी बीमारी जो मैंने अभी नाम लिया इनसे बच भी सकता है और उसकी लाइफ अच्छी रह सकती है।
0: बिल्कुल, यानी बीमारियाँ बहुत सारी हैं और खुद को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज ही ये जो आप चुटकियों में सामान मंगा लेते हैं और घर की सीढ़ियाँ उतरना नहीं चाहते हैं, रोड तक जाना नहीं चाहते हैं, पार्क में पहुंचना नहीं चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड रखिए, थोड़ा वॉकिंग शुरू कीजिए ताकि आपका ये जो बढ़ रहा वेट है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जो शर्ट का साइज़ है वो कब 40 से 42 और 44 पहुंच गया है सिर्फ और सिर्फ आपके मोटापे की वजह से, वो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। ओबेसिटी क्या है इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और बातें करेंगे आगे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के माध्यम क्या हैं और डायबिटीज़ की दवाइयाँ और किन किन तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं। साथ ही बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में जो बहुत बढ़ रहा है, ज़रा सा स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसके बारे में

करेंगे चर्चा इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे इंटरनेट रेडियो की ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना, और इस ऐप के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आप ये पूरा पॉडकास्ट कभी भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक. रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. और ऑल इज वेल में आज हम बात करें हैं डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और इन सब के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के और यूजेस के बारे में. क्या क्या नया कुछ हो रहा है मेडिकल फील्ड में इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर, इस पर भी बात करें. डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन में, डायबिटोलॉजिस्ट हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत सारी बातें हम ओबेसिटी के बारे में आपसे कर रहे हैं. अभी आपने कहा कि ओबेसिटी जो है वो अनगिनत बीमारियों को जन्म देता है, लेकिन अब ओबेसिटी की बात जब हम करते हैं तो सपोज मेरा वेट 60 केजीज है, मेरी हाइट के अनुसार मेरी हाइट है 5'5" और अगर मैं 50-60 केजीज के बीच में हूँ तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ओबीस कब बनूंगी या कब ओबीस की कैटेगरी में आ जाऊंगी, ये कैसे पता लगाया जा सके?
1: जैसा कि आपने कहा कि हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब कहते हैं कि ओबेसिटी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे पता चले कि मेरा वेट मेरे हाइट से ज़्यादा या मेरे जो मेरा होना चाहिए अकॉर्डिंगली उससे ज़्यादा हो रहा है. तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबके पास फ़ोन होता है और उस फ़ोन में सबके पास आजकल नेट होता है जो कि हर चीज़ में देखते हैं हम. इसको हम अच्छे वे में अपनी हेल्थ पर ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो BMI होता है जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जो सबसे कॉमन बहुत ही बेसिक होता है, अगर किसी कोई अपना BMI देखता है तो BMI देखने का तरीका वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है. वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. तो बॉडी मास इंडेक्स जो नॉर्मली होता है, BMI नॉर्मली 18-24 होता है. नॉर्मल BMI, अगर किसी का BMI 24 से ज़्यादा हो जाए, कि सपोज उसकी हाइट और वेट को हम देखें और अगर उसका BMI जो है 24 से ज़्यादा हो जाता है, 25 के ऊपर चला जाता है, तो हम कहते हैं कि ये ओबेसिटी में आ रहा है. लेकिन इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि कितना BMI ज़्यादा हो रहा है. तो मैं कहना चाहूँगा किसी का BMI अगर 27 से ज़्यादा हो जाता है तो वो सीवियर ओबेसिटी में होता है. अगर किसी का 30 से ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ही मॉर्बिड कंडीशन हो जाती है और अपने आप में एक डिजीज़ है. तो आप देख रहे हो कि ये जो हम बातें करते हैं कि दवाई किसको लेनी है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे, तो जिनका BMI 27 से ज़्यादा और जिनका 30 से ज़्यादा हो, तो उन लोगों के लिए जो नई दवाइयाँ आई हैं वो लोग इन दवाइयों का उपयोग अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने के साथ और फिजिकल एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं. मैं ये बात पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि कोई दवाई एकमात्र मैजिकल बैंड नहीं होता है कि आप दवाई लें और आप अपनी चुटकियों में सब ठीक हो जाए. तो ये बहुत ध्यान रखना है कि ये जितनी भी दवाई आ रही हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं, खासतौर पे मेडिसिन वाले और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कि आप इन दवाइयों के साथ अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें. आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट पे उतना ही ध्यान दें जितना आप पहले दे रहे थे. तो अगर कोई सोचता है कि मैं दवाई ले लूंगा और ये नहीं करूंगा तो कभी वेट कम नहीं होगा, तो ये बेसिकली मैंने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच है. तो अगर किसी का BMI 27 से ज्यादा होता है तो, और उसको कोई एक ऐसी बीमारी होती है जो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, लिपिड का इशू हो, डिसलिपिडीमिया हो, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, या कोई और ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशन हो, वो लोग इस दवाई के लिए, दवाई लेने के लिए उनका इंडिकेशन होता है, वो ले सकते हैं, या जिसका BMI 30 से ज़्यादा हो. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफ द काउंटर वाली दवाई नहीं है कि आप जाएं और अपने से ले लें. ये दवाई आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पे, और डॉक्टर को भी ये सारे बैकग्राउंड को देखना होगा और ये भी देखना होगा कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं.
0: बिल्कुल. अब दवाइयों की बात करते हैं, क्योंकि आपने जो बात छेड़ी है कि ये दवाई ऐसे नहीं लेनी चाहिए या बहुत अपने आप जाके नहीं लेनी चाहिए, मिलेंगी भी नहीं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं कुछ दवाइयाँ, जिसमें आप मुंजारो की बात कर लीजिए, ओज़ेम्पिक के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि भारत में आ चुकी है और आ रही है और लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ बहुत पतले हुए हैं हाल ही में. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने एकदम ड्रास्टिक चेंज उनकी पर्सनैलिटी में दिखाई दिया है, लेकिन वो चेंज बहुत पॉजिटिव नहीं दिखा है. पतले हुए हैं नो डाउट, पर चेहरा जो है वो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, क्योंकि स्किन और मसल्स पे इसका इफेक्ट शायद पॉजिटिव उतना नहीं पड़ा है जितना ओवरऑल वजन पे पड़ा है. तो ये दवाइयाँ जो हैं, ये इंजेक्शन्स हैं, दवाइयाँ हैं, क्या इनका इस्तेमाल है, क्या कॉस्ट है, ये मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी.
1: मैं इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा मैम, जिससे कि लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ कि बेसिकली दवाई है क्या. जैसा आपने बोला कि ओज़ेम्पिक, विगोवी और मोनजारो, ये तीन दवाइयाँ काफ़ी न्यूज़ में हैं और रिसेंटली ओज़ेम्पिक भारत में लॉन्च भी हुई है, जिसको कि अब डायबिटीज़ में भी यूज किया जा सकता है. इससे पहले हमारे देश में मोनजारो और विगोवी को ओबेसिटी के लिए और मोनजारो को डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों के लिए उपयोग किया जाता है. ये सारी दवाइयाँ 2025 में रिसेंटली न्यूज़ में भी आई हैं और ये मोस्टली लॉन्च भी 2025 में ही हुई हैं. लेकिन ये 2017 से, मैं आपको बताऊं, ओज़ेम्पिक का उपयोग 2017 से डायबिटीज़ में किया गया है और पहले इसको डायबिटीज़ के लिए ही उपयोग किया गया था. जब इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दिया गया था, जिसका ट्रायल, स्टेप ट्रायल हुए थे, इसमें भारत के डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया था, तो स्टेप ट्रायल में ये पता चला कि ये दवाई शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ वेट को भी कम करती है, क्योंकि ये दवाई जिस तरह से काम करती है उसको हम बोलते हैं ब्रेन के हार्मोन्स पे काम करती है, जिसको हम बोलते हैं GIP और DIP। ये दो हार्मोन है, ग्लूकोगोन दैट इज ग्लूकोगोन इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ब्रेन हार्मोन्स, ये हमारे एपिटाइट को सप्रेस करती है।
0: आपको भूख लगनी कम हो जाती है,
1: आपको भूख लगनी कम हो जाती है, बिल्कुल सरल भाषा में आपका पेट जल्दी भर जाता है। और ये आपके जो इंसुलिन के अगेंस्ट एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं, या आप कह सकते हैं ग्लूकागोन जो होता है, जो कि शुगर को ज़्यादा रिलीज करने के लिए एक तरह से रिलीज ज़्यादा कराता है लीवर से, ये शुगर के रिलीज को रोकती हैं लीवर से, और मेन ये आपके ब्रेन में एपिटाइट को सप्रेस कर देती हैं, और अर्ली सेटाइटी या अर्ली फुलनेस हो जाता है। तो जब ये पता चला कि ये
0: थोड़ा सा खाना खा के आपका पेट भर जाता है,
1: तो ये दवाइयाँ आपकी अर्ली सेटाइटी करती है, तो आदमी कम खाता है, और उससे उसको ये, लेकिन ये नॉर्मल नेचुरल हार्मोन्स को मिमिक करती हैं, बेसिकली ये हार्मोन्स हैं ये तीनों दवाई, तो ये नेचुरल मिमिकर हैं जो आपकी बॉडी में, तो ये वैसे ही काम करती हैं जैसे ब्रेन के नॉर्मल सिग्नल्स काम करते हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि इसको करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसका डोज कैसे लेना है, कितना लेना है, जो कि हम बात कर रहे थे, ये बहुत जरूरी होता है, और ये डॉक्टर ये डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि आप देखेंगी तो विगोबी और ओजेम्पिक दोनों एक ही कंपनी की, और एक ही दोनों के अंदर एक ही कंपोजिशन है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ
0: जी,
1: विगोबी और ओजेम्पिक सेम कंपोनेंट है, ओजेम्पिक लो डोज है और विगोबी हाई डोज है उसी दवाई का। तो आप बात करें ओजेम्पिक जो है वो लो डोज में डायबिटीज के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट्स को और किडनी के पेशेंट को उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ट्रायल्स में पता चला कि जो मरीज को ओजेम्पिक इन बीमारियों के साथ दिया जाता है, उनको हार्ट का रिस्क, उनको किडनी का रिस्क कम हो जाता है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट कम हो जाता है, और उनको इन बीमारियों से भविष्य में खतरा कम रहता है, इसलिए ये दी जाती है ओजेम्पिक लो डोज में। और हाई डोज में जब इसको यूज़ करते हैं वो विगोबी में करते हैं, जो कि ओबेसिटी और वेट लॉस को कम करने में काम आती है। और आपने एक बात बोली कि ये ऑफ द रिकॉर्ड, तो एक दवाई इनमें ऑफ द रिकॉर्ड मिलती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोनजारो ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन है, और ओजेम्पिक और ऑन द प्रिस्क्रिप्शन है।
0: जी
1: और ये अलाउड है भारत में, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में आपको पता है कि लीकिंग होने की संभावना, देखो जब कोई दवाई आती है तो उसके बारे में हाइप होता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे को मिल जाए और मेरा वेट कम हो जाए, तो वीगो मुंजारो जो है ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन भी मिलती है, तो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट आप कभी नहीं समझ पाएंगे, ये डॉक्टर ही समझ सकता है कि कौन कौन से टेस्ट इन दवाइयों के लेने से पहले होने चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ हैं ओरली मेडिकेशन ले सकते हैं या ये इंजेक्शन है?
1: जी, आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये भी एक कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि आखिर ये दवाई लेनी कैसे है, इनका फॉर्मुलेशन कैसे है। तो अगर आप बात करें इनमें बेसिकली ओजेम्पिक जो है इसका अंदर का जो कंपोजिशन है वो सीमाग्लूटाइड है, जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से ओरल फॉर्म में रिबिल्सस एक फेमस ब्रांड नेम भारत में है, जो कि ऑलरेडी ओरल फॉर्म में चल रहा है और पहले से उपलब्ध है, लेकिन अभी जो ये दवाइयों की जिनकी बात हो रही है हमारे देश में, जिनकी चर्चा हो रही है, वो सब इंजेक्टेबल फॉर्म में आई हैं, हम कहेंगे कि सबक्यूटेनियस फॉर्म, जैसे कि हम इंसुलिन को देते हैं मैम, वैसे ही आई हैं। तो ये अभी इनका उपयोग वंस इन ए वीक होता है, मैं थोड़ा अगर बताना चाहूँ तो वंस वीकली सबकट इनका उपयोग किया जाता है, और हर मंथली दवाई का डोज को बढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रोफाइल। तो इसमें हर पेशेंट की पर्सनल प्रोफाइल अलग होती है, उसको आपको एक प्रोफाइलिंग करना होता है, जैसे कि हर व्यक्ति की क्या बीमारीज हैं, उसका प्रोफाइल कैसा है, उसका जेनेटिक बैकग्राउंड कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, इन सब चीज़ों को देखते हैं, और उसको और कौन सी बीमारियां हैं बैकग्राउंड में, किसी को अगर किसी को हार्ट का इशू है, किसी को पेट का इशू है, किसी को आंखों का इशू है, तो ये सब चीज़ देख के ही दवाई लेनी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, जो कि ये असेस कर पाए, उसको पता होगी कौन कौन सी बीमारियों में इन दवाइयों को नहीं दिया जा सकता।
0: डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए तो ठीक है ये दवाइयाँ, कि उनके लिए ही बनी हैं, तो उनको आराम पहुँचाएंगे, उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल होंगे, लेकिन जैसे हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे थे, अब उनको डायबिटीज़ है या नहीं है ये नहीं पता, उनको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं पता, लेकिन वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है बीच में, अब ये कितना सत्य है या नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये कहा गया है कि ओजेम्पिक लेने से इन सब के वज़न जो है वो कंट्रोल हुए हैं, लेकिन क्या ये दवाई, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप ले सकते हैं और उसका कोई नुकसान नहीं होगा? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप ये दवाई ले रहे हैं और आपकी भूख कम हो गई है, सो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? आपकी भूख ही कम हो गई है, आप जितना 2000 कैलोरीज 2200 कैलोरीज जो हमें दिन की लेनी होती है, अगर आप उसकी जगह 1500 कैलोरीज ले रहे हैं, सो कैसे आप अपनी बॉडी को ठीक रख पाएंगे?
1: जैसे कि आपने कहा कि इन दवाइयों का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी मेडिसिन आपका वेट लॉस कैसे करती है, तो अगर हम बात करें इन दवाइयों की, ये वेट लॉस आपके, ये आपकी फैट को अगर लॉस, आपको अपनी फैट को अगर लॉस करना है और आपको फैट को कम करना है, तो ये ध्यान रखें कि ये मसल लॉस भी करती हैं साथ में। अगर आप इनको अनइंटेंशनली ले रहे हैं और आप कॉन्शियस नहीं है, तो आपका मसल लॉस भी साथ में होता है। अगर इन दवाइयों को लेते वक्त आपका मसल लॉस होता है, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि मसल लॉस आपका नहीं होना चाहिए। तो जब आप वेट लॉस करते हैं, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये होलिस्टिक अप्रोच है, उसमें आपको डाइटिशियन की जरूरत पड़ती है, जो कि आपकी प्रोटीन को मेंटेन करता है। क्योंकि अगर आप अपनी प्रोटीन डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और रिकमेंडेड प्रोटीन इन दवाइयों के साथ नहीं लेते हैं, तो आपका मसल लॉस होगा, क्योंकि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर आवर मसल्स, इट इज़ अ मस्ट। तो अगर आप एक डाइटिशियन, एक फिजियोथेरेपिस्ट और उसके साथ साथ एक डॉक्टर, इन तीनों को मिला के अगर आप ये काम करते हैं और दवाई लेते हैं, तभी आपने जैसा कहा कि क्योंकि अगर आप इन दवाइयों को बंद करते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये रिगेन, वेट रिगेन भी बहुत फास्ट होता है। जो आपने पूछा कि ये आपकी एपिटाइट को कम कर देती है,
0: बढ़ा देंगे
1: तो एपिटाइट कम कर देती है, तो आपका तो एपिटाइट कम हो गया, तो आपको तो पता चलता नहीं है कि आपको कितना क्या खाना है, आपको तो लगता है कि मेरा पेट तो भर चुका है। इसलिए इसमें जो आपने देखा कि ICMR ने लेटेस्ट बोला कि जो बैलेंस डाइट है उसको आपको फिर भी फॉलो करना है। जो आप, हम बोलते हैं कि हमारी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें समान मात्रा में, जो एक प्रोपोर्शन होता है वो होना चाहिए। और ये 100% आपको डॉक्टर और डाइटिशियन कोऑर्डिनेशन के साथ, इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी, जिसको हम फिजिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एक्चुअली जो कोच होता है, जो डाइट फिजियोथेरेपी या बोलेंगे कि आपकी एक्सरसाइज के लिए, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों के पास आजकल टाइम नहीं कि एक्सरसाइज करनी कैसे है। तो मैं कहूँगा कि जो ये दवाई ले रहा है उसको एक कंसल्टेशन अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी लेना चाहिए, जिससे वो समझ पाएंगे कि दवाइयों का उपयोग आखिर कैसे करें। तो इन दवाइयों का उपयोग बहुत ही संतुलित और बहुत ही नियमित तरीके से और बहुत ही सतर्क होकर करने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, यानी कोई भी दवाई जो बॉडी में जाती है उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होता ही है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। वो बुखार की दवाई भले ही क्यों ना हो, लेकिन आपका बुखार ठीक करने के अलावा वो बाकी बॉडी के पार्ट्स पर भी कुछ असर तो जरूर डालती है। जो भी चीज़ हम खाते हैं, अपने शरीर में लेते हैं, उसका इफेक्ट होता है। तो ऐसी दवाइयाँ जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं कुछ कारणों से, रील्स देख देख के आप उनके बारे में जान गए हैं, तो थोड़ा सा सतर्कता के साथ इनका इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज़ वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातें चल रही हैं बहुत सारी उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं. पहला डायबिटीज, दूसरा ओबेसिटी और तीसरा हाइपरटेंशन. ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपकी पूरी बॉडी को खराब करने की ताकत रखती हैं अगर सही तरीके से मैनेज ना की जाए. बात करते हैं डायबिटीज के, और डायबिटीज के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर साहब, ओज़ेम्पिक मोनजारो के बारे में तो आपने बात कर ली है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी एक तो इनकी कॉस्ट, वो बहुत जरूरी है लोगों को बताना क्योंकि हमने बहुत सुना है कि बहुत महंगी दवाइयां हैं, बहुत महंगी दवाइयां हैं. दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं जो अभी तक नजर में आए, क्योंकि हाल ही में इतना चर्चा में रहा है कि लोगों ने कहा है कि ये मत लो, ये इससे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आ जाती हैं. सो क्या ये वाकई सच है?
1: जैसे कि बात कर रहे हैं कॉस्ट की और साइड इफेक्ट्स की, तो पहले मैं बात करना चाहूँगा इनके साइड इफेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप किसी भी दवाई को लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, चाहे हम वो पैरासीटामोल ही ले लें. तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन दवाइयों के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, अगर मैं इनको क्लब्ड कर दूँ एक साथ की कॉमन साइड इफेक्ट, तो सबसे कॉमन इनके GI साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब आपके पेट से रिलेटेड होते हैं. वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं, परसिस्टेंट एब्डोमेन पेन हो सकता है. तो जिनको खासतौर पर पेप्टिक अल्सर होता है या छाला होता है, अगर पेशेंट समझ पाएंगे इस चीज़ को, तो उनको इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए. और दूसरा, इसके जो थोड़े डेडली साइड इफेक्ट या मैं कहूँगा थोड़े गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं, वो पेंक्रेटाइटिस जिनको होता है या जिनको गॉल ब्लैडर के इश्यूज होते हैं, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, और किसी किसी में जिनको आपका कैंसर, थायराइड का कैंसर भी कुछ दवाइयों के स्टडीज में पाया गया कि ये थायराइड कैंसर भी कर सकती हैं. तो इनको एक बार थायराइड के बारे में भी डॉक्टर को देखना चाहिए कि थायराइड उनका ठीक है, उनको थायराइड का कोई इशू नहीं है.
0: सब साथ साथ उसको भी मॉनिटर करते रहें,
1: क्योंकि कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट थायराइड कैंसर भी पाया गया था और इनका कोरिलेशन था आपस में. और एक आई जो है, आपकी आई एग्जामिनेशन बिफोर दीज मेडिसिन, यू शुड गेट इट डन. तो ये कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखे, और वो आपके बैकग्राउंड हिस्ट्री जो मैंने कहा मेडिकल हिस्ट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड टेक इट. और आपने कहा कि कॉस्ट, तो मैं कहूंगा कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक दवाई इनमें किसी को भी लेंगे तो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास महीने का इनका होता है,
0: मंथली,
1: और वंस इन ए वीक के लेनी होती है. तो और इसका डोज जब आप बढ़ाते हो दवाई का, इंक्रीमेंटल डोज जब आप लंबे समय में लेते हो, तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ भी सकता है.
0: पंद्रह से बीस हजार मान लें.
1: अच्छी बात यह है कि थोड़े समय के बाद इसमें से दो ब्रांड ऑफ पेटेंट हो जाएंगे, तो हमारे देश में इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है कि कॉस्ट को कम किया जाए, क्योंकि आपको पता है ये इट्स लाइक ए गोल्ड माइन, ओबेसिटी इन इंडिया इज लाइक गोल्ड माइन. तो दो कंपनियों की दवाई है, वो भी इसमें बहुत कंपटीशन कर रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा मार्केट है भारत, इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए. तो दूसरा ये कि इसकी आप इसको शुरू कर देते हो तो आपको ये लंबे समय लेनी है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. आप इसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने लेके अपना वेट कम नहीं कर सकते हैं. मिनिमम जो स्टडीज हुई हैं, आपको 1.5 साल के आसपास लेते हो तो आपका 10 से 15 किलो वजन कम होता है, ये मैं स्टडीज के आधार

0: होती है, वो रनिंग भी नहीं कर सकता, पार्क में जा भी नहीं सकता, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दवाई जब आपका वजन कम करती है तो आप अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है, उन्हें ढूंढें और उनसे सलाह लें, खुद ही दवाइयाँ लेके खुद ही डाइट ना प्लान कर लें, क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, उनसे सलाह नहीं लेंगे, इन दवाइयों का उल्टा असर आपकी बॉडी पर हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई डायबिटीज़ की और ओबेसिटी की, तो डायबेसिटी की बात हमने इन शॉर्ट कर ली है, लेकिन अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया है, लोगों के लाइफस्टाइल ख़राब हो चुके हैं, रात को देर तक जागते हैं, कई लोग तो काम ही रात को करते हैं, इसके अलावा खाना पीना जो है वो बाहर का बहुत ज़्यादा हो गया, जिसमें सॉल्ट बहुत आ गया है, इसके साथ साथ स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। अब ये हाइपरटेंशन किस तरीके से बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए।
0: जैसे आपने कहा कि जो डायबिटीज़ और ओबेसिटी एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ओबेसिटीज़ की वजह से हाइपरटेंशन की भी संभावना होती है, आपका बीपी भी ज़्यादा बढ़ सकता है। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका बीपी, पेशेंट को लगता है कि मेरा बीपी बढ़ गया है तो मुझे ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, तो लेटेस्ट अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की लेटेस्ट गाइडलाइन आई है कि स्टेज वन हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं, जिसमें बीपी आपका 130/139 ऊपर का होता है और नीचे वाला बीपी आपका 90 से कम होता है लेकिन 80 से ज़्यादा होता है। मैं ये स्पेसिफिक इसलिए करना चाह रहा हूँ कि पेशेंट अपना बीपी देखता है तो उसको पता होता है कितना आ रहा है। तो अगर आपका बीपी स्टेज वन हाइपरटेंशन है, और जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ सॉल्ट इंटेक, हमारी कंट्री में वैसे भी हिडन सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा है, हमारे पिकल्स में, पापड़ में, और हमारे फास्ट फूड्स में, और बहुत सारी तली भुनी चीजें जो हमारे हमारे कल्चर में हमारी मम्मियाँ हमारे दादियाँ जो बना के हमको खिलाती हैं, वो बहुत ही खतरनाक होता है हिडन सॉल्ट। तो इसमें भी ये गाइडलाइन है कि आप सॉल्ट इंटेक को भारत में लेस देन 2.5 ग्राम पर डे, या उसके भी नीचे अगर कोई हाइपरटेंसिव है तो 1.3 ग्राम पर डे, तो आप कह सकते हैं कि एक स्पून का 1/4 पार्ट या 1/3 पार्ट आपको खाना है
1: पूरे दिन।
0: तो सॉल्ट इंटेक हिडन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स को, जिनको सॉल्ट इंटेक की ज़्यादा आदत हो जाती है, वो खुद ही एक्स्ट्रा एड ऑन सॉल्ट इंटेक कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और आपका बीपी, जैसे मैंने कहा कि 139 के नीचे है, और आप अगर फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, सॉल्ट इंटेक को 6 महीने के लिए कर्टेल करते हैं, तो ये गाइडलाइंस कहती है कि आप अपनी पिल्स के बर्डन को अवॉइड कर सकते हैं और आप बीपी को बिना पिल्स के भी मैनेज कर सकते हैं और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि आपको बीपी की दवाई की जरूरत पड़े ही ना, क्योंकि आप अपने बीपी को ऑलरेडी नॉर्मल रेंज में ला चुके होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूछा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपका बीपी एक साइलेंट किलर होता है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आपके बीपी के वार्निंग साइंस नहीं आते हैं, इसलिए बीपी को एनुअली, या मैं कहूंगा हर 6 महीने में एक बार चेक होना ही चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है।
1: बिल्कुल, यानी थोड़े थोड़े टाइम में ब्लड प्रेशर को जरूर चेक करते रहें। डॉक्टर साहब, वार्निंग सिचुएशन क्या होती है ब्लड प्रेशर के केस में? जैसे लोगों का बीपी कई बार 150 तक पहुंच जाता है, कई बार 140 पे ही लोग बहुत घबरा जाते हैं, सो वार्निंग सिचुएशन क्या होती है?
0: इसको मैं एक तरह से ये कहना चाहूँगा कि ये बेसिकली एक डिजिटल नंबर है, या एक जो नंबरिंग को अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 3 अलग अलग समय पे 140/90 या 140/90 के ऊपर चला जाता है, तो 100% उनको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और वो बीपी की दवाई लेने के लिए उनको लेनी पड़ती है। तो किसी का भी बीपी अगर 140/90 या इसके ऊपर जाता है तो उनको दवाई के लिए बीपी की दवाई लेनी पड़ती है। या किसी को सीवियर हेडेक होता है, दिखने में तकलीफ होती है, पैरों में दर्द होता है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, या चेस्ट पेन होता है, मैंने जैसे कहा कि साइलेंट किलर है, जनरली ये सिम्टम्स आते नहीं है। तो अगर आपका बीपी, डॉक्टर आपको एक बार ये बता देता है कि आपको बीपी के चेंजेस हैं, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत सारे टेस्ट करके हम लोग ये देखना चाहते हैं कि बीपी के साथ अंगों को नुकसान तो नहीं हो गया, जिसको हम ऑर्गन डैमेज बोलते हैं। तो अगर किसी के ऑर्गन डैमेज हो गया तो उसको तो बीपी की दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन मैंने कहा कि वार्निंग साइंस बहुत कम आते हैं, जनरली पता चलता ही नहीं है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो ही पता चलता है। इसमें भी ये बात है मैम कि कई बार इसमें अलग अलग टर्म है, कि एक होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब आपका बीपी बढ़ता है लेकिन घर पे नहीं बढ़ता है। एक होता है मास्क हाइपरटेंशन, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जब आप डॉक्टर के वहाँ जाते हो तो नहीं बढ़ा हुआ होता है लेकिन घर होते हो तो बढ़ा हुआ होता है।
1: ऐसा क्यों होता है?
0: ये पेशेंट आके बोलते हैं, आपने सुना कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और मास्क हाइपरटेंशन। अब इनको पता लगाने के लिए अलग अलग बीपी, जो बीपी भी एक तरह से आपके साथ गेम खेलता है हाइड एंड सीक का, तो इसको पता लगाने के लिए, और आप इसके आपके अंगों को कभी नुकसान ना हो और बीपी 100% है कि नहीं, ये जानने के लिए हमारे पास एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ABPM। तो अगर कोई भी पेशेंट 48 घंटे के लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या ABPM घर पे करता है, तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर रात को जंप तो नहीं कर रहा है घर पे, जो कि डॉक्टर के पास नहीं कर रहा है, मास्क हाइपरटेंशन। तो आप इसमें अलग अलग तरह के जो बीपी होते हैं उनको भी पता लगा सकते हो, और वो पेशेंट लॉन्ग टर्म तक अपनी जो डैमेज करता है बीपी उसको रोका हुआ जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको डॉक्टर एडवाइस करें एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग उनको करना चाहिए।

0: जी आपने पूछा भी, और बार बार घर पे ब्लड प्रेशर चेक भी नहीं करना चाहिए, दो बार से ज्यादा ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो एंजाइटी घबराहट से भी बीपी बढ़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे शुगर होती है तो चेक करते हैं, या बीपी होता है तो बार बार चेक करते हैं, तो उससे स्ट्रेस से भी मुझे लगता है इन चीजों पे काफी वाइटल्स पे,
0: जैसे मैं फाइट फियर एंड फ्लाइट, ये तीनों चीजें हमारा वो वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसको कि आपकी घबराहट में एक्टिवेट होना है। तो अगर आप घर पे दो बार से ज्यादा ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो और आपका बीपी बढ़ता है तो उसका हम बोलते हैं होम कफ हाइपरटेंशन। तो आपको बीपी दो बार ही चेक करना है, और मुझे लगता है आपको बीपी जब आप कंफर्टेबल 10 मिनट रिलैक्स होके बिना सोचे हुए बैठे हुए हैं तब आपको करना चाहिए, कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है।
1: जी बिल्कुल, तो बीपी को बार बार चेक ना करें, डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें, और अगर कोई सिम्टम आपको नजर आ रहा है तो प्लीज उसको अवॉइड ना करें क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में आए, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन सबके बारे में आपने विस्तार से बताया। उम्मीद है कि जो फेस्टिवल सीजन है, बाकी जो हमारे पूरे देश में साल भर अलग अलग त्यौहार रहते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा खाने पीने की चीज़ें बनती हैं वो तो लोग खाएं, लेकिन साथ में एक्सरसाइज को ना छोड़ें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, तीनों जो आपने बीमारियाँ बताई हैं, ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज की कैटेगरी में आती हैं, और लाइफ स्टाइल को ठीक रखना ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। सो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और अब टाइम है आपसे इजाजत लेने का। ऑल इज वेल में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना है और सुनते रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो न सिर्फ मानवता फैलाता है लेकिन मानव अधिकारों की जानकारी भी आप तक पहुँचाता है। ये अलग अलग चोले पहनकर कोशिश एक ही करते हैं कि दुनिया तक न सिर्फ बहुत सारी जानकारी पहुंचे, लेकिन उसी के साथ साथ ये पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को उनके अधिकारों को पहुंचाना उन तक और साथ के साथ उनके अधिकार उन तक मिले, इसको इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत सी एसोसिएशन है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन। जी हाँ, ये ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। और अगर आप सभी जानते हैं तो आपने गेस कर लिया है कि आज मानवता की राह पर हम किन के साथ चलने वाले हैं। दोस्तों, एक खास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो न सिर्फ मानवता की राह पर चल रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक सीख भी है। आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी से। एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के, करते हैं इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। एडवोकेट अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू भावना जी, आपने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया बहुत अच्छी बात है।
0: अशोक जी, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन ये एक बड़ी खूबसूरत सी एसोसिएशन है, ढेर सारे लोगों की मदद कर रही है, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि ये एक नेत्रहीन की लाठी है, उन सभी लोगों को राह दिखाने की कोशिश कर रही है जिन्हें राह पता नहीं है। मुझे बताइए कि ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन का गठन कब हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है?
1: भावना जी देखिए, सोशलिज्म तो मैं रग रग में भरा हुआ है, 1985 से मैं इस सोशलिज्म के कार्य में व्यस्त हूँ, लेकिन पिछले 4-5 सालों से मैं महसूस कर रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो देश के लोगों को देश की भाषा में और देश की बेसिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर सके। इसको मद्देनजर रखते हुए हम कुछ साथियों ने मिलकर ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट एसोसिएशन का 2020 में गठन किया है और पिछले 5 सालों से हम लोग इसके अंतर्गत जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर

0: रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को मानवाधिकारों के प्रति बेसिक जानकारी हो, क्योंकि हमारे देश में जो मानवाधिकार है पूरे विश्व से कम 50 साल बाद जाकर लोग अलर्ट हुए हैं मानवाधिकारों के प्रति। अभी भी बहुत से लोगों को अपने मौलिक अधिकारों का तो पता है, लेकिन मानवाधिकारों का नहीं पता कि मानवाधिकारों के अंतर्गत हमें किन किन विषयों की आज़ादी है, हम किन चीज़ों को समर्थ हैं सरकार से प्रशासन से लेने में। तो इस बात की हम अलख जगाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से हमने मांग भी की है कि मानवाधिकार विषय को बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए
1: जी।
0: ताकि बच्चे शुरू से ही जब वो अपनी केजी नर्सरी या फर्स्ट या सेकंड क्लास तक पहुंचे तो उनको इन चीज़ों की अवेयरनेस हो जाए कि ये मानवाधिकार हमें मानवाधिकार आयोग से मिले हुए हैं।
1: सो भाई देखिए, अगर हम असल में देखें तो ह्यूमैनिटी हम तभी फैला पाएंगे ना जब हमें अपने ह्यूमन राइट्स बताओगे। सो एज ए ह्यूमन हमारे अधिकार क्या है, व्हाट आर आवर राइट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें पता है कि हम एक इंसान हैं और हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, पर कुछ हमारे मौलिक अधिकार भी हैं, उसके साथ साथ हमारे कुछ मानव अधिकार भी हैं, और क्या हम इन मानव अधिकारों को अचीव कर पा रहे हैं। सो जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में क्या हमें ये अधिकार मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कौन सा ऐसा दरवाजा है जिसे हम खटखटा सकते हैं, कहाँ जाकर हम इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है ना, ये आपको बताता है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन। सो कोशिश कर रहा है लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की, और एक बहुत ही खूबसूरत सी, लेकिन कहना चाहिए बहुत ही अच्छी सी पहल है। सो इस पहल के साथ आप सभी भी जुड़ सकते हैं। कैसे, पूछूंगी ये सवाल, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आज एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी से पूछने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। सो आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो 107.8 एफएम के साथ। Feel good, feel alive।
2: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
3: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ गुरुदेव, ना इज्जत

बन के हम सन्यासी काम है चलते रहना, मौका है वीर बना लो हाथ न मलते रहना, हाथ की चूड़ी पांव की पायल या हो गले का गहना, मार के मंत्र ढूंढना कर देव कर तू कहना।

महाराज पधारे, चिंता चरक चिलम और चेले साथ साथ में सारे, टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमचे पड़े हैं पांव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ। ये नेशनल प्रेसिडेंट है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, अब मुझे बताइए कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप लोग लेते हैं, एक अच्छी बड़ी टीम है आपकी, और आप सभी मिलकर कोशिश करते हैं कि लोगों को उनके मानव अधिकार पता लगे। सो इसके तहत किस प्रकार के इनिशिएटिव्स आप लेते हैं?
1: देखिए भावना जी, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोगों को उनके मूल अधिकारों के बारे में जागरूक करें कि उसका किस चीज के प्रति, इंसान का जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत से ऐसे अधिकार हैं, जैसे हर इंसान को दुनिया में आने का अधिकार है, उसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। मृत्यु के उपरांत उसका संस्कार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ये भी उसका एक मौलिक अधिकार है, चाहे वो इस दुनिया में नहीं रहा।
0: जी।
1: कोई भी व्यक्ति उसको दाह संस्कार को नहीं रोक सकता किसी भी सूरत में, और इस जन्म और मृत्यु के बीच में उसको पढ़ने का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने का अधिकार, ये सारे अधिकार मानवाधिकारों की श्रेणी में आते हैं, और ये तभी तक लोगों को अवेयरनेस मिलती है जब वो इसके बारे में जागरूक होंगे, तभी जान पाएंगे ना कि मेरा क्या अधिकार है और मुझे किस वक्त पर कौन से अधिकार का प्रयोग करें।
0: देखिए भाई, ये वाकई सही है, और इसके तहत बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। अब ये इनिशिएटिव्स कैसे लिए जाते हैं? सो ना सिर्फ जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन सभी लोगों को भी बताने की कोशिश की जाती है जिन्हें इन अधिकारों के बारे में जानकारी है ही नहीं। यहाँ पर मैं एक जरूर बात सोच रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लॉइट होते हैं क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है, और जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो मात्र इलिटरेट हो या फिर उनकी आजीविका कम हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़े लिखे भी हैं, आपके अंदर विजडम भी है और आपके पास पैसा भी है, पर क्योंकि आपको इन अधिकारों की जानकारी नहीं है, सो कहीं ना कहीं इन चीजों का खनन भी हो जाता है। सो कैसे पता लगे इसके बारे में और किस तरीके से आप इसे पूरा जान सकते हैं, ये बहुत सारी बातें बताई जाती हैं ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन द्वारा। सो ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो लोगों की जिंदगियां बदलने की कोशिश कर रही है, कैसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, अब बड़ा अहम सवाल है, आपकी एसोसिएशन बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल रही है, खास तौर पर उन लोगों को जिन्हें अपने मानवाधिकारों के बारे में जानकारी मिल जाती है। भाई, राइट टू स्पीच तो सबको पता है, लेकिन आज के जमाने में कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर चुप रह जाना है, किन चीजों के बारे में बोलना है, कितनी फ्रीडम आपको जरूरी है पढ़ने की, लिखने की, साथ के साथ इस अपने ही देश में फ्री रहने की भी आपके पास ये अधिकार है, पर बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीली रह भी नहीं सकते हैं, कभी जाति के या फिर आप कहिए कभी धर्म के कारण अलग अलग चीजों में बांट दिया जाता है, संप्रदायों में बांट दिया जाता है। सो आप लोग किस तरीके से ये परसेप्टिव्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग लोगों की मदद करते हैं?
1: देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अपना बाजू घुमाने का अधिकार है, लेकिन जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है वहाँ से आप बाजू नहीं ले जा सकते ना।
0: यस,
1: सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्पेक्ट ईच अदर। आप अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने आप को स्वतंत्र भी रखिए और सामने वाले जो आपका व्यक्ति है उसके अधिकारों की रक्षा करना भी आपका उत्तरदायित्व है।
0: जी,
1: जब तक हम लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं होंगे, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा नहीं जान कर पाएंगे, तो हम समाज में जागृति नहीं ला सकते।
0: जी,
1: मैं चाहूँ कि मैं किसी के अधिकार का हनन करूँ और दूसरा मेरे अधिकार की रक्षा करे, ये पॉसिबल नहीं है ना मैम।
0: एक्चुअली
1: तो हम लोग यही ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को कि आप लोग स्वच्छंद रूप से घूमिए, अच्छे बाग के माली बनिए, अच्छे फल फूल लगाइए, लेकिन सुगंध लेने का अधिकार सभी को दीजिए, ताकि देश का हर नागरिक स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए स्वच्छंद रूप से जी सके, उसमें किसी भी तरह का धर्म, जाति या लिंग भेद नहीं होना चाहिए।
0: वाकई बिल्कुल सही कहा। और अगर हम देखें तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी परेशानी यही है कि बहुत सारे धर्म हमारे देश में हैं, और जब हर इंसान अपने धर्म को फॉलो करता है सो उसका सारा का सारा दारोमदार ये होता है कि भाई मेरा धर्म सर्वोपरि है। बट जब हम दूसरों के बारे में सोचे तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक बैलेंस जरूर मेंटेन किया जाए, क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता जो मिली हुई है ना हमारे देश में,
0: जी,
1: उसमें सबसे बड़ी ये है कि हर बंदे को अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखने का अधिकार है, लेकिन उसको दूसरे के धर्म की आलोचना करने का अधिकार नहीं है।
0: Yes.
1: उसको अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखनी है, उसकी पूजा पद्धति जो भी है उसको अडॉप्ट करने का उसको अधिकार है, बजाय उससे दूसरे की किसी भी भावना को ठेस ना पहुंचे और उसके किसी चीज में खलल पैदा ना हो, तो ये जरूरी है।
0: सो दोस्तों, जब हम मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं सो ये बात जानना बहुत जरूरी है, और आज मुझे लगता है एडवोकेट अशोक जी ने एक बड़ी अहम बात कही है कि हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, हम अगर अपने दिल से उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन है, हमारी प्रैक्टिस है, कई बार वो

हमारी सिर्फ एक फेथ भी हो सकता है, लेकिन हम उसे फॉलो करें ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है और ये हमारी पर्सनल चॉइस है। लेकिन इसके कारण हम किसी को यानी किसी और को ना तो हम परेशान कर सकते हैं और ना ही उसके कारण हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई मेरा धर्म ज्यादा अच्छा है या आपका धर्म खराब है। सो ये सब कुछ कहीं भी अलाउड नहीं है, खास तौर पर हमारे देश में। सो अगर आप इस देश में खूबसूरती से जीना चाहते हैं, अपने अधिकारों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि आपके अधिकारों के साथ कहीं कोई खिलवाड़ ना हो, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बने। आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का पहला कदम ले लिया है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन ने और इस अलग को लेकर चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा। जुड़े रहिएगा रेडियो मधुप्रश्न 107.8 एफएम के साथ। ये कॉन्वर्सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फील गुड, फील लाइव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ। अशोक जी, आप एक लायन है, यानी आप लायंस क्लब संस्था के साथ जुड़े हुए हैं एक लंबे समय से, और उसी के साथ साथ आप ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन में एक्टिवली काम कर रहे हैं। पेशे से आप एक एडवोकेट तो हैं ही, मुझे ये बताइए आप इतना सारा धर्म का काम और साथ के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं?
1: मैम, ये बस आप लोगों की दुआ है कि परमात्मा ने कार्य सौंपा है तो हम ये सोचते हैं कि अगर जिस नेक कार्य के लिए हम इस दुनिया में आए हैं
0: जी,
1: अगर वो हमसे बेहतर तरीके से हो सकता है तो हो जाता है
0: जी।
1: मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं, बहुत लोग बहुत बहुत काम इकट्ठे करके चल रहे हैं, कोई 10 काम कर रहा है, कोई 5 काम कर रहा है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि जिस भी कार्य में जुड़ा हूं उसको अपना 100% दूं, ताकि उस उद्देश्य को सफल कर सकूं जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है।
0: अशोक जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, मैं हमेशा ये देखती हूं कि लोग दो चीजों के पीछे भाग रहे हैं, या तो पावर या पैसा। लेकिन अगर मैं आपको कभी भी देखती हूं, तो आप हमेशा मानवता की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। यानी ना तो आप इस चीज को देख रहे होते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं इससे और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊंगा, या मुझे और बहुत ज्यादा नाम कैसे मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप लोगों तक हमेशा अच्छी सलाह, अच्छी जानकारी और शायद उनकी मदद करने में लगे रहते हैं। सो ये भावना कहाँ से आती है?
1: ये मैम, अगर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो मेरे दादाजी जब पाकिस्तान से आए थे
0: जी,
1: जब विभाजन हुआ था हमारे देश का
0: जी,
1: तो उनके जो सोच थी वो बहुत कुछ वहाँ छोड़ के आए थे
0: जी,
1: इतना कुछ कि आप सोच भी नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे ये बात की प्रेरणा दी कि बेटा, ये कुछ चीजें साथ नहीं जाती, साथ सिर्फ वही जाएगा जो आपने अपने नेक कर्मों से कमाया है। क्योंकि आज तक भी वो उस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज तक भी जिला मुल्तान में उनके बहुत से संपर्क के साथी हैं, जिनके कई बार कॉल और फेसबुक पे मैसेज या मैसेंजर पे मेरे पास आते रहते हैं कि हम आपके दादाजी को बहुत स्मरण करते हैं।
0: वाह।
1: तो ये चीजें जो मेरे मन में घुसी, तो उससे मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिससे मैं समाज के किसी भी उस व्यक्ति तक काम आ सकूं जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। आप जानते हैं कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार हर कदम पे पहुंचे, नहीं पॉसिबल है। आप मीडिया से जुड़े हैं, मैंने भी काफी साल मीडिया में काम किया है, हम लोग प्रशासन को जगाने का काम तो कर सकते हैं लेकिन प्रशासन को हर द्वार तक नहीं पहुंचा सकते
0: जी।
1: लेकिन सोशल संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि हम लोग जो हमारे संपर्क में साथी होते हैं ये छोटी छोटी गली या मोहल्लों में हर जगह से जुड़े होते हैं, इन्हें पता होता है कि किस व्यक्ति को किस जगह पे क्या जरूरत है
0: जी,
1: तो उसके माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। मानवाधिकारों की अलग हम जगा ही रहे हैं
0: जी।
1: हम छोटे छोटे बच्चों को जो जिनके स्कूल में किसी की फीस नहीं भरी जा रही उसकी फीस भरने में मदद करते हैं, किसी के पास गर्म कपड़े नहीं है उसको कपड़े देने का प्रयास करते हैं, किसी के पास पुस्तकें नहीं है तो उसमें उसकी मदद करते हैं, गरीब कन्याओं की शादी में मदद करते हैं। आज हमारा संगठन देश के 40 जिलों में इन कामों में लगा हुआ है।
0: जस्ट इमेजिन, मतलब सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि इमेजिन करिए, इतनी सारी जगह पर आप कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीजें पहुंच पाए जो एक्चुअली हर इंसान का एक सपना होता है। सो एक अच्छी जिंदगी हर किसी का सपना होता है, बट परेशानी ये है कि अच्छी जिंदगी हर किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, हम थोड़ी सूझबूझ से, थोड़े अपनी मेहनत से और थोड़े से शेयरिंग से ये पॉसिबल कर सकते हैं। सो देखिए, भगवान ने जब देने के लिए शायद हाथ बढ़ाया, वो इक्वली हर किसी को बहुत कुछ चीजें नहीं बांट पाए और ये पॉसिबल भी नहीं होता है। हुआ क्या कि किसी के झोली में बहुत ज्यादा और किसी के झोली में बहुत ही कम, और कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इससे वंचित रह गए। लेकिन जिसके पास ज्यादा है, भगवान ने कभी भी नहीं रोका है कि आप उसकी झोली ना भर पाए या उसकी झोली में थोड़ा सा ना डाल पाए जो वंचित रह गया है या जिसके पास कम है। सो आई थिंक अशोक जी इस खूबसूरत सी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हर उस इंसान तक पहुंच जाएं जिसे उनकी, या फिर कहना चाहिए किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है, और ये अपने आप में वहां मदद बनकर पहुंचकर लोगों की बहुत सारी सहायता कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, अब एक अहम सवाल, आपकी ये जो ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन है, आप इसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, बट जिस प्रकार से आप 40 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली एसोसिएशन काफी बड़ी है और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं। सो कितनी बड़ी टीम है आपकी और कैसे फंक्शन करते हैं आप लोग?
1: मैम, कुल मिलाकर 1500 के लगभग सदस्य हैं हमारे इस संगठन के, जो अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं, हम एक ज्वाइंट नहीं कह सकते कि एक प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं। अब सपोज करिए दिल्ली में कुछ और है, मुंबई में कुछ और है, अहमदाबाद में कुछ और है, तो जिस जगह पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं। आज की बात में करूँ तो आज अहमदाबाद में हमारा एक मेडिकल चेकअप कैंप लग रहा है
0: जी,
1: वहाँ पे हमारी टीम है डॉक्टर खान और मिसिस तशीबा खान करके
0: जी,
1: वो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप वहाँ लगा रहे हैं, जिसमें के बच्चों के दांतों का चेकअप होगा, जिन बच्चों के पास पेस्ट या ब्रश नहीं है उनको पेस्ट और ब्रश वितरित किए जाएंगे, ताकि लोग अपने दांतों की संभाल कर सके। तो इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग काम होते हैं।
0: भाई बहुत ही अच्छी बात है, 1500 डेडिकेटेड वॉलंटियर्स की टीम होना, जो न सिर्फ अपने कीमती समय में से, अपनी व्यस्त जिंदगी में से समय निकाल रहे हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमेजिन करिए कि इतनी बड़ी टीम के साथ कितना खूबसूरत और नेकी का काम किया जा रहा है। अशोक जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मान लीजिए कि कोई आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, कोई वॉलंटियर करना चाहता है या कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर हाँ तो कैसे?
1: इसके लिए मैम हम कुछ ऐसा स्पेशल कंडीशन नहीं है, जो भी व्यक्ति के मन में भावना है कुछ दीन दुखियों की सेवा करने की, तो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वेलकम है उसका, हमारे साथ आए जुड़े। आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था है, और उसमें हम, अगर आप चाहे तो हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं
0: जी,
1: फोन नंबर पे कांटेक्ट करके वो हमसे संपर्क कर सकता है, फिर उसके बाद जिस भी तरीके की वो हमें सहायता करना चाहे खुल के कर सकता है, और हम उसके माध्यम से भी उसको सेवा कार्यों में जोड़ सकते हैं।
0: सो अगर आपको लग रहा है कि आप मोटिवेट हो गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी में पा तो बहुत लिया, चलिए कुछ दे कर भी आते हैं, इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, क्यों ना हम आगे बढ़कर किसी की मदद करें। सो अगर ऐसी भावना आपके दिल में आ गई है, तो आरजे भावना आपको इनवाइट कर रही है कि आइए कदम बढ़ाइए ह्यूमैनिटी की तरफ, यानी मानवता की तरफ, और आप भी जुड़ सकते हैं नेशनल इस खूबसूरत सी पहल के साथ, जो अब हमारे देश के करीबन 40 डिस्ट्रिक्ट्स में है, ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन। सो एक नेशनल इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के साथ आप जुड़ सकते हैं, और इसके लिए अगर आप देश के किसी भी कोने में हमें सुन रहे हैं, सो आप जरूर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 8010781078 पर। जी हाँ, मानवता की राह पर मैं आपके साथ हूँ, आप हमें मैसेज करिए और बताइए कि क्या आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे बढ़कर ऐसे ही मानवता के ढेर सारे काम करना चाहते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ।

वक्त एक और छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाना, जुड़े रहना रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: बिम बुमक बिम बुमक बिम बुमक
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने ढेर सारी बातें की एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी से, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, ढेर सारी बातें की, बहुत सारे लोगों को आपने मोटिवेट कर दिया, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतना सब कुछ जो पा लिया है जीवन में, इसे लेकर तो जा नहीं पाएंगे। सो चलिए कुछ यहीं पर कंट्रीब्यूट कर देते हैं। सो जाते जाते सभी लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या संदेश देकर जाना चाहेंगे आप?
1: देखिए, मैं चाहता हूं कि परमात्मा ने अगर हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने एक सामाजिक दायरे से, अपने पारिवारिक दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल के देने का सामर्थ्य है, तो कुछ ऐसा दे के जाइए, कुछ ऐसा करके जाइए जिससे ये समाज और ये मानवता आपको याद रखे। कल को आने वाले वक्त में लोगों को इस नाम से जाना जाए कि वो, देखिए, इंसान तो चला गया पर वो ये काम करके गया, और वो काम हमेशा युगों युगांतर तक जीवित रहना चाहिए। ऐसा जरूर हर इंसान को अपने लाइफ में एक कदा कदम जरूर उठाना चाहिए जिससे वो किसी के काम आ सके, किसी के आंसू पोंछ सके और किसी निरीह व्यक्ति की रक्षा कर सके।
0: कितना खूबसूरत सा संदेश है। देखिए, ये तो फैक्ट है कि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी हम ऊंचाई पर होते हैं और कभी ऐसा होता है कि जीवन उथल पुथल भरा होता है। पर ऐसे में याद रखिए कि जब आप ऊंचाई पर हैं और जब आपके पास समय है, आपके पास निधि है, आपके पास किसी भी प्रकार का साधन है, सो आप लोगों की मदद जरूर करिए, जिससे उथल पुथल भरी जिंदगी पहली बात तो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो वो समय बहुत खूबसूरती से कट जाएगा। और आपके पास और कुछ नहीं लेकिन लोगों की दुआएं, प्यार और साथ जरूर होगा। और इसीलिए आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सिर्फ और सिर्फ लोगों से कंपटीशन करते हैं, आइए फिर से याद रखें कि हम इंसान हैं, थोड़ी सी मानवता फैलाएं। तहे दिल से धन्यवाद एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच भावना जी, आपने हम आपके माध्यम से हमारी संस्था बहुत लोगों तक पहुंचेगी और मैं चाहूंगा कि लोग हमसे जुड़े और हम इस संस्था को और आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।
0: वाकई। सो दोस्तों, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, मानवता की राह पर चलना है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के साथ। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, सो मैं आरजे भावना ले रही हूँ आपसे इजाजत, होगी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम जिसमें मैं आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाती हूं जो न सिर्फ सशक्त हैं, एम्पावर्ड हैं, लेकिन उनकी खुद की एम्पावरमेंट की एक बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी है। इस जर्नी को मैं आप तक लेकर आती हूं और महिलाओं तक ये संदेश देने की कोशिश करती हूं कि महिलाओं को अपने जीवन में किस तरीके से सशक्तिकरण को इम्बाइब करने की जरूरत है। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक आर्टिस्ट है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कौशल्या रेड्डी जी से, जो एक रेनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये गुरु हैं और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल, जिसे एस्टेब्लिश किया गया था पद्म भूषण डॉक्टर राजा राधा रेड्डी ने 1976 में, और ये उसकी पहली डिसाइपल भी हैं। सो इस स्कूल की पहली 3 डिसाइपल्स में से रही हैं कौशल्या रेड्डी। लेकिन इसके अलावा इनका नाम हमेशा से जुड़ा रहेगा उस परंपरा सीरीज के साथ, जो एक एनुअल परंपरा सीरीज है जो हर साल 1998 से नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस न्यू दिल्ली का हिस्सा बनी रही है। और इन्होंने न सिर्फ हमारी कला और संस्कृति को इस पूरे देश तक पहुंचाया है, लेकिन विश्व के अलग अलग कोने तक पहुंचाया है। तो आज हम इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। अ हार्टी वेलकम टू यू कौशल्या जी।
2: नमस्कार भावना, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए।
1: कौशल्या जी, द प्रोग्राम इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड यू आर एन ट्रूली एम्पावर्ड पर्सन। सो नोइंग यू, मीटिंग यू एंड टुडे इंटरव्यूइंग यू इज अ प्लेजर। आई वांट टू नो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट, हाउ डू यू परसीव इट?
2: मुझे लगता है कि कोई हमें एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पे ही डिपेंड करता है कि हाउ वी कंडक्ट एंड हाउ वी प्लेस योरसेल्फ इन आवर लाइफ एंड हाउ वी अलाउ पीपल टू रेस्पेक्ट अस एंड मेक अस डू एंड एक्सेप्ट अस द वे वी आर। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अपने आप में बिलीव करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ्स को जानना चाहिए एंड उसी प्रकार से अपने आप को जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करना चाहिए, किसे हमें बताने की जरूरत नहीं है।
1: सो स्वीट, आई थिंक दिस इज सो वेरी क्लियर, दिस इज रियल एम्पावरमेंट। एन एम्पावर्ड वुमन वुड से दैट यू शुड नो हाउ पीपल शुड रिस्पेक्ट यू एंड इफ यू फील दैट यू आर नॉट respected equally or you're not respected in any place, I don't think that place belongs to you. And this is real empowerment where women really know how to live their lives on their own without the support, or rather saying without compromising with their happiness. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, यानी आपको एक बड़ा बेहतरीन सा गाना सुना रही हूँ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं आपके साथ हूं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट में। आपको भी पता है महिला सशक्तिकरण मेरे दिल के कितना करीब है। हमारे रेडियो मानव रचना का लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट यानी एक लंबे समय से इस कार्यक्रम को हम आप तक लेकर आ रहे हैं। ढेर सारी सशक्त महिलाओं से आप मिलते हैं। न सिर्फ वो सशक्त महिलाएं अपने जीवन के कुछ पन्ने पलटती हैं, आपको उनके बारे में बताती हैं, लेकिन साथ के साथ हमें जीवन को सही ढंग से कैसे जीना है इसकी भी सीख हमें दे जाती हैं। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक रिनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, कौशल्या रेड्डी जी। वैसे तो ये एक गुरु हैं और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल, लेकिन इसी के साथ साथ इनकी जो एनुअल परंपरा सीरीज है वो हमारे नई दिल्ली और कहना चाहिए उत्तर भारत में बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौशल्या जी, अब अगला सवाल। विमेन आर ऑलवेज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ चैलेंजेस। How do you define which are the challenges that currently we are facing? You know, though we are saying we have a lot of opportunities, we have access to a lot of things, but yet, you know, there are a lot of challenges that we have to face.
1: मुझे लगता है कि जैसे कि when we are truly we are empowered, but at the same time, male chauvinism बहुत बड़ा चीज है हमारे society में। इसमें क्या होता है कि कई दफा हम लोग दबाव में आ जाते हैं as a wife, as a daughter. एंड इसमें क्या होता है कि यू हैव टू लर्न कि किस तरह उस दबाव में ना पड़ते हुए अपना बात क्लियर रखें और उस आदमी जो हमारे लाइफ में है या चैलेंजेस जो हमारे लाइफ में है उसको किस प्रकार से उस आदमी को बताएं या उस इंसान को बताएं या उस सिचुएशन को हम लोग हैंडल करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी पोजिशन आर सेल्फ। इट इज़ अबाउट अपने आप में बिलीव करना, खुद कॉन्फिडेंट रहना और किसी के दबाव में ना आना, ना कोई सिचुएशन के दबाव में आना।
0: ये एक बहुत बड़ा संदेश है। मतलब सबसे पहली चीज कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है,
1: वेरी इम्पोर्टेंट।
0: बट द चैलेंजेस कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो महिलाओं में नहीं नजर आता है। बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो अपने ऊपर भरोसा कर पाती हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें ये भरोसा मिलता ही नहीं है, ये सपोर्ट उन्हें मिलता ही नहीं है। क्या कहेंगी आप?
1: ये सही कह रहे हैं आप कि ज्यादातर हमारे सोसाइटी में यही कहते हैं कि यू नो लेडीज शुड बी गिविंग इन, हम हैं होम मेकर्स, ध्यान देना चाहिए, लेडीज यू नो संभालती हैं ज्यादातर, मेन आर नॉट यूज्ड टू एडजस्टिंग। ये सब तो कहने के लिए ठीक है, बढ़िया है, बट इस वक्त फिलहाल जिस प्रकार से हमारी एजुकेशन हो रही है और जिस प्रकार से हम कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, जॉब में हो कोई भी करियर में हो, हमें दबाव में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, दैट वो इंसान जो हमें रेस्पेक्ट करें, जो इंसान हमारे काम को रेस्पेक्ट करें, हमें एक व्हाट यू कॉल दर्जा दें, वो जरूरी है। उस दबाव में ना पड़ते हुए वन कैन इंडिपेंडेंटली वेरी कंफर्टेबली लिव। सो आई वुड से कि बी इट इज नाइस बट येट एट द सेम टाइम डोंट गिव इन।
0: सो स्वीट एक्चुअली। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि भाई रिस्पेक्ट डिराइव करना आना चाहिए, आपको ये तरीका आना चाहिए कि आप किस चैलेंज को चैलेंज समझ रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये एक्चुअली एक चैलेंज है तो उसे भी मोल्ड करके उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होता है। बस जरूरत ये है कि आप उस सिचुएशन को किस नजरिए से देख रहे हैं।
1: बट आप देखो भावना, लेडी इनफैक्ट अगर लेडी का रोल जो है, नारी का रोल जो है, वो ही सबसे बड़ी मैनेजर है।
0: यस,
1: लाइफ में मैन कहाँ पे इतना कर रहा है, आदमी ने कितना एडजस्टमेंट किया है। एक माँ, एक बेटी के तरह हमने एडजस्ट किया है। एक नया घर में जाते हैं शादी करके, पूरा माहौल अलग रहता है, उसमें हम एडजस्ट होते हैं, उस आदमी को भी संभालते हैं जो अपनी माँ के ज़्यादा दबाव में या इन्फ्लुएंस में रहता है। दिस सो मच अ लेडी, द काइंड ऑफ लेडी मैनेजमेंट कर सकती है, नो अदर पर्सन कैन। द काइंड ऑफ द स्किल वी हैव, नो अदर ह्यूमन बींग हैज।
0: सो ट्रू। सो भाई सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हम ही सुपीरियर हैं। ये जो सुपीरियर जेंडर है ना, ये महिलाएं हैं। सो जब तक हम इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हमें ऐसा लगेगा ये समाज, ये सारी कुरीतियां या फिर ये सारी चीजें, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। लेकिन जिस दिन आपको पता लग जाएगा आप सुपीरियर जेंडर हैं, आपके लिए लाइफ और भी आसान हो जाएगी। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, feel like

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। दरअसल ना ये कार्यक्रम जो है महिला सशक्तिकरण का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वी के जरिए हम ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं जब एक साथ आ जाती हैं तो वो चीजों को बहुत हद तक बदल पाती हैं, यहाँ तक कि समाज को भी। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, एक रेनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, कौशल्या रेड्डी जी। कौशल्या जी, अब हम जानते हैं यू हैव बीन एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड आई हैव सीन वन थिंग। अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, so in all the phases of life, if you see, in rest of any profession, we've seen that there is lot of inequality. But I think artists and dance and music, rather I should be saying culture, this is the only place where everybody is equal. So how have you empowered so many women? You have been an integral part of Natya Tarangini Kuchipudi Dance School. How has been your journey and how was it, you know, to impart this beautiful art to so many other women?
1: भावना, एक बात तो आपको बता दूं क्लियरली, पूर्व काल लाइक 1960s और 70s में ज्यादातर मेल मेंबर्स वर डांसिंग।
0: वाओ,
1: धीरे धीरे, और मेल मेंबर्स ही फीमेल रोल्स प्ले कर रहे थे।
0: ओके,
1: आप देखिए ना, आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, इस वक्त फिलहाल ओनली गर्ल्स आर डोमिनेटिंग द आर्ट फील्ड एंड गर्ल्स आर टेकिंग द मेल रोल्स, उल्टा हो गया अभी।
0: yes.
1: एंड देखिए, डांस और म्यूजिक के थ्रू जो अपने क्लासिकल आर्ट्स है ना, इसमें आपको बहुत कुछ सिखाता है। एक तो अपना गाथाएं के बारे में बताते हैं, बड़े हीरोज एंड ग्रेट स्टोरीज बताते हैं, महाभारत हो या द्रौपदी हो, सीता मैया हो, जो भी है, ऑल दिस यू नो, दे से हाउ दे हैंडल इट, हाउ दे वेंट थ्रू द हार्डशिप एंड दे कॉन्कर्ड इट करके। एंड टू, इसमें कॉन्फिडेंस, डांस म्यूजिक, इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन सोसाइटी, द वे यू मूव, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, इट हैज अ मेजर रोल व्हेन यू हैव दीज एजुकेशंस इन इट। तो क्लासिकल आर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ लेडीज कॉन्फिडेंस इन कंडक्टिंग हर सेल्फ सोसाइटी में एंड ऑन स्टेज। एंड देयर सो मेनी पेरेंट्स आजकल चाहते हैं कि हर बच्चा, आप बिलीव नहीं करोगे कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस सिखा रहे हैं कंपेयर टू अर्लियर। सो दैट इज बिकॉज दे बिलीविंग कि बच्चे में एक कॉन्फिडेंस, एक बच्चे में एक सोसाइटी में अपने आप को कंडक्ट करना एंड अब सोसाइटी में अपना सर उठा के जीना सिखाता है आर्ट्स। So that way, I'm very lucky that I'm heading this Natya Tarangini now. And उसी के द्वारा हम लोग अपने कलाओं को बहुत बढ़ावा देते हैं, जैसे परंपरा कर रहे हैं, 29 साल है ये साल परंपरा का। And we have always great masters आके यहाँ पे नई दिल्ली अपने कैपिटल में परफॉर्म करते हैं। The whole idea is best of the best अपने राजधानी को लेके आए और अपने सोसाइटी को दिखाए। आजकल यूथ, अपने यंगस्टर्स बहुत कुछ अपनी कलाएं के बारे में, अपने गाथाओं के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जानने चाहते हैं, अपने संस्कृति के बारे में जानने चाहते हैं। सो दैट वे आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि ये मुझे मौका दे रहे हैं वो।
0: वेरी वेरी नाइस। एक्चुअली कौशल्या जी, दिस इज वन बिग अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव एंड डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू होल्ड। जुड़े रहिएगा दोस्तों रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त है आपको सुनाने का एक और बेहतरीन सा गाना, बड़ा कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत सी कड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं कौशल्या रेड्डी जी से, जो एक रिनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, गुरु और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल। अब मजेदार बात मैं आपको ये बता दूं कि महिलाओं के लिए जब कभी भी हम क्लासिकल या ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स की बात करते हैं, तो न सिर्फ ये हमारे ट्रेडिशन को रिवाइव करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन साथ के साथ अगर आपने देखा हो तो नृत्य के जरिए आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जो आज के जमाने में सबसे बड़ी परेशानी है महिलाओं के लिए। सो महिलाएं बड़े स्ट्रेस्ड रहती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक हो सकती है उन्हें हील करने की। क्या कहेंगी कौशल्या जी आप? आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टेक्निक।
1: भावना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रेसर है, स्ट्रेस बस्टर है। क्योंकि देखिए ना, तब आप डांस कर रहे हैं या म्यूजिक कर रहे हैं, आप वो एक घंटा या दो घंटे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस वक्त आपको किसी भी प्रॉब्लम का, कोई चीज का कोई ख्याल ही नहीं आता, इवन कोई थॉट ही नहीं आएगी आपके मन में। यू आर एक्चुअली, कहते हैं ये जो कला जो है, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग स्पेशली डांस, कहते हैं कि इट यूनाइट्स यू विद द ऑलमाइटी, भगवान के साथ आप एकत्र हो जाते हो। तो भगवान के साथ एकत्र हो कि आपका कोई ना परेशानी, ना कोई व्हाटएवर वरीज हो या प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चीज उस एक दो घंटे में आपका लिए टोटली आप फ्री हो उससे। इसमें क्या होता है, मन की शांति, एक आराम, सम काइंड ऑफ तृप्ति, हैप्पीनेस आ जाती है। सो इससे बढ़िया कलाओं के क्रिएटिव आर्ट से बढ़िया और कोई चीज है ही नहीं। द बिगेस्ट, मैं कहूँगी, स्ट्रेस बस्टर खाली अपनी क्रिएटिव आर्ट्स में है। एंड दैट वे, दैट इज द रीजन, इवन कोविड के समय वी वर वेरी हैप्पी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट जनरेशन हमसे डांस सीखा, अभी सेकेंड जनरेशन भी आ रहे हैं उनके बच्चे।
0: वाओ,
1: बिकॉज दे बिलीव इन सच अ थिंग कि इसमें कुछ सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस है, आनंदम है आर्ट्स में।
0: एक्चुअली एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर एक महिला को एजुकेट करते हैं, इफ अ वुमन गेट्स एजुकेटेड, शी एजुकेट्स द एंटायर फैमिली, शी कैन एजुकेट द एंटायर सोसाइटी, एंड डेफिनेटली दैट गोज फॉर अ कंट्री। सो अगर आप कहीं परिवार की चार पांच महिलाओं को भी कोई खूबसूरत सा आर्ट फॉर्म सिखा देते हैं, तो आप सोचिए कि वो घर के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को कितनी खूबसूरत डांस फॉर्म से कनेक्ट कर सकती है। हमारे कल्चरल और क्लासिकल ट्रेडिशंस को जिंदा रखने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। सो मुझे लगता है नॉट ओनली इट हेल्प्स शेप देयर फ्यूचर, बट ऑल्सो इट हील्स देम एंड मेक्स देम मोर कॉन्फिडेंट। सो शायद कहीं ना कहीं हमें हर किसी को, मैं तो ये कहूंगी आप महिलाएं या पुरुष, किसी ना किसी तरीके के किसी डांस फॉर्म या किसी आर्टिस्टिक ट्रेडिशन के साथ जुड़े जरूर रहिए, और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत से एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं कौशल्या रेड्डी जी से, जो एक रिनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, जो गुरु और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल। अब हम बात करने वाले हैं उस परंपरा सीरीज के बारे में जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आने वाले समय में आप ये परंपरा की खूबसूरत सी सीरीज खुद विटनेस कर सकते हैं। सो हमारे नई दिल्ली में नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस 1998 से चला आ रहा है। सो आपसे जानना चाहूंगी कौशल्या जी, ये परंपरा सीरीज दरअसल क्या है, कौन सी परंपराओं की हम बात कर रहे हैं और किस प्रकार से आप अलग अलग आर्टिस्ट को यहाँ तक लेकर आती हैं?
1: देखिए, परंपरा आप तो जानते हो, इट इज कैरिंग ऑन एंड टेकिंग फॉरवर्ड
0: जी।
1: एंड इसमें जो है हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, डांस, कर्नाटक साउथ का म्यूजिक एंड साउथ का डांस, एनी डांस फॉर्म, एनी म्यूजिक। बेसिकली परंपरा हम लोग नाट्य तरंगिनी ओनली प्रमोट्स एंड प्रेजेंस क्लासिकल आर्ट्स। पहले अर्लियर जैसे अपने हरिप्रसाद चौरसिया जी थी, अमजद खान साहब थे, ये सब परफॉर्म किए हैं। एंड इसमें क्या है कि ऑडियंस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाके उनको एक्सपोज करें, उनको आनंद दें। देखिए, आप सभागार जाके बैठ जाते, वो दो घंटे में जो सुकून, हैप्पीनेस यू फील उस वक्त, दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट टू गिव टू द सोसाइटी। बिकॉज सोसाइटी में इतना स्ट्रेस हो गया, आदमी इतना परेशान है लाइफ में कि देर समय नहीं मिल रहा, एवरीबडी इज ऑन द रन, रैट रेस में फंसे हुए हैं। थोड़ा सा अपने आप को समय दे के अपना म्यूजिक और डांस को इंजॉय करते हुए यहाँ पे उनको आनंद दे, दैट इज द होल आइडिया। एंड ये 8 से 10 तारीख तक अक्टूबर में कमानी ऑडिटोरियम में हो रहा है। आपके लिए हम ला रहे हैं पंडित उल्लास खाशलकर जी पुणे से, देन वी आर गेटिंग गणेश एंड कुमरेश जी जो ग्रैमी अवार्ड विनर है, and we have a very beautiful Bharatanatyam dancer Shijit and Parvati, and Rahul Acharya ek very stunning solo performer hai. So and jugalbandi hai jo north aur south ka jo hai tabla aur mridang ke beech mein percussion ka jugalbandi, different variety of programs laate hain taki society mein logon ko iska aanand uthane ka mauka mile। एंड हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये करने के लिए, एक सम काइंड ऑफ अ वेरी हैप्पी फीलिंग है टू ब्रिंग दिस टू द थिंग। ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में शादी कर रहे हैं हर साल। तो दिस इज द ब्यूटी एंड द आनंदम एंड द हैप्पीनेस वी गेट।
0: सो इमेजिन करिए ना कि अगर आपको ये मौका चुकना ही नहीं है, सो इस बार के इस खास फेस्टिवल का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि न सिर्फ हम अपने क्लासिकल आर्ट से जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम अपने ट्रेडिशंस को रिवाइव कर रहे हैं। और खूबसूरत बात यह है कि जैसे कौशल्या जी ने कहा कि आप डिस्ट्रेस हो जाते हैं, आप ऑडिटोरियम में जाते हैं और उसके बाद इस खूबसूरत से आर्ट फॉर्म को जब आप देखते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं उस ऑलमाइटी के साथ, आप उस डांस के साथ, उस रिदम के साथ, उस म्यूजिक के साथ, और आप बड़ा ही डिस्ट्रेस्ड और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को शायद कला और किसी न किसी तरीके की इन फॉर्म्स के साथ जुड़े जरूर रहना चाहिए, तरीका कोई भी हो सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। ले रही हूँ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। आज हम बात कर रहे हैं कौशल्या रेड्डी जी के साथ, जो एक रिनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, गुरु हैं, आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल। कौशल्या जी, ढेर सारी बातें हमने आपसे की। इनफैक्ट वी केम टू नो अबाउट द नेशनल फेस्टिवल परंपरा सीरीज, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड सीरीज। बिसाइड्स दैट, नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल सिंस 1976, विच इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ, आई शुड से, यू नो, नॉर्थ इंडिया, विच इज नॉट ओनली गिविंग आउट ब्यूटिफुल क्लासिकल आर्ट, बट इट इज एक्चुअली एम्पावरिंग लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम द सोसाइटी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। बट बिफोर यू लीव, वॉट इज वन मैसेज यू वॉन्ट टू गिव टू ऑल?
1: आई वुड से, whatever you do in life, believe in yourself. That is what is going to make you achieve and make you happy in life. So be happy, be content in life. That is the most beautiful thing that you can gift yourself.
0: Hey, वाकई खुशी एक ऐसी चीज है जो आप दुनिया में कहीं ढूंढने जाएंगे ना तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर इसे महसूस करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। तो खुश रहना बहुत जरूरी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन अपने आप को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फॉर्म से जोड़े रखिए, जो ना सिर्फ आपके लिए आराधना का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन साथ के साथ डिस्ट्रेस होने का, खुश होने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बहुत अच्छा लगा कौशल्या जी आज आपसे बात करके, ना सिर्फ इन आर्ट फॉर्म्स के बारे में पता लगा, जो बेहतरीन काम आप कर रहे हैं समाज के लिए उसके बारे में पता लगा, और साथ के साथ बहुत सारे लोगों तक इस खूबसूरत से नेशनल फेस्टिवल के बारे में पता लगा। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच भावना, आई होप मेरा टूटा फूटा हिंदी साउथ इंडियन हिंदी वॉज ओके।
0: डेफिनेटली इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड यू हैव रीच द हार्ट्स ऑफ द लिसनर्स।
1: थैंक यू
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम साथी। आप सभी को पता है दोस्तों, साथी एक खास कार्यक्रम जो आप ही की मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पर आधारित है, और इस कार्यक्रम को मैं आपके लिए लेकर आती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम से न सिर्फ निजात पाएं लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी पाएं। सो साथी में मैं कभी भी अकेली नहीं होती हूं, मेरे साथ एक साथी होती हैं और वो साथी आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस देती हैं, आपके प्रॉब्लम्स के बहुत सारे आंसर्स देती हैं। तो आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो आज के दिन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आज का खास दिन यानी हम सब पूरे देश में और विश्व में भाई दूज का पावन सा त्यौहार मना रहे हैं, और जब कभी भी भाई दूज की बात आती है तो दोस्तों आपको पता है कि हम भाई बहन के रिश्तों की बात करते हैं, और भाई बहन के रिश्ते की बात करेंगे तो आज हम बात करने वाले हैं नई एज के यानी न्यू एज भाई बहन के रिश्ते। एक जमाना होता था कि भाई बहन का रिश्ता ना बड़ा मुझे कहना चाहिए ट्रिकी सा कहलाता था, जहाँ बहनें भाइयों से डरती थी, भाइयों का काम था बहनों की रक्षा करना। लेकिन आज के टाइम में ना रोल रिवर्सल सा चल रहा है, या कहना चाहिए ऐसा कुछ होता ही नहीं है। डेफिनेटली कोई भी बहन भाई को उस नज़रिए से नहीं देखती है कि वो उसकी रक्षा करे, रादर कहीं ना कहीं बॉन्ड वाली चीज़ है, कहीं इक्वालिटी वाली चीज़ है। तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रिश्तों पर और हमारी मेंटल हेल्थ पर, और क्या हम एक अच्छे रिश्ते को निभा पा रहे हैं भाई बहनों के साथ, आज इस पर बात करने वाले हैं। और उसके लिए ढेर सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर श्रुति मिश्रा आ चुकी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी स्कूल ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
2: थैंक यू बाबा।
1: डॉक्टर श्रुति, अगर मैं बात करूं आज के दिन की,

0: तो हम अपने भाई बहन के रिश्ते की ही बात करूं, सो हम अपने रिश्ते को कैसे असेस कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी है समय समय पर एक असेसमेंट होनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते के असेसमेंट के तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन मैं आज की बात करूं तो हमारा जो रिश्ता है वो क्या है, मतलब प्यार है उसमें, नीड बेस्ड रिश्ता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े कमर्शलाइज्ड हो गए हैं, जरूरत है तो रिश्ता चाहिए, जरूरत नहीं है तो पूछते भी नहीं है। सो क्या कहेंगी आप कि कैसा है आजकल का रिश्ता, बॉन्ड बेस्ड है, नीड बेस्ड है, या फिर ये रिश्ता इनसे भी ऊपर है?
1: मैम, आजकल जो रिश्ता है
0: जी
1: जनरली, नॉट जस्ट भाई बहन का, जनरली जो रिश्ता है ये चेंज हो गया है, जैसे आप कह रहे हैं, पर बहुत कुछ नहीं चेंज हो गया
0: जी
1: है. द बॉन्ड इज स्टिल देयर, द इमोशनल कनेक्ट इज स्टिल देयर, द नीड दैट वी हैव इज स्टिल देयर. द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इज द सिचुएशन वेयर इट इज यूज्ड. सो अर्लियर वेयर वी वर मोर, वी वुड टॉक अबाउट इट मोर वोकली, नाउ इट इज मोर फेल्ट. यू फील द रिलेशनशिप्स मोर देन यू टॉक अबाउट इट, एंड इट इज मोर इंटरनल देन एक्सटर्नल. सो ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता आपके हस्बैंड के साथ चेंज हो जाता है, या आपका दोस्ती आपके फ्रेंड्स के साथ चेंज हो जाता है. बहुत सारे मीडियम्स आ गए हैं, बट रिलेशनशिप्स डोंट चेंज पर से.
0: तो दोस्तों, अगर मैं आज के न्यू एज के रिश्तों की बात करूं तो न्यू एज के रिश्ते ना थोड़े से डाइसी हैं। मतलब अगर आप देखें तो ये वो रिश्ते हैं जो जिंदगी भर निभाने वाले भी हैं, लेकिन कई बार ये रिश्ते ऐसे भी लगते हैं जैसे न जाने कल ही टूट जाएंगे, क्योंकि रिश्तों में बहुत सारे इमोशंस हैं, और उसका एकमात्र कारण है कि ये इमोशंस कई बार तो हम लोगों की, सोसाइटी की सोच पर निर्धारित करते हैं, और कई बार अपने इमोशंस पर निर्धारित करते हैं। एक जमाना होता था बड़ा भाई बड़ी बहन इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, पेरेंट्स इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, लेकिन आजकल ये सब कुछ खत्म हो चुका है। आजकल अगर आप किसी बड़े भाई या बड़े बहन से एक्सपेक्ट भी करेंगे, या छोटे भाई बहन से एक्सपेक्ट भी करेंगे, तो वो इक्वालिटी की डिमांड करते हैं, वो कहते हैं सब बच्चे बराबर होते हैं। डॉक्टर श्रुति, अब एक बड़ा अहम सवाल, पहले बच्चे ज्यादा होते थे, सारे बच्चे एक ही घर में एक साथ पलते थे। सो आई रिमेम्बर देयर यूज्ड टू बी वन टाइम जहाँ ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, उसके बाद हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, और न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ साथ धीरे धीरे हमारे जो रिश्ते हैं, बच्चे हैं, या फिर लिविंग जो है वो बहुत अलग हो गई है। आज के टाइम पर आप विश्वास करिए, घर में अगर दो बच्चे हैं तो वो दो अलग बोर्डिंग्स में पढ़ रहे हैं, दो अलग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो बचपन से साथ कभी भी नहीं रहे हैं, और कॉलेजेस में तो हाफ द टाइम, या मुझे कहना चाहिए 90% बच्चे बाहर होते हैं। तो जब साथ रहते हैं तो बॉन्ड अलग बनता है, जब बाहर रहते हैं अलग रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो बॉन्ड और क्लोजनेस है उसकी कमी महसूस होती है। तब याद करने के कुछ समय होते हैं जैसे त्योहार के टाइम, कई बार तो इनफैक्ट मैंने देखा है बच्चे एक टाइम पर घर पर नहीं होते हैं तो मिल भी नहीं पाते हैं। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मैं अपने एक क्लोज एक्वेंटेंस के घर गई थी तो उनके बच्चे आए हुए थे, और आश्चर्य की बात यह है कि उन दोनों का ये कहना था कि 4 साल बाद बच्चे आपस में मिल रहे थे। सो इस प्रकार के सिनेरियो में क्या बच्चों के बॉन्ड उतने स्ट्रांग हो पाते हैं? क्योंकि देखिए, जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में किसी से मिलते हैं तो आप उनके खुशी, गम, इमोशंस, हर चीज को महसूस कर पाते हैं, आपको उनकी प्रेफरेंसेस पता होती हैं, आपकी उनको खुशियां भी पता होती हैं, आपको पता होता है उनकी क्या चॉइसेस हैं। लेकिन जब आप दूर रहते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी खुशियां कहीं और ढूंढ लेते हैं, तो क्या वो सिबलिंग रिलेशनशिप स्ट्रांग रह पाता है?
1: मैम, एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है इज़ दैट नाउ पीपल हैव बिकम मच मोर मेच्योर एट अ वेरी यंग एज. तो बहुत जल्दी वो मेच्योरिटी आ जाती है, और ये भी आ जाती है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है. तो जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, वो एक और भी चीज़ है, जैसे आपने बोला न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली में उसमें भी एक जो बाइफिकेशन आ गया है कि ज़्यादातर के एक ही बच्चे होते हैं, राइट? सो योर फैमिली देन एज पेरेंट्स, बिकॉज यू हैव ग्रोन अप इन अ फैमिली, इवन इफ यू ग्रोन अप इन अ न्यूक्लियर फैमिली, यू हैव सिबलिंग्स, सो यू अंडरस्टैंड द बॉन्ड. यू हैव टू मेक कॉन्शियस एफर्ट टू क्रिएट द बॉन्ड्स, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, क्योंकि आप घर पे भी देखिए तो हम आप अलग अलग ही रहते हैं, माँ बाप के बीच में भी या बच्चे और पेरेंट्स के बीच में भी वो रिलेशनशिप जो है ना वो नीड बेस्ड हो गया है कहीं ना कहीं. पर बिकॉज ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, जो अच्छी बात ये हुई है कि जो हम अननेसेसरी बैगेजेस रखते थे ना, कि हम इंडिया में स्पेशली ये कल्चर है कि आप अपने से बड़े कहीं भी मिले तो भले ही ब्लड रिलेशन नहीं हो, आपके वो ताया जी हो जाते हैं, आपकी चाची हो जाती है, मासी हो जाती है, या आप प्यार से आंटी या अंकल बुलाते हैं, जैसे बाहर में वेस्ट में आप नाम लेके बोलते हैं अपने दोस्त के पेरेंट्स को, यहाँ पे आप वो रिश्ता जोड़ देते हैं बिकॉज वो ऑटोमेटिकली आता है. कहीं ना कहीं हम वो वेस्ट को अपनाते जा रहे हैं और इट्स बिकम मोर मी, आई मी एंड माई सेल्फ वाला दुनिया हो गया है, जिसके कारण रिश्ता जो है एक तरीके से स्ट्रॉन्गर है बिकॉज आप उन्हीं को अपने इनर सर्कल में आने देते हैं जहाँ पे एक माइंडसेट का कनेक्ट है और जहाँ पे आपको लगता है कि इमोशनल कनेक्ट आप बना सकते हैं. जो भी वो नहीं फुलफिल करता है आपको हिचक नहीं होता है उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल हैं अपने आप से.
0: यस,
1: आपको ये पता है कि आप कौन हो और आपको क्या चाहिए जिंदगी में, और ये छोटा बच्चा भी जानता है, विच इज अनफॉर्चुनेट. अगर हम रिलेशनशिप्स और कलेक्टिव, जो इंडिया जाना जाता था कलेक्टिव लिविंग एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड थिंग्स यू नो कलेक्टिव बीइंग के कारण, दैट हैज समवेयर कलेक्टिव कल्चर जो हमारा है वो कहीं ना कहीं छूट रहा है. हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं और हमारा दुनिया उसी की तरह है, तो हम बहुत अपने आप से दुनिया देखते हैं. हमारा जो लर्निंग्स भी है, जहाँ पे पहले फैमिली अलग अलग लोगों से होता था कि अगर दीदी को कुछ पता है तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा. इफ शी इज गुड इन म्यूजिक यू विल ऑटोमेटिकली पिक अप म्यूजिक, वेदर यू आर गुड और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू विल अंडरस्टैंड सर्टन नुआंसेस. अगर भैया किसी चीज में अच्छे हैं तो आपको वो सिखा देंगे.
0: Yes.
1: Be it a subject, if he is passionate about reading, you will pick up on your own. यहाँ पे you have to inculcate. So you need to explore. So the learning that happens or the relationship that happens, happens over a period of time. But those relationships are very strong relationships that they create. So that ways, in one way it is good, but we cannot forget कि कहीं ना कहीं हमारा culture भी change होता जा रहा है.
0: Yes.
1: ठीक है, और वो बहुत पूरी दुनिया में करीब करीब एक जैसा कल्चर हो गया था. जैसे पहले हम लोग, लाइक आई सेड, कलेक्टिविस्ट एंड इंडिविजुअलिस्ट कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हमारा वो कोर कल्चर था पर अब वो नहीं रह गया, तो देयर इज अ मिशमैश. अभी कुछ समय के बाद शायद एकदम एक ही तरह का कल्चर अक्रॉस द ग्लोब रहेगा, तो फिर पढ़ने की दिक्कत नहीं होगी हमें, या सब लोगों को समझने की दिक्कत नहीं होगी कि इंडिया अलग या US अलग या UK अलग, सब कल्चर बराबर ही होंगे.
0: तो भाई, भारत की जो सांस्कृतिक वैल्यू है वो हमेशा से हमारे रिश्तों में और हमारे संस्कार और हमारे कल्चर में रही है, लेकिन आज के ज़माने में अगर हम देखें तो कहीं कहीं हम अपने कल्चर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, नए कल्चर को मौका दे रहे हैं. मतलब कहीं ना कहीं अपने कल्चर की हम मॉकटेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर का कल्चर भी इम्बाइब कर लिया और चलो अपना तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें क्या हम अपने रिश्तों को शिद्दत से निभा पा रहे हैं, क्या रिश्तों को हम ऑनेस्टी दे पा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. और क्या वाकई आजकल के पेरेंट्स बच्चों को ये बता पाते हैं कि ये ब्लड रिलेशन है, क्योंकि आजकल ना ब्लड रिलेशन, सो कॉल्ड ब्लड रिलेशन रह गया है. ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ब्लड रिलेशन से सबसे ज़्यादा क्लोज हों. ऐसा हो सकता है कि आपको अपने ब्लड रिलेशन वाला सिबलिंग पसंद ही ना हो और आप पूरी ज़िंदगी कुछ दोस्तों के साथ या मुँह बोले भाई बहनों के साथ निकाल लें, और ये बहुत कॉमन सिनेरियो है. बहुत सारे ऐसे, आई थिंक कहना चाहिए, यंग जितने भी न्यू एज बच्चे हैं उनका ये कहना है कि हम इन रीति रिवाज में विश्वास नहीं रखते हैं, रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं. सो क्या ये रीति रिवाज कहीं ना कहीं ज़रूरी हैं, करेंगे इस पर बात. भाई दिन भी भाई बहन के रिश्ते का है, और अगर आप देखें तो साल के दो दिन तो लोग भाई बहनों को बहुत याद करते हैं, एक रक्षाबंधन वाले दिन और एक भाई दूज वाले दिन. लेकिन एक समय होता था जब आप ये भूलते ही नहीं थे कि आपकी जो सिक्योरिटी है या आपके साथ आपके भाई बहन है. आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल हम न्यू एज रिलेशन निभा रहे हैं. हमारे साथ डॉक्टर श्रुति हैं. डॉक्टर श्रुति, अब एक बड़ा अहम सवाल. आप देखिए, एक ज़माने में ना रक्षाबंधन का जो ऐड भी आता था, पहले शायद मिठाइयों के ऐड में रक्षाबंधन दिखाया जाता था, तो उसमें दिखाया जाता था कि बहन राखी लेकर आ रही है, शी इज पिकिंग अप स्टफ्स फॉर द ब्रदर, एंड देन ब्रदर बड़े ही इमोशनल तरीके से कहता था मैं तेरी रक्षा करूंगा. आजकल के जो एड्स हैं वो भी शायद न्यू एज हो गए हैं, वेयर दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, और आजकल की जो जनरेशन है दे ऑल्सो एक्सेप्ट दिस. एकमात्र कारण कि आजकल ये भाई बहन के रिश्तों से हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, वेयर वी आर इंडिविजुअल वुमेन एंड वी आर इंडिविजुअल मेल ऑल्सो. अब आज की जो जेनरेशन है, जब हम इन्हें कल्चर सिखाने की कोशिश करते हैं या फिर हम उन्हें रिचुअल्स एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक बार एक बच्ची ने पूछा था कि भाई मैं ही भैया के कलाई पर राखी क्यों बांधूं, क्या मैं भैया की रक्षा नहीं कर सकती हूँ। ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। एट द सेम टाइम जब आप अगर हम भाई दूज के तिलक लगाने की बात करें, सो कहीं ना कहीं ये जो न्यू एज जनरेशन है इसके पास बहुत सारे सवाल हैं और उनकी जो एक्सेप्टेंस है रिचुअल्स को सीखने की वो थोड़ी सी कम है। उन्हें लगता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। सो क्या उन्हें रिचुअल्स को उसी तरीके से समझाया और सिखाया जा सकता है?
1: जी मैम, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि सबसे अच्छी बात जो हमारे रिचुअल्स के बारे में है, अगर आप उसको और जानिएगा, कि उस सबका साइंटिफिक बेस है।
0: जी
1: ठीक है, हम बात करते हैं कि जैसे अर्थ का पुल मून का, एंड देन यू हैव हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स एंड स्टफ लाइक दैट, व्हेन एन एक्सटर्नल प्लैनेट कैन हैव दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन द अर्थ सर्फेस, इमेजिन द अदर वेरिएबल्स दैट इज देयर। सो हमारे रिचुअल्स जो होते हैं ना, उसके पीछे एक प्रॉपर साइंस होता है जिसके कारण वो रिचुअल किया जाता है। प्लस देयर इज अनदर रीजन बिहाइंड इट, देयर इज एन अनकॉन्शियसली आप उसको कंडीशन कर रहे हैं। जैसे हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, रोज डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, दिस इज वन डे विच इज देयर टू सेलिब्रेट योर रिलेशनशिप्स, योर रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग। ओके, एंड रक्षाबंधन केवल भाई बहन को नहीं बांधता है, पहले बहुत पहले होता था, यू ऑल्सो टाई इट टू द गॉड सेइंग दैट आप मेरी yes. रक्षा करेंगे। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। पंडित बांधते हैं आपको रक्षा सूत्र, कहा जाता है, अलग अलग नाम से दिया जाता है, तो वो बांधा उस लिए जाता है, वो रक्षाबंधन हो, रक्षा सूत्र हो, या पानी का जो हम यूज करते हैं इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रक्षा भाई दूज के समय, वे यू एक्चुअली वॉश your brother's hand and you put a few things to symbolize. Now these are basically symbolic where you are celebrating your relationship with your brother. Okay? And the fact is that since the and it can be either which way, ma'am. So it nowadays, if you see, at least in my house, for example, my daughter does it for my nephew. Both of us have one child, like most places and most couples, and he does it for her. So slightly the equation is changing. So it happens both ways. So even in Raksha Bandhan, he ties the Rakhi for her and she ties it for him. So that ways, the same ritual is expanding to accommodate the changing needs and the changing mindset. But the celebration is about relationship or the bond that is there. That has remained and that should remain because it cements our relationship. कहते हैं ना कि वो आप बार बार लेयर पर लेयर आप पत्थर डालो तो वो क्या बोले इमारत बहुत पक्की हो जाती है और बड़ी होती है। तो वो रिलेशनशिप आप हर साल उस समय में जब आप यू एक्नॉलेज ईच अदर विदाउट फाइटिंग विथ ईच अदर, दैट वन डे दैट यू नो गिव पीस इज द वन डे दैट यू से दैट फाइन आई एक्नॉलेज यू एज माई ब्रदर एंड आई नो यूर देयर फॉर मी इररिस्पेक्टिव, and he says the same and he says that I am there for you just like you are there for me, and they both acknowledge and show their love. So it's just a celebration of love between two and does not need to be a relationship where your own brother and nothing of that sort. It is about anybody, so not just your blood relation, your mubola, your best friend. It is, and people are celebrating that, and the sweetest thing is that when they need, you will not see them talking for ages. So a brother and a sister or two sisters or anyway, two siblings, they might not talk with each other at all. But when the need arises, they'll be the first one standing beside them saying that, you know, this is the way it needs to be done and I'm there right behind you. Many a times it does not need to be spoken or communicated. So these rituals and all unconsciously condition you to say that you have a support system. And that support system is always there, whether you acknowledge it on a daily basis or not.
0: तो वाकई दोस्तों आजकल रिश्तों में थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं रिश्ते अपने ही हैं और समय के साथ अपनी परख भी दे रहे हैं। जहां हम ये महसूस करते हैं कि आज जितने भी न्यू एज रिश्ते हैं वो दिखावटी नहीं रह गए हैं, तो वहां कहीं ना कहीं उसमें अपनापन और भी ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर श्रुति, अब एक बड़ा अहम सवाल। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं तो हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। ऐसे ही हमसे कहा जाता है कि अगर आप बहुत सारे लोगों में घिरे रहते हैं क्योंकि आप बहुत सोशल हैं, तो आपका क्योंकि एक सोशल नेटवर्क अच्छा बन जाता है, तो आप इमोशनली और स्ट्रांग रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कोई परेशानी होगी सो देर आर 100 पीपल अराउंड यू हु विल कम बैक टू हेल्प यू। अब मैं इस रिश्ते के बारे में भी जानना चाहती हूँ, क्या अगर आपके पास सिबलिंग्स का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है तो आप मेंटली ज्यादा फिट होते हैं, और अगर आपके पास आपके भाई बहन या फिर आपके आसपास या कजन्स, इनके साथ आपकी बनती ही नहीं है और आपका वो रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो क्या कहीं ये आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है?
1: मैम यहाँ पे समझना होगा कि आज का जो रिलेशनशिप है ना वो ब्लड रिलेशन से नहीं बंधा हुआ, उसका उनका डेफिनेशन वहां नहीं है। और यहाँ पे हम यंग बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली सभी की बात कर रहे हैं अक्रॉस एज ग्रुप। यहाँ पे रिश्ता जो है ना, जहाँ पे दिल से दिल मिले वो वाला बात होता है, क्योंकि अगर वो है आपके अपने सिबलिंग्स नहीं हो पर आपका फ्रेंड सर्कल इतना स्ट्रांग हो, या वो एक दोस्त हो जो आपके आपको क्या बोले आपके दुख सुख में जो आपका सहारा दे, उतना ही काफ़ी है, बिकॉज आपका वो ज़रूरत के समय वो लोग खड़े रहेंगे आपके। ठीक है, तो रिलेशनशिप फैमिली से नहीं डिफाइन होता है मैम, इमोशन से डिफाइन होता है जी। आपका दिल किससे मिलता है उससे डिफाइन होता है, और क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से डिफाइन होता है। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज एज वेल, मेंटल इश्यूज, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दे आर सराउंडेड विद फ्रेंड्स, यू विल सी देम ऑलवेज स्माइलिंग, दे हैव अ स्माइल, दे ब्रिंग लाइफ टू द पार्टी, लिटरली होता है ना कि वो कहीं चले जाएं तो वो जान है उस जगह की, उस पार्टी की। But they suffer from depression, they suffer from loneliness, they suffer from the need to be somebody to be able to understand them. At those times you realize that having that one person to connect is far more important than having 100 people around you and yet you being an island, you know, jahan pe koi bhi aap tak aap ya aap ke andar tak touch nahi kar pa raha hai. To it does not matter how many people, it matters who you are with and whether you connect with that person or not.
0: So maan lijiye ki agar aapki brother sister ya siblings relationship bahut achhi hai, to kya will you grow up as a more matured person, kya aap bahut strong honge mentally, kyunki aapke paas hamesha to fall upon koi hai, aapke paas backup hamesha hai.
1: Absolutely ma'am, absolutely. So when you have a sibling, aap bhale nahi baat karo, jaise मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक आई हैव अ फ्यू सिबलिंग्स। शादी होने के बाद पहले तक तो बात होती थी, पर शादी होने के बाद आपके टाइम नहीं रहता है, काम है, वर्क है, बिजी आप हो जाते हो। पर जब आपको एक समय ऐसा आता है ना, 3-4-6 महीने के बाद अचानक आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे आपकी चाची या आपकी मौसी या कोई आपको अपने परिवार वाला ही कोई परेशान कर रहा है, या मम्मी नहीं समझ रही है आपको, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं नहीं समझ रही है, तो आपके भाई बहन से ज्यादा ना आपका परिवार को कोई नहीं समझता।
0: Exactly.
1: और आप कितना भी अपने दोस्तों को बता दीजिए कि पता है मम्मी ऐसी है, पर पीछे का स्टोरी उन्हें पता नहीं होता
0: है।
1: आप ही को पता है कि आप ऑन अ लाइटर नोट आपका परिवार कितना पागल है, वो केवल आप ही जानते हैं और आपके भाई बहन ही जानेंगे। तो आपकी मम्मी कहाँ से आ रही है वो बोलने के लिए, भले बाकियों को लगे कि नहीं नहीं वो तो सही कह रही है, सही बोल रही है, पर आपको पता है कि वो गलत है।
0: Yes.
1: और आपके भाई बहन को पता होगा कि वो गलत है, उन्हें Yes. ये नहीं कहना चाहिए था। तो वो लॉजिस्टिक्स, वो इमोशंस और वो कनेक्ट योर ओन सिबलिंग्स कैन अंडरस्टैंड एंड नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड।
0: एक्चुअली
1: यस, नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड।
0: सो डेफिनेटली ये तो प्रूवन फैक्ट हो गया है भाई कि अगर आपके पास अपने भाई बहनों का ढेर सारा प्यार है, तो मेंटली आप, या मैं ये कह सकती हूँ इमोशनली, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी परेशानी आएगी, आपको लगेगा कि कहीं कोई ऐसी चीज़ है, तो आपको वो जो रिश्ते हैं वो अक्सर संभाल लेते हैं। और इसीलिए जीवन में कहा जाता है इन रिश्तों को वैल्यू करते रहना चाहिए। आज के इस खूबसूरत से त्यौहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही में आज हमने ढेर सारी बातें की भाई बहन के रिश्तों पर, न्यू एज भाई बहन के रिश्ते। एक जमाना होता था भाई मतलब भाई एंड बहन मतलब बहन, लेकिन आज के जमाने में भाई और बहन बिल्कुल इक्वालिटी निभा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ये बदलाव बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों में हम इस बदलाव में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जिससे कि हम वो प्यार रिचुअल और वो सारी चीज़ें भी बरकरार रखें, और साथ के साथ ये जो इक्वालिटी की मिठास है इसे भी बरकरार रखें। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर श्रुति, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। बट जाते जाते, व्हाट इज वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव आउट टू ऑल?
1: वैल्यू योर रिलेशनशिप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर, वेदर दे आर योर फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग, एनीबडी, जस्ट वैल्यू देम एंड वैल्यू योरसेल्फ, बिकॉज यू विल फाइंड द राइट पीपल ओनली देन।
0: यस, ये

0: बहुत जरूरी है भाई, हम रिश्तों की ना कद्र कम करते हैं। सो जरूरी है कि आपके आसपास जितने भी रिश्ते हैं और जो आपके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड निभा रहे हैं, उनकी कद्र करते रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए और हमारी कद्र करिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेती हूँ, लेकर आती हूँ प्रोग्राम साथी में, और साथ में एक साथी लेकर आती हूँ। सो डॉक्टर श्रुति, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे सभी लिसनर्स को दी।
1: थैंक यू।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। मैं आपसे मुलाकात करूंगी अगले हफ्ते। टिल देन, फील गुड, फील लाइव।

सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और लेकर के आ गई हूँ प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जहाँ मैं आप लोगों के पास होती हूँ, करती हूँ ढेर सारी बातें, सुनाती हूँ आपको ढेर सारे प्यारे प्यारे से गाने और इसी के साथ ही खूब सारी बातें होती हैं। तो ये प्रोग्राम हर बार की तरह एक बार फिर से एक बेहद प्यारे गाने के साथ शुरू करते हैं और इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, यानी कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में होने वाली हैं एक बेहद प्यारी गेस्ट। इनका नाम है सुकन्या और फिटनेस कोच हैं, फिटनेस के वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर डालती हैं और बहुत ही मोटिवेट करती हैं लोगों को। वहीं मानव रचना के साथ पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हैं, टीचर हैं और साथ ही इनका जो सफ़र है मानव रचना के साथ में वो वैसे काफ़ी पुराना है क्योंकि मानव रचना की स्टूडेंट भी वो रह चुकी हैं। तो मानव रचना के साथ इनका सफ़र काफ़ी लंबा है और साथ आज हम इनसे फिटनेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम पैसा कमा सकते हैं, हम हर एक चीज़ अपनी लाइफ में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर सेहत एक बार गई तो जल्दी से वापस नहीं आएगी। और कितने लोग तो उसके बाद अपनी सेहत को पा ही नहीं पाते हैं, मतलब वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज के टाइम पर सेहत है तो सब कुछ है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि आज कई सारे लोग जागरूक हैं अपनी सेहत को लेकर के। तो बस ऐसे ही आप जागरूक रहें, अपना ध्यान रखें और समय समय पर आप अपने सेहत के बारे में बात करते रहें और हमसे अपने किस्से, कहानियाँ या कोई मैसेज शेयर करते रहें 8010781078 पर। तो हमारे साथ थोड़ी सी देर में जुड़ने वाली हैं सुकन्या, चलिए इनसे हम बात करेंगे। तो चलिए सारी बातें हम इनसे जानेंगे, करते हैं इनसे ढेर सारी बातें। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में सुकन्या।
1: थैंक यू प्रियंका।
0: सुकन्या, रेडियो के साथ जुड़कर आज आप बात कर रही हैं, अपने जो जो विचार है वो साझा करेंगी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर?
1: बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं पहले RMR में आई हूँ अपने बच्चों के साथ, बट फॉर्चुनेटली इस बारी मुझे मौका मिला अकेले आने का। सो ये फीलिंग बहुत ब्यूटीफुल है, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, बट आई थिंक लेट्स सी हमारा ये सेशन आगे कैसा जाता है।
0: आप इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम के लिए रील आप शूट करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर नहीं बोलूंगी बट ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जरिए से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे लोग मोटिवेट हो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने काम के साथ मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती है?
1: एब्सोल्युटली, मेरे को बहुत सोच समझ के कंटेंट डालना पड़ता है। इन्फ्लुएंसर के साथ साथ मैं एक एडुकेटर भी हूँ, सो आई नो कि मुझे लोगों के साथ साथ मेरे बच्चे भी देख रहे हैं,
0: राइट?
1: सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे अपना कंटेंट डालना पड़ता है एंड आई नो कि कौन से ऑडियंस को मैं टारगेट करती हूँ, तो इसीलिए मेरा कंटेंट फिल्टर्ड होता है और उसी हिसाब से होता है कि वो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी वो मोटिवेट करे। बट येस, क्योंकि फिटनेस मेरा पैशन है एंड आई वॉन्ट टू सी पीपल अराउंड मी फिट एंड हेल्दी, सो ऑफकोर्स मुश्किल होता है, बट एज आई टोल्ड यू दैट मेरा पैशन है, सो इस वजह से मुझे स्केड्यूलिंग करनी पड़ती है कि मैं काम के साथ साथ जो है रील्स, मोटिवेटिंग कंटेंट, एडुकेशनल कंटेंट बनाऊं ताकि लोग जो है वो फिट रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में सबसे जो सारे लोग हैं वो सबसे साइड में जिस चीज को रखते हैं वो है अपनी हेल्थ,
0: राइट?
1: सो आई फील रियली वेरी बैड एज एन एडुकेटर एंड एज अ फिटनेस कोच, एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। सो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी करूं उससे मेरे टारगेटेड ऑडियंस जो है मोटिवेटेड रहें, और होते भी हैं, सो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत अच्छी विन-विन सिचुएशन रहती है,
0: राइट? एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इंस्टाग्राम पर आजकल रील ज्यादातर लोग बनाते हैं, हर तरह का कंटेंट डालते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज पर कंटेंट डालना जिससे लोग आपसे मोटिवेट हो, जहां लोग आपको देखें तो वो अपनी जिंदगी में बदलाव करें, ये थोड़ा सा टास्किंग वाली चीज हो जाती है और शायद इसी को ही मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक वुमेन जो एडुकेटर है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है क्योंकि मेरे बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि चैलेंज ये होता है। तो इनसे हम ये ज़रूर जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फिटनेस से जुड़ी, जो भी हमारी हेल्थ से जुड़ी बातें होती हैं वो इनकी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, और जहाँ ये आपको फिटनेस के बारे में बताती हैं कौन सी एक्सरसाइज सही है कौन सी नहीं है। और सीरियसली मैं, मेरे सामने ये बैठी हैं, बहुत ज़्यादा फिट हैं, मुझे देख के अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं मैं भी इनसे मोटिवेट हो रही हूँ। मैंने भी अपने ऊपर आजकल ध्यान देना काफ़ी शुरू कर दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन हाँ साथ के साथ एक्सरसाइज करना, फिट रहना, अच्छी डाइट लेना, अपने खाने के बारे में नॉलेज होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सुकन्या, इनसे हम और ढेर सारी बात करेंगे। और साथ के साथ आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। सुकन्या, क्योंकि एक सही पर्सन से सही बात ज़्यादा मायने, ज़्यादा रिलेवेंट होती है, सो आपसे जो मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल सही मुझे लगता है कि मौका भी है और सही हमें जानकारी मिलेगी। फिट रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग भी जो पतले हैं लेकिन अपने ऊपर कोई काम नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, जैसा भी खाएं बस ये है कि उनके तन को लगता नहीं है। तो कितना ज़रूरी है कि चाहे व्यक्ति पतला हो मोटा हो जैसा भी हो, सबको एक्सरसाइज ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट?
1: फिट रहना तो बहुत ज़रूरी है। आप लाइफ में कुछ भी करोगे तो आपको, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप उसको कैसे अचीव कर पाओगे? एंड फिटनेस इज नॉट अबाउट बीइंग फिजिकली फिट, राइट? इट इज अबाउट बीइंग मेंटली फिट एज वेल। सो इफ आई टॉक अबाउट एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है आपकी जॉइंट्स की प्रॉपर वर्किंग के लिए, आपकी मसल को बिल्डअप करने के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज सिर्फ अकेले नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज तो हम जिम में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे जाके कर सकते हैं, पर पूरा दिन हम किस पे डिपेंडेंट है? अच्छे न्यूट्रिशन पे, ठीक है? सो कोई पतला है या मोटा है, अगर वो न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले रहा है, अगर वो अच्छे से अपने अंदर जो है, जो भी आप वट एवर न्यूट्रिएंट्स यू आर टेकिंग, इफ दे आर नॉट गोइंग इनसाइड, सो फिर क्या फायदा? तो वो प्लांट जो है, जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको सब चीजें देनी होती है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी इसी तरीके से वर्क करती है। So, कोई पतला है या मोटा है, उसको राइट न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है, तभी आई थिंक लाइफ में वो फिट और हेल्दी जो है रह पाएंगे।
0: नहीं, बिल्कुल सही कहा। अक्सर हमारे आसपास लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से पतले होते हैं, कमज़ोर नहीं बोलूँगी, हाँ कहूँगी कि पतले होते हैं, और वो खूब सारा खाते हैं, उनके तन को लगता नहीं है, और फिर उनको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि अरे आपका तो खाना लगता ही नहीं है। तो अगर आप उसको फिटनेस का की डेफिनेशन देते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि फिट वो नहीं है जो अपने शारीरिक रूप से कमज़ोर है, पतला है, बल्कि फिट वो है जो एक्सरसाइज कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है। क्योंकि अगर आप पतले

0: तो इस दौरान खुद को कैसे फिट रखा जाए?
1: देखो ऐसा होता है, हमारे पास पांच चीजें हैं, हम बच्चे भी देख रहे हैं, जॉब भी देख रहे हैं, पांच चीजें हैं, लेकिन हम उसमें हेल्थ को सबसे डाउन रख रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारे हमारी हेल्थ खराब होने लग जाती है, तो वो जो पांच चीजें जिसकी वजह से हम हेल्थ को डाउन पे रख रहे थे, वो सारी पांच चीजें साइड हो जाती है और हेल्थ सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आ जाती है। तो ये तब क्यों होता है जब ये सब चीजें खराब हो जाती है, ये सब पहले क्यों नहीं हो सकता, है ना? ये सब पहले अगर आप चीजों को इक्वल प्रोपोर्शन में, जैसे कि मैंने बार बार ही बोला, स्केड्यूलिंग और टाइम टेबल अपना क्रिएट करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये सब चीजें आराम से मैनेज हो जाएंगी। मैं फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, मैं स्कूल में भी काम करती हूँ, मैं कोचिंग भी करती हूँ और मैं इन्फ्लुएंसिंग भी करती हूँ, एंड आई एम दी ओनली डॉटर, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली ऑल्सो। जब मैं कर सकती हूँ, और अभी देखो मैं मानव रचना रेडियो में भी आके बैठी हूँ, जब मैं अपनी स्केड्यूलिंग कर सकती हूँ, तो आई थिंक कोई भी कर सकता है। इट्स जस्ट कि आप अपनी हेल्थ को कितना प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इससे पहले बहुत देर हो जाए और समय हाथ से निकल जाए और इरिवर्सिबल डैमेज हो, उससे बेटर यही है कि पहले ही आप कैच होल्ड कर लीजिए और स्टीयरिंग व्हील को जस्ट टेक इट इन योर हैंड्स। सो आई थिंक मैंने जैसे पहले बोला कि फिजिकली फिट होना तो जरूरी है ही, मेंटली फिट होना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है और आप टारगेट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप अपने हेल्थ को टारगेट करते हो, जैसे अर्जुन ने फिश को टारगेट किया था, तो डेफिनेटली आप इसको कम, मतलब इस पे विन कर ही लोगे।
0: एक ना पुरानी कहावत है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। और अक्सर मैं आपसे भी ये साझा करती हूँ कि जैसा आप खाओगे आप का शरीर तो वैसा होगा ही, लेकिन आपको सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, बट ये सच है, जैसा आप खाते हो वो न केवल आपके तन मन को लगता है, बल्कि सोचने की जो क्षमता है ना, वो भी उस तरह से ही काम करती है जैसा आपका खाना होता है। जितना आप अच्छा क्लीन डाइट रखोगे ना, बिल्कुल एकदम बेसिक फूड आप रखोगे डाइट में, कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं है, या फैंसी है भी तो वो आपके लिए अच्छा हो, अगर कुछ ऐसा आप रखते हो ना, आपके सोचने की, आपके बात करने की, आपके यहाँ तक कि लहजे का भी जो तरीका है वो बहुत सॉफ्ट रहेगा। लेकिन उसके उलट अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, तो ये ना केवल आपके मानसिक रूप को, बल्कि बात करने के तरीके को, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अक्सर हम सोचते हैं कि ये हो क्यों रहा है हमारे साथ में। माना काम का स्ट्रेस बहुत है, माना बहुत सारा काम है जो हम पूरा नहीं, हम अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में हम कभी भी अपने खाने को नहीं देखते हैं, हम उससे नहीं सीखते हैं कुछ। तो एक बहुत बड़ा रोल है हमारे खाने का। सुकन्या कहते हैं कि कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप वॉक कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, लेकिन कई सारे सवाल मेरे पास में आते हैं कि प्रियंका ऐसा कुछ खास ना फर्क पड़ता नहीं है। क्या सच्ची में जो लोग जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, उनके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता है?
1: देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं उससे बेटर है कि आप कुछ करिए, ठीक है। सो बहुत सारे मेरे पास ऐसे मेंटीज आते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं उनको बोलती हूँ वो यही बोलती हूँ कि आप वॉकिंग से स्टार्ट करिए, ठीक है। सो वॉकिंग करना बहुत अच्छा है आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप वॉकिंग से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर दोबारा से मैं उसी बात पर कहूँगी कि आपका न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज जो है ना, इसको हम अपने फाइनेंसिस से जो है रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम फाइनेंसिस की बजटिंग करते हैं ना, हमारे पूरे महीने में बजट होता है कि हमने अगर इतना लिया, हम इतना सेव करेंगे, इतना स्पेंड करेंगे, सो उसी तरीके से एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन की भी बजटिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप खर्चा ज्यादा करोगे तो आपके पास सेविंग कम होगी, है ना, और अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो आपके पास सेविंग क्या रहेगी, ज्यादा होगी। लेकिन पैसे की ज्यादा सेविंग होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसी तरीके से फैट की ज्यादा सेविंग होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, हार्ट के डिजीजेस, बहुत सारे मल्टीपल डिजीजेस हैं जो बढ़ जाते हैं। सो फैट को खर्च करने के लिए आप क्या करोगे, आप वॉक करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, तो जितना आप कैलोरीज को स्पेंड करोगे उतना बॉडी आपका फैट को क्या करेगी, यूज करेगी। सो आप कहीं, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। सो कहते हैं ना कि यू जस्ट कैन नॉट क्लाइंब डायरेक्टली ऑन द फिफ्थ स्टेयर, यू हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेयर। सो द फर्स्ट स्टेयर इज वॉकिंग, राइट, एंड धीरे धीरे आप उसको बिल्डअप करके फिफ्थ स्टेयर पर जा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है, वॉकिंग के साथ अगर आप न्यूट्रिशन थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली टारगेट कर लोगे, सो वॉकिंग से भी रिजल्ट

0: जरूर आएंगे।
1: जी, बहुत खूब। अच्छा, ऐसे लोग आपसे मिलते होंगे ज़रूर, क्योंकि ऐसे लोगों की भरमार है हमारे आसपास, जो ये कहते हैं कि मुझे वज़न तो कम करना है लेकिन मुझे खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मतलब मुझे ना बहुत पसंद है जंक फूड, बाहर का ऐसा फास्ट फूड ना, जहाँ एक हाथ में बर्गर एक हाथ में पिज्ज़ा। ज़्यादा नहीं खाऊँगी, थोड़ा खाऊँगी, बट मुझे ना अपनी डाइट से निकालना नहीं है, इसे कुछ भी कट नहीं करना है। तो ऐसे लोग मिलते होंगे आपसे?
0: बिल्कुल मिलते हैं ऐसे लोग, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। देखो, एक इस ज़िंदगी में ना खाना, मेरी मम्मा कहती हैं कि सुकन्या जिंदगी में ना खाना और कपड़ा ही है जो अपना होता है, बाकी सब तो आप दूसरों की मर्जी से करते हो। सो ऐसा जरूरी नहीं है, आप खाइए बट मॉडरेशन में खाइए। देखो, अच्छी लाइफ जीने के लिए ना मॉडरेशन इज द की, चाहे वो खाना हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो मेरे पास जो मेंटीज आते हैं, जिनको मैं ट्रेन करती हूँ, उनकी भी यही शर्त होती है कि मैं ये नहीं, मुझे ये चाहिए। सो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करके मैं उनको वो सब भी देती हूँ। लेकिन क्यों ना हम उसको अल्टरनेटिव करें, क्या हम बर्गर्स घर पे नहीं प्रिपेयर कर सकते? हम नूडल्स घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वंस इन अ वाइल आप उसको घर पे प्रिपेयर करिए, खाइए, और साथ साथ आप एक्सरसाइज करते रहिए, वाटर इनटेक अच्छा रखिए, स्लीप पैरामीटर अपना अच्छा रखिए। सो डेफिनेटली इन सबको इंक्लूड करके भी आप वेट लूज करेंगे ही।
1: लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि अब जैसे बाहर बर्गर जिस तरीके से बनाया जाता है, हमारे पास अब वो रेसिपी है, हमें पता है कि किस तरीके से बनाना है, तो हम सेम इंग्रेडिएंट अपने घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे रिप्लेस करें कि वो पूरे तरीके से नहीं तो कम से कम 50% हमारे लिए हेल्दी हो?
0: हम बाहर, अब जैसे आप बात करें तो वाइट फ्लोर मैदे का यूज होता है, ठीक है, पास्ता में फॉर एग्जांपल, या नूडल्स में। तो आजकल हमारे पास राइस नूडल्स, आटा नूडल्स, ये सब आती हैं। तो आप सिमिलर चीज, अगर आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, सो आप सिमिलर चीजों को रिप्लेस कर अच्छे बेटर ग्रेन से आप उसको घर पे भी बना सकते हैं। और नहीं, वंस इन अ वाइल अगर आप खा भी लेंगे बाहर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट बाहर का खाना बहुत जरूरी है, वरना आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं होगी, है ना। क्योंकि अगर आप कभी ऐसा तो होगा कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको एकदम से बाहर के खाने का एक्सपोजर पड़ता है, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। बाहर का खाना वंस इन अ वाइल बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ बाहर का ही खाना वो जो है वो एक गलत हैबिट है, जिसको मैं प्रमोट एज अ फिटनेस कोच बिल्कुल नहीं करूंगी। तो जो बाहर खाना मिलता है वो फैंसी होता है, और फैंसी चीजें देखने में उतनी अच्छी लगती है लेकिन ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं सकती,
1: खासतौर पर बच्चों को अट्रैक्ट करती है।
0: एब्सोल्युटली, वो बहुत अच्छा। तो ऐसी चीजें आजकल कलरफुल प्लेट, सब कुछ आजकल मार्केट में अवेलेबल है, हेल्दी रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल है, तो क्यों ना वो हम घर पे अपने लिए भी बनाएं और बच्चों को भी वही सिखाएं। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो है वो जो खुद करते हैं ना, बच्चा भी उनको देख देख के करता है। तो अगर पेरेंट्स जो है उनकी कलरफुल, देयर लॉट ऑफ वेज एंड स्ट्रेटजीज थ्रू विच यू कैन प्रमोट हेल्दी ईटिंग इन योर फैमिली, तो आप अगर वो हेल्दी स्ट्रेटजीज को घर पे भी अपनाएंगे, सो डेफिनेटली बच्चे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, जो भी आपकी फैमिली में है, आप पूरी फैमिली को हेल्दी रख सकते हो।
1: तो आपने सुकन्या ये भी बताया कि कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर वंस इन अ वाइल कोई भी चीज़ हो जाए तो वो बुरी नहीं होती, किन चीज़ों को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। और अक्सर मैं भी आपसे बात करती हूँ कि जैसे आप बाहर की चीज़ें हम खाते हैं तो रिफाइंड ऑयल में बनी होती है, रिफाइंड ऑयल हमारे लिए सही नहीं होता, ब्लॉकेजेस होते हैं, इसीलिए आप उसकी जगह या तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई दूसरा अच्छा रिप्लेसमेंट है तो आप बिल्कुल उसकी तरफ जाइए। उसी के साथ ही अगर मैदे की बनी चीज है तो आज बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास में है, वीट ब्रेड्स हैं, वीट बंस हैं हमारे पास में, तो जो भी आप खा रहे हैं आप वीट के ऑप्शन में जाइए, आप मल्टीग्रेन्स के ऑप्शन में जाइए। वहीं सुकन्या, कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, हमें पता है कि वो क्या है, बट जब एक फिटनेस कोच कहता है ना तो बातों में दम भी लगता है और यकीन करना इजी हो जाता है। तो सीधा सीधा, मतलब मुझे नहीं चाहिए कि वंस इन अ वाइल हो जाए तो कोई नहीं, सीधे सीधे कि आप इसको डाइट से निकाल ही दीजिए, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी?
0: देखो, मीठा, ठीक है, शुगर, तो शुगर जो है वो बहुत सारी चीज़ों का जो है कॉज बनता है, ठीक है। सो आई थिंक नेचुरल शुगर को आप लीजिए, आप फ्रूट्स को लीजिए, फ्रूट बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, पर ये जो स्वीट्स, चॉकलेट्स प्रिपेयर होती है, इनफैक्ट चॉकलेट्स अगर आपको खानी है आप डार्क चॉकलेट्स खाइए, ठीक है। तो शुगर तो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे तो इसका तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन हाँ, वंस इन अ वाइल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मॉडरेशन इज द की, सो वंस इन अ वाइल आप उसको अगर खा लेंगे लेंगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हाँ शुगर जो है वो एक ऐसी चीज है, और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स उनसे तो आप जितना दूर रहे ना वो उतना अच्छा ही रहेगा। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास चिप्स आते हैं, लेज आते हैं, जो कि चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ दीज फूड आइटम्स, राइट। सो वो ही अगेन वंस इन अ वाइल खा रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर पूरी लाइफ ही उस पर डिपेंडेंट है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है बिकॉज वो प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। सो आई थिंक ये दो चीजें हैं जो कि मतलब बहुत जरूरी है, अगर आप हटा देंगे तो इसके बेनिफिट ही होंगे। आप इनको रिप्लेस कर दीजिए अच्छी चीजों से, जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल शुगर लीजिए, नेचुरल शुगर आपके फ्रूट्स में आती है, ठीक है। जैसे मैंगो का सीजन चल रहा है तो आप यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर लॉट ऑफ डिशेस फ्रॉम मैंगोज, यू कैन यूज कर्ड एंड डिफरेंट फूड आइटम्स टू यू नो सेटिस्फाई योर स्वीट टूथ। सो इट इज जस्ट अगेन मैं वही कहती हूँ कि आपका मेंटल माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो अगर वो अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप उस तरफ डाइवर्ट भी नहीं होगे। पर ये दो चीजें तो ऐसी है जो आप निकाल दोगे ना अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ जो है बहुत बेटर हो जाएगी।
1: जी, जो शुगर है वो पॉइजन है हमारे लिए, बट कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी चीज़ में तो हम ले ही लेते हैं, चाहे हम जितना भी इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें, बट वो कहीं ना कहीं चाय में कॉफ़ी में थोड़ा बहुत वो हो ही जाता है। आजकल स्टीविया बहुत ट्रेंड में है, क्या ये सेफ है?
0: हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनेस पे बहुत जो है रिसर्च हुई है और बहुत सारे लोगों ने जो है कहा भी है। जब से पहले मैं फिटनेस एक्सपर्ट नहीं थी तो मैं भी उसी तर्क में थी कि हाँ ये खराब है, बट अभी इस पे रिसर्च जो है वो चल रही है, ठीक है। वी हैव स्टिल नॉट डिक्लेयर्ड लॉट ऑफ रिजल्ट्स रिगार्डिंग दिस। सो स्टीविया जो है वो प्लांट बेस्ड है, प्लांट सोर्स है उसका, तो अगर आप स्टीविया मॉडरेशन में लेंगे ही तो उसकी कोई जो है साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगेन कमिंग टू सेम लॉजिक, मॉडरेशन इज द की, और अगर इस पे कुछ होगा भी तो इफ यू आर गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ किलोज तब वो शायद मल्टीपल केजीज अगर आप कंज्यूम करते हैं ना शुगर के आर्टिफिशियल स्वीटनर के तब शायद वो आपकी हेल्थ पे कुछ इफेक्ट डालेगी। बट मुझे नहीं लगता रेगुलरली अगर आप टी कॉफी कितना ही पी लेंगे तो उसमें अगर आप थोड़ा सा यूज कर भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, और इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल टेबल शुगर भी यूज कर लोगे ना तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर कि वो आपकी डाइट का एक पार्ट हो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बाउंड्री जाके उसको यूज करते हो और बहुत रिपीटेड यूज करते हो तो ऑफ कोर्स वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
1: राइट। स्टक वेट की आजकल काफी ज्यादा दिक्कत आते हैं, खास तौर पे प्रेगनेंसी के बाद में, मतलब आफ्टर डिलीवरी वो जो स्टक हो जाता है ना वेट, कोशिश करें जितना भी तब भी नहीं हो पाता। थायराइड ठीक है, हर एक चीज़, हमारे सारे बॉडी टेस्ट ठीक है, उसके बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है, और मेल से ज़्यादा ये फीमेल्स को दिक्कत होती है। तो एक तो वैसे ही टाइम ज़्यादा नहीं होता उनके पास में, पूरा दिन काम करना, घर संभालना, बाहर संभालना, लेकिन उस दौरान भी वो क्या करें, और जिम में अगर वो आई हैं तो किस किस तरह की एक्सरसाइजेज उनके लिए अच्छी हो सकती है?
0: मेरे पास पोस्टपार्टम मदर्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जिनको मैं ट्रेन करती हूँ, और हाँ उनके चैलेंजेस नॉर्मल फीमेल से, अनमैरिड फीमेल से बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि उनके पास देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैव टू हैंडल, फैमिली, हस्बैंड, किड्स, अपने खुद के मूड स्विंग्स। तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि उनका वेट स्टक, अब सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि उनका वेट स्टक हो क्यों रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इंसान बहुत फैड डाइट्स करता है कि उन्होंने एक महीने के अंदर 10 किलो लूज कर लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अब लोग खुश तो हो जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने फैट लॉस किया या मसल लॉस किया।
1: राइट।
0: सो आइडल वेट लॉस जो होता है वो 3-4 केजीज होता है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, ठीक है। सो मैं पोस्ट पार्टम और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए यही सजेशन देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप एक फिटनेस एक्सपर्ट को हायर करें, जो कि ऑफ कोर्स आप जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सो उसी तरीके से फिटनेस एक्सपर्ट की गाइडलाइन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको सब कुछ पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि पोस्टमार्टम और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स बेबी को भी फीड करती है, सो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा होती है, ठीक है। सो कुछ नहीं करना है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, लाइट एक्टिविटीज से स्टार्ट करना है, स्विमिंग कर सकती हैं, और अगर डॉक्टर का अप्रूवल है तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर एक्सरसाइजेस। एक कंडीशन होती है हमारी DR, डायसिस्ट रेक्टाई, जो कि थोड़ा सा लेवल हो गया, जिसके अंदर आपको पेट की एक्सरसाइजेस जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपकी पेट पे जो स्किन है वो कोलैप्स हो जाती है। तो तभी मैं कह रही हूँ कि एक अच्छा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होना, उसकी सलाह लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर डॉक्टर का गो हेड है तो आप नॉर्मल जिम जो है स्टार्ट कर सकती हैं, और घर पे भी आप वॉकिंग पैड जो भी है आप घर के होम वर्कआउट से भी आप कर सकते हैं. न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज अगर आप दोनों साथ साथ लेंगे एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ तो आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे.
1: कौन कौन सी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिसे घर पर भी कर सकते हैं?
0: इफेक्टिव एक्सरसाइजेज आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेज से स्टार्ट करिए, ठीक है. आप फुल बॉडी को टारगेट करिए, आप प्लैंक्स करिए, आप स्क्वाट्स करिए, ठीक है, आप बर्पीस करिए, डिपेंड करता है, ठीक है. आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वर्कआउट्स कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हैं, आप योगा करिए. पोस्टपार्टम मदर्स को योगा की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उनको मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है. अदरवाइज भी किसी फॉर्म की एक्सरसाइज करेंगे तो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपकी स्ट्रेस लेवल जो है ऑटोमेटिकली डाउन हो ही जाती है. सो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का वर्कआउट वो करना चाहती हैं. सो बेसिक वर्कआउट जैसे हमारा होता है स्क्वाट्स हो गए, हमारे प्लैंक होल्ड हो गए, हमारे पुशअप्स हो गए, ठीक है, हमारी बर्पीज होगी, और बहुत सारे मल्टीपल वर्कआउट्स हैं जो कि आप अपने घर पे बैठे बैठे भी जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो आई थिंक अगर यहीं से स्टार्ट करेंगे ना तो ज्यादा देर नहीं लगेगी उस पांचवी सीढ़ी तक पहुंचने के.
1: राइट. अच्छा एक चीज और जो आजकल मैं बड़ा देखती हूँ कि वजन कम करना ना ट्रेंड में आया हुआ है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर से कितने लो फील कर रहे हैं, आप मसल्स को कितना ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बस आपको वजन कम करना है किसी ना किसी सूरत में. आपको एक महीने में 20 किलो 10 किलो 12 किलो कितने सारे वीडियोस आजकल हम देखते हैं, कितना सेफ है ये?
0: देखो जो ट्रेंड चल रहा है जरूरी नहीं होता ट्रेंड को फॉलो करना, ठीक है. अगर आप ट्रेंड को फॉलो भी करना चाहते हैं, पतले रहने में अच्छे दिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द राइट अप्रोच. ओके, इफ द अप्रोच इज रॉन्ग देन उसके जो आफ्टर रिजल्ट्स होंगे वो बहुत खराब होंगे, ठीक है. सो मैं भी आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ यू नो लीन बॉडी विद लीन मसल्स, बट मेरा टारगेट जो है ना सस्टेनेबल है, ठीक है. मुझे जब तक जीवित रहना ना मुझे तब तक जो है अपनी बॉडी को इस लायक बनाकर रखना है, प्रेजेंटेबल बनाकर रखना है, क्योंकि हमेशा तो आप इन गोल्स को टारगेट नहीं कर सकते ना, लाइफ में और भी बहुत चीजें हैं. सो ट्रेंड को अगर आप फॉलो करोगे कोई गलत बात नहीं है, बट मेक श्योर कि वो ट्रेंड जो आप फॉलो कर रहे हो उसमें अप्रोच आप सही यूज कर रहे हो. अगर आप खुद से ही घर में वेट लॉस कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर मसल लॉस कर रहे हो, और अगर आप मसल लॉस कर रहे हो तो आपको पता है कि व्हाट बिग डैमेज यू आर डूइंग टू योर बॉडी. सो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर. तो उसके अंदर फिर अगेन फिटनेस एक्सपर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है. वहां पर अगर आप किसी अच्छे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फिटनेस एक्सपर्ट को हायर करोगे तो आप बिल्कुल ट्रेंड सेटर ही बनोगे बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ट्रेंड से अलग जाना बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो, ठीक है. सो आप ट्रेंड से अलग जाइए लेकिन सही अप्रोच के साथ जाइए, क्योंकि वेट लॉस जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है. ये नहीं कि तीन महीने 10 महीने किया फिर उसके बाद आप दोबारा से मोटे होगे, नहीं, आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा होना चाहिए ताकि आप हमेशा अपने आप को मेंटेन कर सके. जो जब लोग ये वर्ड कहते हैं ना डाइट कर रहे हैं, आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस टर्मिनोलॉजी. व्हाट इज डाइट? दिस इज माय लाइफस्टाइल, दिस इज हाउ आई लिव, राइट. डाइट आप सिर्फ कुछ महीने के लिए कर सकते हो ना, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल है सो दिस इज द वे यू आर लिविंग, है ना. सो उसमें आपको कुछ एडिशनल इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत ही नहीं.
1: ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं जिनको फंक्शन अटेंड करना है, शादी अटेंड करनी है, एक महीने दो महीने बाद उनके घर में फंक्शन है और उनको लहंगे में फिट होना है, जो आज से 4 साल पहले उन्होंने लहंगा देखा था या वो वाली फिटिंग थी उस वाले फिटिंग में वापस से आना है. ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे जिन्होंने वो शादी अटेंड की और उसके बाद वजन अचानक से बढ़ा और फिर कोई दूसरा इवेंट आया है फिर वो उसकी तैयारी में लग गए, क्या इससे बॉडी पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है?
0: बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर इफ दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन इफ इट इज गोइंग टू बी योर लाइफ स्टाइल, देन आपको किसी इवेंट के लिए ऐसे एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आप चल ही रहे हो उस चीज में, है ना. तो हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको शादी होती है उनकी दिसंबर में, जैसे शादी है और हम जुलाई में मेरे पास ज्वाइन कर रहे हैं. सो यस, सी दिस इज इफ दिस इज देयर टारगेट्स एंड डेफिनेटली दिस इज माई वर्क टू पुश देम, राइट. बट आई मेक श्योर दैट आई एडुकेट माई मेंटीज ऑल्सो, क्योंकि शादी होते ही एकदम से गायब, ठीक है. सो वो ही गलती वो करते हैं. मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ कि आप अगर इसको अपना लाइफ स्टाइल बना लेंगे तो आपको किसी भी फंक्शन को टारगेट नहीं करना पड़ेगा. आप एक डिसेंट फिजिक के अंदर जो है रह सकते हैं. अब जैसे मेरे घर में शादी आ रही है नवंबर दिसंबर में, तो आई एम मेंटेनिंग अ डिसेंट फिजिक. मुझे उसके लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं रोज न्यूट्रिशन फॉलो कर रही हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है. सो ये गोल टू गोल भी डिपेंड करता है. बट येस ऑफ कोर्स इफ यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दिस इन टू योर लाइफ स्टाइल, इफ दिस इज हाउ योर लाइफ स्टाइल इज, देन डेफिनेटली डू नॉट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू गेट फिट फॉर अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट और मे बी एनी वेडिंग और वॉट एवर इट इज.
1: अच्छा, आप इतनी सारी बातें हमने की है, बच्चों को भी ज़रूर हमें टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों का जो लाइफस्टाइल है वो भी ठीक नहीं है. हम इतना जंक फूड उन्हें देते हैं, इतने जो पैकेज्ड फूड होते हैं वो उनको हम इतना ज़्यादा देते हैं, सिर्फ ये देखकर कि बच्चे हैं कोई बात नहीं. लेकिन उसका जो नुकसान है, जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है ना और एकदम से फैट होता है, उसको उसके अंदर यू नो ऐड होता है, तब समझ में आता है. तब ऐसे में याद आता है जिम. तो आजकल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी जिम कर रहे हैं. क्या बच्चों के लिए जिम सेफ है? क्या इतनी छोटी छोटी उम्र में जहां वो 10 साल 11 साल के बच्चे हैं और जिम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना सेफ है? और बच्चों का अगर वजन कम करना है तो उसके लिए पेरेंट्स क्या करें?
0: आई एम वेरी क्लोज टू माई किड्स बिकॉज आई थिंक वट एवर आई एम टू डेट इज़ बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स. और आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि बच्चों का लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है, बच्चे बहुत ओवर वेट ओबीस कैटेगरी में, राइट. सो ये यू नो माई हार्ट रियली पिंचेज वेन आई सी माई स्टूडेंट्स इन सच अ सिचुएशन, ऑल राइट. सो फॉर किड्स सी द फाउंडेशन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, राइट. अगर एक आपको घर बनाना है तो उसकी नींव स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो अगर बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो आगे जाके वो घर जो है ना वो बिखर जाएगा. सो हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं जिम करती हूँ, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो भी मेरे साथ ही जिम कर रहे होते हैं. सो इसमें कोई हर्ज नहीं है. फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. छोटे से बच्चे से लेकर एक यू नो 60-70 ईयर्स तक के इंसान के लिए भी फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ये जो जिम का है ट्रेंड जो चल पड़ा है, ऑफकोर्स क्योंकि बच्चे इतने ओवरवेट हो गए हैं, सो वो मसल्स और कुछ तो ट्रेंड भी है जो वो फॉलो करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड को फॉलो करने से ज़्यादा अगर वो सीरियसली अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देंगे तो जिम को ज्वाइन करने में कोई बुराई भी नहीं है. लेकिन एक ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर आप जिम कर रहे हैं सो मेक श्योर यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनर, क्योंकि उससे इंजरी होने के चांसेस बहुत हैं. और अगर आप इतने ओवरवेट नहीं है, फिजिकली एक्टिव रहना चाहते हैं, तो आप कोई स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप घर पे भी एक्सरसाइजेस जो हैं वो कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको जिम करना ही है सो देयर इज नो हार्म. ऐसा कुछ नहीं है कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, हाइट रुक जाएगी, ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसने इसको सपोर्ट किया है. सो बट एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगी बच्चों के लिए कि अगर आप कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ अ पर्टिकुलर यू नो एनी गुड वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल ट्रेनर. और इसके साथ साथ न्यूट्रिशन, फिर वही बात कि जिम आप 2 घंटे कर सकते हो लेकिन न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जिसपे आप बाकी के बचे हुए आवर्स पे रिलाई करते हो. सो आप करिए जिम, कोई प्रॉब्लम नहीं. इनफैक्ट मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चे को मत रोके, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बड़ा स्ट्रेस फैक्टर होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें जिम नहीं ज्वाइन करना चाह रहे. आई नो दे फॉलो ट्रेंड्स, बट अगर सच में दे वॉन्ट टू ज्वाइन जिम, दे इज नो हार्म. दे शुड, दे कैन गो फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी एंड इट्स लाइक वेरी गुड फॉर देम,
1: राइट. बहुत सारी बातें हमने सुकन्या से की, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला. सभी लिसनर्स सुकन्या आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों को महसूस कर रहे हैं और वो भी अपने जिंदगी में अपने जीवन में बदलाव लेकर के आएंगे. आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट प्लीज़ डू नॉट निगलेक्ट योर हेल्थ, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ देन हेल्थ विल टेक यू लॉन्ग. एंड जस्ट आई एम जस्ट नॉट फोकसिंग ऑन फिजिकल हेल्थ, मैं मेंटल हेल्थ की भी बहुत जो है बात कर रही हूँ कि आप फिजिकली फिट दिख रहे हैं लेकिन अगर आप मेंटली अनफिट है तो उसका कोई फायदा नहीं है. सो आप अपने मेंटल ब्लॉक को, अपने मेंटल स्टेटस को ठीक रखिए, तभी आपकी आपकी जो बॉडी है ना वो आपको सपोर्ट करेगी. सो हेल्थ को जो है बिल्कुल निग्लेक्ट मत करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और रेडियो मानव रचना सुनते रहिए
1: जी. और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, ढेर सारी बातें हुई, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए एंड थैंक यू सो मच सुकन्या. तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय.

0: मैं हूं गगन नारंग एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो मानवरचना 107.8।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये प्रोग्राम जो पूरे घंटे का होता है जहाँ आप लोगों से द एनिमल वर्ल्ड में मैं बहुत सारी बातें एनिमल्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ, कुछ उनसे जुड़ी किस्से कहानियाँ भी आपके साथ में शेयर करती हूँ और इसी के साथ ही होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने। जी हाँ, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के पास आ चुकी हूँ लेकर के ढेर सारे गाने और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, और आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही डेंजरस बर्ड के बारे में। ये बर्ड कौन सी है ये आपको मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी डेंजरस बर्ड के बारे में सुना है? अगर आपने कुछ पढ़ा है या सुना है या कभी कोई किस्से कहानी आपने सुनी है तो आप हमसे शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपने किस बर्ड के बारे में सुना है। हो सकता है जिस बर्ड के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आपने भी उसी के बारे में ही सुना हो, तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए। हमारा नंबर है 8010781078। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप किसी बर्ड के बारे में या किसी एनिमल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों ने जिस एनिमल की फरमाइश की है मैं उसके बारे में बताऊं, तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज कीजिए। आप टेक्स्ट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप के जरिए से ये जानकारी भेज सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गाने के साथ। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम पर और प्रोग्राम है द एनिमल वर्ल्ड। और द एनिमल वर्ल्ड में मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसी बर्ड के बारे में जो कि बेहद खतरनाक होते हैं। जी हाँ, जब भी हम बर्ड का नाम लेते हैं तो हमें बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी, छोटी सी है ना वो चिड़िए और जो बर्ड्स हैं वो हमें महसूस होता है, हमें उनकी वो उनका जो चेहरा है वो याद आता है। लेकिन कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं इस दुनिया में जो बहुत ही ख़तरनाक होती है, तो आज मैं आपको एक ऐसे ही बर्ड के बारे में बताने वाली हूँ। डरावनी आंखें, उभरा हुआ सर, मगरमच्छ की तरह ये ख़तरनाक दिखने वाला जो ये पक्षी है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। इसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक बर्ड में माना गया है और इसे कहते हैं कैसोवेरी। जी हाँ, और ये ना सिर्फ इंसानों को गहरी चोट पहुंचा सकता है बल्कि जान भी ले सकता है। जी हाँ, एक से ज़्यादा मामले ऐसे सामने आ भी चुके हैं इसको लेकर के, और ये अपने बड़े और नुकीले पंजों से मारकर बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देता है, इसलिए इसे ख़तरनाक पक्षी माना जाता है। तो कैसोवेरी के बारे में हम बात करें, क्या आपको आज से पहले इस पक्षी के बारे में मालूम था? अगर नहीं तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि किस तरह ये ख़तरनाक, यानी किस कदर ये हम सब के लिए ख़तरनाक हो सकता है। चलिए इसके बारे में और ढेर सारी बात करेंगे, उससे पहले इंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रश्न 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसी बर्ड के बारे में बता रही हूं जो कि हर मामले में बेहद खतरनाक है और इसका नाम है कैसोवेरी। ये आमतौर पर वैसे कहते हैं कि काफ़ी शर्मीले और मायावी होते हैं, वैसे खुद ये इंसानों से दूर रहना चाहते हैं, उनके सामने ये नहीं आना चाहते हैं, इसलिए इनसे कई बार डरने की जरूरत नहीं भी होती है। लेकिन इनकी जो संरचना है, जो बनावट है, वो तो खतरनाक है ही, मतलब आपको ये देखने में ही खतरनाक लगेंगे। अगर इनके भीतर से, अगर इनके अंदर से इंसानों का डर अगर निकल जाए तो ये और ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। जंगल में कैसोवेरी मिल जाए तो उस वक्त आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उस वक्त आप अलर्ट रहिएगा। ये अपने अंडों और चूजों की रक्षा करने के लिए किसी पर भी हमला कर सकते हैं और इनको बिल्कुल डर नहीं लगता है, फिर वो चाहे इनसे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, साइज में जितना बड़ा होता है इनको फर्क नहीं पड़ता है, बस ये हमला कर देते हैं। कैसोवेरी हमला करने से पहले गड़गड़ाहट की आवाज निकालते हुए गर्दन और सिर को नीचे करते हैं और ये चेतावनी दे रहे होते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ वरना मैं हमला कर दूंगा। तो ये इनकी चेतावनी होती है। इनके नाखून, अगर मैं आपको बताऊं तो एकदम खंजर जैसे होते हैं, 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। और पता ही है कि ये कितने लंबे नाखून, जो एक बार अगर धंसे तो वो कितने दूर तक, कितने गहरे जख्म कर सकता है। अगर ये किक मार दे तो इससे कई हड्डियां टूट सकती हैं सिर्फ इनकी एक किक से। और कहते हैं कि कैसोवेरी को जब इंसान कुछ खिलाते हैं तो उस समय ये ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इन्हें कुछ खिलाएंगे तो ये हमारे पालतू हो सकते हैं या हम इनको प्यार कर सकते हैं, हम इनके सर पर हाथ फेर सकते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि कितना ख़तरनाक है। तो कैसोवेरी अगर आपको दिखता है तो आप दूर रहिए, अलर्ट रहिए, कब आप पर हमला हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरीके से जंगली होते हैं और इन्हें दोस्त समझने की गलती तो आप भूल कर भी ना कीजिएगा। तो आप दूर से देखिए लेकिन आप अलर्ट रहिए इसके लिए, और कुछ भी खिलाइए पिलाइए नहीं इसे, वरना ये आप पर हमला कर सकता है। तो कैसोवेरे के बारे में चलिए और बहुत सारी बात करेंगे, और साथ के साथ मैं आपको सुना रही हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने। तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रश्न 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड और मैं हूँ प्रांगा आपके साथ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैसोवेरी बर्ड के बारे में। देखिए, हर किसी को पक्षी पसंद होते हैं। आसमान में उड़ते हुए देखना और उनकी आवाज़ों को सुनना हर किसी को पसंद होता है। वैसे तो पक्षियों की प्रजातियाँ बहुत सारी होती हैं और हर पक्षी अपने आप में खास होता है। किसी की आवाज़ बहुत मीठी होती है तो किसी का रंग बहुत शानदार होता है, कोई बहुत खूबसूरत दिखता है तो किसी का आकार इतना छोटा होता है कि देखकर ऐसे ही वो बड़ा प्यारा लगता है। तो कई तरह के पक्षी हैं और उनमें से कुछ पक्षी जो बेहद शांत होते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं। और ऐसा ही एक आक्रामक पक्षी जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड में, यानी कि इससे बचने की ज़रूरत है। इंसान हो या बाकी कोई प्राणी, बाकी कोई जीव, सभी को इससे ख़तरा होता है और अपनी आत्मरक्षा के लिए ये उस पर जानलेवा हमला भी कर सकता है। और यही कारण है कि कैसोवेरी का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया है। ख़तरनाक पक्षी का खिताब जो है वो इसको दिया गया है। जी हाँ, वैसे ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी देश में पाए जाते हैं और इस पक्षी के शरीर के ऊपर नीले रंग के धब्बे होते हैं। और इनके वज़न की बात करें तो मादा कैसोवेरी का जो वज़न है वो 59 किलोग्राम तक होता है और नर कैसोवेरी का वज़न 34 किलोग्राम तक हो सकता है। और ये पक्षी अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं और ये तैरना बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, और इसी के साथ ही इनके खाने की बात करें तो ये मछली खाते हैं और पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। तो ये पानी के आसपास दिखते हैं क्योंकि मछली जो है वो इनका मुख्य भोजन होती है। तो इस तरह से अपने परिवार के साथ ये पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं। चलिए, इनसे जुड़ी और ढेर सारी जानकारी आपको दूंगी और साथ के साथ अभी चलिए एंजॉय करते हैं एक और गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रश 107.8 FM पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड। और आज के प्रोग्राम में एक ऐसे पक्षी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हर मायने में बहुत खतरनाक होता है जी, और इसका नाम है कैसोवेरी। और ये अपने अंडों की रक्षा करता है जिस वजह से ये और ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। इनकी आँखों की बात करें तो ये बहुत खतरनाक होती है और इन्हें देखने पर ही हमेशा ऐसा लगता है कि ये कभी भी हमला कर सकता है। इनकी आंखें इतनी ज़्यादा

खतरनाक होती हैं। इनके सिर पर कुछ उभरा हुआ होता है जो देखने में किसी मुकुट के जैसा लगता है, और ये जो उनके सर पर होता है ये दरअसल इसलिए होता है ताकि इनके सर पर कोई चोट ना लगे, और इस पक्षी को ये काफ़ी प्रोटेक्शन देता है ताकि इनका सर जो है वो बचा रहे और किसी भी तरह की कोई चोट इनको ना लगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम पे लोग इन्हें पाला करते थे, बट ये बहुत खतरनाक होते हैं और ये पक्षी कबूतर या मुर्गियों की तरह छोटा या पालतू नहीं बल्कि आकार में बड़ा और बेहद खतरनाक होता है, और ये अपने अंडों के आसपास भी किसी को आने नहीं देता है, और अगर कोई गलती से पहुंच गया तो उसको चोट लगना तय है। जी हाँ, तो ये हर मायने में खतरनाक है। चलिए इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और प्रोग्राम है द एनिमल वर्ल्ड। और आज हम बात कर रहे हैं कैसोवेरी बर्ड के बारे में, जो बर्ड ज़रूर है लेकिन ये ख़तरनाक बर्ड है और इसका आकार भी बाकी बर्ड से काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये अपने अंडों की रक्षा के लिए घोंसलों को भी छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, और जब इनके बच्चे अंडों से बाहर जब तक नहीं आ जाते तब तक ये ज़्यादा खाना भी नहीं खाते हैं। जी हाँ, ये कम खाने में गुजारा करते हैं। तो ये अपने अंडों की रक्षा के लिए कहीं भी नहीं जाते हैं अपने घोंसले को छोड़ करके, और फिर चाहे कोई भी आ जाए उनसे ये लड़ने को पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। तो इस तरह की खूबियाँ इस बर्ड में, जिसका नाम है कैसोवेरी, इसके अंदर पाया जाता है। क्या आप कोई फैक्ट जानते हैं इससे जुड़ा, कुछ ऐसा जो आपने पढ़ा हो, तो हमसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सिर्फ कैसोवेरी के बारे में ही नहीं, आपने कोई भी एनिमल के बारे में कुछ भी ऐसा पढ़ा हो और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। तो इस नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए इंजॉय करते हैं अगला गाना रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रिश 107.8 FM पर। मैं हूं प्रांका आपके साथ और अब मैं सुनाने वाली हूं आपको अगला गाना और लेने वाली हूं आप लोगों से इजाजत, क्योंकि मेरे चलने का वक्त हो गया है। तो आज का सफर यहीं तक। प्रोग्राम कैसा लगा हमें आप जरूर बताइएगा, और बताने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8010781078। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम अजब दुनिया की गजब कहानी, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ में। और इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई बहुत सारे गाने और बहुत सारी बातें, यानी कि बहुत सारे फैक्ट्स लेकर के मैं आप लोगों के पास में आ चुकी हूँ। और ये प्रोग्राम होता है 1 घंटे का, तो चलिए जल्दी से इस सफर को शुरू करते हैं एक गाने के साथ में। और इसी के साथ आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं भाई, मुझे बताइए। और मैसेज कर सकते हैं, या आप कोई फैक्ट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो 8010781078 पर मैसेज करके अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए एक गाना एंजॉय करते हैं। उसी के साथ ही आज के प्रोग्राम में मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ, जैसे कि एक ऐसा बीच जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब ये खतरनाक क्यों है, इसके बारे में आपको मैं आज के प्रोग्राम में बताऊंगी। और 300 साल से एक पुरानी चट्टान जो कि लोगों के बीच में एक रहस्य बना हुआ है उसका, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ ही बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में, तो चलिए जल्दी से गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अजब दुनिया की गजब कहानी, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। हर प्रोग्राम है अजब दुनिया की गजब कहानी। अच्छा, बीच का नाम लेते ही दिमाग में बहुत सारी मस्ती, खूब सारा एंजॉयमेंट और सबके बीच में खूब मजा मस्ती करना अपने ही दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, है ना, यही सब कुछ याद आता है। और हो सकता है आप में से कई लोग प्लान भी कर रहे हों बीच पर जाने का, क्योंकि यही तो वक्त होता है कि बस जहां थोड़ा सा मौका मिला निकल गए घूमने के लिए। और बीच जैसी जो जगहें हैं, जैसे गोवा वगैरह की बात करें, तो मतलब यहाँ पर तो लोगों का ड्रीम होता है कि मतलब यहाँ पर जाना ही है, क्योंकि समय ही नहीं मिलता कि आराम से हम 5-6 दिन की छुट्टियां लेकर के जाएं, तो वाकई में सपने जैसा हो जाता है। तो बीच का नाम लेते ही भाई वहां का एक खुशनुमा माहौल, खूबसूरत नजारे, हरियाली, यही सब याद आता है। लेकिन क्या होगा जब आपको कंकालों से भरे बीच पर छोड़ दिया जाए? क्या कभी आपने ऐसा बीच इमेजिन किया है? नहीं किया होगा डेफिनेटली। लेकिन मैं आज आपको ऐसे बीच के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, आप इस बात को सुनकर जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ऐसा सच है। ये बीच हरियाली के लिए नहीं बल्कि चारों ओर बिखरे कंकालों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, और इस बीच का नाम है कंकाल तट, जो साउथ अफ्रीकी देश के नामीबिया में स्थित है। और ये करीब 40 किलोमीटर चौड़ा और 50 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है। इस बीच को दुनिया का सबसे खतरनाक बीच कहा जाता है। और इस बीच के मायावी रेगिस्तानी शेरों और तबाह हो चुके जहाजों के मलबे की वजह से इसकी तुलना पृथ्वी के अंत से की गई है। यहाँ तक कि ये बीच इसलिए काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस बीच पर कई तरह के लकड़बग्घे, चीते, तेंदुए, शेर रेत में छिपकर जो पर्यटक होते हैं उसका शिकार करते हैं। इस बड़े से बीच में सिर्फ जो ट्रेन टूरिस्ट होते हैं ना, वही वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां अकेले जाना मौत को दावत देने के बराबर है। तो इसलिए ये बीच जो आप लोग इमेजिन करते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत खतरनाक बीच है। क्या आप इस बीच में जाना चाहेंगे? मुझे जरूर बताइएगा इस खतरनाक बीच के बारे में कि आप क्या सोचते हैं। और बहुत सारी बातें से जुड़ी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। चलिए अभी एंजॉय करते हैं गाना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। हर प्रोग्राम है अजब दुनिया की गजब कहानी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अजब दुनिया की गजब कहानी और मैं हूं प्रियंका आपके साथ में। और मैं आपको बता रही हूं स्केलेटन बीच के बारे में। जी हाँ, ये जो स्केलेटन बीच है, ये बीच ना सिर्फ एक समुद्र तट है बल्कि ये एक नेशनल पार्क भी है जो दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में बचा हुआ है। आप साउथ वाले हिस्से में काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके दक्षिण में नेशनल वेस्ट कोस्ट पर्यटक रिक्रिएशन क्षेत्र है जहां पर आपको काफी ज्यादा संख्या में मछलियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए ये मछुआरों के लिए भी एक काफी ज्यादा कहें कि आकर्षक केंद्र है। वहीं अगर उत्तरी हिस्से की बात करें तो यहां आप आसानी से एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हिस्सा बहुत खतरनाक है। यहां जाने के लिए आपको अपने साथ किसी क्वालिफाइड टूर ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। बिना टूर ऑपरेटर के यहां जाना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसी के साथ ही इस बीच को दुनिया के सबसे बड़े जहाजों के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहां पर करीब 500 जहाजों के मलबे पड़े हैं जिसके ढेर सारे जो अवशेष हैं आपको समुद्र तट पर बिखरे मिलेंगे। जहाजों के मलबे बिखरे होने की वजह से ये काफी कोहरा और अशांत बीच है। इसके अलावा यहाँ पर कंकाल और हड्डियां भी आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी। ऐसे में यहाँ पर यात्रा करना आपके लिए किसी डरावनी फिल्म देखने से कम नहीं होगा। तो अगर आप कभी यहाँ मन बनाए जाने का तो ये सोच समझ के जाइएगा कि ये कितना सही है और ये जो आपका डिसीजन है उसका क्या होने वाला है। तो ये सोच करके ही आप वहां के लिए प्लान करें। और इसी के साथ ही भाई, ये तो मैंने आपको बताया स्केलेटन बीच के बारे में, लेकिन एक जगह और आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसे जाने के लिए आइए हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अजब दुनिया की गजब कहानी और मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है अजब दुनिया की गजब कहानी। और आज के प्रोग्राम में भाई ऐसी जगहों के बारे में आपको मैं बता रही हूँ कि बहुत ही अजीबोगरीब है, जैसे कि मैंने आपको अभी स्केलेटन बीच के बारे में बताया, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चट्टान के बारे में जो कि कई सौ सालों से है और लोगों के बीच आज भी ये एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता होता है। इन अजीबोगरीब चीजों में एक ऐसी चट्टान है जो कुछ सालों से नहीं बल्कि 300 साल पुरानी है जी हाँ। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसे एक रहस्यमय चट्टान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि

जिसके ऊपर अजीब अजीब सी आकृतियां बनी हुई है। इस चट्टान को डाइटन रॉक के नाम से जाना जाता है। करीब 300 साल पुरानी यह चट्टान कई लोगों को हैरानी में डालती है। जी हाँ, चट्टान पर कई अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई है, जिसे आप भी देखेंगे तो आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा। और ये कैसे हुआ, किसने बनाया, ये आज तक कोई नहीं जानता है। इसके बारे में खोजबीन आज भी चल रही है, लेकिन रिजल्ट अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है। तो इस चट्टान से जुड़ी अजीबोगरीब बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए एक और गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अजब दुनिया की गजब कहानी, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

इस गाने को आपने सुना रेडियो माने कृष्णा 107.8 FM पर। आप हैं प्रियंका के साथ और प्रोग्राम है अजब दुनिया की गजब कहानी। और मैं आपको एक ऐसी चट्टान के बारे में बता रही हूँ जो कि कई साल पुरानी नहीं है बल्कि 300 साल पुरानी है। जी हाँ, और इसकी अजीबोगरीब खासियत ये है कि इस चट्टान पर बड़ी अजीबोगरीब सी आकृतियां बनी हुई है और इस चट्टान पर बनी आकृतियां पेट्रोग्लिफ हैं। और इस आकृतियों को बनाने के लिए सीधी रेखाओं और ज्योमेट्रिकल आकृतियों का प्रयोग होता है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की आकृति इस चट्टान पर किसने बनाई होगी। वही इस चट्टान पर बनी आकृति का मतलब क्या है, इस बारे में आज भी तलाश चल रही है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। मतलब किसी को पता ही नहीं चल पाया है कि इसका क्या मतलब है। यहाँ तक कि डाइटन रॉक अमेरिका के बर्कले टाउन में स्थित एक म्यूजियम है, यहाँ इस चट्टान को सुरक्षित तरीके से रखा गया है। डाइटन रॉक को अमेरिका की टॉन्टन नदी के तल से सन 1963 में निकालकर म्यूजियम में स्थापित किया गया था। और इस चट्टान के बारे में और बहुत कुछ आपको मैं बताऊंगी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। चलिए सुनते हैं अगला गाना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं प्रांग आपके साथ और प्रोग्राम है अजब दुनिया की गजब कहानी।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं प्रियंका, आपके साथ हर प्रोग्राम है अजब दुनिया की गजब कहानी। और मैं आपको एक ऐसी चट्टान के बारे में बता रही हूं जिसके ऊपर बहुत ही अलग अलग सी अजीबोगरीब सी आकृतियां हैं, जो कि किसने बनाई कोई नहीं जानता, और उन आकृतियों का मतलब क्या है किसी को नहीं मालूम, क्या लिखा है और वो क्या मैसेज है ये भी कोई नहीं जानता। हालांकि इसके पीछे काफी खोज चल रही है, लेकिन अभी तक कोई जो सोल्यूशन है वो नहीं मिल पाया है। इस चट्टान का नाम डाइटन शहर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये चट्टान उसी शहर में पाई गई है। विद्वानों का कहना है कि चट्टान की सतह पर बनी आकृतियां 17वीं शताब्दी से बनी है, लेकिन इस पर बनी आकृति का क्या मतलब है इसके बारे में अभी तक लोग नहीं जानते हैं। डाइटन चट्टान ग्रे ब्राउन के बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो लगभग 5 फीट ऊंचा और 9.5 फीट चौड़ा है। इस चट्टान के किनारों में पेट्रोग्लिफ आकृतियां बनी हुई है। इस चट्टान का वजन लगभग 40 टन बताया जा रहा है, और इस चट्टान पर बनी जो आकृतियां हैं दुनिया भर के लोगों के सामने एक आज भी रहस्य है, क्योंकि इस पर बनी हुई पेट्रोग्लिफ आकृतियों का क्या अर्थ है और इसे क्यों और किसने बनाया इसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता है। कई एक्सपर्ट ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि पेट्रोग्लिफ आकृति की उत्पत्ति की कई थ्योरी सामने आई है। 19वीं सदी में डेनिश इतिहासकार कार्ल क्रिश्चियन रफन का कहना है कि इस आकृतियों को नक्काशी वाइकिंग्स द्वारा बनाई गई थी। वहीं अलग अलग एक्सपर्ट इस पर अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन इनका मतलब और सोल्यूशन कोई नहीं जानता है। तो भाई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में जो हमारे हाथ तो लग गई है, लेकिन उसका क्या मतलब है, ये क्या है, किस वजह से है, आज तक हम नहीं जानते। तो ऐसी ही अजीबोगरीब हैरत अंगेज चीजें जो हैं आप लोगों के लिए मैं इस प्रोग्राम में लेकर के आ रही हूँ। फिलहाल टाइम अब हमारे पास कम है, तो आइए गाना हम एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, उसे बताने के लिए मैसेज कीजिए, नंबर है 8010781078।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रियंका और अब मैं सुनाने वाली हूं आपको अगला गाना और उसी के साथ लेने वाली हूं इजाजत, क्योंकि मेरे चलने का हो गया वक्त तो आज के सफर कहीं तक। प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, बताने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 8010781078। चलिए आज का सफर यहीं तक, क्योंकि समय हो गया है, अब मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और बनी रहिए रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। देखिए दोस्तों, कोई भी कलाकार हो, हर कलाकार की जिंदगी में संघर्ष होता है और उस संघर्ष के बाद उसको वो कामयाबी मिलती है जिसका उसको इंतजार होता है, जिसका सपना उसकी आंखें देखती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे कलाकार के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि जिसने गरीबी और गुमनामी में बिता दिया अपना पूरा करियर, लेकिन फिर एक फिल्म ने रातों रात बना दिया स्टार, आखिरी सांसों के बीच मिला फिल्म फेयर अवार्ड। अब ये कौन है कि जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, बताऊंगा उनका नाम भी बताऊंगा, उनकी जिंदगी से जुड़े सारे किस्सों को आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं 1989 की। 1989 का वो साल और एक दिग्गज शायर और सॉन्ग राइटर बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी। फिल्म रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई। फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। फिल्म साल 1989 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इस फिल्म के पूरे 10 गानों ने धूम मचा दी थी। मेरे रंग में रंगने वाली, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, आजा शाम होने आई कबूतर जा जा जा, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, यानी कि ये सभी गाने मुंबई से लेकर गांव अंचलों तक गूंजने लगे थे। लेकिन इन गानों में अपनी कलम से जादू फूंकने वाला फकीर गीतकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसका नाम है असद भोपाली। असद भोपाली की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बात आज मैं आपसे करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है असद भोपाली के बारे में, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने लिखे, लेकिन उनका जो जीवन था बहुत ज्यादा संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जिनको सुनने के बाद हम ताज्जुब करते हैं, क्या वाकई में ये गीत असद भोपाली ने लिखे थे? अभी जिस फिल्म के बारे में आपसे बात कर रहा था, फिल्म मैंने प्यार किया, जिसमें सलमान खान थे, भाग्यश्री थी, और इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। इसी फिल्म का एक गाना था कबूतर जा जा जा, इस गाने को भी असद भोपाली ने ही लिखा था। लेकिन दोस्तों, इस तरह के गीत लिखने वाले के जिसके सभी लोग दीवाने थे, लेकिन अपनी कलम से इतना जादू फूंकने वाला फकीर गीतकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था गरीबी और गुमनामी में 40 साल बिताने के बाद जिंदगी को अलविदा कहने की आस में, ये कलाकार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन अफसोस, गुर्बत में 40 साल काटने के बाद ये कलम का सिपाही अवार्ड लेने स्टेज पर नहीं जा सका। तो आज इसी गीतकार की जिंदगी की पूरी कहानी आपके साथ में साझा करूंगा। इन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी की भविष्यवाणी एक गाने में कर दी थी। असद भोपाली की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है दोस्तों। पूरी जिंदगी झोंकने के बाद अंतिम समय में उन्हें उसका फल मिला। बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

तो मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। दोस्तों, इन गानों में दिल की कसक झोंकने वाले असद भोपाली हिंदी सिनेमा के ऐसे फनकार रहे जिन्हें जीते जी कभी भी मेहनताना नहीं मिला। 10 जुलाई 1921 को भोपाल में मुंशी अहमद खान के घर असद की किलकारी गूंजी थी और पुराने भोपाल की तहजीब में पले बड़े असद भोपाली बचपन से ही जहीन दिमाग के इंसान रहे हैं, काफी समझदार थे। स्कूल के दिनों में भाषाओं की जो तालीम है वो खूब मन से ली और पर्शियन, अरबिक, उर्दू और अंग्रेजी पर मास्टरी हासिल कर ली। लेकिन बचपन के बाद आती है जवानी। जवानी के दिनों की भी बात होगी, असद भोपाली की जिंदगी की बात होगी, असद भोपाली के लिखे गीतों का जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है आज असद भोपाली के बारे में, जिन्होंने हमारे भारतीय सिनेमा में एक से खूबसूरत गीत दिए हैं और उन गीतों को आज भी याद कर लो तो वो गीत नए नए से लगते हैं। जवानी के दिनों की कुछ बातें आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। अपनी जवानी के दिनों तक असद मिर्ज़ा गालिब के फैन हो गए थे आज के हमारे शायर यानी कि असद भोपाली। खूब शेरो शायरी और साहित्य में डूबे रहने वाले असद भोपाली ने खुद भी शायरी का पेशा अपनाया। असद भोपाली 21 साल की उम्र से ही मुशायरों में शिरकत करने लगे थे और बहुत सारे मुशायरों में लोग उनको खुद बुलाया करते थे और अपने शेरो सुखन से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। जब असद भोपाली अपनी शायरियां पढ़ते थे तो लोगों की तालियों की जो गड़गड़ाहट थी ना, उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचाती थी। इन्हीं तालियों के बीच असद की जवानी बीतने लगी और फिल्मी दुनिया में काम करने का ख्वाब भी पनपने लगा। असद जब 28 साल के हुए तो किस्मत ने उन्हें पुकार लगाई। तारीख थी 5 मई और साल था 1949 का। भोपाल में कोई बड़ा मुशायरा हो रहा था और इसमें 28 साल के असद भी शिरकत कर रहे थे। अब जब इस मुशायरे में असद भोपाली ने अपनी शेरो शायरी को लोगों तक पहुंचाया तो उसका असर लोगों पर क्या हुआ, जरूर बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी असद भोपाली के बारे में कि भोपाल में एक कोई बड़ा मुशायरा होने वाला था। वहां पर 28 साल के असद भोपाली भी पहुंचे थे। असद भी स्टेज पर आए और अपनी शायरी सुनाई। ऑडियंस में बैठे फजली ब्रदर्स और निर्देशक हसनैन को उनकी शायरी बेहद पसंद आई और उन्होंने असद भोपाली को अपनी फिल्म यानी कि दुनिया के लिए 500 रुपए देकर साइन भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसी फिल्म के गाने पहले आरजू लखनवी लिख रहे थे, लेकिन आरजू बंटवारी के बाद पाकिस्तान चले गए थे और असद को मुंबई की माया नगरी का बुलावा आ गया। इसी सिलसिले में असद मुंबई पहुंच गए और दुनिया फिल्म के गानों से अपने करियर की शुरुआत कर दी। इस फिल्म के दो गानों के जरिए, रोना है तो चुपके चुपके रो और दूसरा गाना था अरमान लूटे दिल टूट गया, असद ने अपने हुनर का प्रमाण दे दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी का हुनर उसके खुद के छुपाने से नहीं छुप सकता। ऐसा ही असद भोपाली के साथ हुआ। साल थी 1951। 1951 में बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म यानी अफसाना के लिए किसी गाने लिखने वाले गीतकार को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात असद भोपाली से हो गई। उन्होंने असद भोपाली को इस फिल्म के गानों की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा कि आप ही मेरी फिल्म अफसाना के गाने लिखेंगे, और उनके इस ऑफर को असद भोपाली ने कबूल भी कर लिया। आगे क्या हुआ आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी असद भोपाली के बारे में कि एक बार उनकी मुलाकात बीआर चोपड़ा से हो गई, जो अपनी फिल्म बना रहे थे अफसाना, और इस फिल्म के गाने लिखने की जिम्मेदारी असद भोपाली को दे दी और असद भोपाली ने इस ऑफर को मंजूर भी कर लिया। दोस्तों, असद ने अपने हुनर के पिटारे से 6 गीत निकाले और फिल्म को हिट करा दिया। इस फिल्म के सभी गानों ने धूम मचा दी। यहीं से असद भोपाली की कलम की कला चारों तरफ गूंजने लगी। हालांकि असद के करियर का ग्राफ तो बढ़ने लगा, लेकिन तत्कालीन दिग्गज गीतकारों जैसे मजरू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर, राजेंद्र कृष्ण, कुमार बाराबंकी और प्रेम धवन की छाओं में असद भोपाली का जो हुनर था ना, वो दबा रह गया। करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में 400 से ज्यादा गानों को अपनी कलम से निकाल दिया। असद भोपाली करीब 40 साल तक फिल्मों में गाने लिखते रहे, लेकिन कभी भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। मुंबई के छोटे से घरों में असद भोपाली का जीवन बीत गया और फिल्म में उनके लिखे नगमे लोगों को दूर दराज तक ठंडक पहुंचाते रहे। असद भोपाली ने खुद ये माना कि जिंदगी ने उनके साथ न्याय किया, लेकिन ऊपर वाला किसी भी मेहनत का फल निराशा में नहीं देता। असद भोपाली साल 1989 आते आते काफी बीमार रहने लगे थे और लकवे से ग्रसित हो गए थे, लेकिन इससे पहले असद भोपाली ने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया के लिए 10 गाने लिखे थे और उन गानों को पूरे भारत में लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैंने प्यार किया के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गीतकार असद भोपाली के बारे में। असद भोपाली ने बेहतरीन बेहतरीन गाने लिखे, बीआर चोपड़ा जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया और इसके अलावा और भी लोगों के साथ काम किया असद भोपाली ने, और उनके गीत फिल्मों को हिट करा दिया करते थे। उदाहरण के तौर पर फिल्म मैंने प्यार किया को ले लीजिए। ये फिल्म असद की जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। जब इन गानों को तैयार किया गया और सलमान खान के करियर की दूसरी फिल्म में डाला गया तो कमाल हो गया। ये फिल्म तो सुपर हिट हो गई, लेकिन ये फिल्म यानी मैंने प्यार किया सलमान खान को रातों रात स्टार बना गई। फिल्म के सभी गाने लोगों के दिलों में बस गए, लेकिन इतने सालों के बाद भी इन गानों को उतना ही प्यार मिलता है और असद भोपाली को भी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि असद भोपाली को

वह हो चुका था और वो अवार्ड लेने नहीं जा पाए थे। वाकई में दोस्तों, असद को कभी भी वो मुकाम नहीं मिला, वो शोहरत और सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, और ये बात असद को खाए जाती थी। इसीलिए असद ने साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म एक नारी दो रूप में अपने दिल की कसक एक गाने में निकाल दी। गाने के बोल थे, दिल

इसी गाने में असद भोपाली कहते हैं कि साथी मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। साल 1990 में संगीत का ये सितारा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन असद भोपाली की ये गीत इतने सालों के बाद भी उनकी यहाँ मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं और कहते हैं कि फनकार चले जाते हैं लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं बहुत सारी यादों का सिलसिला। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा,
1: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
2: ये क्या किया? मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
3: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
4: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर अन्नदाता।
5: देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जब आपसे मैं मिलता हूं तो किसी न किसी फसल के बारे में बात करता हूं। आज मैं एक पेड़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। उसके इस्तेमाल से त्वचा को स्वस्थ रखा जा सकता है और मधुमेह के लक्षणों को भी कम किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जिस पेड़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम है ताम्र पल्लव। लेकिन आप कहेंगे कि ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इसका जो बड़ा मशहूर नाम है वो नाम भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस पेड़ की कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसका रंग शुरुआत में तांबे की तरह होता है और इस पेड़ की पत्तियों की लंबाई 8 से 9 इंच होती है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इस पेड़ को पूरे भारत में सबसे प्राचीन और पवित्र माना जाता है। इसके अलावा इस पेड़ में बहुत से आयुर्वेदिक गुण भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए भी किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पेड़ है जिसका नाम है ताम्र पल्लव। लेकिन जो नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है उस नाम को सुनते ही आप कहेंगे कि हाँ, इस पेड़ को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, रोज़ाना आए दिन हम अपने घर के आसपास जहाँ भी जाते हैं ये आराम से नज़र आ जाता है। उस पेड़ के बारे में दोस्तों आपको पूरी जानकारियाँ दूंगा और उस पेड़ से क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारे फ़ायदे भी आपको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का राम राम, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।
1: देखिए दोस्तों, आज जिस पेड़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ उसका एक नाम तो मैंने आपको बताया था, ताम्र पल्लव के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन ताम्र पल्लव के नाम से शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, और आपको बताया था कि ये पेड़ हमारे भारत का सबसे पुराना पेड़ माना जाता है। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण भी पाए जाते हैं, और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आपको ज़्यादा परेशान ना करते हुए बता देता हूं कि इस पेड़ का नाम है अशोक। और दोस्तों, अशोक के पेड़ को आप आए दिन कहीं ना कहीं देख ही लेते होंगे, और हो सकता है आपके घर में भी हो। अशोक का पेड़ बहुत फायदेमंद होता है। अशोक का पेड़ मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक है असली अशोक, जो कि आम के पेड़ की तरह फैलता है, और दूसरा है लंबा अशोक, जो कि सामान्य रूप से सबके घरों में देखने को मिल जाता है। लंबे बढ़ने वाले अशोक के पेड़ को देवदार की प्रजाति का वृक्ष माना जाता है, और अशोक के पेड़ का वैज्ञानिक नाम सरका असोच है। देखिए दोस्तों, इस पेड़ से जैसा मैंने आपको बताया था बहुत सारे फायदे होते हैं। अशोक के पेड़ में बहुत से आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाता है। और अशोक के पेड़ की जो छाल होती है, वो छाल, पत्तियां और जड़ें, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, और अशोक के पेड़ को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने में मददगार माना जाता है। और दोस्तों, अशोक के पेड़ को इको फ्रेंडली माना जाता है। ये 24 में से 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। और भी बहुत सारी बातें हैं अशोक के पेड़ के बारे में, आपसे करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर फहीम के साथ अन्नदाता।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।
1: देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि अशोक के पेड़ से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पेड़ को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने में मददगार माना जाता है और 24 घंटे में से 22 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो त्वचा को स्वस्थ रखने में भी फायदेमंद होता है। अशोक के पेड़ में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के साथ साथ त्वचा को भी स्वस्थ रखते हैं। अशोक की छाल की अगर हम बात करें तो अशोक की छाल को पीसकर चेहरे पर लेप करने से त्वचा में निखार आता है और साथ ही चेहरे पर होने वाले कील, मुहासे और जो दाग धब्बे होते हैं ना, वो भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, अशोक की छाल में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक रोग बहुत आम हो चुका है, यानी मधुमेह, शुगर। शुगर के लक्षणों को कम करता है ये पेड़ जिसका नाम है अशोक। दोस्तों, अशोक के पेड़ में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर खून में होने वाले शर्करा यानी शुगर की मात्रा को कम करते हैं। इससे शरीर के अंदर शुगर की बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है और शुगर की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अशोक के पत्तों का भी सेवन किया जा सकता है। इससे शुगर के रोग में राहत मिलती है और साथ ही शुगर के रोग से शरीर में आने वाली जो कमजोरी होती है या चिड़चिड़ापन भी होता है, वो भी कम किया जा सकता है अशोक के पेड़ की छाल को इस्तेमाल करने से। इसके अलावा एक बीमारी होती है जो कहलाती है बवासीर। इस रोग के लिए भी फायदेमंद है अशोक का पेड़। कैसे, बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ अन्नदाता।

0: दो।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।
2: देखिए दोस्तों, अशोक के पेड़ की बात हो रही है और उस पेड़ से क्या क्या फायदे होते हैं वो सारी बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब देखिए, एक रोग होता है जो बवासीर कहलाता है और अक्सर लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो एक ये देसी उपाय है और ये अशोक का पेड़ इसके लिए बहुत कारगर साबित होता है। जिन व्यक्तियों को बवासीर जैसी बीमारियां हैं उनके लिए अशोक का पेड़ लाभकारी हो सकता है। अशोक के पेड़ की जो छाल होती है उसको धूप में अच्छे से सुखा लेना चाहिए और उसके बाद छाल को अच्छे से पीस लेना चाहिए। रोजाना अशोक के पेड़ की छाल से बने चूर्ण का सेवन करने से बवासीर की जो बीमारी है उसमें राहत मिलती है और इसके साथ साथ अशोक के पेड़ के फूलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि फूलों का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है, तो भाई देखिए, अगर आप अशोक के फूलों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया को एकदम अच्छा बना देता है, जिससे आपका स्वास्थ्य और भी बेहतर हो जाता है। एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, हड्डियों से संबंधित है। टूटी हड्डियों को भी जोड़ने में मददगार होता है अशोक का पेड़। आप हैरान हो रहे होंगे कि इतने सारे गुण हैं अशोक के पेड़ में, और ये सच है दोस्तों। अशोक के पेड़ का उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। अशोक के पेड़ की छाल में टैनिन और एनाल्जेसिक नाम के गुण पाए जाते हैं जो टूटी हुई हड्डियों और जो मांस फट जाता है और गुम चोटों में भी काफी लाभदायक होती है, और इसीलिए अशोक के पेड़ का इस्तेमाल बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाता है। देखिए दोस्तों, अशोक के पेड़ की जो छाल है उस छाल का जो लेप है वो ऑर्थोपेडिक के जरिए भी रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन सांस से संबंधित बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर लोगों में होती हैं, और सांस की बीमारियों को लेकर के बहुत सारे लोग अपने अपनी तरह से उसका इलाज कराते हैं, आराम मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन अशोक का पेड़ कैसे लाभकारी हो सकता है सांस जैसी बीमारी में, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता। दोस्तों, बात हो रही है अशोक के पेड़ के बारे में और पीछे बात चल रही थी कि अशोक के पेड़ की जो छाल होती है वो बहुत फायदेमंद होती है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है और इसकी छाल से आपके चेहरे पे जो मुहासे होते हैं, जो दाग होते हैं, यानी कि त्वचा से संबंधित जो बीमारी होती है उसमें ये कारगर साबित होता है। इसके अलावा सांस संबंधी बीमारियों की अगर हम बात करें तो इस पेड़ यानी अशोक के पेड़ से इस तरह की बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अशोक के पौधे का सेवन सांस संबंधी बीमारियों में राहत पाने के लिए भी अच्छी तरह से किया जाता है। इसमें अशोक के पेड़ के जो बीज होते हैं ना, बीजों को पीसकर एक चूर्ण तैयार किया जाता है जिसका सेवन पान के पत्ते के साथ किया जाता है और इसका रोजाना सेवन करने से सांस से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनसे आपको राहत मिल जाती है और सांस लेने की जो आपकी क्रिया होती है उस सांस लेने की क्रिया को भी ये और बेहतर बना देता है। इसके अलावा दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं, अशोक के पेड़ को अगर आप घर में लगाते हैं तो ये आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, वातावरण के लिए, सभी के लिए शुभ होता है। अशोक का पेड़ घर में लगाना शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि अशोक का पेड़ घर में नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकता है। अशोक का पेड़ देखने में तो सुंदर लगता है, साथ ही ये घर में सुख और समृद्धि का भी प्रतीक है। जिन घर में वास्तु दोष होता है उन्हें घर में अशोक का पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है और आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने घर के सामने अशोक के पेड़ को लगाना पसंद करते हैं और ज्यादातर लोग अशोक के पेड़ को अपने घर के आसपास, घर के दाएं बाएं या पीछे कहीं भी लगाते हैं क्योंकि इस पेड़ से एक नहीं अनेक फायदे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई चीज आपको अगर फायदा करती है तो उससे नुकसान भी हो सकते हैं। अशोक के पेड़ से कुछ होने वाले नुकसान भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर अन्नदाता।

0: पर।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।
2: दोस्तों, अशोक के पेड़ की बात हो रही है, बहुत सारे फायदे आपको मैंने बता दिए हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई चीज़ आपको फायदा देती है तो उसका दूसरा पहलू नुकसान भी हो सकता है। अशोक के पेड़ की अगर हम बात करें तो अशोक के पेड़ से मिलने वाले बहुत से फायदे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यही दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान या दुष्प्रभाव भी हैं जो स्वास्थ्य को विशेष रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अशोक के पेड़ का इस्तेमाल कुछ दिशाओं में हानिकारक माना जाता है। इन परिस्थितियों में हो सकते हैं अशोक के पेड़ के सेवन करने से नुकसान। हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें अशोक का सेवन। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें अशोक के पेड़ से मिलने वाले किसी भी प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इस स्थिति में इनका सेवन करते हैं तो आपको बहुत से नुकसान या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सीने में दर्द हो सकता है, सांस आपकी फूल सकती है, नींद आने में आपको परेशानी हो सकती है और बहुत ज़्यादा थकावट भी आपको महसूस हो सकती है। सभी परेशानियां हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को अशोक का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी इसका सेवन मना किया गया है। देखिए दोस्तों, अशोक के पेड़ में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और वो अंदर शरीर में जाकर किसी प्रकार की परेशानी का भी कारण बन सकते हैं। गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करें तो ऐसी महिलाओं को अशोक के पेड़ से बनी किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ अगर कोई और व्यक्ति जो पहले से ही किसी बीमारी से संबंधित दवाइयां ले रहा है, उसे भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। शरीर में इन्फेक्शन या एलर्जी संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद इसका सेवन कर सकती हैं, अगर आपका डॉक्टर आपको राय देता है तब। देखिए, खास तौर से मैं महिलाओं से अभी बात करना चाहता हूं, मासिक धर्म के दौरान अशोक के पेड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि मासिक धर्म के वक्त बहुत ज़्यादा खून बहने पर अशोक के पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से आराम मिलता है, लेकिन ऐसा करने से मासिक धर्म और भी बिगड़ सकता है। इसीलिए इसका उपयोग किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। अगर अशोक की छाल का काढ़ा बनाकर या फिर रोज सुबह उसके पत्तों का सेवन मासिक धर्म के दौरान किया जाता है तो इससे मासिक धर्म में अनियमितता आ सकती है। साथ ही अशोक के पत्तों का इस्तेमाल धार्मिक और मांगलिक कार्यों में भी किया जाता है। अशोक के पेड़ को सबसे शुद्ध और पवित्र पेड़ माना जाता है। हिंदू धर्म में अशोक को शुभ माना जाता है और अशोक का पेड़ घर में गुरुवार और शुक्रवार को लगाना और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए अशोक के पेड़ को हमेशा इन्हीं दिनों में लगाना फायदेमंद माना जाता है। वक्त जाने का हो चला है, लेकिन जाते जाते आपसे बात करना चाहता हूँ अशोक के पेड़ की कुछ और खूबियों के बारे में। देखिए साथियों, अशोक के पेड़ का उपयोग पथरी के दर्द को दूर करने के लिए, पेट के कीड़ों को मारने के लिए और साथ ही बदन में होने वाले दर्द में भी सहायक होता है। अशोक के पेड़ में बहुत से ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो दिल संबंधित बीमारियों को भी कंट्रोल करते हैं। अशोक के पत्तों या फूलों का सेवन करने से शरीर में जो खून होता है उसका सर्कुलेशन और भी सुचारू रूप से चलने लगता है। साथ ही ये आपकी याददाश्त या दिमाग के लिए भी बेहतर माना जाता है। तो इतनी सारी बातें आपसे मैंने कर ली हैं अशोक के पेड़ के बारे में, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो चला है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा, अपना ख्याल रखना। और जाते जाते सभी दोस्तों को फहीम का राम राम सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करते हैं। कभी आपके लिए हम लेकर के आते हैं जेंडर इक्वालिटी पे बात लेकर के आते हैं, तो इस बार हम बात लेकर के आए हैं, जो टॉपिक इस बार का है वो है कल्चर और हमारा ट्रेडिशन। देखिए भारत देश की अगर बात करें तो अलग अलग यहाँ पर कल्चर है, ट्रेडिशन है, और अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोग जो है वो रहते हैं, और बहुत सारे देखिए कल्चर को अलग अलग लोग जो है फॉलो करते हैं। हर सीमा रेखा के बाद एक अलग अंदाज होता है, खान पान चेंज होता है, और खाने का रंग और रूप और जो टेक्सचर है, और कपड़ों का रंग रूप हो गया, घरों का रंग रूप हो गया, सब अलग अलग बदल जाता है। आज हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ खड़ी बोली तो बोली जाती है लेकिन माँ की रोटियाँ बड़ी बड़ी नरम नरम है और बड़ी स्वादिष्ट है। लेकिन इस जो प्रांत है, ये जो राज्य है, इसका रंग रूप की अगर बात की जाए तो बड़ा अनोखा है, रंगीला है। बहुत मेहनती लोग भी रहते हैं, किसान हैं, तो वहीं खिलाड़ी भी इसी मिट्टी से निकले हुए हैं। मैं आज बात कर रही हूँ हरियाणा की। जी हाँ, आज है हरियाणा दिवस और 1 नवंबर को ये दिवस जो है मनाया जाता है, ये दिन मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1966 ये वो दिन था जब हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई, पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना। आज हम इसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं, हरियाणा दिवस की बात कर रहे हैं आज, इसके इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में, खान पान, लोगों के बारे में, कहानियों के बारे में, ज़मीनों के बारे में बात करेंगे बहुत सारी। और इस प्रोग्राम में ना आज हमारे साथ एक और खास गेस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। आप इनकी आवाज़ को पहचानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत प्यार भी इन्हें करते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि हैं आरजे सागर, जो कि ना सिर्फ एक रेडियो जॉकी हैं, एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और साथ ही एक फिटनेस कोच भी हैं। तो सबसे पहले तो सागर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच साक्षी फॉर योर काइंड वर्ड्स, इट मींस अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर, एंड इट्स सच एन ऑनर टू सिट हेयर ऑन दिस सीट। जनरली हम शोज होस्ट करते हैं बट आज एक गेस्ट के तौर पर हम यहाँ बैठे हैं।
0: बिल्कुल। तो सागर, आप हरियाणा से हैं और मैं आज हरियाणा नहीं कहूँगी इसे, मैं हरियाणा ही कहूँगी, क्योंकि ये जो खड़ी बोली है ये ना सिर्फ देखिए हमें ये एहसास दिलाती है देसी होने का, बल्कि मेहनती और साथ ही साथ जो खिलाड़ी इस मिट्टी से जन्मे हैं उसका भी एहसास कराती है, महसूस कराती है। मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ और चाहती हूँ कि उसके जवाब आप दें। वैसे तो इस तरफ आप होते हैं हमेशा, माइक के शोर औरते होते हैं और हमेशा से आप सवाल पूछते हैं, लेकिन आज आपसे सवाल मैं पूछ रही हूँ, तो आपकी इजाजत हो तो हम मैं शुरू करना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा, एक बहुत छोटी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो हरियाणा नहीं होता है, वो होता हरियाणा ही है, अणा ही होता है वो
0: जी।
1: बट क्योंकि वो इतना खड़ी बोली है कि लोग उसको प्रोनाउंस कर नहीं पाते, तो इसलिए वो हरियाणा बोल देते हैं। जैसे पुणे बोलते हैं, पुणे नहीं होता है, पुणे होता है, वो वहां का एक वर्ड है। सो लाइक दिस इट्स हरियाणा। यस प्लीज।
0: बिल्कुल। तो सागर, मेरा पहला सवाल आपसे, आज हरियाणा दिवस है और इस दिन को, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसके मायने क्या है आपके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न पूछा आपने साक्षी। मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि आज का वो दिन था 1966 को, जब पंजाब से अलग होकर के एक नया राज्य जन्मा था, जो कि है मारा हरियाणा। ठीक है, अब ये मेरे लिए बहुत खास इसलिए है क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, वो कल्चरल चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर हैं, बचपन से हमने देखी हैं, तो मेरे लिए हरियाणा एक तरीके से आप कह सकते हैं इश्क है। ठीक है, हमारा पहनना, खाना, बोली जो है, अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो हमारे लिसनर समझ नहीं पाएंगे, बट दो तरह की हरियाणवी बोली जाती है। एक तो ब्रिज टच होती है जो पलवल फरीदाबाद बल्लभगढ़ में बोली जाती है, कहाँ जा रहे हो रे, कहाँ को है रे तू, अच्छो कहा नाम लाला तेरो। ठीक है, ये की होती है जो हरियाणा और फरीदाबाद पलवल एरिया में होती है। एक होती है रोहतक की तरफ, सोनीपत तरफ, अरे कितका है तू, के नाम है तेरा। ठीक है, वो ज्यादा खड़ी हो जाती है, लोगों को लगता है कि वो बहुत रूड है, बट वो रूड नहीं है, वो हमारा एक्सेंट है, वो लहजा वैसा है, वो बोलते बहुत भले ही कितनी पोलाइट में बात करें, चा पीवेगी। ठीक है, अब ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, आई एम ऑफरिंग यू अ टी, लेकिन आपको सुना ही ऐसा दे रहा है कि अरे भाई के मारेगा वारेगा क्या, क्योंकि वो है, वो एक्सेंट ही वैसा, डायलेक्ट ही वैसा है हमारा. तो नो डाउट हरियाणवी मेरे लिए तो भाई देखिए बहुत खूबसूरत एक चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के जो मेरे लास्ट डेज हों वो भी मैं हरियाणा में ही व्यतीत करूँ, बिल्कुल अपने ट्रेडिशन के बीच में.
0: बिल्कुल, तो ऐसा होता है ना कि जब हम अलग राज्य से आते हैं, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो बिहार से आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो केरला से आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गोवा से आ रहे हैं, और आके दिल्ली में या मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जॉब करते हैं, दिल्ली NCR में आते हैं जॉब करते हैं. अच्छा ये होता है कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जब लास्ट डेज होंगे जैसे कि आपने कहा, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर अंत के अगर वो कुछ खास दिन हो तो वो अपनी मिट्टी में ही गुजरने चाहिए. मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, और वो ये कि जब हरियाणा की बात आती है, वो शब्द जब भी आप सुनते हैं, चाहे हम मूवीज़ में देखते हैं या हम कहीं कहीं सुनते हैं, आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, जब आप ये शब्द सुनते हैं, जब आप अपने राज्य के बारे में सुनते हैं, सबसे पहला जो वर्ड है या दिल में सबसे पहले क्या आता है वो बताएं.
1: दूध दही, पहलवान, अखाड़े, कुश्ती, पुलिस, फौज, किसान, स्वांग, रागणी, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूवीज में खासतौर पर बॉलीवुड में जिस तरीके का हरियाणा दिखाया गया है, मुझे लगता है कि वो उसका शायद 1% भी नहीं है. अगर आप हरियाणा सही मायने में देखने जाते हैं तो हमारे यहाँ पर मेले होते हैं, जैसे देवउठनी ग्यास होती है एक हमारे यहाँ पर, उसके मेले लगते हैं. ठीक है, और ऐसे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं साक्षी, जब गांव में मेले लगते हैं, स्वांग होते हैं, होली होती है हमारे यहाँ पर. तो मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से फेमिलियर हैं, पेटीकोट होता है एक ओढ़ना होता है और एक कमीज होती है.
0: करेक्ट,
1: औरतें पहनती हैं वो कमीज के नीचे पेटीकोट होता है और ओढ़ना पहन के, और वो नाचती है, और जैसे वो घूमर घूमर गाने में दिखाया है ऐसा एक वो बनता है, वो फॉर्मेशन होता है. और मर्दों का जो होता है वो कुर्ते पजामे या कुर्ते धोती होते हैं, नगाड़े बजते हैं, और डांस होता है स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में. मतलब आप लोग जैसे अमूमन पंजाब में उसको अखाड़ा बोला जाता है, अभी तो कॉन्सर्ट का एक कल्चर आ गया है, पहले अलग शब्द हुआ करते थे, हमारी गैदरिंग की अलग चीजें हुआ करती थी. उस टाइम पर हरियाणा में रागनियां हुआ करती थी, सोशल इश्यूज को जो आवाज दिया करती थी. जैसे एक मुझे रागनी याद आ रही है, अरे पैसा धर्म नहीं होता, ईमान कहाँ से लाएगा, दवा मिलेगी पैसे से तू प्राण कहाँ से लाएगा. इस तरीके से बहुत ऐसी मतलब सोशल चीजें हुई हैं जिनको आवाज दी गई, और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 40-50-60 साल पुरानी बात है. हरियाणवी कल्चर का ओरिजिन ऐसे हुआ है, तो वो तमाम चीजें जो हैं आती हैं जहन में, वो मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि मैं मेरी मसल मेमोरी ही हरियाणा में मेरे जब से होश संभाला है वो उसी तरफ है, तो वो बहुत सारी चीजें मुझे याद आती हैं. जी
0: देखिए, जब आप सागर को जब आप सामने से देखेंगे, बाय फेस देखेंगे, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये इतना देसी आदमी है या इतना देसी है, क्योंकि पहनावा रंग रूप बहुत बदल जाता है जब हम शहर में आते हैं. हम यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपने पहनावे को चेंज करते हैं, लेकिन भाई दिल से मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल देसी है, और ये जो बोली है ये जरूर आपको लगे कि ये रूढ़ हो सकती है, लेकिन भाई कभी कभार ना बड़ी प्यारी भी लगती है. कई सारे ऐसे मैं जैसे आपने कहा कि 1% भी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जैसे कुछ भी दिखाया जाता है तो बड़ी खुशी होती है. अच्छा कोई भी अगर हरियाणवी लैंग्वेज में आके कुछ भी कहता है तो बड़ा प्यारा लगता है कि अच्छा हम मतलब अक्सर दिल से निकलता है कि ये बोली अगर सीख जाए तो मजा आ जाएगा. और मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए आप अपने बच्चों को, जो भी अभी मुझे सुन रहा है, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, तो आजकल के बच्चे हैं लैंग्वेजेस सीखते हैं, लेकिन कल्चरल जो अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, और अपनी जो घर की धरोहर, अपनी जो लैंग्वेज है, आप उन्हें ज़रूर सिखाइए. आजकल बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो गाँव की लैंग्वेज है ये नहीं सीखेंगे, गाँव के हम रीति रिवाज नहीं सीखेंगे, लेकिन ये दिल से कभी नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि दिल से तो देसी है, वही दिल से जो है वो आगे भी बढ़ता है. और लाइफ में अचीव करने के लिए ना आपको दिल से देसी होना जरूरी है, क्योंकि आपको हर एक एक्सपीरियंस उससे मिलता है. चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. आज मेरे साथ है आरजे सागर, तो बात कहीं यहीं पर होंगी, और आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: தங்கள்
1: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
2: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। ये खास प्रोग्राम लेकर के आ जाते हैं और इस बार का टॉपिक है कल्चर ट्रेडिशन। और आज एक बहुत ही खास दिन है, आज है हरियाणा दिवस। आज इस दिन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा के ही एक कलाकार। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजे सागर। आप आरजे सागर की आवाज को सुनते हैं हर रोज रेडियो मानव रचना पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी आरजे सागर एक फिटनेस कोच भी हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, और साथ ही एक बहुत ही अच्छे इंसान है, देसी कलाकार है। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि सागर, अब आपसे अगला सवाल मैं पूछती हूँ। आपने अभी रागनी की बात करी थी, आपने घूमर की बात करी, सांग की बात करी, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताइए कि ये सांग क्या है, क्योंकि अब मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं दिल्ली से आती हूँ, बट आई एम अ बंगाली, तो बंगाल का कल्चर मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इनके बारे में, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज के बारे में इतना नहीं पता है, रागनी क्या है या घूमर अच्छे से आप बताएं और सांग क्या है, क्योंकि आज भी लोगों के दिलों में, जो पुराने लोग हैं उनके दिलों में तो जगह ये बनाए हुए हैं, जो नए लोग हैं उनको समझाएं और उनको ये याद दिलाएं, उनके दिल में ये जगह बनाएं कि ये जो है ये भी आर्ट फॉर्म्स हैं और इसके लिए भी हमारे दिल में जगह होनी चाहिए और हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए क्योंकि ये हमारे राज्य से है।
3: जी जी जी, सांग का अगर आप सही मायने में देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन होता है स्वांग, पर क्योंकि हम हरियाणा से हैं तो हर चीज को हम ट्वीट करते हैं। स्वांग का अगर आप लिटरल एक मीनिंग जानना चाहते हैं तो वो होता है इमिटेशन। तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती आपको यही नजर आएगी, चाहे आप

0: आप बंगाल से हैं, आप पंजाब चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह पर हमने अपने अपने कल्चरल साइड को एम्फेसिस करते हुए, अपनी वैल्यूज को दिखाते हुए, कोर प्रिंसिपल्स को दिखाते हुए अपनी फॉर्मेशन करी थी इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स। तो स्वांग उसी का नाम है। आप कह सकते हैं मिमिक्री भी उसमें होती है, स्टोरी टेलिंग भी होती है, डांस भी होता है, थिएटर भी होता है, इट्स अ काइंड ऑफ एन इवेंट। बंगाल में भी होता होगा, भारत के हर राज्य में आपको नजर आएगा। तो हरियाणा में उस थिएटर को, उस मिमिक्री को, उस एक्सप्रेशन का, मैं बोलूंगा उस एक्सप्रेशन को स्वांग नाम दिया गया है। रागड़ी इज स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं एक तरह से कॉन्सर्ट हुआ करता जो बहुत लोकल लेवल पर हुआ करता था, लेकिन रागड़ी का जो पॉइंट था वो ये था कि गैदरिंग हो, बुजुर्ग बैठे और जो सोशल इश्यूज हैं उनको आवाज दी जाए गाने के फॉर्म में। क्योंकि अगर आपने कभी गौर किया हो तो अगर मैं नॉर्मली एक बात बोलूंगा वो आपके जहन में शायद ना रुके, लेकिन अगर मैं वही बात गाना गा के बोलूंगा और गाना आपको अच्छा लगेगा तो वो बात आपके जहन में रुक जाएगी, चाहे वो धुन के माध्यम से रुके या उन शब्दों के माध्यम से रुके। जैसे एक और रागनी मुझे यहाँ पर याद आ रही है, बदल गया जमाना लोगों यार ना रहा इन, माँ के जाए भाइयां मैं भी प्यार ना रहा। सो बेसिकली द पॉइंट वाज कि आपस में भाई अगर लड़ रहे हैं, माँ के जाए भाइयां में मतलब एक माँ से जो जन्मे हैं भाई उनमें अब प्यार नहीं रहा, वो आपस में फूट पड़ चुकी है, लालच बीच में आ चुका है। फिर आगे उसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, खोलते हैं। रागड़ी का ये फॉर्म हुआ करता था, स्वांग ये हुआ करता था, इट्स लाइक गैदरिंग। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा साक्षी, वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना। हम एक साथ नहीं जन्मे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि ठप ठप हम ऊपर से गिरे हैं, हम इवॉल्व होकर के यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप इस पूरे फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं कि हरियाणा में स्वांग क्यों है, पंजाब में अखाड़ा क्यों है, या बंगाल में थिएटर क्यों है, या महाराष्ट्र में भी ऐसी चीजें होंगी वो क्यों है, तो आपको इवोल्यूशन पूरा पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम कई हजारों सालों तक ट्राइबल कल्चर से निकल के आए हैं, हम ट्राइब्स में रहा करते थे, तो हम सोशल क्रिएटर्स हैं, हमें एक साथ रहना है। और इसलिए शायद आज
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधु रचना 107.8 एफएम फील गुड फील लाइफ।
0: हम लोगों ने दोस्तों से मिलना, परिवार से मिलना, सोशलाइज करना बंद कर दिया है, जो कई हजारों सालों से हमारे खून में, हमारे जेनेटिक्स में रहा है। अब बीते कुछ 10-15 सालों से ये चेंज हो गया है, तो उस टाइम पर भी इन चीजों को आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन करते हुए कि आपकी मानसिक हालत अच्छी रहे, अच्छी बातें आप सुने, अच्छी संगत में आप रहे और चार लोग अपनी बातें शेयर कर सके ताकि कुछ नया बन सके, प्लस कोई अपने अंदर में घुट ना रहा हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम आर्ट फॉर्म्स बनाई गई थी, गाना, थिएटर, मिमिक्री, या ठहाके लगाते थे, हंसी मजाक किया करते थे, वो सब चीजें। तो उसी का रिजल्ट है स्वांग, रागड़ी, या और जो भी दंगल हुआ करते हैं हरियाणा में, कबड्डी भी हुआ करती है, कुश्ती भी हुआ करती है, और बहुत सारी चीजें हैं। पॉइंट यही है कि आपका एंटरटेनमेंट होता रहे और आप ट्राइब के साथ जुड़े रहे वहां पर।
2: तो देखिए बदलाव तो काफी सारे हैं, और अब मैं यहाँ पर, अब हरियाणा की हम बात करें, इतना सब कुछ है। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए भी हरियाणा जो है वो जाना जाता है, चाहे हम नीरज चोपड़ा की बात करें या फिर हम साक्षी मलिक की बात करें, कई सारे जो भाई शूटर हम अभी बात करें, मनु भाकड़ की बात करें,
0: तो गीता बबीता दंगल बनी है,
2: दंगल बनी,
0: बजरंग पुनिया है, बहुत सारे लोग
2: हैं। तो कितने लोग जो है इस मिट्टी ने जने हैं और कितने सारे जो है वो अब भी बन रहे हैं प्लेयर्स लाखों की तादाद में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जैसे अब बात करें, एक मॉडर्न साइड की भी हम बात करें, गुरुग्राम तो एक मॉडर्न सिटी है, और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा एक अलग हो गया राज्य है, लेकिन अगर मॉडर्न टच की भी बात की जाए तो वो गुरुग्राम आ जाता है, या फरीदाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक लग्जरी भी दिखने को मिलती है। तो आपके नजरिए में ये जो परिवर्तन है, ये क्या बदलाव लेकर के आया है, और लोगों की सोच पर भी इसका कैसा असर रहा है?
0: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, एक ऐसा सच है जो होता ही होता है, ठीक है, अच्छे के लिए हुआ है, रोजगार मिले हैं लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हरियाणा में, जैसे गुरुग्राम हरियाणा का एक हिस्सा है, ठीक है, और एक मेजर जगह है, अब गुड़गांव में अगर कोई इंसान हरियाणवी बोलता है तो एक तरीके से उसको जज कर लिया जाता है, जबकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसी भूमि में जन्मा है, उसी की जमीन पर वो सारी चीजें बनी है, तो वो वहीं का एक बाशिंदा है, ठीक है, वो अपनी भाषा बोल रहा है क्योंकि वो तो कई सदियों से वहां पर रहा है। लेकिन ये एक चीज है कि वो कल्चरल साइड वहां पर नजर कम आती है। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अभी भी हरियाणा के किसी भी गांव में आंख बंद करके घुस जाइए, सुबह 3 बजे से लेकर के 5 या 6 बजे तक किसी भी गांव में, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बैठकर, आपको हर गांव में उसके एंट्रेंस पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपको दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। और ये पागल बच्चे होते हैं, जुनूनियत होती है, ठीक है, ये या तो मिलिट्री में जाना चाहते हैं या ये पुलिस में जाना चाहते हैं या एथलीट बनना चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई उन्हें सूझता ही नहीं है। और इसका एक रीजन है साक्षी, एक तो कुरुक्षेत्र से श्रीमद् भागवत गीता निकली है,
2: बिल्कुल,
0: ठीक है, श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में दिए थे, ठीक है, महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय, तो ये भूमि है, प्राउड की भूमि है, ये क्षत्रियों का एक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरीली 4 जो है जातियों को अजगर बोला जाता है, उनको अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, ठीक है, ये क्षत्रिय हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, इसलिए आज भी आपको यहाँ पर वो नजर आएगा कि आज भी यहाँ के लोग वो वाली चीज रखते हैं, मतलब आपको लगेगा अकड़ू है, बट एक हरियाणवी ऐसा मैं कहूंगा खून में एक चीज है मोस्टली जो आपको नजर आएगा कि वो प्राइड के लिए लड़ते हैं, जब भी देश की बात आएगी वो आगे आपको खड़ा मिलेगा, चाहे वो एथलेटिक्स की बात है, फौज की बात है, पुलिस की बात है, और ये मैडनेस जरूरी भी है अपने देश को लेकर के। तो हाँ, ये बात सही है कि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम कल्चर को भी अगर मैं 2 मिनट के लिए साइड कर दूं, मदर नेचर का बहुत नुकसान हुआ है साक्षी, हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में डिफॉरेस्टेशन बहुत भर भर के किया है। उसका प्रमाण ये हो रहा है कि आज ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहे हैं, कितने सारे ऐसे स्पीशीज हैं जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है ऑलरेडी। आज आप देखेंगे तो कितने सारे जानवर हैं, बंदर आपको नजर आते हैं, डॉग्स आपको नजर आते हैं, ये आपको नजर आते हैं तो आपको दिक्कत तो होती है, लेकिन रूट कॉज तक कोई जाना नहीं चाहता, कोई सोचना नहीं चाहता है कि इनका घर उजड़ा कैसे, क्या हुआ इनके साथ, पहले कहां रहा करते थे। तो वो एक मदर नेचर ने जो चीजें प्रिजर्व की हुई थी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो दुख देती है थोड़ा सा मुझे, कि अगर आप एक फ्लैट बना रहे हो, 4 अगर आप पेड़ काट रहे हो, तो आप 10 पेड़ और कहीं लगाइए, ताकि बैलेंस बना रहे, ये एक चीज है।
2: देखिए, बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर, आरजे सागर मेरे साथ है, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी सवाल हैं, और कल्चर के बारे में, राज्य के बारे में, हरियाणा के बारे में, और भी कुछ बहुत सारी बातें जानेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं आपकी बात आरएमआर के साथ। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आरजे सागर, जो कि एक बहुत ही खास एक्सपर्ट बनकर आज हमारे शो में आए हैं, क्योंकि हरियाणा से हैं। और जब हरियाणा की दिवस की बात हो और कोई हरियाणवी हमारे साथ कोई देसी कलाकार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सागर, आपसे हमारी बातें चल रही हैं, मैं अब अगला सवाल जानना चाहूँगी यहाँ पर। अब जैसे कि आपने अभी कई सारी चीज़ों पे बात करी है, आपने अरावली की भी बात करी है कि जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है या बंदर हो गए, हम देखते हैं, हम इरिटेट ज़रूर हो जाते हैं लेकिन रूट कॉज नहीं, हम जाना चाहते हैं वहाँ तक। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब बड़कल झील की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में बड़कल झील भी एक टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है,

0: जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, ब्रेन फॉग हो गया है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है, सिर्फ एक चीज करिएगा, कहीं पहाड़ों में चले जाइएगा, जंगलों में चले जाइएगा, किसी बीच किनारे जाकर बैठ जाइएगा, कहीं भी फॉर्म ऑफ नेचर ढूंढिएगा और वहां एक दिन या दो दिन व्यतीत करिएगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप हील्ड महसूस करेंगे। वो हीलिंग बेसिकली होती है, रीजन बीइंग कि हम लोग उसी एक मदर नेचर से निकल करके आए हैं, इवॉल्व होकर के आए हैं। तो ये तो बहुत खूबसूरत एक स्टेप है। मतलब मैं तो अगर आप रेडियो मानव रचना का टैक्सी नंबर 1078 सुनते हैं शाम को 5 से 8, तो मैं तो कितने यहाँ पर सालों से यही बात कह रहा हूँ, इसकी गुहार लगा रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से बोलता हूँ कि भैया नेचर को बचाइए, आपके आसपास होनी बहुत जरूरी है। और ये भगवान अगर आप मानते हैं तो आपको इन तत्वों को समझना होगा, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये मिला करके जो है, इनके बिना जीवन मुमकिन नहीं है। और इनमें से कोई एक भी तत्व अगर हट जाएगा इस पृथ्वी पर से, तो जीवन खतरे में आ जाएगा, वो संतुलन खराब हो जाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है कि अगर एक झील बनाई जाएगी तो अल्टीमेटली वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, मोरओवर लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा वहां पर आने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रोजगार बहुत जनरेट होगा, काफी लोगों को नए साधन मिलेंगे। और ये खाली फरीदाबाद में नहीं हो रहा है, हरियाणा में नहीं हो रहा है, यूपी से भी ऐसे मैंने अपडेट्स देखे हैं जहाँ पर 100 से ज्यादा कुंड खोदे गए हैं जिनका, जहाँ पर तालाब बनाए जाएंगे और वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट अगर अभी हो रहा है तो लकीली मतलब आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर दिस।
1: दुरुस्त है लेकिन जरूर हो,
0: बिल्कुल।
1: मैं सागर आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। अब हरियाणा की बात हुई है और देखिए, अब फीमेल्स की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं आप जानना चाहती हूँ, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए या फिर आप औरतों की बात की जाए, एथलेटिक्स जैसे कि उसमें विनेश फोगाट हो गई या फिर साक्षी मलिक हो गई, उन्होंने सोसाइटी में बदलाव लेकर के वो आई, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम में, क्योंकि एक ऐसे राइजिंग स्टार, क्योंकि ये एक ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने देश में नाम रोशन किया है, तो जहाँ पर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं गाँव में, कस्बों में ये भी सुनाई देता है कि लड़कियाँ चूल्हा चौका करें, घर से बाहर ना निकलें, तो वहीं ऐसी लड़कियाँ भी हरियाणा से बाहर निकली हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो क्या बदलाव कल्चर में भी क्या लेकर के आएगी, क्योंकि हरियाणा के कल्चर में एक ये भी छोटी सी बात ज़रूर आती है कि चूल्हा चौका है लेकिन ज्यादा घर से बाहर नहीं, लेकिन अब ये सोच जो है वो बदल रही है, तो इसमें आप कितना बिलीव करते हैं?
0: जी जी जी, फिर एक बार मैं इवोल्यूशन की तरफ चलना चाहूंगा। हम लोग हंटर गैदर्स हुआ करते थे, तो हुआ ये करता था इवोल्यूशन के टाइम में, क्योंकि प्रथाएं सारी वहां से बनी है साथ।
1: जी जी,
0: तो जब भी आपको किसी भी सवाल का जवाब ना मिले, मैं सबको सलाह दूंगा, प्लीज एक किताब है सेपियंस, पढ़िएगा। इवोल्यूशन को जितना आप पढ़ेंगे आपको आज की सारी दिक्कतों के समाधान वहां पर मिल जाएंगे। हम लोग क्या किया करते थे, हंटिंग किया करते थे, एक जमाना था, उस टाइम पर हमने नहीं सीखा था खाने को उगाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, फार्मिंग नहीं हुआ करती थी, तो हंटिंग किया करते थे। औरतों का काम था बच्चों की देखभाल करना, जो हम खाना लेकर के आ रहे हैं उसको पकाना, खाने योग्य बनाना और उसको सबको सर्व करना। मर्दों का काम हुआ करता था बाहर जंगल में निकलना, ठीक है, जंगली जानवरों से अपने परिवार को बचाना, खाने का जुगाड़ करना, ठीक है, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनका जुगाड़ करना। और इसको आप इस तरीके से मत देखिए कि जेंडर बेसिस पर किया गया, सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई थी। कट टू द पॉइंट, आज हम आते हैं, ये प्रथाएं उसके बाद यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होके आई, बट अब क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है तो ये प्रथाएं धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अभी बीते दिनों हरियाणा के एक गांव का मैं सुन रहा था किस्सा कि कोई महिला वहां पर सरपंच जो है वो चुनी गई, तो वो महिला ने क्या किया, सबसे पहली चीज वहां पर जो की गई वो की गई घूंघट हटाने की। तो पूरे गांव ने एक साथ घूंघट हटाया वहां पर, विच इज अ गुड थिंग। मतलब स्लो प्रोसेस है बट आ रहा है धीरे धीरे चेंज। पहले हुआ करता था यकीनन कि चूल्हा चौका करना है, घर की देखभाल करनी है, बच्चों को पालो और खाना बना करके दो। लेकिन हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट की जहां तक बात है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट को अगर आप अलग से एम्फेसिस कर रहे हो कि हमें वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है, तो यहाँ पर एक सच ये भी है कि आप एट द सेम टाइम ये मान रहे हो कहीं ना कहीं कि वुमेन जो है वो कमजोर है, लड़कियां कमजोर हैं। मेरी ऐसी बिल्कुल धारणा नहीं है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, जिसको जो काम आता है अपनी स्किल के आधार पर उसको वो काम दे देना चाहिए। यही असली वुमेन एम्पावरमेंट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन भी होगा आपकी, अगर वहां पर कोई लॉजिकल बहस हो रही है या कोई ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो रही है, तो वहां पर भी उस फीमेल को उतना ही मौका दिया जाए जितना एक मेल को दिया जा रहा है। दिस इज द वुमेन एम्पावरमेंट। बाकी ये जो लड़कियां कर रही हैं, हमारी छोरियां हरियाणा से उठ के जो नाम कर रही हैं, विच इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, इससे और बहुत सारी लड़कियों को जो है इंस्पिरेशन मिलती है। मोर ओवर पेरेंट्स भी जो है वो इंस्पायर

0: करके अपनी बेटियों को बोलते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो, ये चेंज हो रहा है।
1: बिल्कुल। तो सागर, कुछ टाइम पहले ही मेरे पास एक लिसनर का कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि हम पहले स्कूल जो है वो बीच में छोड़ दिया था।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनसे रीजन पूछा, उन्होंने कहा कि बस अब एज हो गई है और मम्मी ने कहा है कि अब थोड़ा खाने वाने बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि अब आगे अब कुछ रहा नहीं है, क्योंकि अब आगे जो है आपको शादी करनी है और आपको अपना घर संभालना है। अच्छा, कुछ टाइम बाद मैं ऐसे ही अपना बातें कर रही थी रेडियो पे, और कई सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, हेल्थ के बारे में बताती हूँ, और ऐसे ही मैं कुछ बातें कर रही थी, तो कुछ टाइम बाद उस लड़की का फिर से मेरे पास कॉल आया। उन्होंने, लिसनर ने मुझसे कहा कि मैम थैंक यू। तो मैंने उनसे पूछा थैंक यू किस लिए, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सलाह देते हैं या कुछ कहते हैं तो हमारे पेरेंट्स उसे सुनते हैं, और आज फिर से मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि किसी को इंस्पायर करना है, चाहे बहुत ही छोटी सी, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानती, लेकिन हाँ कुछ बातें अगर आप तक पहुँचती हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए भी और सभी के लिए। इसी के साथ साथ सागर, जैसे कि आपने अभी कल्चर के बारे में भी कहा कि घूंघट की प्रथा हो गई या चूल्हा चौका हो गया, ज़रूर मेरा मानना ये भी है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल मुझे ये भी लगता है कि ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, लेकिन वो जो कुछ प्रथाएं ऐसी होती है ना कि जो महिलाओं पे जचती भी है, लेकिन इसमें अब जो कदम से कदम जो है महिलाएं भी मिला रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर हम अभी लखपति दीदी की भी बात करें तो चाहे उनका पहनावा है, लेकिन पूरे देश में उन्होंने जो है अपना नाम बनाया, और साथ ही उन महिलाओं को भी लेकर के चल रही हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं, उन्हें भी काम करा रही हैं, और वो लड्डू या बहुत सारी ऐसी मिलत से चीज़ें बनाना, और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारे जो महिलाएं हैं हरियाणा की, वे आगे बढ़ रही हैं और इसी तरह से बढ़ती रहें और ऐसे ही पूरी दुनिया को इंस्पायर करती रहें, ना सिर्फ हरियाणा को बल्कि पूरे देश को। चलिए सागर, एक छोटा सा ब्रेक, इजाज़त हो आपकी तो मैं लेना चाहूँगी, और आगे कुछ और बस कुछ सवाल और हैं जो मैं जरूर जानना चाहूंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रश 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैनो रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। आज मेरे साथ है आरजे सागर। बहुत सारी सागर आपसे बातें हमारी चल रही है। आज हरियाणा दिवस है और इस मौके पर हरियाणा के बारे में हम बात करें, यहाँ के कल्चर के बारे में, फोक म्यूजिक, डांस। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने दो रागनी जरूर हमें बताई है। अच्छा, जब रागनी की या गीतों की बात होती है या कोई भी एक आर्ट फोक कल्चर की बात होती है, सबसे नज़दीकी अगर गीतों में से अगर मैं बात करूँ आपके दिल के, कौन सा जो गीत है वो नज़दीक है, जो आप सभी को बस चंद दो लाइनें सुनाना चाहेंगे यहाँ पर?
1: हरियाणवी गीत
0: जी।
1: दिलराज कौर एक हुआ करती थी सिंगर
0: जी।
1: उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाए थे, मैं अपने बचपन में सुनता था, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये भी है कि मेरे पिताजी उस टाइम पर सुना करते थे उनको, और बचपन से वो आपकी मेमोरी में बैठ जाती है। तो एक गाना है, हालांकि फीमेल पर्सपेक्टिव से वो गाना गाया गया है, लेकिन आर्ट फॉर्म का कोई जेंडर नहीं होता, तो कोई भी उसको गा सकता है। जैसे मेरा चुंदड़ मंगा दे रे ओ नंदी के बीरा तन्ने न्यू तन्ने न्यू तन्ने न्यू ढूंगे पैराकू ओ नंदी के वीरा। बेसिकली वो अपने पति को एड्रेस कर रही है, नंदी के वीरा मतलब मेरे ननद के भाई। ठीक है, तो वो इस तरीके से है। एक और है, वो है का, हाँ, रे मेरे दिल पे लिख दिया नाम गुलाबी छोरी ने, अरे रे मेरी बहू बना दे राम गुलाबी छोरी ने। मस्ती के साथ गाते थे उनका
0: बिल्कुल।
1: हाँ,
0: तो ये मस्ती है वाइब जो है ये अभी स्टूडियो में भी बिल्कुल बरकरार है। सागर, कुछ और भी सवाल है, मतलब काफी अच्छा तो लग रहा है आप हमारे साथ हैं, लेकिन जाने का भी टाइम हो रहा है, तो कुछ आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ से अब फ्यूचर की ओर देखें, अगर आप हरियाणा को अब देखें, तो आने वाले सालों में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हरियाणा और कैसे डेवलप होना चाहिए, या कल्चरली तौर पर, फोक आर्ट म्यूजिक के तौर पर, और किस तरह से आप, क्या एंगल, किस एंगल से देखते हैं हरियाणा को?
1: मुझे ऐसा लगता है जो होना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि कोर वैल्यूज को रखते हुए मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एथलीट्स हैं, कुछ बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं, तो उनको स्टेडियम्स मिलने चाहिए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, ताकि देश के लिए और ज्यादा मेडल्स हम लोग लेकर के आ पाए। इसके अलावा स्टार्टअप की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मोरओवर, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा आज भी इंडिया का हिस्सा है, मतलब मोस्टली पॉपुलेशन जो हमारी है भारत की, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग। उसमें बहुत बदलाव होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। क्योंकि साक्षी, ये बहुत दुखद बात है कि एक किसान इन्वेस्ट करता है, मतलब स्टार्टअप के तौर पर देखिए कि अगर कोई आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वो एक बंद फैक्ट्री में है, बिकेगा, आप उसको मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, आप उसको अंदर बंद करके रखेंगे तब। लेकिन एक किसान की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, वो अपनी लिटरली सारी मेहनत से जो है बीज लेकर के आता है, पूरी मिट्टी खोदता है, बीज बोता है, फसल उगती है, और उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चौड़े में पड़ी हुई है, ओपन में। अब धूप अगर ज्यादा हो जाएगी बर्बाद हो सकती है, बारिश ज्यादा हो जाएगी बर्बाद हो सकती है, ठीक है, हो सकता है फसल ना होगे, हो सकता है कीड़ा लग जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना स्टेक पर है। आप सोचिए कि रातों रात सब खत्म हो जाता है एक बाढ़ से या सूखा पड़ जाने से, और उसके बाद फिर ऐसा भी नहीं है कि आप एक रात में फसल उगा सकते हैं, वापस से उसको 6 महीने 7 महीने का वो जो लूप है उसको रिपीट करना पड़ेगा, वही मेहनत उसको करनी पड़ेगी। तो ये मेरा एक पेन पॉइंट रहता है हरियाणा के लिए भी, क्योंकि वो मेरा स्टेट है, मैं यहां जन्मा हूं, लेकिन ये हरियाणा तक सीमित नहीं है, पूरे देश की बात करूंगा, जहां भी फार्मिंग होती है हर जगह पर इतनी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि फार्मर्स प्रिडिक्ट कर पाए वेदर कैसा होने वाला है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, और क्या फसलें मैं उगा सकता हूँ, कितने टेन्योर में वो उग सकती है। मुझे लगता है कि ये अपलिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरओवर, मैं ये भी चाहूंगा कि जब मेरे बच्चे हों, मैं उनको सब सिखाऊंगा, हिंदी सिखाऊंगा, अंग्रेजी सिखाऊंगा, टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा, जो भी होगा दुनिया में सब सिखाऊंगा, एट द सेम टाइम हरियाणवी सिखाऊंगा, स्वांग बताऊंगा, रागड़ी सुनाऊंगा, ताकि ये जो कल्चर है ये कैरी फॉरवर्ड हो सके, ये यहाँ पर गायब ना हो।
0: बिल्कुल। तो सागर, आपके साथ आज बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हरियाणा दिवस को और ज़्यादा एक महत्व अगर जो मिला है, और साथ ही आपने हर एक चीज़ के बारे में बड़ा खुल के बताया है, चाहे वो रागनी की बात की जाए, गीतों की बात की जाए, यहाँ के कल्चर की एवोल्यूशन पीरियड से लेके अभी तक की सारी जानकारी आपने दी है, मैं तभी दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो आखिरी एक लाइन हरियाणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: दूध दही का खाना, यो है हमारा हरियाणा, ये है जी, यही है हमारा है ही ये प्रोसेस ऑर्गेनिक है, इसीलिए आपको हट्टे कट्टे यहाँ पर लोग नजर आते हैं, क्योंकि खाना बहुत ऑर्गेनिक है और वो बचपन से डाला जाता है। मतलब पिज्जा नहीं खाते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे घर में टमाटर और मिर्च की चटनी बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है चूल्हे के ऊपर, और उसमें जो मक्खन होता है वो निकाल के ताज़ा रखा जाता है और उसके ऊपर वो चटनी रख के खाई जाती है। अरे साहब कभी आइए, अंगे खाइए दूध के साथ, आपको हम दिखाते हैं कि मज़ा क्या होता है। आप भूल जाएंगे तमाम चीज़ केक का स्वाद, आप भूल जाएंगे तमाम पिज्जा, और आपको मिलेंगे जो फायदे। तो ये है जी हमारा हरियाणा।
0: बिल्कुल यही है हमारा हरियाणा, और इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो चलिए आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रेस्ट 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।
2: वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आज का हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। शो की बात करेंगे, यहाँ पर एक प्रोसेस के तौर पे हम इस शो को आपको समझाते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले इस पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री के बारे में, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कैसे वो ऑपरेट कर रही हैं, क्या उनके पीछे का प्रोसेस रहा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल गेट टू नो अबाउट द इंडस्ट्री, जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो बात करेंगे बिना किसी देरी के। फिलहाल मैं आ चुका हूँ, इतना ही आपसे कहना है, मेरा सलाम कबूल करिए। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद मेडटेक की बात होगी, क्योंकि आज की जो कंपनी है वो मेडटेक में डील करती है। पहले इंडस्ट्री आपको समझाएंगे, उसके बाद फाइनली वी मूव ऑन टू द कंपनी, वो बताएंगे कौन सी है। तो आज जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसके पहले हम उस कंपनी जिस इंडस्ट्री में डील करती है उस इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। सो इंडस्ट्री है मेडटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी। जरूरत बहुत है इस इंडस्ट्री को समझने की, और अपने आप में बहुत क्रूशियल ये इंडस्ट्री, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटीज हमारे आसपास आज की डेट में है, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हो, या फिर वो नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हुई हो, या फिर कोई भी किसी तरह की महामारी अगर दुनिया में आती है, तो ये इंडस्ट्री हमारी हेल्प करती है उससे कोप अप करने में। सो दैट्स हाउ ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी हुई है सीधे तौर पर। अब इसको थोड़ा सा हम डिकोड करके टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे। मेडिकल टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम रेफर करेंगे, जो डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है तमाम तरह की चीजें, जैसे डिवाइसेस हो गए, टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, टेक्नोलॉजीज हो गई। कुल मिलाकर मोटिव ये होता है कि डायग्नोस कर पाए, डायग्नोस करना, ट्रीट करना, मॉनिटर करना मेडिकल कंडीशंस को, ताकि लोग ठीक रहे, ओवरऑल वेलबींग हमारी काफी अच्छी रहे। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी एक रेंज मिल जाती है, लिटरली वाइड रेंज मिल जाती है, चाहे आप बात करें किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, चाहे आप बात करें किसी सॉफ्टवेयर की, या फिर जो आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं टेलीमेडिसिन के, कि अपने घर पर बैठकर हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे हम अपने घर बैठ के दवाइयां ऑर्डर कर रहे हैं, तो दवाइयां हमारे डोर स्टेप तक जो पहुंच रही हैं, वो भी आप मेडटेक में ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है इस इंडस्ट्री में, वो हम सब कुछ मेडटेक में कंसीडर करेंगे। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो वैसे तो टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को एक सरल वे में लेकर आना। अगर किसी इंसानों की प्रॉब्लम है तो अच्छे से उसको डायग्नोस करना, अगर किसी चीज की स्टार्टिंग बॉडी में हो गई है, जो आम तौर पे होता है कि पहले ऐसा हुआ करता था, इनिशियल स्टेजेस में हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाते थे प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन अभी क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हमारे पास आ गई है कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं पूरी बॉडी का चेकअप करके कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या प्रॉब्लम है। और इसके अलावा कुछ और मेजर चीजें हैं, जैसे कि सर्जिकल रोबोट्स आ गए हैं, सर्जिकल रोबोट्स जो काफी एक्यूरेसी के साथ, काफी प्रिसीजन के साथ जो है सर्जरी करते हैं, जिससे रिकवरी भी जल्दी हो जाती है, डैमेज भी कम से कम होता है, और जो सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना एंड एमआरआई मशीन्स, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो अचीवमेंट या फिर माइलस्टोन है हमारे लिए, कि बॉडी में अंदर क्या चल रहा है उसके एक एक सेल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाना, अच्छे से रीड कर पाना। तो इस तरह की जो ये चीजें हैं, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, और ये सब कुछ हमें दिया है मेडटेक इंडस्ट्री ने, यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी। आज की जो हमारी कंपनी है वो इसी इंडस्ट्री में डील करती है। कंपनी के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे। अब समझते हैं मेडटेक इंडिया में क्या है एग्जैक्टली। देखिए, मेडटेक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उसके पीछे बहुत सारी चीजों का हाथ है। मतलब लिटरली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब इसमें एक तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही ज्यादा जो है वो डिमांड बढ़ेगी और उसके हिसाब से इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहेगी। देन इसके बाद क्रोनिक डिजीज या फिर कहीं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। ये हमने आम तौर पे बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि 12 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ, या 14 साल की उम्र में एक बच्चे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, या 16 साल की उम्र में एक बच्चे को थायराइड हो गया, मल्टीपल चीज़ें। स्ट्रेस बहुत बड़ा एक एलिमेंट हो गया है हमारी लाइफ में जिससे कोप अप करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस एक इंडस्ट्री को इतना तेज़ी से ग्रो करा रही हैं, और ये बहुत इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। अगर दूसरे वे में इसको देखा जाए तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री जितनी ज्यादा एडवांसमेंट यहाँ पर होती जा रही है हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती आ रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, प्लस सरकार की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो काफी सपोर्ट करती हैं इस इंडस्ट्री को। आप ये कह सकते हो कि इंडिया एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जो मेडटेक हब बनाता जा रहा है इस इंडस्ट्री को पूरे एशिया में। मतलब पूरे एशिया में अगर आप उसको फिगर आउट करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एशिया क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एक मार्केट है हेल्थ केयर का, लेकिन इंडिया उसमें बहुत स्किल्ड कंसीडर किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ पर लिटरली एक स्ट्रांग बेस है स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, साथ साथ स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं इंडिया में। अभी लिटरली बहुत अच्छा लगता है देख के कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक स्टार्टअप लेकर चल रहा है और वो उसको फिक्स कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ के निकाले हैं। ऐसी मल्टीपल इनोवेशंस हमने देखी है इस हेल्थ केयर सेगमेंट में जिन्होंने लिटरली लोगों की हेल्प करी और हमारी ओवरऑल वेलबींग काफी अच्छी की है। सो दिस इज मेडटेक इंडस्ट्री इन इंडिया जो बहुत तेजी से आप कह सकते हो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। आज हम इस इंडस्ट्री को डिकोड करेंगे यहाँ पर, और अभी तक हमने मेडटेक इंडस्ट्री को समझ लिया है। अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स की तरफ आएंगे जो आप कह सकते हो कि सब पॉइंटर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और अच्छे से इंडस्ट्री का एक इनसाइट लेने में। अब हम बात करेंगे की सेगमेंट्स की। मेडटेक इंडस्ट्री के की सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब उन वर्टिकल्स को मोटे मोटे तौर पर हम देखेंगे कि जहां पर कोई स्कोप है या जहां पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जिन सेगमेंट्स में हम इस इंडस्ट्री को बाइफर्केट कर सकते हैं। पहला आता है डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग। इसमें हम कंसीडर करेंगे MRI, CT स्कैन्स, एक्सरेज और जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं और एक ट्रीटमेंट को प्लान करने में हमारी काफी मदद करते हैं। जो मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज में अब पॉसिबल है कि हम उसको एनालाइज कर पाएं और फिगर आउट कर पाएं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने वाली है या स्टार्ट हो चुकी है बॉडी में, उसके लिए बहुत सारी एडवांसमेंट हमने कर ली। देन सेकंड वर्टिकल जो है वो है मेडिकल डिवाइसेस। इस सेगमेंट में आपको तमाम रेंज देखने को मिलेगी उन डिवाइसेस की जो हमारी हेल्प करते हैं, लाइक जो हमारे क्रूशियल मूवमेंट्स होते हैं, बहुत क्रिटिकल जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स की जब जरूरत होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, या स्टैंड्स जो आमतौर पर देखा जाता है जब बाईपास सर्जरी की जाती है, जब किसी के हार्ट में ब्लॉकेज आती है तो स्टैंड डाले जाते हैं सो दैट कि ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा ना हो और जो ब्लॉकेज है वो भी ना हो और इजीली जो है लोग वहां से कोप अप कर पाए उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जो उनके सामने आई है। देन पेसमेकर्स जो इसी एक वर्टिकल में फॉल करते हैं। उसके बाद थर्ड जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है अपने आप में वो वर्टिकल है वियरेबल टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत आम हो चुका है फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉचेस, इसके अलावा भी ऐसे हमारे पास वियरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजों को खुद से एनालाइज कर सकते हैं, और ये लिटरली बहुत प्राउड वाली बात है और बहुत अमेजिंग बात है कि यार अभी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में आ गई है। जैसे मल्टीपल टाइम्स हमने आपको अपने शोज में ये बात बताई है कि कोई इंसान गया माउंटेन ट्रैकिंग पे या माउंटेन क्लाइंबिंग पे और वहां पर जाकर उसको अचानक से कुछ फील हुआ, कोई पैनिक वाली सिचुएशन, या अचानक से उसके जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत शूट अप कर गया, या ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो गया बहुत ज़्यादा। तो ऐसा बहुत जगह से मल्टीपल टाइम्स अपडेट आए हैं कि स्मार्ट वॉच जो उसने पहनी हुई थी उसने नियर बाय रेस्क्यू टीम को एक मैसेज भेजा, एक SOS का मैसेज गया और इंस्टेंटली रेस्क्यू टीम वहां पर आई, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया और उस बंदे ने मतलब अपनी कॉन्शियसनेस वो खो चुका था, उस बंदे ने कोई मैसेज इंटेंशनली नहीं भेजा था, जस्ट बिकॉज कि वो जो स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी उसने वो सब कुछ आइडेंटिफाई किया, सिग्नल गया, रेस्क्यू टीम आई, उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया और समय रहते उन्हें बचा लिया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, यकीन मानिएगा। सो वेरिएबल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, लाइक ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने में एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने में. इसी के साथ हार्ट रेट हमारा अगर इरेगुलर हो रहा है तो उसको मॉनिटर करने में. देन इसके बाद फोर्थ वर्टिकल आता है टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन यानी कि आप समझ सकते हो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिमोट डायग्नोसिस को इनेबल करती है. जैसे COVID-19 के बाद से स्पेशली हमने देखा है कि वर्चुअल कॉल्स या थ्रू जो है वर्चुअल डिवाइसेस हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब रिमोटली कंसल्टेशन हो सकता है और ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जिससे बहुत सारे लोग जिनके पास टाइम नहीं हुआ करता था वीकेंड का वेट किया करते थे और इतने में बीमारी बढ़ती रहती थी, या किसी पर्टिकुलर डे का वेट किया करते थे तब तक बीमारी को वो झेला करते थे, तो उनके लिए काफी सुविधा हो गई है. आधा घंटा एक घंटा निकाल के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे दवाइयां भी आ जाएंगी. बहुत सिंपल है. तो इस एक चीज ने लिटरली बहुत अपलिफ्ट किया है इस एक मार्केट को. उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हेल्थ आईटी एंड एआई. इस एक पर्टिकुलर वर्टिकल में हम इस चीज को देख सकते हैं कि पेशेंट्स को मैनेज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं एंड इसी के साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही थी पास्ट में और अभी जो बॉडी साइन दे रही है वो क्या साइन दे रही है या किस एक दिशा की तरफ जो है हमें वो लेकर जा रही है. इससे पेशेंट को टाइमली ट्रीट किया जा सकता है और बीमारी के रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है. सो ऑल दीज आर दी की सेगमेंट्स जो मेडटेक इंडस्ट्री में फॉल करते हैं. फर्स्ट हमने आपको बताया डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग, सेकंड हमने आपको बताया मेडिकल डिवाइसेस, थर्ड बताया वियरेबल टेक्नोलॉजी, फोर्थ बताया टेलीमेडिसिन एंड फिफ्थ बताया हेल्थ आईटी एंड एआई. अब देखिए इनमें से किसी को भी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कम महत्वपूर्ण है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है. हर एक वर्टिकल, हर एक सेगमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, बशर्ते हम उन चीजों की जो वैल्यू है उसको अच्छे से समझ पाए. अभी तक हमने इंडस्ट्री को समझा ओवरऑल, हमने फिर इंडस्ट्री को समझा कि इंडिया में इसका स्टैंड क्या है अभी, फिर हमने समझा की सेगमेंट्स को, उन वर्टिकल्स को जिनमें ये इंडस्ट्री डील करती है या फिर जिनमें आप इसको बायफर्केट कर सकते हो. अब बात करेंगे हम की ड्राइवर्स की. की ड्राइवर्स यानी कि जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं, जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है. तो पहला की ड्राइवर आता है राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स. अब देखिए जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, या फिर आप कह सकते हो नीड्स हमारी बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से सप्लाई प्रोवाइड करना. मोरओवर जिस तरीके से हमारे सामने नए नए चैलेंजेस हर रोज आते हैं, नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए दिन खड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ नया डिटेक्ट किया जाता है, तो उस एक पर्टिकुलर चीज के साथ या उस एक पर्टिकुलर बीमारी के साथ कोप अप करना, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की सच में जरूरत होती है और ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए. ऐसे में जो राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स हैं वो लिटरली हमारी काफी हेल्प कर रही हैं इस एक इंडस्ट्री को आगे भी ले जाने में और साथ साथ नई चीजों की तरफ हमें पुश करने में, मतलब नई टेक्नोलॉजीज, नई एडवांसमेंट या नई इम्प्रूवमेंट या कुछ नया इनोवेटिव हम लेकर आए. जैसे आमतौर पर भी देखने को मिलता है कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये बहुत ही आम चीजें हो गई है, आमतौर पर देखने को मिल जाती है, पहले रेयरली हुआ करता था और एक सर्टेन एज ग्रुप को टारगेट किया जाता था कि इस एज में हो सकता है, लेकिन आज ये बोल पाना बहुत गलत होगा कि इस एज ग्रुप में हो सकता है, क्योंकि हमने 10 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हमने 14 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको ब्लड प्रेशर बहुत इरेगुलर है, हमने 16 साल के बच्चे को देखा है जिसको थायराइड है. ऐसे आप किसी एज ग्रुप में डाल सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल लाइफस्टाइल प्लस पॉल्यूशन प्लस स्ट्रेस प्लस ये कॉम्पिटिटिव मार्केट जो हमारी होती जा रही है, इन सब की वजह से ये मल्टीपल कंडीशंस अर्ली स्टेजेस में बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है. लकीली हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सेकेंड आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर है एज अ की ड्राइवर जो इस इंडस्ट्री को रन करता है. पहला तो मेक इन इंडिया एक मूवमेंट है जो हम अपने ही देश में अपनी चीजें बना पा रहे हैं, अपने ही देश की चीजों को हम प्रमोट कर रहे हैं. सेकेंड आता है डिजिटल इंडिया जिसने बहुत हेल्प करी है, मतलब जो हम स्पेशली बात करेंगे टेलीमेडिसिन की कि लोग अपने घर पे बैठ के कंसल्ट कर पा रहे हैं, तो वो हो पाया है डिजिटल इंडिया मूवमेंट की वजह से. देन उसके बाद आता है आयुष्मान भारत जिसमें एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलता है मेडटेक इंडस्ट्री को, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी काफी मदद मिलती है, नई इनोवेटिव चीजें मिल रही हैं और लोगों के पास एक्सेस है हेल्थ केयर का. पहले हुआ करता था कि बहुत लिमिटेड लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज का एक्सेस था, लेकिन जब से हम लोग डिजिटल हो गए हैं, जब से हम लोग टेलीमेडिसिन जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तब से रिमोट एरियाज में भी बैठकर लोग दिल्ली या मुंबई या कहीं पर भी किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर पाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट की ड्राइवर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. एआई बहुत ही अब कॉमन चीज हो गई है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नई है हमारे लिए, हालांकि इतनी पुरानी नहीं हुई है, बट स्टिल हमने बहुत तरक्की कर ली है इस एक फील्ड में। मशीन लर्निंग, IoT, इन्होंने मेडटेक इंडस्ट्री को लिटरली बहुत एक नया, आप कह सकते हो, मुकाम दिया है। क्योंकि नई एडवांसमेंट, नई चीजें लेकर आना, अर्ली स्टेज में चीजों को डिटेक्ट कर पाना, प्लस उसको काफी पर्सनलाइज्ड वे में देखना कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक्स क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हो पाया है टेक्नोलॉजी की वजह से। देन उसके बाद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की तरफ से इंडिया में मेडटेक जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, इन्वेस्टर्स को काफी लुभा रही है ये एक इंडस्ट्री, जिसकी वजह से ये इतना आगे बढ़ पा रही है। देन उसके बाद लास्ट जो आप की ड्राइवर कहेंगे इस एक इंडस्ट्री में, दैट इज ग्रोइंग अवेयरनेस। लोग भी अब जागरूक होते जा रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ लोग जो है अब जाने लगे हैं, साथ साथ लोग अब समझ पा रहे हैं कि यार अर्ली स्टेज में अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को हमने डिटेक्ट कर लिया, सो इट्स गुड फॉर अस। शायद इसी वजह से लोग स्मार्ट वॉचेस या फिटनेस ट्रैकर या जो भी वेरिएबल टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको वेयर करना पसंद करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर बॉडी में है तो अर्ली स्टेज पे उन्हें वो साइन मिल जाए और आगे चलकर वो परेशान ना हो जब वो बीमारी बहुत बढ़ चुकी हो। तो ये सब वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इंडिया में इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है, फिर आप कह सकते हो वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स। और इसमें अब हम बात करेंगे करंट टेक्नोलॉजीज की। ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर आप करंट ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं इस एक इंडस्ट्री की, जस्ट इन केस अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला है AI एंड मशीन लर्निंग, जो आमतौर पर हर एक इंडस्ट्री के साथ अब हम एसोसिएट कर रहे हैं और हर जगह पर हमें इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इसमें प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम एनालाइज कर पाएंगे, जिससे डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो पेशेंट के हिसाब से बनाया जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है 3D प्रिंटिंग। जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, इम्प्लांट्स हैं, इवन ह्यूमन टिश्यूज हैं, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिससे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और कॉस्ट को भी रिड्यूस करने का पूरा एफर्ट वहां पे जो है वो किया जा रहा है, ताकि लोग उसको एक्सेस कर पाए। मतलब लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी का कोई ना कोई ऐसा पार्ट खो देते हैं किसी ऐसे अनफॉर्चुनेट चीज में, एक्सीडेंट में, तो उसके बाद वो लाइफ टाइम उसी चीज के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि यार कोई रिप्लेसमेंट दे दो, लेकिन एक्यूरेसी की कमी हुआ करती थी। बट लकीली अभी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं 3D प्रिंटिंग की वजह से कि काफी एक्यूरेट, मतलब आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि यार ये सच में रियल है या फेक है, मतलब कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। इम्प्लांट्स ऐसे ऐसे आ गए हैं, सर्जिकल जो चीजें आ गई हैं उन्होंने काफी हेल्प करी है लोगों को। कुल मिलाकर लोग जो फ्रीली कॉन्फिडेंटली जीना चाहते हैं वो करने में काफी हेल्प करती है 3D प्रिंटिंग। उसके बाद थर्ड, वियरेबल डिवाइस, जिसकी हमने बात करी थी, जो हमारे वाइटल साइंस को मॉनिटर करता है, हमारी फिटनेस को ट्रैक करता है और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसका डेटा हमें प्रोवाइड करता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको काफी मदद मिलती है ये आइडेंटिफाई करने में कि किस दिशा में काम करना है और एग्जैक्टली क्या काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपकी हेल्प करते हैं टॉप नॉच डॉक्टर्स से कंसल्ट कराने में, इवन दो आप अगर एक लिमिटेड बजट लेकर चल रहे हो तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि कौन से डॉक्टर हैं, उनके रिव्यूज क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पढ़ाई की है, कितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ वहां पर मिल जाता है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां पर जाना है, किस डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट करना है, जिससे आपकी फिजिकल विजिट जो है वो बच जाती है और आप टाइम भी अपना काफी सेव कर लेते हो, आपको किसी पर्टिकुलर डे या वीकेंड का वेट नहीं करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्जिकल रोबोट्स, क्योंकि एक नया ट्रेंड बन चुका है और इससे काफी मदद मिलती है एक्यूरेटली ऑपरेट करने में, साथ साथ रिकवरी काफी जल्दी हो जाती है। एंड इसी के साथ ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो काफी हेल्प करते हैं प्रिसाइज ऑपरेशन करने में या मेडिकल प्रोसीजर्स जो है उनको काफी सेफ और एक्यूरेट बनाने में। देन उसके बाद लास्ट टेक्नोलॉजी है बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसमें देखिए, मैनेज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है हेल्थ डेटा को, जिससे एक डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है, सरकार को भी काफी मदद मिलती है, साथ साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी काफी मदद मिलती है, और अगर किसी को भी इस एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ डेवलप करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, तो उनको काफी मदद मिलती है, एक डेटाबेस उनके हाथ में है। सो ये हैं वो तमाम टेक्नोलॉजीज जो अभी ट्रेंडिंग हैं और जिनके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। तो अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है तो आप इन फील्ड्स में, इन टेक्नोलॉजीज में देख सकते हो। आई होप इट वर्क्स। अब इसके बाद आगे अगर बात करें तो नीड क्या है इसकी इंडिया में। देखिए, सबसे पहली चीज एक्सेसिबिलिटी। बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है हमारे देश की आज भी जो रूरल एरियाज में रहती है, रूरल एरियाज मतलब लिमिटेड एक्सेस, चाहे वो किसी अच्छे टाउन के या अच्छे शहर के कितने ही करीब क्यों ना हो या कितना ही दूर क्यों ना हो, स्टिल देर आर लिमिटेशंस, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके लिए इन चीजों को एक्सेसिबल बनाना बहुत जरूरी है ताकि हर एक इंसान तक इनका फायदा पहुंच सके। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी चीजों को फिक्स कर सके बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। देन टेलीमेडिसिन उसमें एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, एंड मेडटेक के जो बाकी सॉल्यूशंस हैं लाइक पोर्टेबल डिवाइस हो गए, ये सब उस गैप को फिल करते हैं। इसलिए जरूरी है इंडिया में मेडटेक के ऊपर काम करना। सेकेंड, अफोर्डेबिलिटी। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं जिससे वो ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है। अगर मैं बात करूं एक ब्रॉडर व्यू में तो अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को ट्रीट करना है या डायग्नोस करना है तो कम टाइम में अच्छे से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा प्रिसीजन के साथ हम वो कर सकते हैं, बिकॉज हमने टेक्नोलॉजी में इतना काम किया है, इतना इन्वेस्ट हमने ऑलरेडी किया है उस एक फील्ड में, जिसकी वजह से काफी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों की ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, जिसको जहां पर नीड है वो उसको ठीक कर सकता है, फिक्स कर सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड, क्वालिटी ऑफ केयर। अब एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स आ गए हैं, वेरिएबल डिवाइस आ गए हैं, एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस आ गए हैं, इससे ओवरऑल हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हुई है। जैसे कि अर्ली स्टेज डिटेक्शन, बेटर मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, मतलब अब अच्छे से हम उसको देख सकते हैं, अच्छे से उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बिहाफ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हाउ टू प्रोसीड, आगे चलना कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप इसको कंसीडर करना चाहिए कि ये हमारी नीड है, हमारे देश की नीड है। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पैंडेमिक रिस्पॉन्स। COVID-19 के बाद से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, उस टाइम पर भी, उसके बाद भी हुई, जहां पर मेडटेक ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया उस क्राइसिस के टाइम पे भी, जहां पर डॉक्टर्स के साथ वर्चुअली अपॉइंटमेंट लेकर डिस्कस करते थे, एंड उसके बाद भी, क्योंकि वो एक चीज हमारी लाइफ का पार्ट बन गई, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम बहुत ट्रेंडिंग एक चीज बनी, बहुत बड़ी एक चीज निकल के सामने आई। देन उसके बाद सब कुछ हमने देखा कि डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स हमें मिल गए एंड टेलीमेडिसिन का आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल गए, कुल मिलाकर पेशेंट्स को ट्रीट करने में काफी सहूलियत हो गई। पेशेंट्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, डॉक्टर्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, इट्स अ विन विन सिचुएशन। हुआ क्या, सिंपली टेक्नोलॉजी को वहां पर अलाइन किया गया और उससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को नई शेप मिली। सो दैट्स हाउ हम कह सकते हैं कि इसकी नीड है, ये हमारे पास। इम्पैक्ट भी इसका देखने को मिला, मतलब काफी हमने एक्सेस को इम्प्रूव होते हुए देखा कि इम्प्रूव्ड एक्सेस है अब हेल्थ केयर का, हमने देखा कि बेटर हेल्थ आउटकम्स हैं, हमने देखा कि पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा एम्पावर हो गए हैं पहले से, उनके पास ऑप्शंस ज्यादा आ गए हैं, हमने देखा कि एफिशिएंसी काफी इम्प्रूव हो गई है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, हमने बहुत सारी चीजें देखी है। तो ऐसे मेडटेक जो एक पूरी इंडस्ट्री है उसने हमारी लाइव की जो ओवरऑल वेलबींग है उसको काफी इम्प्रूव किया। आइंड्रा सिस्टम्स बेंगलुरु बेस्ड एक मेडटेक स्टार्टअप है, 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। AI का इस्तेमाल करती है ये कंपनी, और पर्टिकुलर यहाँ पर एक कॉज है जिसको लेकर बहुत जानी जाती है पूरी इंडस्ट्री में, और वो है सर्वाइकल कैंसर। इनके कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सर्वस्त्रा है, जहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है सर्वाइकल कैंसर की, और अर्ली स्टेज पर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर डिटेक्ट किया जा सकता है, दैट मीन्स कि अर्ली स्टेज पर उसको हम क्योर भी कर सकते हैं। जब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं तो उस टाइम पर हमारे हाथ से गाड़ी बहुत दूर तक जा चुकी होती है। सो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इनके प्रोडक्ट्स हैं जो AI पावर्ड हैं, जैसे ऑटोमेटेड स्ट्रेनर्स हैं, टेलीपैथोलॉजी सिस्टम्स हैं, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एक इस तरीके से लेकर आए हैं कि सोशल इम्पैक्ट ये लेकर आ सके। अच्छा, बहुत खास चीज़, बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि इनका जो मिशन है जिसकी वजह से कंपनी में इन्होंने स्टार्ट किया, दैट इज कि ये क्वालिटी हेल्थ केयर को एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। और ये बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, बेंगलुरु क्योंकि इंडिया का सिलिकन वैली जो है कंसिडर किया जाता है। बट स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये कंपनी हेल्थ केयर में स्टार्ट नहीं हुई थी। इनिशियली जो इस कंपनी के फाउंडर्स हैं मिस्टर आदर्श नटराजन एंड मिस्टर अभिषेक मिश्रा, वो कंसल्ट करते थे फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर अ डिफरेंट प्रॉब्लम, जहां पर सब्सिडी लीकेजेस हुआ करते थे मिड डे मील स्कीम में स्कूल्स की जो हुआ करती है। सो इन्होंने एक टचलेस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जो अटेंडेंस की ट्रैकिंग करता है। आप ये कह सकते हैं कि ये इनका पहला एक प्रोडक्ट था जो सक्सेसफुल हुआ। उस टूल का नाम था दृष्टि, जहां पर इनकी जो जान पहचान है वो AI से हुई और मार्केट जो है इन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगी और मार्केट जो है वो इनको समझने लगी। तो ये सब चीजें हुई। दैन उसके बाद फंडामेंटली चीजें इन्होंने अपनी ठीक करी सारी और उसके बाद ये फर्दर ग्रो करते गए और 2014 में कुछ इनक्यूबेटर्स के माध्यम से उनके हेल्प से लाइक विल ग्रो है, एंड्रा है, जो है वो शिफ्ट हुई टू मेडटेक, जो एक अलग ही स्टोरी है। मतलब एक पूरी नई जर्नी इनकी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर अभी तक का पॉइंट ये कि 2012 में कंपनी स्टार्ट हुई जहां पर इन्होंने पहले सरकार के बिहाफ पर काम किया। एक ऐसा इन्होंने डिवाइस बनाया जो अटेंडेंस को ट्रैक करता है ताकि किसी तरीके का घपला ना हो सके मिड डे मील स्कीम में जो स्कूल्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। फिर 2014 में जब तक ये मार्केट को समझ चुके थे, AI मॉडल्स को समझ चुके थे, डेटा को समझ चुके थे, फिर इन्होंने अपना मेडटेक स्टार्टअप जो है वो शुरू किया विद द हेल्प ऑफ विल ग्रो एंड कुछ और इंक्यूबेटर्स थे। तो इसके पीछे का जो आइडिया था वो हम आपको बता चुके हैं, टू यू नो मेक क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां पर हम बात करें तो लगभग 60,000 लोग लिटरली मतलब हाई कॉस्ट की वजह से या लेट डायग्नोसिस की वजह से एनुअली अपनी जान गंवा देते हैं। ये इनकी कंपनी के हिसाब से एक आंकड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर इन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और वहां पर इन्होंने AI को इंट्रोड्यूस किया एंड दैट्स हाउ दे आर वर्किंग। आइए थोड़ी सी बात करते हैं इनके बैकग्राउंड की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मिस्टर आदर्श नटराजन की। ही इज द CEO एंड आप कह सकते हैं द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आंद्रा। इन्होंने अपनी MBA की डिग्री अचीव की है IIM बेंगलोर से, जो आप कह सकते हैं इंडिया टॉप बिजनेस स्कूल्स में इसको कंसीडर किया जाता है, जहां से इनकी फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हुई इन स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप। और आंद्रा कंपनी को स्टार्ट करने से पहले मल्टीपल कंपनीज में इन्होंने काम किया, ठीक है, जहां पर इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं IT में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में है। काफी सारी अचीवमेंट्स हैं इनके खाते में जिनके बारे में मुझे लगता है कि रेलिवेंट नहीं होगा आपको बताना। तो इनका काफी सारा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, हमेशा से एक स्मूथ एक्सपीरियंस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पर मेजर एक इनका माइलस्टोन आप कहेंगे मिड डे मील स्कीम को एक्सपोज उन्होंने किया, जहाँ पर बच्चों को जो चीज़ें वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पा रही थी, वो खाना, वो जो मील्स उनके लिए बनाई जाती हैं वहाँ पर काफ़ी सारे घपले हो रहे थे। तो उसको ट्रैक करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, ठीक है। हालांकि इनका होम टाउन मेंशन नहीं है, बट ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम कि डीपली रूटेड इन बेंगलोर, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस जो है वहीं पर इन्होंने गेन किया है। उसके बाद थोड़ी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। एविड रीडर है, एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, ही लव्स टू ट्रैवल, स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, इस तरह की चीज़ें, और पैशन हम देख सकते हैं डीप टेक एंड सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स। दूसरा नाम आता है अभिषेक मिश्रा। ही इज द को फाउंडर एंड आप ये कह सकते हैं बैकबोन ऑफ आंद्रा सिस्टम्स। ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ NIT जालंधर, एक और बहुत ही खास इंस्टीट्यूशन जो कि पंजाब में मौजूद है जालंधर में। तो वहाँ से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो की। इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं इन कंप्यूटर विजन एंड AI, वो सारी चीज़ें बहुत पहले से समझते आए हैं, जिसकी वजह से ये टीम बहुत अच्छी बन पाई। तो इनका भी बहुत क्रूशियल एक पिवोटल रोल है इन डेवलपिंग आंद्राज इनिशियल AI प्रोडक्ट्स दृष्टि एंड लेटर देन इसके बाद फर्दर जो इस कंपनी का एक बैकबोन कंसिडर हम करते हैं सर्वस्त्रा, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो करता है टूल, उसको इन्होंने बनाया। सो दैट्स हाउ यू नो दे आर जस्ट वर्किंग टुगेदर एंड मेकिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स। इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है इन AI एंड कंप्यूटर विजन। अर्ली प्रोजेक्ट्स इनके काफ़ी सक्सेसफुल माने जाते हैं इनके स्कूल डेज से। बहुत पहले से टेक को लेकर जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे हैं और उन सब प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं जहाँ पर टेक को लाया गया, जिसकी वजह से स्केलेबल AI सोल्यूशन से बना पाए, चाहे वो मिड डे मील की हम बात करें या फिर अभी जो है हेल्थ केयर के लिए कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ दे वर्क। देन इसके बाद एक और टीम मेंबर हैं काफ़ी टैलेंटेड, मिस्टर चैतन्य, एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इनका जो पैशन है वो रोबोटिक्स में है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस में है, जहाँ पर ये हार्डवेयर वाली चीज़ें जो हैं वो सारी देखते हैं। ही इज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 ईयर्स इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ऐसे करके तीन लोगों की टीम है जो बन के आई। इनिशियली दो लोग थे जो मेन विजनरी आप कह सकते हैं जिनकी वजह से कंपनी स्टार्ट हुई, आदर्श नटराजन एंड मिस्टर अभिषेक मिश्रा। तीसरा नाम हमने अभी आपको बताया जो बाद में जुड़े इनके साथ लेकिन काफी इनकी मदद हुई उससे, मिस्टर चैतन्य। आइए थोड़ी सी बात करते हैं की ड्राइवर्स की। भाई कौन से वो ड्राइवर्स हैं जिनके बलबूते पर ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है। पहली चीज है डीप टेक्नोलॉजी। इनका जो एआई का यूज है, कंप्यूटर का जो विजन है, कंप्यूटेशनल पैथोलॉजी है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत फास्टर वे में डायग्नोस कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन एरर्स को भी कम कर सकते हैं और जो टर्न अराउंड टाइम होता है टेट, उसको भी काफी कम कर सकते हैं। इनका फोकस है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, जहां पर ये ऐसे पोर्टेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अफोर्डेबल भी हों और एक्सेसिबल भी हों, जैसे विजन एक्स है, एक इंटेलिस्टेन है, तो ये सारी वो चीजें हैं जो डायग्नोस कर सकती हैं इन अनडिजर्व्ड एरियाज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी वजह से इनका तीसरा की ड्राइवर काफी खास हो जाता है, अ सोशल इम्पैक्ट। एज अ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज है ये कंपनी, बट यहां पर एक

पूरी कहानी से काफी कुछ सीखा है। अब इसी नोट पर हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे। तो दो लोग जो अलग अलग चीजों को समझते हैं, विजन लेकिन सेम रखते हैं, वो मिलकर के आए, उन्होंने एक कंपनी खड़ी करी, मार्केट को समझा, गैप को समझा, एंड देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट प्रोडक्ट। हमेशा स्कोप होता है चीजों को बेहतर बनाने का। ये एक चीज मुझे ऐसा लगता है आपको एज अ थंब रूल लिख लेनी चाहिए कहीं पे, क्योंकि जितने भी केस स्टडीज यहाँ पर हमने डिस्कस किए आज तक, सब में ये चीज निकल के आती है, कॉमन होती है कि आपके कुछ फेलियर्स होते हैं, मल्टीपल चीजों के अटेम्प्ट होते हैं, उसके बाद जाकर आप सक्सेसफुल होते हैं और वहां पर जाकर आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आने लगती है। तो सारे एक्सपीरियंस आपके काम आते हैं। अब इसी नोट पर कि इस शो को आप लोगों को अच्छे से समझा पाया मैं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल शो है, इजाजत चाहूंगा आपसे। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम दोस्तों। मैं आरजे सागर आ चुका हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम, पसंदीदा उन लोगों का जिनको घूमने फिरने में मजा आता है और एक वर्चुअल टूर जिनको मिल जाता है तो चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो जहाँ पर आप बंदा वापस से हाजिर है लेकर एक और खास जगह आपके लिए। यहाँ पर एक और खास जगह को आज हम उठाएंगे, उसको हम यहाँ पर अनकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको बता पाएं कि क्या क्या है वहाँ पर, जगह कौन सी है और बहुत ही खुशनुमा जगह लिख रहा है। यकीन मानिए, अगर आप एक बार वहाँ चले जाएंगे ना, आप वहाँ के होकर रह जाएंगे और आकर मुझे तो आप शुक्रिया अदा कर रहे होंगे ढेर सारा। वेल, कौन सी जगह है, कहाँ पर चलने वाले, तमाम आपके सवाल होंगे, आई नो, इनके जवाब आपको मिलेंगे। अच्छा, जब भी बात घूमने फिरने की होती है और जितने भी लोग उत्तराखंड का मनाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो ऋषि के हरिद्वार, देहरादून एंड नैनीताल भीमताल के अलावा जगह सोच पाते हैं? आई एम श्योर काफी कम हो जाएगा रेशियो अगर ऐसे फिल्टर्स हम लोग लगाएंगे तो। बट उत्तराखंड बहुत बड़ा है, उत्तराखंड में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जो मैं लेकर आता हूँ आपके लिए यहाँ पर। तो फिर से आया हूँ मैं लेकर एक और खास जगह। चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं जगह का नाम क्या है। तो जहाँ पर आज, जगह का नाम है धरचूला। धरचूला एक बहुत ही खास, बहुत ही अंडररेटेड सी जगह है, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, आप गूगल करके अभी के अभी देखिए, किसी मूवी के सीन से कम नहीं लगती है जगह। ऐसा लग रहा है लिटरली आप किसी सिनेमा में जी रहे हो। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी हैपनिंग प्लेस, मतलब मजा ही आ जाए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं, पंचचोली पीक्स के बहुत प्यारे व्यूज मिलते हैं, बिल्कुल पैनोरमिक व्यूज। इसी के साथ आप वहां पर खड़े होंगे, कैलाश मानसरोवर है वहां पे, वहां पर छोटा कैलाश यात्रा का रूट है। तो जब आप वहां पर खड़े होंगे ना, यू विल फील लाइक कि आप कहीं आ गए हैं, किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में आप एंटर कर गए, किसी बबल वर्ल्ड में। यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे स्पॉट्स हैं, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपके मजे आने वाले हैं। आपको कैलाश मानसरोवर का कम से कम आपने नाम ही सुना है और आपका जाने का मन है, यहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारी यहाँ पर आपको कल्चरल चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, बहुत सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात पता क्या है कि जगह बहुत बहुत ज्यादा पीसफुल है, क्राउड बिल्कुल कम है, कमर्शलाइजेशन बहुत कम हुआ है यहाँ पर, मदर नेचर अपने बेस्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जगह बहुत खुशनुमा है, बहुत मजे आने वाले हैं आज के सफर में। तो हो जाइए तैयार, बांध लीजिए अपने अपनी कुर्सी की पेटियां। देखिए, वैसे तो कहने को बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं दुनिया में जो इंसानों ने बनाई है, लेकिन इंसानों की वो खूबसूरती, इंसानों के द्वारा बनाई गई उन चीजों की खूबसूरती फीकी पड़ जाती है जब आप देखते हैं मदर नेचर की खूबसूरती। तो ऐसी एक खूबसूरत जगह है हमारे पास जिसका नाम है जौलजीबी। जौलजीबी फॉल करती है धारचूला में, थोड़ा सा अलग आपको जाना पड़ेगा, पर इस जगह पर जाने के बाद आप शायद पूरा दिन यहाँ पर बिताना चाहेंगे, आपका मन नहीं करेगा एक दो घंटे में वापस आ जाएं। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा खास कुछ है भी नहीं, सिर्फ कुछ पहाड़ हैं, नदी है, खुले मैदान है, दैट्स इट। पर ये चीजें इतनी खुशनुमा है ना वहां पर, इतनी अच्छी है, आप लिटरली वापस नहीं आना चाहेंगे, आप कम से कम एक दिन वहां पर रहना चाहेंगे। दरअसल जौलजीबी जो है वो दो नदियों का एक संगम है, एक है गोरी नदी, एक है काली नदी। गोरी नदी में गोरे पत्थर होते हैं और काली नदी में काले पत्थर होते हैं, और ये किसी इंसान ने नहीं डाले हैं, ये मदर नेचर ने खुद से वहां पर डाले हैं। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हेन, पर ये जगह बहुत खूबसूरत है। तो ये दो नदियां हैं जो छोटे छोटे राहों से निकलती हैं और यहां पर आकर मिलती हैं, और यहां पर आकर जब वो मर्ज होती है ना, जो पॉइंट है संगम वाला, वो बहुत प्यारा है। मतलब इट फील्स लाइक आप वहां पर लाइव मेडिटेशन कर रहे हैं खुली आंखों से। आप बैठकर जो देख रहे होंगे ना, जो पीसफुल मोमेंट्स वहां पर आप जी रहे होंगे, वो आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। इसी के साथ यहां पर जो पहाड़ है, मतलब नदियां पहाड़ों के बीच से निकलती है और पहाड़ बिल्कुल हरे भरे पहाड़ है। पहाड़ों के ऊपर घने आपको जंगल देखने को मिलते हैं, पहाड़ों के नीचे से नदियों कर निकलती है जो आगे जाकर मर्ज हो जाती हैं, दो नदियां। इसी के साथ उस नदी के किनारे पर एक खुला मैदान है जहां पर कुछ लोग रहते हैं, फार्मिंग करते हैं। खुले मैदान में बहुत सारी घास उगी हुई है और कुछ फसलें वहां पर उगाई जाती हैं। ऊपर आपकी नजरें जाएंगी, नीला आसमान, खुला आसमान जिसपे कभी कभी सफेद बादल आ जाते हैं, और अगर रात को आप वहां रुकते हैं तो आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और आपको चन्ना मामा दूर के बहुत पास नजर आते हैं वहां से। तो इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन मैं इस जगह का नहीं दे सकता हूँ, और अगर आप सच में मदर नेचर से प्यार करते हैं, अगर आप सच में एक वॉन्डरलस्ट हैं, तो आपको पता होगा जो मैंने बोला है, जो डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको दिया है, इससे आपको क्या फील मिलने वाला है। एंड इफ यू गॉट इट, प्लीज गो एंड विजिट दिस प्लेस। नाम है जगह का जॉल जेबी, और ये जगह फॉल करती है हमारे उत्तराखंड की बहुत ही अंडररेटेड लेकिन बहुत ही खास जगह के अंदर। नाम है इसका धरछोड़ा। तो अगली जगह आती है ओम पर्वत। ओम पर्वत मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, स्पेशली हिंदूज के लिए बहुत खास जगह बन जाती है। यहां पर इस जगह को दो तीन नामों से पुकारा जाता है, ओम पर्वत, छोटा कैलाश, आदि कैलाश। जी हाँ, ये वही जगह है। तो ओम पर्वत बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है जहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं मन्नतें लेकर, और वहां पर जाकर ऐसे मानते हैं कि पूरी हो जाती है। देखिए, जो बड़े वाला कैलाश पर्वत है वो तिब्बत में है, लेकिन डिट्टो सेम टू सेम ये पर्वत है, ये माउंटेन है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, एक हफ्ता, दस दिन, बारह दिन इजीली यहाँ पर बिताते हैं लोग, और यहाँ पर जो उन्हें सुकून मिल रहा होता है भाई, ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लिटरली वो सुकून, वो पीस। हालांकि कुछ चैलेंजेस वहां पर जुड़े होते हैं, जैसे कि बर्फीले तूफान वहां पर आते हैं, जैसे कि हाई एलिवेशन पर होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बस आइए और आकर वहां चले जाइए। आई वुड सजेस्ट एक बार ट्राई करिए, एक बार पढ़िए इसके बारे में। ओम पर्वत इस जगह का नाम है, और ये जगह बहुत ही खास है, बहुत दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं विजिट करने के लिए। कोई एक वजह नहीं होगी इस जगह को डिस्क्राइब करने की, बहुत सारी वजहें हैं जिस वजह से लोग यहाँ पर जाते हैं। कुछ ऐसे भी दीवाने होते हैं जिनको ट्रैकिंग करने में मजा आता है, ऊपर जाकर पहाड़ों के ऊपर समय गुजारना पसंद है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े वाले माउंट कैलाश नहीं जा पाते हैं, तो वो ओम पर्वत जाना पसंद करते हैं, क्योंकि डिट्टो सेम टू सेम है। हाँ, वो थोड़ा ऊंचा है और ये थोड़ा सा कम है उससे। इसी के साथ और बहुत सारी वजहें हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर जाते हैं अलग अलग मोटिव लेकर, पर एक चीज सबको मिलती है वहां पर, एंड दैट इज पीस। आपको भी जरूर मिलेगा अगर आप जाते हैं तो एक बार ओम पर्वत के बारे में पढ़िएगा जरूर। एंड मैं भी ये सोच रहा हूँ कि धरछोड़ा इतनी अंडररेटेड जगह है, और उसमें इतना बड़ा एक पहाड़ है जो माउंट कैलाश है दूसरा, तो लिटरली मतलब कुछ तो गड़बड़ है हमारे बीच में, जो लोगों को पता ही नहीं है इन जगहों के बारे में। वेल, अब आपको पता चल गया तो आप जरूर बताइएगा अपने आसपास के लोगों को, अगर वो जाने का प्लान करते हैं और वो कहते हैं हमें कुछ एडवेंचरस करना है, तो ओम पर्वत जरूर रेकमेंड करिएगा। छोटा कैलाश या आदि कैलाश, किसी भी नाम से आप उसको पुकार सकते हैं। धरछोड़ा के सफर में अगर अगली जगह की बात करें तो वो है एस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी। उन लोगों के लिए बिल्कुल जन्नत के तौर पे काम करेगी ये जगह, जिनको वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है। चाहे बात आप एनिमल्स की करें, बात आप वेजिटेशन की करें, आपको बहुत एक अच्छी खासी यहाँ पर रेंज मिल जाती है, बहुत वाइड एक रेंज आपको मिल जाती है अगर आप जाएंगे तो। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो जगह मौजूद है, ये मौजूद है बिल्कुल एक हिल टॉप के ऊपर, तो एक हिल आपको चढ़ के जानी पड़ेगी। वहां तक जाना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपके उस जाने के सफर को भी कंसीडर करूँ ना, तो वो भी अपने आप में एक जगह है, क्योंकि वो सफर बहुत खुशनुमा है। फिर उसके बाद जब आप यहाँ तक पहुंच चुके होंगे, तो ऊपर जाकर जब आप बादलों के करीब खुद को पाएंगे, यू विल फाइंड कि पीस कितनी प्यारी चीज है और कितना इजीली हमें मिल जाती है। इट्स जस्ट कि हमें वो एनवायरमेंट चाहिए होता है, हमें वहां तक पहुंचना होता है। कई बार शहरों में जो भागदौड़ भरी जिंदगी हम लोग जीते हैं, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कुछ प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा टाइम भी निकाल पाते हैं अपने लिए, हम थोड़ी भी देर नहीं देते खुद को कि हम पीसफुल टाइम बिता पाएं, 10 मिनट 20 मिनट हम आराम से बैठ पाएं, इत्मीनान से सोच पाएं चीजों को। लेकिन जब आप इतनी शांत जगहों पर जाते हैं जहां पर आपकी आंखों को भी सुकून मिल रहा होता है, इतनी सारी हरियाली होती है, इतने अच्छे अच्छे व्यूज होते हैं, और आपके कानों को भी सुकून मिल रहा होता है, वो बर्ड्स जब चर्पिंग कर रहे होते हैं, या वो प्लांट्स और जो वहां पर ट्रीज होते हैं उनके पत्तों के हिलने की जो आवाज होती है, वो आपके कानों को राहत दे रहे होते हैं, सुकून पहुंचा रहे होते हैं, और आप बस थॉटलेस होते हैं, कोई थॉट नहीं होता आपके दिमाग में, आप आराम से बस उस जगह को निहार रहे हैं। सो ये होता है पीस। अब भाई जाइएगा जरूर एस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी। शो में अगर बात करें अगली जगह की, तो अगली जगह है चिरकिला डैम। चिरकिला हालांकि धरछोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, पर यह जगह बहुत खास है। एक तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर डेप्थ नजर आती है, जब आप इस डैम के ऊपर खड़े होंगे तो आप बहुत नीचे जब देखेंगे तो आपको अलग सा कुछ अनुभव होने वाला है। मोर ओवर ये डैम जो है ये बनाया गया है काली नदी के ऊपर। काली नदी, हालांकि मैंने अभी आपको गोरी नदी और काली नदी के बारे में बताया था, दोनों ही नदियां एक जगह पर आकर मिलती हैं, एक जगह संगम होता है उनका, लेकिन काली नदी जो है वो देवी काली को डेडिकेट की जाती है, एंड ये रिवर नेपाल से होकर निकलती है। तो इस रिवर में जब आप आगे जाकर पाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, जहां पर 1500 किलोवाट की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, इतनी कैपेसिटी है यहाँ पर। डैम की अगर आप बात करेंगे तो 1 किलोमीटर लंबा यहाँ पर डैम बनाया गया है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है। जल्दी स्टेट गवर्नमेंट वो आपको देने वाली है, उसके ऊपर काम चल रहा है। बट स्टिल द प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल एंड पीसफुल, चिरकिला डैम। और शो अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर लोकल मार्केट्स के बारे में। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, हालांकि यहाँ पर आपको बहुत कम दुकानें देखने को मिलेंगी, लेकिन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर लोकल हैंडमेड चीजें खरीदने के। एंड हर बार अपने शो में मैं इस चीज को प्रमोट करता हूँ, वोकल फॉर लोकल। जहाँ पर हम अगर कभी भी कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहां पर जो लोकल लोग होते हैं, जो हैंडमेड चीजें लेकर आते हैं, हमें उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वेंडर्स ऐसे नजर आएंगे जो नेपाल से भी आते हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी चीजें बेचते हैं जो हैंडमेड बना के लाते हैं। इसी के साथ ज्वेलरी, क्लोथिंग, परफ्यूम्स एंड कॉफी, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इनमें अच्छी बात यह होती है कि इनमें से मोस्टली जो चीजें होती हैं वो हैंडमेड होती हैं। जैसे क्लोथिंग की आप बात कर लें, ज्वेलरी की आप बात कर लें, वहीं पर लोगों ने बनाते हैं एंड उन्हीं से उनका सर्वाइवल चलता है। तो जाइए और जाकर एक्सप्लोर करिए, और कुछ अच्छा लगता है तो लेकर जरूर आइएगा। ऐसे करके आप वोकल फॉर लोकल को भी प्रमोट कर रहे होंगे, मोर ओवर आपको भी काफी अच्छा लगेगा क्योंकि कुछ यूनिक आप अपने लिए ला रहे होंगे। तो इतना ही था हमारा आज का शो। अब चलते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, खैरियत से रहें। गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूँ आरजे सागर। शो का नाम है मुसाफिर हूँ यारो, जिसमें बात करते हैं हम ट्रैवलिंग की, बात करते हैं घूमने फिरने की, बात हम वो करते हैं जिनसे आपके दिल को सुकून मिलता है। और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मधुबन 107.8 के साथ, जो है आपके शहर फरीदाबाद का और आपका अपना रेडियो स्टेशन। तो मैं देखिए, पहले मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता दूं। वैसे हमारे जो रेगुलर लिसनर्स हैं उनको पता होगा, बट न्यू लिसनर्स को बताना चाहता हूं कि ये जो शो है हमारा, ये पूरा का पूरा बेस्ड है ट्रैवलिंग के ऊपर, जहां पर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की। हम कोई भी एक पर्टिकुलर जगह उठाते हैं, उस जगह के बारे में बात करते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप कहां कहां पर जा सकते हैं और क्या कुछ है आप जो एक्सप्लोर करने वाले हैं वहां पर। साथ साथ मैं आपको बताऊं तो इस शो को जो हमने स्टार्ट किया था, वो मोटिव ये था कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अंडररेटेड भी हैं बट वो बेस्ट है और लोगों को उनके बारे में पता नहीं है, तो जो गैप्स हैं उनको फुलफिल करने का काम हम यहाँ पर करते हैं। बहुत कुछ हमने देखा, बहुत सारे व्लॉगर्स देखे, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े हम लोगों ने, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहें रह जाती हैं लोगों से, लोगों को पता ही नहीं उनके बारे में। अब जब लोगों को नहीं पता है तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब जो वो गैप है ना, कि आपको तो नई जगहें एक्सप्लोर करनी है, अच्छी अच्छी जगहें आपको जाना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे जाएंगे, तो उसी गैप को फुलफिल करने का काम हम यहाँ पर करते हैं इस शो के माध्यम से। तो फिर से मैं हाजिर हूँ लेकर एक और मजेदार सा शो, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक और जगह की, और मैं आपको बताऊंगा आज कि वो कौन सी जगह है, कहाँ पर आपको जाना चाहिए वहां पर, और क्या कुछ आपको मिलने वाला है, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, एंड आकर आप अपना फीडबैक जो है वो कैसे शेयर करने वाले अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली आप शेयर करेंगे, और जब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है यार, उनका भी मन बनेगा वहां पर जाने का। तो बताएंगे आपको कहां पर आज जाने वाले हैं, और जिस जगह का मैंने जिक्र किया कि आज बहुत खास रहने वाली है, तो जगह है गुजरात में। गुजरात में आप सभी को याद हो तो एक बार भूकंप आया था और उस भूकंप से एक पूरा का पूरा शहर था जो उजड़ के रह गया था। उसके आसपास की जगह है जहां पर आज हम चलने वाले हैं। ये जगह बहुत खास है, ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जगह फॉल करती है और यहां पर बहुत कुछ है आपको जो देखने वाला है, बहुत कुछ है लिटरल। अगर आप एक्सप्लोरर है ना, अगर आप वाकई में चाहते हैं नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ नया हो आपके सामने, वो जो चीजें जिनसे आप बोर हो चुके हैं वो रिपीट ना हो, तो ये जगह आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। जगह का नाम है कच्छ। कच्छ की तरफ आज हम चलने वाले हैं। वैसे इस कच्छ की बात करूं तो एक काइंड ऑफ आइलैंड की तरह है ये, जो पूरा का पूरा टॉर्टल शेप में है, जहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा सा अनुभव जो मिलने वाला है। यहां पर इतिहास की बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, यहां पर आपको मदर नेचर के बहुत प्यारे प्यारे रूप देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर ओवरऑल कुछ मिक्स से आपको इमोशंस होने वाले हैं, बहुत प्यारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बट यहाँ पर जो हाईली रिकमेंडेड टाइम होता है वो होता है फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, क्योंकि बाकी टाइम यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, ऊपर से यहाँ पर जब थोड़ी भी हवा चलती है ना तो रेत उड़ती है। तो अगर आप यहाँ पर जाने का प्लान करते हैं

0: खैनी, गुटका, जर्दा, पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है सागर, शो का नाम है मुसाफिर हूँ यारो, और इस टाइम आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। और अभी तक अगर आपको फील गुड फील लाइव वाला फैक्टर नहीं मिला है तो चिंता मत करिए, क्योंकि हमारा जो शो है ना, ये ट्रैवलिंग के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पर बहुत सारा, मतलब लिटरली बहुत सारा भर भर के हमें वो फील गुड वाला फैक्टर मिलता है। तो फील गुड वाला फैक्टर आप तक डेफिनेटली डिलीवर हम करने वाले हैं। मेरा नाम है सागर, या फिर आप मुझे मुसाफिर भी कह सकते हैं। और अगर इन बिटवीन आपको कोई अपनी फरमाइश का गाना चलवाना हो, या कोई बात है जो मुझसे करनी हो, या कुछ और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचानी हो, सो 8010781078। ख्याल जब भी वादियों का आता है तो मन करता है कि सुकून, शांति, पीस, नेचर के साथ कनेक्शन, जहां पर हम बिल्कुल थम चुके हो, जहां पर बिल्कुल भीड़ भाड़ ना हो। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट चीजें होती है। जब भी हम वादियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पर हमें बहुत सारा क्राउड देखने को मिलता है, बहुत सारे ब्लॉगर्स भी मिल जाते हैं देखने को। देखिए, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पार्ट ये है कि बहुत सारी ऐसी भी वादियां हैं जहां पर आप बिल्कुल आइसोलेशन में जाकर वो जो आपकी खुद की कंपनी है उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब यहां पर एक गैप है क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि वो जगह कौन सी है जहां पर आप इस तरीके से जा सकते हैं, तो आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? करेक्ट है। तो ऐसे में हम यहां पर लेकर आते हैं वो सभी अंडररेटेड जगह है जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए, और जहां जाकर आपको वाकई में वो सुकून जो आप ढूंढने निकले हैं वो मिलने वाला है। और ऐसी हमारी आज की जगह है जिसका नाम है मशोबरा। अगर आप मशोबरा जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आउटशाइन कराती है, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा वाटरशेड, जैसे कि यहाँ की जो पानी की सप्लाई है वो शिमला जाती है, यानी कि अगर आप शिमला में जाकर पानी पिएंगे तो आप पानी एक्चुअल में वो पी रहे होंगे जो मशोबरा से निकला होगा। यहाँ पर एक रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी है जो बहुत ही उम्दा है, और बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज है जो यहाँ पर नहीं है, वो है क्राउड। बिल्कुल ये ओवर क्राउडेड जगह नहीं है, बहुत ही प्यारी सी जगह है, आपको जाकर बहुत अच्छा लगने वाला है। आप जो क्वालिटी टाइम सोचकर जा रहे हैं, जब वहां वादियों का मजा लेने जा रहे हैं, वो आप यहां पर ले पाएंगे। देखिए, शिमला के काफी करीब मौजूद है, ऑल्दो शिमला बहुत फेमस एक हिल स्टेशन है। शिमला जैसे ही हमारे पास मनाली भी है, और भी ऐसे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जो फेमस है। लेकिन क्या ये जरूरी है जिस इंसान को सुकून मशोबरा में जाकर मिलने वाला है उसको शिमला में भी मिल जाए? बिल्कुल नहीं। हर इंसान का अलग टेस्ट होता है, हर इंसान को अलग चीजें चाहिए होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको क्राउडेड जगहें पसंद है, जिनको लोगों के बीच जाना, उनसे बातें करना, उनसे दोस्ती करना, उनके साथ फोटोज क्लिक करना, नए नए रिश्ते बनाना पसंद है। तो उनके लिए ये जो फेमस जगह है वो बनी हुई है, वो वहीं पर है, वहां पर आपको डेफिनेटली क्राउड मिलता है 12 के 12 बजे। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी है जो जाना तो चाहते हैं नेचर के बीच में, बट जिन्हें सुकून चाहिए, तो मशोबरा उसका एक एग्जाम्पल है। तो आपको डेफिनेटली इस जगह को कंसिडर करना चाहिए अगर आप ढूंढ रहे हो ऐसी जगह पर जाकर आपको वाकई में सुकून मिले। सो मशोबरा जगह का नाम है क्योंकि बात हो रही है मशोबरा की। और जैसा कि मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ किया है कि एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड नहीं मिलता है देखने को, जहां पर लिटरली आप उस पीस को एंजॉय कर सकते हैं। तो बिना अपना वक्त गवाए चलते हैं पहली मंजिल की तरफ। पहली मंजिल जो मशोबरा के सफर में हमारी रहने वाली है वो है रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि एशिया का सबसे बड़ा वाटरशेड है, मतलब यहां से जो पानी की सप्लाई है वो शिमला जाती है। बट सिर्फ इतना काफी नहीं है, यहां पर जाकर बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। देखिए, पॉपुलर है पूरे कॉन्टिनेंट में, ये बिल्कुल हम एग्री करेंगे इस चीज से। बट इसके साथ साथ यहां पर बहुत सारे आपको ऐसी सराउंडिंग्स मिलती है जहां पर जाकर आपको सुकून मिलता है, लाइक कि हरे भरे जंगल, घने जंगल आपको यहां पर जाकर मिलते हैं। साथ साथ अगर अपने टाइम को आप एक बर्ड वॉचिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए यहां पर एक ऑप्शन है। आप यहां पर जा सकते हैं, बर्ड वॉचिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक और सबसे अमेजिंग फैक्टर जो मुझे लगता है वो है यहां का वेदर, जो मतलब 12 के 12 महीने आपको सुकून देने वाला है। बहुत उम्दा यहां पर मौसम रहता है, मतलब ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और अगर यहां पर स्नोफॉल हो तो मतलब सोने पे सुहागा, आपकी निकल पड़ी लिटरली। तो बहुत मजेदार ये जगह है। एंड हाँ, वेदर का जो आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिलने वाला है वो ये है कि आप अपने कैंपिंग बैग्स जो है पैक करके निकल सकते हैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ। तो बस निकल जाइए अपने बैकपैक्स लेकर और जाकर एंजॉय करिए, करिए कैंपिंग दोस्तों के साथ वहाँ पर, बोनफायर के साथ साथ गिटार प्ले करिए, गाने गाइए, जो भी आपको ठीक लगे वो करिए। बट हाँ, अपनी दूरबीन अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा अतरंगी सा जानवर वहां से गुजर रहा हो जिसको शायद आपने कभी मैगजीन्स में देखा हो या फिर टीवी पर देखा हो और आज वो लाइव आपके सामने है। तो अगर दूरबीन नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसे में दूरबीन अपनी अपने साथ लेकर जाए, साथ साथ बंदरों का ख्याल भी रखे क्योंकि वो चुपके से आते हैं, सामान उठाकर ले जाते हैं। तो ये जगह है रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी, जहाँ पर बहुत सी अतरंगी चीजें होने वाली है, नेचर मिलने वाला है, एक लार्जेस्ट वाटरशेड आपको देखने को मिलने वाला है। मुझे पता है आपको इंतजार नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं हो रहा है, अगली जगह है ही इतनी मजेदार। तो जिस जगह का मैंने जिक्र किया उसका नाम है क्रैगनैनो। क्रैगनैनो एक पिकनिक स्पॉट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली ये एक पूरा विला है जो एक टाइम पर शेवलियर नाम के एक इंसान थे जो बहुत ही फेमस फोटोग्राफर थे इटली से, और उन्हें इंडिया का कल्चर इतना पसंद आया कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने एक विला बना दिया। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो अपनी रूट्स को भी कैसे छोड़ते ना, तो इसीलिए उन्होंने अपने इस विला को नाम दिया जो उनका टाउन था इटली में उसके नाम पर, यानी कि इटली में एक टाउन है क्रैगनैनो, उसी के नाम पर इस विला को जो है रखा गया। ऑल्दो जगह बहुत ही अमेजिंग है, आज यहाँ पर लोग जाते हैं, स्टे भी करते हैं और बहुत ही मजेदार फील जो है लेकर आते हैं। विला आपको लिटरली ऐसा लगने वाला है, बताऊं तो जैसे सिंगापुर में कभी आपने देखी हो कुछ इमेजेस जहां पर स्नोफॉल होती है, तो बहुत ही अमेजिंग एक मौसम हो जाता है और घरों के ऊपर जो बर्फ गिरती है तो बहुत अच्छा सा लगता है। सो लिटरली ये वैसा है, और सही बता रहा हूं, इसको आप किसी ऑर्डिनरी विला की तरह कंसीडर मत करिएगा क्योंकि ये एक अच्छी खासी हाइट पर मौजूद है, यानी 7700 फीट की ऊंचाई जो है इसकी है। यहां से आपको बहुत ही घने जो है पाइन और ओक के जो है फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग आपको घर बने हुए देखने को मिलते हैं, साथ साथ यहाँ पर आप बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स को जो है वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पर आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देती है, आप उनको जाकर एक्सपीरियंस करें। तो जगह का नाम है क्रैगनैनो, यहाँ पर भी जरूर जाइएगा। एंड जब जाए तो एक मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ, अपना फोन अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर कैप्चर करने वाले होंगे। ये मशोबरा की बात हो रही थी, मशोबरा के सफर पर आज हम निकले हैं, तो मशोबरा में एक बहुत ही ग्रैंड होटल अवेलेबल है जहाँ पर आप जा सकते हैं। होटल का नाम है वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल। देखिए मैं अपने शो में होटल्स की बात तो नहीं करता हूँ, आप यही सोच रहे होंगे, डेफिनेटली आज भी मैं नहीं करने वाला था, लेकिन इस एक जगह ने मुझे मजबूर कर दिया। आप यहाँ पर स्टे करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, बट हाँ यहाँ आप एक बार जाकर बाहर से जरूर देखिएगा इस होटल को, क्योंकि होटल बहुत ही कमाल है और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये भी मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। ऑरिजिनली एक टाइम पर ये रेजिडेंस हुआ करता था वहाँ के लॉर्ड किचनर, जो खारटाउन के लॉर्ड किचनर थे उनका, और इस बिल्डिंग को बहुत पहले बनवाया गया था। एग्जैक्ट डेट मेरे सामने यहाँ पर नहीं है, लेकिन 1993 में इसमें आग लग गई थी। ये इस होटल का जो है एक मैं कह सकता हूँ कि अलग पार्ट है। आग लग जाने के बाद इसको वापस से जो है रिस्टोर किया गया, सारी चीजें जो भी आर्किटेक्चर उस टाइम पर लगाए गए थे, यानी कि सपोज इसको 1800s में अगर बनवाया गया था, 1993 में अगर इसमें आग लगी, तो 150 साल पुराना आर्किटेक्चर वापस से रिस्टोर किया गया। ये इस होटल की जो है यूनिक चीज है। और तो अगर आज की बात करें तो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स का, यहाँ पर आप जा सकते हैं। और यहाँ पर बाहर एक गार्डन मौजूद है जो बहुत ही अमेजिंग है, लाजवाब है। लिटरली जब आप यहाँ पर खड़े होंगे आपको ये नहीं लगेगा कि आप इंडिया में हैं, आपको लगेगा कि यार मैं मतलब कहीं आ गया हूँ, और आपको प्राउड वाला फील जो मिलने वाला है कि यार मैं कोई किंग विंग मतलब कोई ऐसा बाहुबली शाहुबली हो गया जो इतनी बड़ी जगह पर खड़ा हो। ये मोमेंट आपको ये होटल देता है, साथ साथ यहाँ पर खड़े होकर आपको जो व्यू मिलने वाला है वो पूरे शहर का मिलने वाला है। बर्ड आई व्यू अगर आपको चाहिए पूरे शहर का, तो वो भी आपके लिए एक रीजन हो सकता है जो आपको यहाँ पर ले जाए और यहाँ जाकर आप खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो। वेल, इसी साथ अगली जगह की अगर बात करूं, जगह का नाम है जाखू टेम्पल, हनुमान जी का टेम्पल है। जब भी बात शिमला की होती है, जिक्र जब भी शिमला का किया जाता है, तो सबसे पहले एक जो इमेज हमें दिखाई जाती है और हमारी नजर में भी आ जाती है अगर कभी हम शिमला गए हैं, तो वो है हनुमान जी का बड़ा सा एक स्टैचू। बिल्कुल आनी चाहिए क्योंकि यूनिक पॉइंट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हनुमान जी का जो स्टैचू है वो यहाँ पर मौजूद है। बट सिर्फ इतना काफी नहीं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है ऑफ कोर्स है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाइक जब आप यहाँ इस मंदिर तक पहुंच रहे होंगे तो आप बहुत सारे नेचर के बीच से होकर गुजरेंगे, और जब आपको उन पहाड़ों की खुशबू और उन पेड़ों की खुशबू आपकी नाक के जरिए होते हुए आपके दिल तक पहुंचेगी, तो आपको सुकून मिलने वाला है। वो जो फील ऑफ फुलफिलमेंट है वो आपको मिलने वाला है इस जगह पर जाकर। तो यहाँ पर जाइएगा और आकर मुझे बताइएगा कैसा आपको लगा। वेल, बहुत सारे लोग हैं जो होकर आए होंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ये शिमला में मौजूद है, जाइए जाइएगा जरूर, लेकिन अगर नहीं गए हैं अभी तक।
3: और अगली जगह जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है महासु पीक एंड फेयर। अगर आप लिटरली बहुत छोटी छोटी चीजों को और जो कल्चरल चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करने के बहुत बड़े फैन हैं तो ये जगह आपके लिए है। इवन मैं कहूंगा ये जगह आप ही के लिए है, बिल्कुल ये जगह आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मई के महीने में जाएंगे तो आपको बेस्ट वर्जन उस चीज का मिलने वाला है, यानी कि बेस्ट जो चीजें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है महासु जटारा, जो होता है थर्ड ट्यूसडे ऑफ मे, जो भी मे का थर्ड ट्यूसडे होता है उस ट्यूसडे को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे चीफ गेस्ट आते हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं, साथ साथ यहाँ पर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपका मन मोह लेंगी, जैसे कि वहाँ के ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग, जैसे कि वहाँ का ट्रेडिशनल डांस, और सिर्फ वहाँ का नहीं अलग अलग जगहों का। अगर आप हरियाणा से हैं और आप कुछ रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। साथ साथ अगर आपको किसी और स्टेट का अगर डांस वहाँ पर देखना है या कोई और कल्चरल चीज देखनी है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे पेंटिंग बनाने के शौकीन है या फिर उन्हें तीरबाजी का शौक है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी यहाँ पर कराई जाती है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं, पर जगह का नाम आपको अभी लिखना होगा, महासु पीक एंड फेयर। यहाँ पर जाइएगा, मई के महीने में आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बट स्टिल अगर आप वो एक चीज जो है आपको नहीं एक्सप्लोर कर लिया तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास मशोपुरा में एक्सप्लोर करने को। अगली जगह पर हम चल रहे हैं जिसका नाम है रिट्रीट बिल्डिंग। ये छारा में मौजूद है, एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करूं मशोपुरा से थोड़ी सी दूरी पर है ये, बट हाँ एक टाइम पर ये जो है इंडियन प्रेसिडेंट का रेजिडेंस हुआ करता था। इसको 1850 में बनवाया गया था, और जब इसको बनवाया गया था ये एक मेजर अट्रैक्शन था जो लोगों को विवश करता था कि वो दूर दूर से घूमकर जाएं और शिमला जाकर या फिर इस एरिया में जाकर स्टे करें। ये बहुत बड़ा एक टाइम पर अट्रैक्शन हुआ करता था, और आज भी अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आज वो अट्रैक्शन नहीं है, बट हाँ आज शायद आप उससे उतना कनेक्ट ना कर पाए। जो चीजें आज आपको वहां पर देखने को मिलती है वो शायद आमतौर पर आपको देखने को मिल जाती है शहरों में। यूजुअली क्या होता है क्योंकि आर्किटेक्चर अब जो है काफी, मैं कहूंगा कि उसको काफी जो है एक्सपोजर मिल चुका है, बट यहां पर जाइए पुराने टाइम का आर्किटेक्चर जो आपको देखने को मिलेगा वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। वेल अगर इसके हाइलाइट्स की बात करूं तो यहां पर वुडन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है विद दज्जी वॉल कंस्ट्रक्शन, ये एक टाइम पर इस्तेमाल किया जाता था। आप जाइए और जाकर देखिए। और पर्सनली अगर बात करूं तो प्रेसिडेंट भी ना ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करते थे कि वो अपना टाइम यहां पर गुजारे, इसलिए समर हॉलीडेज का वो वेट किया करते थे उस टाइम पर और यहां पर आकर वो रहते थे। आप जाइए जाकर देखिए, आपका जो भी अनुभव हो मुझे बताइएगा। वेल अगर आप हिस्ट्री से प्यार करते हैं तो आपका अनुभव बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पर्सनली मैं करता हूं नेचर और हिस्ट्री से, और यहां पर दोनों ही चीजें हमें मिलती हैं। नेचर के बीच में ऐतिहासिक चीजें हमें एक्सप्लोर करने को मिल रही है। अब आपको देख रहे जाकर कि आपको कैसा लगा। अगली जगह जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है तत्तापानी। तत्तापानी अपने नाम से बहुत कुछ आपको क्लियर कर रहा है। तत्तापानी बेसिकली एक गांव है जो 60 किलोमीटर दूर है शिमला से, मतलब मशोबरा से इतना दूर नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट इतना आपको 40-50 इतने पड़ने वाला है। पर अगर आप इतनी दूर गए हैं तो यहाँ पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है भगवान शिव का वरदान है वहां पर एक तालाब को, वहां पर गर्म पानी आता है 12 के 12 महीने, और लोकल विलेजर्स से अगर आप पूछेंगे तो उनके हिसाब से ये बेस्ट प्लेस है पूरे रीजन में अगर आपको जो एक्सप्लोर करनी है तो। सो यहाँ पर जाकर यूजुअली लोग बोलते हैं ऐसा कि उनका जॉइंट पेन, उनका और कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक हो जाती है, दूर हो जाती है। तो भाई आप भी जाइए और जाकर देखिए कैसा आपको लगता है। इसी के साथ साथ एक और जगह जिसका नाम है शाली तिब्बा। शाली तिब्बा एक और विलेज है जो शिमला से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और मशोबरा की बिल्कुल जड़ में मौजूद है। यहां से आपको बहुत अमेजिंग व्यू मिलता है। सो व्यू के लिए आप यहां पर जा सकते हैं, 360 डिग्रीज व्यू आपको यहां पर मिलता है कुफरी का, फागू का, शिमला का, डारकंदा हिल्स का। 2873 मीटर की हाइट पर यह जगह मौजूद है और यहां पर एक मंदिर भी है जहां पर लोग जाते हैं और जाकर पूजा प्रार्थना करते हैं। तो ये थी वो सभी जगहें जो मशोबरा में हमें कवर करनी थी। आई गेस हम कर चुके हैं सारा कुछ कवर। सो अब आपका वक्त है वहां पर जाने का। आप जाइएगा और आकर मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेल देखिए मैं एक होस्ट हूँ, मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो रिसर्च करके लाता हूँ, कोशिश करता हूँ अलग अलग फ्लेवर्स उसमें डालने की। माइट भी कुछ चीजें आपको इनमें से पसंद आएंगी और कुछ चीजें शायद आपको नहीं आएंगी पसंद, क्योंकि वो आपके टाइप की नहीं होंगी। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे टेस्ट हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें जो है कवर करनी होती है। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई जगह आपको आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मिली होगी। वेल फिलहाल मेरा वक्त हो चला है शो को यहाँ पर खत्म करने का, तो मैं चलता हूँ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटूंगा लेकर शो को। तब तक के लिए गुड बाय।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
1: वेल हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूँ आरजे सागर, आया हूँ लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। इस वक्त आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, जो कि है आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी और शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ये शो बहुत स्पेशल हो जाता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। रीजन बीइंग, यहाँ पर हम लोग काफी सारी चीजों की बात करते हैं जिनके बारे में अमूमन बात नहीं होती है। या फिर ये कहूं कि अगर आप किसी तरीके से कोई ऐसा राबता नहीं रखते हैं यू नो लॉ एंड ऑर्डर से, कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो जाहिर सी बात है इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए बनी तो होंगी पर आप उनसे वाकिफ नहीं होंगे। इसी एक उद्देश्य के साथ हम इस शो को लेकर के आते हैं और यहाँ पर हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मानव रचना यूनिवर्सिटी से अमूमन जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो यहाँ पर शामिल होते हैं और जो अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ यहाँ पर आते हैं, हम हर बार एक नए मुद्दे के साथ यहाँ पर बैठते हैं और कोशिश सिर्फ एक कि आपको हम एक जागरूक नागरिक बना सकें और आपके लिए क्या क्या चीजें इस देश में मुहैया कराई जाती हैं आपको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके बारे में डिस्कशन कर सकें। आज फिर एक बार हाजिर हैं हम यहाँ पर लेकर एक और खास शो। आज हमारे साथ हैं मिस्टर आदित्य, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आदित्य सर जो हैं अगेन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मानव रचना यूनिवर्सिटी से हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और आज हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। खास तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द बातें घूमेंगी और मैं आपसे सलाह ये भी देना चाहूंगा आप सभी को, अगर आप भारतीय एक नागरिक हैं, कभी भी आपको जीवन में मौका मिले, एक बार भारतीय संविधान को पढ़िएगा जरूर। उसमें क्या लिखा गया है, क्या वो चीजें हैं, कैसे वो आज भी आपके लिए रेलिवेंट है, तमाम चीजें आपको समझ में आएंगी। इट्स लाइक द सोल ऑफ आर डेमोक्रेसी, तो इसलिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नाउ ऑन दिस नोट, बिना किसी देरी के स्वागत करेंगे आदित्य सर का और अपने शो को स्टार्ट करेंगे। सो हाय सर, वेलकम टू आवर शो।
2: हेलो सर, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो। पिछली दफा हमने शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी, आज दोबारा मुझे मौका मिल रहा है आने के लिए, सो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट वी आर टॉकिंग।
1: जी सर, हम लोग बात करने वाले हैं काफी सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले तो मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूंगा। यू एज एन एक्सपर्ट मुझे प्लीज ये बताइए कि हर एक नागरिक के लिए, हर एक सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना कितना जरूरी है? जस्ट वेरी बेसिक क्वेश्चन
2: सर। टू आंसर दैट क्वेश्चन, सबसे बुनियादी चीज जो एक नागरिक कर सकता है वो ये है, क्योंकि देश के बनने के बाद जो पहला काम हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स ने किया था वो यही किया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश चलाना है तो हमें एक रूलिंग डॉक्यूमेंट तो बनानी पड़ेगी, और वो सिर्फ गवर्निंग डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ सरकार की मदद के लिए नहीं है, वो सबसे पहले अपने सिटीजन्स को राइट्स देते हैं कुछ, उनसे ड्यूटीज की कुछ उम्मीदें रखते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि इस देश के तंत्र चलेंगे कैसे। तो अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो अमूमन तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि आपके हक में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इस डॉक्यूमेंट ने आपको दिया है, और जिस वक्त में ये बना था डॉक्यूमेंट वो भी वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1947 ऑनवर्ड्स हमने बनाना शुरू किया था जब दुनिया भर में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, हम बहुत सारे सिविल राइट्स को लेकर जागरूक हो चुके थे, वेस्ट से हमने बहुत सारे आइडियाज़ लिए, हमने एशिया की बहुत सारी कंट्री से आइडिया लिए, तो हमने फिर अपने लिए एक देश बनाया। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये देश कैसे हमारा है, कितना हमारा है, और कहाँ पर दूसरों के राइट्स शुरू हो जाते और हमारे ख़त्म हो जाते।
1: जी, बहुत सुंदर। जब हम लोग बात भारत की करते हैं, हम लोग बात डेमोक्रेसी की करते हैं, हम लोग बात संविधान की करते हैं, तो एक फ्रेज बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं, अमूमन कहा भी जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वन स्टेटमेंट?
2: सर, ये जो लाइन है यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। एक्चुअली एक पूरा प्रीफेस है जैसे हम प्रियम्बल कहते हैं, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 1 से पहले ही शुरू हो जाता है, जो कि हमें बेसिकली एक डिक्शनरी देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की। ये समझ मतलब आई डोंट नो ये कितना अप्रोप्रिएट होगा, बट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डेटिंग प्रोफाइल होता किसी डेटिंग ऐप पे, तो ये उसका बायो होता, क्योंकि ये सारे एसेंशियल पॉइंट्स बताता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि हमारा देश है कैसा, हमारे देश ने किन किन चीज़ों को चुना है अपने लिए। मैं अभी आगे इस सेशन में इसी की बात ज़्यादातर करूँगा कि कैरेक्टर हमने अपने देश का कैसा चूज़ किया है। तो हमने सबसे पहले हमारे पावर के सोर्स की बात की है कि इस देश को इसकी शक्ति, इस देश को इसके कानूनों की शक्ति कहाँ से मिलती है, और जवाब आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि इस देश में जो भी पावर का सोर्स है वो हम लोगों से ही मिला है। इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग कि हम एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बनेंगे जहाँ वोटिंग होगी, जहाँ पे कानून यानी रूल ऑफ लॉ होगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर को हम सबसे पावरफुल मानते हैं या चीफ मिनिस्टर को पावरफुल मानते हैं, तो इनकी भी जो अथॉरिटी है वो हमारे ही थ्रू होके जा रही है. तो वी द पीपल दो चीजें बताती है, सोर्स ऑफ पावर भी और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी. क्योंकि अगर मैं रीड आउट करूं तो इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाटएवर व्हाटएवर. यानी कि ये संविधान हमने खुद को दिया है. हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उनको 2 साल 11 महीने 17 दिन का वक्त दिया और कहा कि हमें एक संविधान चाहिए इस देश को चलाने के लिए. सो वी द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको हमेशा रिमाइंड कराता रहता है कि ये ताकत हमने खुद को खुद से दी.
1: सो वंडरफुल, सो वंडरफुल. वी में आपको साथ साथ एक सेंस ऑफ यूनिटी मिलता है. आप इंडिविजुअल नहीं रह जाते हैं, आप एक भारत के नागरिक बनते हैं, जहां पर पूरे समूह को, पूरी ट्राइब को, पूरे देश को आपको एक साथ ध्यान में रखकर सोचना होता है. और वही एक सही विचारधारा हो सकती है व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री. कि फॉर एग्जाम्पल, अमूमन अपने शोज में हम लोग बात करते हैं सिविक सेंस की, जिसके बारे में बीते कुछ टाइम से बहुत तेजी से कुछ चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही
2: हैं.
1: कहीं पर कुछ भी कर देना, गंद फेंक देना. अभी बेंगलुरु का एक किस्सा मैं देख रहा था परसों, वहां पर ये हुआ था कि एक जगह पर बिल्कुल हाईवे पर साफ सुथरी जगह है, वहां पर 4 लड़के आए, आके अपना कुछ गार्बेज डंप किया और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके सामने डांस कर रहे हैं. ठीक है, दे वर हैविंग दिस इल्यूजन कि दिस इज कूल. Now this is the biggest problem when we talk about it. कि जब हम as a country सोचते हैं तो हमें basic सारे clear रखने होते हैं, उसके लिए हम सबको united होके सोचना होता है. We'll talk about it maybe in some other show, because civic sense is again another big issue जिसके बारे में बात होनी चाहिए. और anyways, moving on, sir, what are the meanings of terms sovereign, socialist, secular, democratic and republic, जैसे preamble में इनको इस्तेमाल किया गया है?
2: सर, ये कुछ इनिशियल शब्द हैं जो कि हमारे preamble में इस्तेमाल होते हैं. इनमें से तो कुछ पे आज की तारीख में झगड़े भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, जैसे भी हो रहा हूँ. ये इनिशियल ड्राफ्ट में दो शब्द नहीं थे, सेक्युलर और सोशलिस्ट. इनकी बात मैं थोड़ा अलग से करूँगा. बट ये जो सारे शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से डिफिकल्ट शब्द भी हैं, तो इनको एक सरल मायने देना चाहूँगा मैं. सॉवरेन बस ये कहता है, क्योंकि हम तुरंत ब्रिटिश राज से आज़ाद हुए थे, तो जो पहली चीज़ हमने खुद के बारे में कही वो ये थी कि हम इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इंडिपेंडेंट हैं. सॉवरेन शब्द का यही मतलब है कि हम स्वाधीन हैं, हमें बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ना अंदर से कोई कंट्रोल कर रहा है. कोई क्राउन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जो हमें चला रही है. यूनियन ऑफ इंडिया एक सॉवरेन स्टेट ऐसे बना. फिर हमने बात की कि हम किस प्रकार की गवर्नेंस चाहेंगे. क्या यहाँ रूल ऑफ पीपल होगा, या फिर जैसे राजा, राजा के बाद राजकुमार ही राजा बनता है, वो वाला सिस्टम अपनाएंगे, या कोई तीसरी चीज़ करेंगे. तो हमने कहा नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम्स भी हैं. तो हमने कहा कि हम डेमोक्रेसी को एम्पावर करेंगे, और इसलिए हमने एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चुना अपने लिए, डेमोक्रेसी, जैसे हम जमहूरियत भी कहते हैं. और रिपब्लिक जो शब्द है ये उसका एक्सटेंशन ही है. रिपब्लिक कहता है कि हमारे जितने लीडर्स होंगे वो इलेक्टेड लीडर्स होंगे, सेलेक्टेड लीडर्स नहीं होंगे. यानी कि एक चुनाव के बाद हमें पता चलेगा, अच्छा लोगों ने इनको एक जनमत दिया और फिर वो बनते हैं. तो रिपब्लिक मींस हैविंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ये वो चीज़ है. अब मैं जो जो बचे कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स हैं उन पे आना चाहूँगा. सेक्युलर और सोशलिस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है एक्चुअली, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ह्यूमेन शब्द हैं, इंसानियत की तरफ ही हमें ले जाते हैं. लोगों को एक गलत फहमी है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आपको हर धर्म का सम्मान कर रहा है, हर धर्म का पालन करना है. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं हो सकता है. द स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन. सरकार का कोई रिलीजन नहीं, और वो किसी रिलीजन को ना प्रमोट करेगी ना डिस्करेज करेगी. स्टेट शैल नीदर प्रमोट और डिस्करेज एनी रिलीजन. सो व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट टू द पीपल? जनता क्या करेगी? आपका जो भी धर्म है आप उसे उसका पालन कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आपको बाकी धर्मों का पालन करना. हाँ, कुछ लॉज हैं डिफेमेशन के या हेट स्पीच के, कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि खराब माहौल हो जाए समाज का, आप किसी और समाज के या रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट सेक्युलरिज्म द वर्ड इज स्ट्रिक्टली फॉर गवर्नमेंट. सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा. छुट्टियां अगर मनेगी एक साल में तो सारे हॉलीडेज की मनेगी. इसलिए आप देखते भी होंगे कि पीएमओ से जब ट्विटर पे विशेष आती हैं तो सारे रिलीजन की आती हैं. तो वो है सेक्युलरिज्म. और आखिरी और सबसे प्यारा वर्ड है सोशलिज्म. ये दोनों वर्ड 1940 अमेंडमेंट यानी 1976 के बाद ऐड हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. सोशलिज्म का मतलब ये है कि हमारे देश की जो भी पूंजी है वो इक्वली डिवाइड होगी लोगों में. सोशलिज्म एक तरीके से आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म का ही दूसरा छोर है, ऑपोजिट छोर है. तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपके 5 लोगों के ग्रुप की हाउस पार्टी हो रही है, जिसमें से एक काफ़ी अमीर खानदान से आता है, एक मिडिल क्लास से आता है, कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो हम सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं, प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन देखेंगे, यानी कि जिसकी जितनी क्षमता है और उस हिसाब से हम उसका योगदान लेंगे भी और उसको सपोर्ट देंगे भी। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे सोशलिस्टिक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं, जो नरेगा है या महात्मा गांधी नरेगा स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। इनमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पूरे पॉपुलेशन को इंक्लूड करें और क्लास के बेसिस पे, इनकम क्लास के बेसिस पे, इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये गोल है। और हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, यानी कि हम थोड़े से कैपिटलिस्ट हैं, थोड़े से सोशलिस्ट हैं, हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल भी है और रैन बसेरे भी हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों स्पेक्ट्रम को कवर करने की कोशिश की है, एटलीस्ट हमारे प्रीएम्बल के थ्रू की है। तो ये पांच शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। हमारे नेबरिंग कंट्रीज सेक्युलर कंट्रीज नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री, इट्स एन इस्लामिक स्टेट। तो कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने अपना रिलीजियस नेचर डिफाइन कर लिया है। हमने कहा 1947 के बाद हमारी सरकार का कोई रिलीजन नहीं होगा, हमारे देश में सारे रिलीजन के लोग रह सकते हैं।
3: सो वंडरफुल। So basically you are saying that the meaning of secular world could be कि वो जो लीडर हैं जो सरकार को चला रहे हैं, they can have their own beliefs but they can't be biased।
2: जी, मतलब अगर मैं इसमें कुछ controversial नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उनको हिंदू धर्म का पालन करने से कोई नहीं रोक सकता। बट जितने भी सरकारी काम होंगे, सरकारी ऑर्डर होंगे, जो कानून बनते हैं, उनके थ्रू कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जितने भी इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, सरकार के काम हो रहे हैं, सरकारी काम में कोई, जैसे कि कल को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गजट ऑफ इंडिया से एक पर्टिकुलर धर्म के जो फेस्टिवल्स के हॉलीडेज हैं उनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। या फिर गवर्नमेंट स्पेसिफिक फंड से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही हेल्प मिलेगी, ऐसा कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि ऐसा हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कैरेक्टर डिफाइन किया। बट हाँ, ये जितने गवर्नमेंट के लोग हैं, ये इंसान भी तो हैं, और इंसान है तो अपने प्राइवेट लाइफ में अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो हाँ, अपने प्राइवेट लाइफ में जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो जिस धर्म के आप हैं, जो भी पालन करना आप कर सकते हैं। व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब आप स्टेट के हैसियत से आते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें।
3: सो सर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये बोलना गलत होगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं
2: जी,
3: या फिर इसको सही तरीके से पोर्ट्रे किया जाए तो ये बोला जा सकता है शायद कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो अभी करंट प्रधानमंत्री।
2: जी जी जी जी।
3: तो ये नहीं बोला जा सकता है कि आप उस

0: ज्यादा एक्सेसिबल हुआ है। लोगों को लगता है कि आप पे एक बर्डन डाल दिया है हमारे संविधान ने कि आप सारे धर्मों का पालन करें, ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म मतलब कि आप अपना काम करें, सरकार किसी के साइड नहीं है, सरकार किसी धर्म का मतलब किसी धर्म को अपोज भी नहीं कर रही है, प्रमोट भी नहीं कर रही है।
1: सो वंडरफुल दोस्तों, ये मुझे लगता है बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर इनकी समझ हम सब में आ गई तो आधी से ज्यादा जो हमें सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज दिखाई देती हैं, बहस के जो मुद्दे दिखाई देते हैं, जो मतभेद आपको दिखाई देते हैं, वो शायद अवॉइड हो सकते हैं इन छोटी सी चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया या भारत या इंडिया, तो वहां पर आपको बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही रेफर कर रहे हैं, भले ही आप इंटेंशनली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आता है वहां पर। और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रोड मैप बना करके हमें दिया है, मुझे लगता है वही एक सही विकल्प है, अगर सही तरीके से शांतिपूर्वक अगर हमें तरक्की के रास्ते पर चलना है, वृद्धि के रास्ते पर चलना है। ऑन दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चीजें आज हम आदित्य सर से बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करना है हमें, और मुझे भी हर बार यहाँ पर इस शो में खासतौर पर इतना कुछ नया जानने को मिलता है। हर बार जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने अपने फील्ड्स के मास्टर होते हैं, एंड आई एम श्योर आपको भी मजा आता होगा। जस्ट इन केस इफ यू हैव समथिंग विच यू वांट टू शेयर विद अस, मे बी विद मी और मे बी विद आदित्य सर, सो यू कैन लेट अस नो ऑन 8010781078। फिलहाल स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई होगी। बिना किसी देरी के अपने शो को हम यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। दोस्तों मेरा नाम है सागर, शो चल रहा है यहाँ पर सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। हमारे साथ आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, मिस्टर आदित्य, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर फंडामेंटल्स हैं, या फिर कह सकते हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले बेसिक्स ही क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे चल के शायद और लेयर्स को हटा पाएंगे। लेट्स टेक इट अहेड एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, किस तरह का जस्टिस जो है वो एम करता है टू बी सिक्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
1: सर ये जो शब्द है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्टेक्चुअल है। जस्टिस कभी भी कोर्ट रूम से दो पार्टीज होती है, दोनों पार्टीज को ये अडिग विश्वास रहता है कि जस्टिस वही है जो वो क्लेम कर रहे हैं, और जस्टिस को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता, वो केस टू केस बेसिस पे चेंज होता है। तो इसलिए जो हमारे ड्राफ्टर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने तीन पैरामीटर हमको फिक्स करके दे दिए कि जस्टिस हम इन तीन कॉन्टेक्स्ट में बातचीत करेंगे, उम्मीद करेंगे या कोशिश करेंगे। वो तीन कॉन्टेक्स्ट थे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अब मैं एक एक पंक्ति में इन तीनों का मतलब बहुत ही सरल है बता देता हूँ कि सोशल जस्टिस समाज में आपकी जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी आपकी पहचान है, चाहे वो आपके नाम से लेके हो, आपकी जाति से लेके हो, आपके धर्म से लेके हो, सोसाइटी में जो आपका स्टेक है, क्लास के बेसिस पे भी एक्चुअली, वहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए आपको। जस्टिस यानी कि अगर आपके साथ कोई हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है, यानी कि 300 साल 400 साल पहले 500 साल पहले आपकी जाति के साथ कोई वॉयलेंस हुआ हो, और आज उस फलस्वरूप उसके ऐसा है कि आपके सरनेम को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर आपको आप पब्लिकली क्लेम नहीं कर पा रहे अपनी आइडेंटिटी को, तो ये जो पहला पार्ट है जो सोशल जस्टिस है वो ये कहता है कि समाज में आपकी हिस्सेदारी में हम आपको न्याय दिलाएंगे। ये सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं, कास्ट बस एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये जेंडर के बेसिस पे भी हो सकता है। ये बेसिकली कोशिश है कि जितने मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, चाहे वो कास्ट की वजह से हों, जेंडर की वजह से हों, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से हों, बहुत सारे लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पैदा नहीं होते हैं, जिन्होंने इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं देखे हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और इंटरनलाइज करना मुश्किल होता है। तो जब हम सोशल जस्टिस की बात करें तो हम सबकी इंक्लूजन की बात करेंगे, सब को इंक्लूड किया जाएगा। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बोलना नहीं चाहिए बट है, कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज इससे निकले हैं, जैसे जितने जेंडर जस्टिस वाले लॉज हैं जिन पर आज बात होती है कि औरतों को क्यों प्रेफरेंस मिलती है, वो एक अलग बहस है अपने आप में, वो भी इसी से है। जितने भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो कि एक्चुअली किसी और दिन हम बात करें, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ही नहीं, वो सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिए गए रिजर्वेशन हैं, जो कोइंसिडेंटली कास्ट को मिल गए हैं, तो वो भी इसी के थ्रू मिले हैं। तो ये सब सोशल जस्टिस के पार्ट है। इकोनॉमिक जस्टिस फिर आ जाता है, उन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मान लीजिए मैं और आप एक ही संगठन में काम कर रहे हैं, अगर हमारा वर्कलोड सेम है, अगर हमारी क्वालिफिकेशन सेम है, तो हमारे पेमेंट में डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, हमें सेम पैसा मिलना चाहिए। और ये इशू दोनों लेवल पे काम करता है, ये कई बार हायरार्की एंड इंस्टीट्यूशन पे भी काम करता है, और मोस्टली जब ये बात उठी है हाल फिलहाल नहीं, 10-20 साल पहले ही, वो थी जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में, कि सेम पोस्ट पे अगर एक लड़की काम कर रही है और एक लड़का काम कर रहा है तो पे डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। इसका एक और एग्जाम्पल ये भी है कि आपको आपके लेबर का या कॉन्ट्रीब्यूशन का एक जस्टिफाइड इक्विवेलेंट मिलना चाहिए। अगर एक मजदूर काम कर रहा है एक मिल में, ये बहुत ही एक्सट्रीम यूरोपियन थॉट है वैसे, कि जितना जो ओरिजिनल सीईओ कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मिल का वर्कर भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए जब प्रॉफिट्स आते हैं तो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। हमने इक्वल डिविजन वाली ऐसी कोई रूल्स नहीं बनाए हैं, बट ये कॉन्सेप्ट यही है कि जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका देश के इकोनॉमिक्स में या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक्स में, आपको एक फेयर प्रोपोर्शन उसका मिलना चाहिए। और जो आखिरी फॉर्म ऑफ जस्टिस हमने कहा पॉलिटिकल जस्टिस, वो कहता है कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस देश में, जो मोस्टली हम अपने इलेक्शंस के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू रेगुलेट करते हैं, उसमें भी सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। यानी कि पहले तो जैसे कि हमेशा से ऐसा नहीं था कि सारे वोट्स के वैल्यू बराबर थे। जो कॉन्सेप्ट हमारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कि 18 वर्ष के ऊपर के जितने लोग हैं सबके वोट की वैल्यू बराबर है, दैट वॉजेंट ऑलवेज द केस। पूरी दुनिया में वुमेन वोट को कई बार 3 वुमेन वोट को एक मेल वोट से इक्वेट किया जाता था। हम अगर बात करें स्लेवरी वाले वक्त की, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, जब मिले तो वो भी फ्रैक्शंस में मिले थे, यानी एक इंडिविजुअल को बेसिकली स्टेटमेंट ये था कि तुम एक हो पर एक इंसान से कम की हैसियत है तुम्हारी हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डिंग में या पावर स्टेक होल्डिंग में। तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ पॉलिटिकल जस्टिस भी होगा सबके पास, और सबके पास ये राइट भी होगा कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, आप वोट दे रहे हैं आप चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट ये हमारा स्टेटमेंट था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स ने दिया कि हम इन तीन प्रकार से जस्टिस इंश्योर करेंगे।
0: बहुत सुंदर। जो अभी आपने यहाँ पर ये पूरी बात हमें बताई है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी हमें समझाई है कि किस किस तरीके से हम इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन एक सवाल है जो अभी अभी मेरे जहन में आ रहा है जिसके बारे में डेफिनेटली मैं बात करना चाहूँगा। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट लिबर्टी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लिबर्टी? एंड वन मोर थिंग, डू यू बिलीव कि लिबर्टी को गलत तरीके से समझा जाने लगा है कुछ लोगों के द्वारा?
1: जी, लिबर्टी से ही शब्द निकलता है लिबरल, और लिबरल आज के वक्त में कई जगहों पर, कई देशों में, कई सोशल मीडिया फोरम्स पर गाली के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसका एक अपभ्रंश इस्तेमाल किया जाता है जो मैं यहाँ कोट नहीं करूंगा, बट लिबरलिज्म एक सोचने का तरीका है बस, जो जिसका ऑपोजिट क्या है, जिसका ऑपोजिट है फंडामेंटलिज्म, रूढ़िवादी, यानी कि चीजें जैसे चलती आ रही हैं वैसे ही चलेंगी, ये फंडामेंटलिज्म कहता है। लिबर्टी या लिबरलिज्म ये कहता है कि अगर गुंजाइश है बेहतरी की तो उस ओर बढ़ना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, बोलना चाहिए, और इसलिए यहाँ पे भी लिबर्टी जैसे शब्द को चार वर्ड्स में या चार पॉइंटर्स में हमारे प्रियम्बल ने ही डिफाइन कर दिया है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फेथ एंड वर्शिप तो हमारे राइट टू रिलीजन में आ गया, जो मैंने सेक्युलरिज्म में कहा ही था कि आपका जो भी फेथ है, जैसे आपको वर्शिप करना है आप कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं इसमें, हम कहते हैं कि प्राइवेट स्पेस में आपको अपना धर्म जैसे भी एक्सरसाइज करना आप कर सकते हैं, घर में जो भी करना हो, पब्लिक स्पेस में आप नहीं कर सकते। हम पब्लिक स्पेस में भी करने की इजाजत देते हैं हमारे देश में, चाहे वो पूजा आरती करनी हो, अजान पढ़ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो तो फेथ एंड वर्शिप है। अब आते हैं थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ की लिबर्टी पे। तो अगर हम, इसके पीछे आइडिया ये था कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सवाल पूछना, बातचीत होना खासतौर पर बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि क्या सही है क्या नहीं है और बेहतर क्या हो सकता है। जब तक आप काउंटर पर्सपेक्टिव नहीं सुनेंगे आप इको चेंबर में फंस के रह जाएंगे, और क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, खान पान, तो हमने कहा कि सबकी बात सुनना ज़रूरी है और इसके लिए एक प्रोविजन देना ज़रूरी कि भाई तुम बोल सकते हो जो भी बोलना चाहो। तो ना सिर्फ हमारे प्रीएम्बल में ये वर्ड हमने डाला लिबर्टी, हमने आर्टिकल 19 के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी बात की कि आप बोलो जो भी बोलना है आपको। फिर ये हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस लाए हैं बाद में। जो पहला चेंज हमने लाया इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से एक ये था कि हमने कहा कि नहीं नहीं बोलना है जो बोल सकते हो, पर हम कुछ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे इस पर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। उसमें भी गुंजाइश छोड़ी कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है ये सब। तो लिबर्टी बेसिकली आज़ादी का ही एक दूसरा सिनोनिम है, जो कि कहता है कि अब हम जो चाहे बोल सकते हैं, अपने मन की बात बोलेंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नेंस में ये आज़ादी नहीं थी। So, लिबर्टी उसी को सिंबलाइज करता है बेसिकली।
0: सो वंडरफुल। अब यहाँ पर लिबर्टी की जब हम बात कर रहे हैं, आज़ादी, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं हो जाता है कि आज़ादी आपको मिल जाती है पब्लिक प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करने की, या कहीं पर यू नो कुछ भी फेंक देने की, या एक दो किस्से मैं आपको बताना चाहूँगा और फिर आप बताइएगा क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। एक केस हुआ था अभी हाल फिलहाल, जहाँ पर एक लड़की बीच वेयर जो कपड़े होते हैं उनको पहन करके दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी, उसका एक वीडियो बना, वो वायरल हुआ और डीएमआरसी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई और वो एक विवाद का मुद्दा वहां पर बना सोशल मीडिया पर, पूरी इसकी ट्रेल चली थी। मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगा, अगर लिबर्टी को मायने यहां पर रखा जाए तो ठीक है, लड़की अपनी फ्री विल के हिसाब से जो उसको ठीक लगा वो कर सकती है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पर देखूं कि आप एक ऐसी जगह पर हैं, एक ऐसे एटमोसफेयर में हैं आप, जहां पर हर एक एज ग्रुप के लोग जो हैं ट्रेवल कर रहे हैं, so your liberty should not be something like an embarrassing feel for someone else जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग एक वहाँ पर थे स्पेशली। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा, being an expert, please आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे इसको देखा जाए।
1: सर आपने अपने प्रश्न में ही लगभग इसका जवाब दे दिया है। हाँ। हमारी लिबर्टी कॉन्टेक्चुअल है, वो संदर्भ पे डिपेंड करती है, और जिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की मैं बात कर रहा था उसमें से एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑब्सिनिटी, यानी कि अश्लीलता आप नहीं फैला सकते। कल को अगर मैं चाहूँ कि मैं एक मूवी बनाऊं और उसे थिएटर्स में दिखाऊं या डिस्ट्रीब्यूट करूं, गवर्नमेंट मुझे इसकी परमिशन कभी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री स्पीच है मेरा या एक्सप्रेशन है मेरा, ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड है, जिसका नाम है ऑब्सिनिटी। मैं नहीं फैला सकता अश्लीलता इस समाज में। अब उसके बाद एक सवाल आता है कि अश्लीलता है क्या, जिसका जवाब बहुत सारे केस लॉज में ये आया है कि ऑब्सिनिटी डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट सर्कमस्टांसिस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेटअप। यानी कि आप किस समाज में हैं, आपके आसपास कैसे लोग हैं, वो जगह कौन सी है, क्या वो यही बीच वेयर अगर किसी बीच पे पहना जाता तो कोई आउटरेज नहीं होता, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट है उस जगह के लिए, वो माना गया है। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो आपकी इमीडिएट सराउंडिंग में लोग कंफर्टेबल नहीं इस चीज़ को लेके, आपकी इमीडिएट सराउंडिंग में लोग हेजिटेंट फील कर रहे हैं अपने राइट्स को एक्सरसाइज, उनका भी तो राइट टू लाइफ है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं। तो उनका राइट, जो मैंने शुरू में कहा था कि आपका राइट कहाँ खत्म होता है और दूसरों का कहाँ शुरू हो जाता है, पब्लिक स्पेसेस में आप अपने बहुत सारे इंडिविजुअल राइट्स को गिव अप कर देते हैं, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, क्योंकि सबको साथ रहना। तो ऑब्सीन क्या है, वो आपके इमीडिएट सराउंडिंग, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, कम्युनिटी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर मैं इस आइसोलेटेड केस को उठाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि ये उस महिला का जो भी एक्शन है वो लिबर्टी के दायरे में आता है। मुझे लगता है कि उस पर लीगल एक्शन अगर लिया जाता है या उसे रिस्ट्रेन किया जाता है तो वो सही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपकी मोरालिटी अपनी जगह सही होगी, आपकी मोरालिटी सिर्फ वहाँ प्रिवेल नहीं करती है, वहाँ 100 लोग और हैं जो सेम व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, सेम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब की जो कम्बाइंड मोरालिटी है वो प्रिवेल करती है। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को पर्टिकुलरली देखूं तो फैक्ट्स सर्कमस्टांसिस और कम्युनिटी के हिसाब से उसने जो किया वो गलत था। अब यही अगर हम एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में बोला था, अगर बहुत सारे दुनिया में न्यूड बीचेस भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ये अलाउड है या एक्सेप्टेड है कि आप वस्त्र पहने ही नहीं, वहाँ पे वो एक कम्बाइंड अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि हाँ हमने एक अलग स्पेस बनाया है जिसका यही पर्पस ही है। वहां पे जाके कोई इंसान ये नहीं क्लेम कर सकता उस बीच पे जाके कि तुम लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने, क्योंकि वहां पे कॉन्टेक्स्ट ही है, वहां की इमीडिएट सराउंडिंग मोरालिटी वही है। तो हाँ, मोरालिटी क्या है ये आपके आसपास के लोगों पे ही डिपेंड करता है।
0: ठीक है, यहाँ पर एक और मुझे रेफरेंस याद आ रहा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। बीते दिनों एक विवाद हुआ था हमारे देश में, जहां पर एक रियलिटी शो था, कॉमेडियंस जो है उसको ऑर्गेनाइज करते थे और वहाँ पर एक सज्जन जो कि बहुत जाने माने पॉडकास्टर हैं भारत के, उन्होंने आकर के एक टिप्पणी कर दी थी और जिसको लेकर पूरा एक विवाद हुआ, कोर्ट कचहरी वो सारा मामला हुआ। अगर उस केस को ध्यान से देखा जाए और उसको यू नो बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंड किया जाए तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि उस इंसान ने वो पब्लिक नहीं किया हुआ था कॉन्टेंट, वो जो कंटेंट था वो केवल मेंबर्स के लिए था। ठीक है, मेंबर्स कौन लोग होंगे? जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होगी, एक चीज है। दूसरी चीज है कि वहां पर आपको पैसे दे के जाना है। तो जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि एक बीच जैसी चीज जो एक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एक स्पेस बनाया गया है, सिमिलर फंडामेंटल वहां पर लागू होता है कि उन्होंने भी एक स्पेस वहां पर क्रिएट किया था, एक क्लोज्ड कम्युनिटी का, कि आप आके हमारा कॉन्टेंट देख सकते हैं। अब यहां पर किसी एक इंसान ने कुछ किया कि उस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड किया या डाउनलोड किया और उसको उठा के ओपन मीडिया में, एक ओपन स्पेस में डाल दिया। आपके हिसाब से क्या यहाँ पर मैं पूरा कल्प्रिट उस इंसान को मारूंगा जिसने वो शो ऑर्गेनाइज किया, या मैं उस इंसान का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे वहां पर कंसीडर करना चाहिए जो कि नहीं हुआ है, कि जिसने उसे क्लिप को प्राइवेट स्पेस से निकाल करके पब्लिक स्पेस में डाल दिया?
1: सर मैं यहाँ एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा फिर एक लीगल ओपिनियन दूंगा।
0: प्लीज। हाँ,
1: पर्सनल ओपिनियन ये कि उस कमेडियन की 1% की भी गलती नहीं थी इस पूरे एक्ट में।
0: हाँ।
1: और मेरा लीगल ओपिनियन भी यही है कि उसकी 1% की गलती नहीं थी। क्यों? फॉर द एग्जैक्ट सेम रीजन जो केवीएट्स आपने यहाँ पे डिस्क्लोज किया, कि जितने लोगों ने भी वो कॉन्टेंट एक्सेस किया अपनी मर्जी से किया, उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपका फ्री विल होना जरूरी है, जो हम कैसे इंश्योर करते हैं, ये कह के कि आप 18 से ऊपर के हैं, ठीक है, वो भी उसने इंश्योर किया। तीसरा, जो भी कंज्यूमर उस शो को एक्सेस करने जाता है वो नेचर ऑफ दैट शो को समझता है। अगर मैं आस्था चैनल पे किसी धार्मिक शो को देखने जा रहा हूँ तो मैं जानता हूँ मुझे कैसा कंटेंट मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइप या जॉनर के कॉमेडियन के कंटेंट को कंज्यूम करने जाता हूँ तो मुझे पता है कि किस टाइप का कंटेंट होगा। तो क्या अपने तरफ से उसने सारे रीजनेबल मेजर्स लिए? बिल्कुल लिए। आप एक इंसान को कहाँ तक अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो? आप उन्हीं चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो जो वो रीजनेबली देख सके और उसके लिए बंदोबस्त कर सके। उसने रीजनेबली देखा कि उन लोगों के लिए ही कॉन्टेंट होगा जो मेरे हार्डकोर फैंस हैं, जो मेरे ह्यूमर से अवगत हैं और जिनको मेरे शॉक वैल्यू से मजा आता है. अब उस कॉन्टेंट को बाहर ले जाने या उस कॉन्टेंट को पब्लिश करना, मुझे लगता है एक चीज होती है स्केप गोटिंग, आप किसी को बलि का बकरा बनाते हो. मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ दोज केस, अगेन नाउ दिस इज पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ दोज केसेस, क्योंकि आप बहुत आने वाले दिनों में देखेंगे कि मोरालिटी या ऑब्सिनिटी को लेकर कोई कानून आने वाली है, पर्टिकुलरली ऑनलाइन कॉन्टेंट को लेकर, यानी यूट्यूब के कॉन्टेंट को लेकर. तो कई बार किसी कानून को लाने से पहले उसकी लॉबिंग या ग्राउंड वर्क क्रिएट किया जाता है, और ये ग्राउंड वर्क तभी क्रिएट किया जा सकता है जब आप उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करें जनता के सामने कि देखिए आज के दौर में मोरालिटी एक प्रॉब्लम है, आज के दौर में देखिए आज की यूथ कैसी बातचीत कर रही है. तो वो प्रॉब्लम हाईलाइट करना मुझे लगता है स्टेप वन है. स्टेप टू ये थे कि एक लीगल एक्शन हो गया और कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि सेंटर को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि मोरालिटी और अश्लीलता को रेगुलेट किया जाए, और बहुत जल्द अगले एक डेढ़ साल में आप देखेंगे ऐसा कानून आ जाएगा. क्या उसने कुछ गलत किया? अमेरिकन लॉज जिनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बोरो करके आर्टिकल 19 बनाया हमने, वो भी ऐसा नहीं कहते कि उसने कुछ गलत किया. इंडिया के अभी तक जितने केस लॉज के जजमेंट्स आए हैं वो भी ऐसा नहीं कहते. तो मेरे हिसाब से तो उसने कुछ गलत नहीं किया था. अगर पनिश करना था किसी को तो आप उसको करें जिसने वो कंटेंट वायरल किया पे वॉल के अगेंस्ट जाके. एक तरीके से तो उसने कमर्शियल राइट्स का वायलेशन किया उस आदमी का, मतलब जो भी रेवेन्यू उसको जनरेट होता एक एक्स्ट्रा यूजर या व्यूअर से वो उसे छीना गया. सेकेंडली, अगर आप जिम्मेदार होल्ड ही कर रहे हैं तो आप पेरेंट्स को जिम्मेदार होल्ड कीजिए. एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी पेरेंटिंग की नहीं है, एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि मैं चीज़ें बोलूंगा, उसमें से अगर कुछ ऐसा है जो क्रिमिनल नेचर का हो या फिर डिफेमेटरी नेचर का, उसको आप स्क्रैप आउट कर दीजिए. बट पेरेंटिंग इज नॉट द जॉब फॉर अ कॉन्टेंट क्रिएटर और आर्टिस्ट, खासकर तब जब वो खुद लेबल करके बोल रहा है कि मेरा कॉन्टेंट 18+ है.
0: सो वंडरफुल. बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि बेसिक्स हमारे क्लियर हो पाएं, ताकि सही तरीके से एक आप कह सकते हैं कि वो बायस्ड वाले जो चश्मे हमारी आंखों पे लगे हुए हैं, हम उनको हटा करके देख पाएं कि व्हाट्स द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, क्योंकि मूलभूत आधार वही है हमारा. ठीक है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से अगर आप चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा. तो आधे से ज़्यादा लेबल्स जो आपने और मैंने लगा रखे हैं वो अमूमन हमारे आसपास के लोगों ने हमें दिए हैं, हमने बना दिए हैं. वो कानून नहीं बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, भारत देश नहीं बोलता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है उस एक चीज को, और यही उद्देश्य है इस शो को लेकर आने के पीछे. फिलहाल एक और बहुत छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो को हम कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ आयते सर यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस करी हैं, और कुछ और चीजें हैं जो मेरे जहन में सवाल हैं और जो वाजिब भी हैं आज की डेट में करेंगे डिस्कस. बट फिलहाल स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ.

0: ऑन दिस नोट आई होप आपको वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर और शो चल रहा है सत्यमेव जयते। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम के साथ। हमारे साथ हैं आज आदित्य सर, और आदित्य सर से हम लोग मल्टीपल चीजों को डिस्कशन कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉलो करती है। सर, एक और सवाल यहाँ पर मेरा आपसे रहने वाला है। कभी कोई ऐसा क्राइम होता है हमारे देश में या कोई भी ऐसी चीज जो एक्सेप्टेबल नहीं है, कानून के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी नहीं है, तो एक ना सोशल मीडिया पर एक आप कह सकते हैं कि आउटरेज देखने को मिलती है कि लोग अपने हिसाब से ना जस्टिस वहां पर डिलीवर करने लग जाते हैं अपने हिसाब से। मैं इस बहुत बेसिक से फंडामेंटल को जानना चाहूंगा। पहला सवाल ये रहेगा कि पुलिस का काम जस्टिस डिलीवर करना तो नहीं है, पुलिस का काम है लॉज को प्रोटेक्ट करना, जस्टिस डिलीवर करने का काम है कोर्ट, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पुलिस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं उनको बाईपास करते हुए एक पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया पर हावी होने लगता है करंट सिनेरियो में, ऐसा क्यों होता है?
1: ये सबसे कठिन प्रश्न है जो आपने पूछा है, क्योंकि इसका जवाब भारतीयता में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, जहाँ पे ये ह्यूमन नेचर हमारा, हमारे चौराहे पे भी अगर झगड़ा हो जाता है तो हम घेरा बना के देखने लगते हैं वहाँ पे। हम अपना स्टेक ढूंढ लेते हैं, कितना भी एलियन मैटर हो हम अपना कोई ना कोई स्टेक उसमें ढूंढ लेते हैं। और एक एक आवाज़ है हम सबके जहन में जो कि कहता है कि हमारा जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो सबसे सही सेंस ऑफ जस्टिस है। और मजे की बात भी यही है और प्रॉब्लम की बात भी है कि सबको यही लगता है कि उनका सेंस ऑफ जस्टिस सही है। एक और ह्यूमन कंपल्शन है ओपिनियन फॉर्म करने का, जो कि इंडियंस में ज़्यादा मुझे दिखा है कि जितनी जल्दी हो सके एक ओपिनियन फॉर्म करना ज़रूरी है, जबकि कायदे से जितना देर आप लगा सकते हैं ओपिनियन फॉर्म करने में उतना बेहतर है, क्योंकि चीज़ें परत दर परत खुलती जाती हैं तब आपको बेहतर पता होता है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर, और मैं सिर्फ लोगों को ब्लेम नहीं करूँगा, ये कल्चर मीडिया से भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हुआ है, क्योंकि पब्लिक ट्रायल तो होते थे, लोगों से उम्मीद की जा सकती है ओपिनियन रखना, बट मीडिया ट्रायल जब से शुरू हुए, जब से हमारे पास 24 आवर्स न्यूज़ चैनल का कॉन्सेप्ट आया इस देश में, 25 साल हो गए होंगे मुझे लगता है, 24 घंटे आप न्यूज़ नहीं दिखा सकते, उतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है या उतना रिलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपने फिलर के तौर पे क्या किया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों पे इम्पोज करना शुरू कर दिया। ये हमें लगता है, इसके बहुत सारे विक्टिम्स हर साल हमको दिखते हैं। एक चीज़ है जिसको अगर हम जहन में रखें तो फायदा होगा हमारा, वो है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये जो फ्रेज है ये हमने अपने क्रिमिनल ट्रायल में यूज़ किया है शुरू से, कि जब तक किसी के खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम उसको निर्दोष मानेंगे। विल प्रिज्यूम एनीवन टू बी इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये माना जाता है। और हमारे यहाँ ठीक उल्टा होता है इसका, कि कोर्ट ने अगर बोल भी दिया कि ये नॉट गिल्टी है तो हमने 2 साल तक जो इमेज बना रखी है उस इंसान की उसी के साथ कैरी फॉरवर्ड करता है। तो ये क्यों होता है, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सारी चीज़ें जाननी जरूरी है कि क्या सिर्फ इंडियंस ऐसा सोचते हैं, पूरी दुनिया ऐसा ऑपरेट करती है। बट मुझे मैंने बचपन से लेकर आज तक यही देखा है हर जगह, चाहे वो झगड़े हो, किसी जेसीबी की खुदाई चल रही हो या फिर कुछ भी हो, शायद वो है
0: बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जिसका रूट कॉज मोटा मोटा मैं समझ पाता हूँ कि हम लोग ना बहुत इमोशनल हैं, हम हर चीज के साथ अपने इमोशंस को अटैच कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ी दुविधा की बात भी हो सकती है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंट्री वी शुड टॉक अबाउट रैशनैलिटी।
1: सर, मैं यहाँ पे इंटरव्यू करूंगा क्योंकि आपके स्टेटमेंट से एक बल्ब जल गया मेरे दिमाग में। जी हाँ, हम अंडरडॉग्स को सपोर्ट करते हैं और हम इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अपने खिलाफ हुए इनजस्टिस से रिलेट करते हैं वहाँ पर। तो अगर हमें ये कोई बता दिया, कन्विंस कर दे निचले लेवल की इसके खिलाफ इनजस्टिस हुई है, तो हम तुरंत आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं दूसरी तरफ से। तो इसके पीछे कोई इल मोटिव नहीं है, बट हमें बस वो पेशेंस बरतनी है कि हमें कैसे पता कि कौन विक्ट है, हमें कैसे पता। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट एक डिक्टम पाएगी, इतना ही इंटरेस्ट है आपका तो उस जजमेंट को पढ़ लीजिए, 400 पेजेस की जजमेंट होती है, सब लिखा होता है उसमें।
0: एंड जब भी आपको ऐसा लगे अपने जहन में कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ फॉगी फॉगी हो रहा है, ये इमोशन ज़्यादा हावी हो रहे हैं, हमेशा मैं कहूँगा कि जो फैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, एंड डेवलपमेंट रैशनैलिटी से होती है, इसलिए रैशनल होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल होके हम बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मानकर चलिए कोई बहुत बड़ा केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कोर्ट के जो वहाँ पर चीफ जस्टिस हैं उनके सेंटिमेंट्स कुछ अगर बोल रहे हैं लेकिन वो कानून के अपोज हैं, तो आप सोचकर देखिए अगर सेंटिमेंट्स के आधार पर वहाँ पर जजमेंट दी जाने लगे तो क्या क्या हो सकता है इस देश में और क्या होगा फिर दुनिया का। इसलिए ज़रूरी है इस एक चीज़ को समझना। दोस्तों बातें हमारे पास बहुत सारी हैं आदित्य सर, जो लिटरली मतलब जब इनसे बात करता हूँ मैं, एक टॉपिक उठाते हैं और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन समय बहुत हमारे पास सीमित है, तो आज के शो को यहाँ पर हमें कंक्लूड करना होगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अपने आप से ही माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं अभी जो यहाँ पर मुझे अभी नहीं पूछ पाऊँगा बिकॉज ऑफ दिस टाइम बाउंडेशन। बट फिर एक बार कोशिश करेंगे आदित्य सर को बुलाएं और एक और पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसे ही इन डिटेल हम लोग डिस्कशन करें। So on this note, thank you so much आदित्य सर for coming here.
1: Thank you.
0: थैंक यू। और दोस्तों इसी नोट पर वक्त है शो को यहाँ पर खत्म करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों तक हम लोग पहुंचा पाए हैं। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मुझसे आदित्य सर से, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो यू नो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, प्लीज हमें 8010781078 इस नंबर पर लिखकर भेज दीजिए। आई विल ट्राई कि हम यहाँ पर उसको एड्रेस कर पाएं और एक और शो हम यहाँ पर बना पाएं। फिलहाल चलूंगा, इजाजत लूंगा आप लोगों से, इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, खैरियत से रहिएगा। दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग।

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। बातें होती हैं सेहत के बारे में, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन इस हेल्थ को बचाने के लिए, इसको संवारने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, और कोशिश तब होगी जब आपको सही कोई एडवाइस देगा। सो आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। और आज हम ऐसे ही कुछ विषय पर बात करने वाले हैं जो कि जुड़ा हुआ है डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, और डायबिटीज के लिए या फिर मोटापे को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ नई दवाइयों के बारे में, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र का। डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा जी फॉर हैविंग मी हियर एट रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम।
0: जी, तो सबसे पहले सर आपसे सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कौन सी दवाइयाँ क्या यूज होंगी जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पर सबसे पहला सवाल यही है कि डायबिटीज और ओबेसिटी, जिसको आजकल डायबेसिटी कहा जाता है, क्या है ये, आपस में कैसे कनेक्शन है इन दोनों का?
1: जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल टर्म चल रहा है डायबिसिटी, जो कि कोई नया टर्म नहीं है, काफ़ी पुराना टर्म है। डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, और इट इज़ ए नॉट ए न्यू टर्म, इट इज़ ए ओल्ड टर्म, बट ये कह सकते हैं आप कि हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ओबेसिटी भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारी कंट्री के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है हमारी कंट्री के लिए डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी बोथ। अब आप देखेंगे कि जिनको ओबेसिटी होती है उनको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिनको हम बोलते हैं कि जो कि नॉन इन्फेक्शन के बिना होती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, और जिनको ओबेसिटी होती है रिस्क ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल ओबेसिटी के लिए और डायबिटीज़ के लिए भी रिसेंटली बहुत सारी हमारे देश में 3-4 दवाइयाँ आ गई हैं, और इस देखा होगा आपने काफ़ी हाइप भी, और सोशल मीडिया के थ्रू भी उनके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, तो दे आर इंटरलिंक्ड सिंस लॉन्ग, बट ये कह सकते हैं कि अब इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्लोबल कंसर्न भी है और हमारी कंट्री के लिए भी कंसर्न है, तो हमको डायबिटीज़ को भी कम करना होगा और ओबेसिटी को कम करना होगा। तो अगर हम ओबेसिटी पे काबू पा सकते हैं तो 100% हम डायबिटीज़ के केसेस को भी कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी ओबेसिटी जिनको है उनको डायबिटीज़ का खतरा नॉर्मली ज़्यादा ही रहता है, और ओबेसिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जन्म लेकर आती है, क्योंकि आप सिर्फ डायबिटीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है जो कि टिक टिक कर रहा है और कभी भी आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। डॉक्टर साहब, डायबिसिटी की बात जब आप कर रहे हैं, ये शब्द जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग अब इसके बारे में बात करने लगे हैं, अब ओबेसिटी से डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से आगे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, ये हमें विस्तार से बताइए।
1: जैसे कि अगर किसी को एक बार आपने देखा होगा, एक तो जेनेटिक एंगल भी होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें रिस्क ऑफ वेट गेन का खतरा होता है, जिसमें जिनकी मदर्स को डायबिटीज़ होता है, तो आप देखेंगे उनको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बच्चों को भी ज़्यादा होता है, और उनका वेट गेन की संभावना भी ज़्यादा होती है। लेकिन नॉर्मली भी आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है, पिछले मैं बोलूं कि 25-30 साल में, तो जो हमारी लाइफ अर्बन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले रूरल लाइफस्टाइल ज़्यादा थी, पहले लोग रूरल में ज़्यादा रहते थे, अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसा कि देखते हैं कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी, जिसको एक बार वेट गेन होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आपका वेट गेन एक सीमा से बाहर चला गया है, आपका BMI बहुत ज़्यादा हो गया है, कि जो आपका देखें BMI 25 से ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों का 30 से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे देश में अभी ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी 25 करोड़ लोगों को हमारे देश में ओबेसिटी है, डाटा में लिए देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा नंबर है। तो जिसको एक बार जिसका वेट गेन हो जाता है, तो उसको वापस वेट को लूज करना इतना आसान नहीं है, इट इज इजियर सेड देन डन। तो आपको सारी बातें पता होती हैं, आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन उसको फॉलो करना और उसको इंप्लीमेंट करना बहुत टफ है। दैट इज वाई वी ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। तो अगर आप अपने वेट को कम कर पाते हो, तो आप इसको, जो हम बात करें बीमारियों की, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज आती है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल का इशू आता है, फिर फैटी लीवर आता है, फिर हाइपरटेंशन आता है, फिर किडनी के इश्यूज आते हैं, उसके बाद आपका ब्रेन के इश्यूज भी आते हैं, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप एक अपने वेट को, कोई व्यक्ति कंट्रोल करने पर ज़्यादा ध्यान दे, फिजिकल एक्टिविटी करे, सीडेंट्री लाइफ को छोड़े, और अवेयर भी रहे, और आप देखेंगे कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आपको पता भी चलता रहता है क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार डॉक्टर के पास जा पाएँ, लेकिन अगर आप अवेयर रहते हैं और आप आज की टेक्नोलॉजी को सही दिशा में यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने वेट के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि खुद आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, इससे पहले की जो सारी चीज़ें होती हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लेस अदर देन मेडिसिन, वो आप घर पर कर सकते हैं। तो अगर ये कोई करता है तो ये सारी बीमारी जो मैंने अभी नाम लिया इनसे बच भी सकता है और उसकी लाइफ अच्छी रह सकती है।
0: बिल्कुल, यानी बीमारियाँ बहुत सारी हैं और खुद को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज ही ये जो आप चुटकियों में सामान मंगा लेते हैं और घर की सीढ़ियाँ उतरना नहीं चाहते हैं, रोड तक जाना नहीं चाहते हैं, पार्क में पहुंचना नहीं चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड रखिए, थोड़ा वॉकिंग शुरू कीजिए ताकि आपका ये जो बढ़ रहा वेट है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जो शर्ट का साइज़ है वो कब 40 से 42 और 44 पहुंच गया है सिर्फ और सिर्फ आपके मोटापे की वजह से, वो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। ओबेसिटी क्या है इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और बातें करेंगे आगे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के माध्यम क्या हैं और डायबिटीज़ की दवाइयाँ और किन किन तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं। साथ ही बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में जो बहुत बढ़ रहा है, ज़रा सा स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसके बारे में करेंगे चर्चा इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप ऑल इज़ वेल सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे इंटरनेट रेडियो की ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना, और इस ऐप के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आप ये पूरा पॉडकास्ट कभी भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ और ऑल इज वेल में आज हम बात करें हैं डायबिटीज ओबेसिटी हाइपरटेंशन और इन सब के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के और यूजेस के बारे में क्या क्या नया कुछ हो रहा है मेडिकल फील्ड में इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर इस पर भी बात करें। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन में, डायबिटोलॉजिस्ट हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत सारी बातें हम ओबेसिटी के बारे में आपसे कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि ओबेसिटी जो है वो अनगिनत बीमारियों को जन्म देता है, लेकिन अब ओबेसिटी की बात जब हम करते हैं तो सपोज मेरा वेट 60 केजीज है, मेरी हाइट के अनुसार मेरी हाइट है 5'5" और अगर मैं 50-60 केजीज के बीच में हूँ तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ओबीस कब बनूंगी या कब ओबीस की कैटेगरी में आ जाऊंगी, ये कैसे पता लगाया जा सके?
1: जैसा कि आपने कहा कि हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब कहते हैं कि ओबेसिटी ओबेसिटी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे पता चले कि मेरा वेट मेरे हाइट से ज़्यादा या मेरे जो मेरा होना चाहिए अकॉर्डिंगली उससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबके पास फ़ोन होता है और उस फ़ोन में सबके पास आजकल नेट होता है जो कि हर चीज़ में देखते हैं हम, और इसको हम अच्छे वे में अपनी हेल्थ पर ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो BMI होता है जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जो सबसे कॉमन बहुत ही बेसिक होता है, अगर किसी कोई अपना BMI देखता है तो BMI देखने का तरीका वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो बॉडी मास इंडेक्स जो नॉर्मली होता है BMI नॉर्मली 18-24 होता है, नॉर्मल BMI, अगर किसी का BMI 24 से ज़्यादा हो जाए कि सपोज उसकी हाइट और वेट को हम देखें और अगर उसका BMI जो है 24 से ज़्यादा हो जाता है, 25 के ऊपर चला जाता है, तो हम कहते हैं कि ये ओबेसिटी में आ रहा है। लेकिन इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि कितना BMI ज़्यादा हो रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा किसी का BMI अगर 27 से ज़्यादा हो जाता है तो वो सीवियर ओबेसिटी में होता है, अगर किसी का 30 से ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ही मॉर्बिड कंडीशन हो जाती है और अपने आप में एक डिजीज़ है। तो आप देख रहे हो कि ये जो हम बातें करते हैं कि दवाई किसको लेनी है जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे, तो जिनका BMI 27 से ज़्यादा और जिनका 30 से ज़्यादा हो तो उन लोगों के लिए जो नई दवाइयाँ आई हैं वो लोग इन दवाइयों का उपयोग अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने के साथ और फिजिकल एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। मैं ये बात पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि कोई दवाई एकमात्र मैजिकल बैंड नहीं होता है कि आप दवाई लें और आप अपनी चुटकियों में सब ठीक हो जाए। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि ये जितनी भी दवाई आ रही है आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं, खासतौर पे मेडिसिन वाले और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कि आप इन दवाइयों के साथ अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट पे उतना ही ध्यान दें जितना आप पहले दे रहे थे। तो अगर कोई सोचता है कि मैं दवाई ले लूंगा और ये नहीं

0: करूंगा तो कभी वेट कम नहीं होगा। तो ये बेसिकली मैंने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच है। तो अगर किसी का BMI 27 से ज़्यादा होता है तो, और उसको कोई एक ऐसी बीमारी होती है जो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, लिपिड का इशू हो, डिसलिपिडीमिया हो, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, या कोई और ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशन हो, वो लोग इस दवाई के लिए, दवाई लेने के लिए उनका इंडिकेशन होता है, वो ले सकते हैं, या जिसका BMI 30 से ज़्यादा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफ द काउंटर वाली दवाई नहीं है कि आप जाएं और अपने से ले लें। ये दवाई आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पे, और डॉक्टर को भी ये सारे बैकग्राउंड को देखना होगा, और ये भी देखना होगा कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं।
1: बिल्कुल। अब दवाइयों की बात करते हैं, क्योंकि आपने जो बात छेड़ी है कि ये दवाई ऐसे नहीं लेनी चाहिए या बहुत अपने आप जाके नहीं लेनी चाहिए, मिलेंगी भी नहीं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं कुछ दवाइयाँ, जिसमें आप मुंजारो की बात कर लीजिए, ओज़ेम्पिक के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि भारत में आ चुकी है और आ रही है, और लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ बहुत पतले हुए हैं हाल ही में। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने एकदम ड्रास्टिक चेंज उनकी पर्सनैलिटी में दिखाई दिया है, लेकिन वो चेंज बहुत पॉजिटिव नहीं दिखा है। पतले हुए हैं नो डाउट, पर चेहरा जो है वो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, क्योंकि स्किन और मसल्स पे इसका इफेक्ट शायद पॉजिटिव उतना नहीं पड़ा है जितना ओवरऑल वजन पे पड़ा है। तो ये दवाइयाँ जो हैं, ये इंजेक्शन्स हैं, दवाइयाँ हैं, क्या इनका इस्तेमाल है, क्या कॉस्ट है, ये मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी।
0: मैं इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा मैम, जिससे कि लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ कि बेसिकली दवाई है क्या। जैसा आपने बोला कि ओज़ेम्पिक, विगोवी और मोनजारो, ये तीन दवाइयाँ काफ़ी न्यूज़ में हैं, और रिसेंटली ओज़ेम्पिक भारत में लॉन्च भी हुई है, जिसको कि अब डायबिटीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। इससे पहले हमारे देश में मोनजारो और विगोवी को ओबेसिटी के लिए, और मोनजारो को डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। ये सारी दवाइयाँ 2025 में रिसेंटली न्यूज़ में भी आई हैं, और ये मोस्टली लॉन्च भी 2025 में ही हुई हैं। लेकिन ये 2017 से, मैं आपको बताऊं, ओज़ेम्पिक का उपयोग 2017 से डायबिटीज़ में किया गया है, और पहले इसको डायबिटीज़ के लिए ही उपयोग किया गया था। जब इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दिया गया था, जिसका ट्रायल, स्टेप ट्रायल हुए थे, इसमें भारत के डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया था, तो स्टेप ट्रायल में ये पता चला कि ये दवाई शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ वेट को भी कम करती है, क्योंकि ये दवाई जिस तरह से काम करती है उसको हम बोलते हैं ब्रेन के हार्मोन्स पे काम करती है, जिसको हम बोलते हैं GIP और DIP। ये दो हार्मोन हैं, ग्लूकोगोन दैट इज ग्लूकोगोन इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ब्रेन हार्मोन्स, ये हमारे एपिटाइट को सप्रेस करती है,
1: यानी आपको भूख लगनी कम हो जाती है।
0: आपको भूख लगनी कम हो जाती है, बिल्कुल सरल भाषा में आपका पेट जल्दी भर जाता है, और ये आपके जो इंसुलिन के अगेंस्ट एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं, या आप कह सकते हैं ग्लूकागोन जो होता है, जो कि शुगर को ज़्यादा रिलीज करने के लिए, एक तरह से रिलीज ज़्यादा कराता है लीवर से, ये शुगर के रिलीज को रोकती हैं लीवर से, और मेन ये आपके ब्रेन में एपिटाइट को सप्रेस कर देती हैं, और अर्ली सेटाइटी या अर्ली फुलनेस हो जाता है। तो जब ये पता चला कि ये
1: थोड़ा सा खाना खा के आपका पेट भर जाता
0: है, तो ये दवाइयाँ आपकी अर्ली सेटाइटी करती है, तो आदमी कम खाता है, और उससे उसको ये, लेकिन ये नॉर्मल नेचुरल हार्मोन्स को मिमिक करती हैं, बेसिकली ये हार्मोन्स हैं ये तीनों दवाई, तो ये नेचुरल मिमिकर हैं जो आपकी बॉडी में, तो ये वैसे ही काम करती हैं जैसे ब्रेन के नॉर्मल सिग्नल्स काम करते हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि इसको करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसका डोज कैसे लेना है, कितना लेना है, जो कि हम बात कर रहे थे, ये बहुत जरूरी होता है, और ये डॉक्टर ये डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि आप देखेंगी तो विगोवी और ओज़ेम्पिक दोनों एक ही कंपनी की, और एक ही दोनों के अंदर एक ही कंपोजिशन है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ
1: जी,
0: विगोवी और ओज़ेम्पिक सेम कंपोनेंट है, ओज़ेम्पिक लो डोज है और विगोवी हाई डोज है उसी दवाई का। तो अब आप बात करें ओज़ेम्पिक जो है वो लो डोज में डायबिटीज के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट्स को, और किडनी के पेशेंट को उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ट्रायल्स में पता चला कि जो मरीज को ओज़ेम्पिक इन बीमारियों के साथ दिया जाता है, उनको हार्ट का रिस्क, उनको किडनी का रिस्क कम हो जाता है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट कम हो जाता है, और उनको इन बीमारियों से भविष्य में खतरा कम रहता है, इसलिए ये दी जाती है ओज़ेम्पिक लो डोज में। और हाई डोज में जब इसको यूज़ करते हैं वो विगोवी में करते हैं, जो कि ओबेसिटी और वेट लॉस को कम करने में काम आती है। और आपने एक बात बोली कि ये ऑफ द रिकॉर्ड, तो एक दवाई इनमें ऑफ द रिकॉर्ड मिलती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोनजारो ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन है, और ओज़ेम्पिक और ऑन द प्रिस्क्रिप्शन है।
1: जी
0: और ये अलाउड है भारत में, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में आपको पता है कि लीकिंग होने की संभावना, देखो जब कोई दवाई आती है तो उसके बारे में हाइप होता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे को मिल जाए और मेरा वेट कम हो जाए, तो वीगो मुंजारो जो है ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन भी मिलती है, तो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट आप कभी नहीं समझ पाएंगे, ये डॉक्टर ही समझ सकता है कि कौन कौन से टेस्ट इन दवाइयों के लेने से पहले होने चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ हैं ओरली मेडिकेशन ले सकते हैं या ये इंजेक्शन है?
0: जी, आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये भी एक कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि आखिर ये दवाई लेनी कैसे है, इनका फॉर्मुलेशन कैसे है। तो अगर आप बात करें इनमें बेसिकली ओजेम्पिक जो है इसका अंदर का जो कंपोजिशन है वो सीमा ग्लूटाइड है, जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से ओरल फॉर्म में रिबिल्सस एक फेमस ब्रांड है भारत में है, जो कि ऑलरेडी ओरल फॉर्म में चल रहा है और पहले से उपलब्ध है। लेकिन अभी जो ये दवाइयों की जिनकी बात हो रही है हमारे देश में जिनकी चर्चा हो रही है वो सब इंजेक्टेबल फॉर्म में आई हैं, हम कहेंगे सबक्यूटेनियस फॉर्म, जैसे कि हम इंसुलिन को देते हैं मैम वैसे ही आई हैं। तो ये अभी इनका उपयोग वंस इन ए वीक होता है, मैं थोड़ा अगर बताना चाहूँ तो वंस वीकली सबकट इनका उपयोग किया जाता है और हर मंथली दवाई के डोज को बढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रोफाइल। तो इसमें हर पेशेंट की पर्सनल प्रोफाइल अलग होती है, उसको आपको एक प्रोफाइलिंग करना होता है, जैसे कि हर व्यक्ति की क्या बीमारीज हैं, उसका प्रोफाइल कैसा है, उसका जेनेटिक बैकग्राउंड कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, इन सब चीज़ों को देखते हैं और उसको और कौन सी बीमारी है बैकग्राउंड में। किसी को अगर किसी को हार्ट का इशू है, किसी को पेट का इशू है, किसी को आँखों का इशू है, तो ये सब चीज़ देख के ही दवाई लेनी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ जो कि ये असेस कर पाए, उसको पता होगी कौन कौन सी बीमारियों में इन दवाइयों को नहीं दिया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए तो ठीक है ये दवाइयाँ कि उनके लिए ही बनी हैं तो उनको आराम पहुँचाएंगी, उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल होंगे, लेकिन जैसे हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे थे, अब उनको डायबिटीज़ है या नहीं है ये नहीं पता, उनको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं पता, लेकिन वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है बीच में, अब ये कितना सत्य है नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये कहा गया है कि ओजेम्पिक लेने से इन सबके वज़न जो है वो कंट्रोल हुए हैं, लेकिन क्या ये दवाई अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है आप ले सकते हैं और उसका कोई नुकसान नहीं होगा? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप ये दवाई ले रहे हैं और आपकी भूख कम हो गई है, सो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? आपकी भूख ही कम हो गई है, आप जितना 2000 कैलोरीज 2200 कैलोरीज जो हमें दिन की लेनी होती है, अगर आप उसकी जगह 1500 कैलोरीज ले रहे हैं, सो कैसे आप अपनी बॉडी को ठीक रख पाएंगे?
0: जैसे कि आपने कहा कि इन दवाइयों का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी मेडिसिन आपका वेट लॉस कैसे करती है, तो अगर हम बात करें इन दवाइयों की, ये वेट लॉस आपके ये आपकी फैट को अगर लॉस आपको अपनी फैट को अगर लॉस करना है और आपको फैट को कम करना है तो ये ध्यान रखें कि ये मसल लॉस भी करती हैं साथ में। अगर आप इनको अनइंटेंशनली ले रहे हैं और आप कॉन्शियस नहीं है तो आपका मसल लॉस भी साथ में होता है। अगर इन दवाइयों को लेते वक्त आपका मसल लॉस होता है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि मसल लॉस आपका नहीं होना चाहिए। तो जब आप वेट लॉस करते हैं तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये होलिस्टिक अप्रोच है, आपको डाइटिशियन की जरूरत पड़ती है जो कि आपकी प्रोटीन को मेंटेन करता है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रोटीन डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और रिकमेंडेड प्रोटीन इन दवाइयों के साथ नहीं लेते हैं तो आपका मसल लॉस होगा, क्योंकि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर आवर मसल्स, इट इज अ मस्ट। तो अगर आप एक डाइटिशियन, एक फिजियोथेरेपिस्ट और उसके साथ साथ एक डॉक्टर, इन तीनों को मिला के अगर आप ये काम करते हैं और दवाई लेते हैं तभी आपने जैसा कहा कि क्योंकि अगर आप इन दवाइयों को बंद करते हैं तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये रिगेन वेट रिगेन भी बहुत फास्ट होता है, जो आपने पूछा कि ये आपकी एपिटाइट को कम कर देती है,
1: बढ़ा देंगे
0: तो एपिटाइट कम कर देती है, तो आपका तो एपिटाइट कम हो गया तो आपको तो पता चलता नहीं है कि आपको कितना क्या खाना है, आपको तो लगता है कि मेरा पेट तो भर चुका है। इसलिए इसमें जो आपने देखा कि ICMR ने लेटेस्ट बोला कि जो बैलेंस डाइट है उसको आपको फिर भी फॉलो करना है, जो आप हम बोलते हैं कि हमारी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें समान मात्रा में जो एक प्रोपोर्शन होता है वो होना चाहिए, और ये 100% आपको डॉक्टर और डाइटिशियन कोऑर्डिनेशन के साथ इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी जिसको हम फिजिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एक्चुअली जो जो कोच होता है जो डाइट फिजियोथेरेपी है बोलेंगे कि आपकी एक्सरसाइज के लिए उसकी भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों के पास आजकल टाइम नहीं कि एक्सरसाइज करनी कैसे है। तो मैं कहूँगा कि जो ये दवाई ले रहा है उसको एक कंसल्टेशन अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी लेना चाहिए, जिससे वो समझ पाएंगे कि दवाइयों का उपयोग आखिर कैसे करें। तो इन दवाइयों का उपयोग बहुत ही संतुलित और बहुत ही नियमित तरीके से और बहुत ही सतर्क होकर करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, यानी कोई भी दवाई जो बॉडी में जाती है उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होता ही है और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। वो बुखार की दवाई भले ही क्यों ना हो, लेकिन आपका बुखार ठीक करने के अलावा वो बाकी बॉडी के पार्ट्स पर भी कुछ असर तो जरूर डालती है। जो भी चीज़ हम खाते हैं, अपने शरीर में लेते हैं, उसका इफेक्ट होता है। तो ऐसी दवाइयाँ जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं कुछ कारणों से, रील्स देख देख के आप उनके बारे में जान गए हैं, तो थोड़ा सा सतर्कता के साथ इनका इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज अधाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगरा जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें चल रही है बहुत सारी उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है। पहला डायबिटीज, दूसरा ओबेसिटी और तीसरा हाइपरटेंशन। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपकी पूरी बॉडी को खराब करने की ताकत रखती हैं अगर सही तरीके से मैनेज ना की जाए। बात करते हैं डायबिटीज की और डायबिटीज के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर साहब, ओज़ेम्पिक मौनज़ारो के बारे में तो आपने बात कर ली है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी एक तो इनकी कॉस्ट वो बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना क्योंकि हमने बहुत सुना है कि बहुत महंगी दवाइयाँ। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं जो अभी तक नज़र में आए, क्योंकि हाल ही में इतना चर्चा में रहा है कि लोगों ने कहा है कि ये मत लो, ये इससे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आ जाती हैं। सो क्या ये वाकई सच है?
1: जैसे कि बात कर रहे हैं कॉस्ट की और साइड इफ़ेक्ट्स की, तो पहले मैं बात करना चाहूँगा इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी दवाई को लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, चाहे हम वो पैरासीटामोल ही ले लें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन दवाइयों के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर मैं इनको क्लब्ड कर दूँ एक साथ की कॉमन साइड इफ़ेक्ट, तो सबसे कॉमन इनके GI साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब आपके पेट से रिलेटेड होते हैं। वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं, परसिस्टेंट एब्डोमेन पेन हो सकता है। तो जिनको खासतौर पर पेप्टिक अल्सर होता है या छाला होता है, अगर पेशेंट समझ पाएंगे इस चीज़ को, तो उनको इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और दूसरा, इसके जो थोड़े डेडली साइड इफेक्ट या मैं कहूँगा थोड़े गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं, वो पैंक्रियाटाइटिस जिनको होता है या जिनको गॉल ब्लैडर के इश्यूज होते हैं, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, और किसी किसी में जिनको आपका कैंसर, थायराइड का कैंसर भी कुछ दवाइयों के स्टडीज में पाया गया कि ये थायराइड कैंसर भी कर सकती हैं। तो इनको एक बार थायराइड के बारे में भी डॉक्टर को देखना चाहिए कि थायराइड उनका ठीक है, उनको थायराइड का कोई इशू नहीं है,
0: साथ साथ उसको भी मॉनिटर करते रहें।
1: क्योंकि कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट थायराइड कैंसर भी पाया गया था, इनका कोरिलेशन था आपस में। और एक आई जो है, आपकी आई एग्जामिनेशन बिफोर दीज मेडिसिन, यू शुड गेट इट डन। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखे, और वो आपके बैकग्राउंड हिस्ट्री जो मैंने कहा मेडिकल हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड टेक इट। और आपने कहा कि कॉस्ट, तो मैं कहूंगा कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक दवाई इनमें किसी को भी लेंगे तो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास महीने का इनका होता है,
0: मंथली
1: या मंथली, और वंस इन ए वीक के लेनी होती है। तो और इसका डोज जब आप बढ़ाते हो दवाई का, इंक्रीमेंटल डोज जब आप लंबे समय में लेते हो, तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ भी सकता है।
0: पंद्रह से बीस हजार मान लें।
1: अच्छी बात यह है कि थोड़े समय के बाद इसमें से दो ब्रांड ऑफ पेटेंट हो जाएंगे, तो हमारे देश में इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है कि कॉस्ट को कम किया जाए। क्योंकि आपको पता है ये इट्स लाइक ए गोल्ड माइन, ओबेसिटी इन इंडिया इज लाइक गोल्ड माइन। तो दो कंपनियों की दवाई है वो भी इसमें बहुत कंपटीशन कर रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा मार्केट है भारत, इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। तो दूसरा ये कि इसकी आप इसको शुरू कर देते हो तो आपको ये लंबे समय लेनी है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आप इसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने लेके अपना वेट कम नहीं कर सकते हैं। मिनिमम जो स्टडीज हुई हैं, आपको 1.5 साल के आसपास लेते हो तो आपका 10 से 15 किलो वजन कम होता है, ये मैं स्टडीज के आधार पर बता रहा हूँ।
0: 1.5 साल के बाद
1: 15 किलो वजन कम होता है। एंड कंडीशन इज दैट यू शुड डेफिनेटली मेंटेन योर लाइफस्टाइल एंड यू शुड बी डूइंग ऑल द अदर थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड विद दिस मेडिसिन।
0: यानी सिर्फ दवाई लेने से कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी होगी, डाइट का बहुत ख्याल रखना होगा, और न्यूट्रिशन की बात जैसे हम कर रहे थे कि न्यूट्रिशन, जब आपकी भूख कम हो जाती है तो न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगा, तो डाइटिशियन आपको बता सकता है कि कितना प्रोटीन और कितना आपको कार्बोहाइड्रेट
1: लेना चाहिए। और आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो और एक बार जब ये दवाई आपके वेट को कम ले आती है, तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करने के लायक हो जाते हो, क्योंकि जिसका ज्यादा सीवियर ओबेसिटी होती है वो रनिंग भी नहीं कर सकता, पार्क में जा भी नहीं सकता, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दवाई जब आपका वजन कम करती है तो आप अपनी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो।
0: बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एक अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है, उन्हें ढूंढें और उनसे सलाह लें, खुद ही दवाइयां लेके खुद ही डाइट ना प्लान कर लें, क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, उनसे सलाह नहीं लेंगे, इन दवाइयों का उल्टा असर आपकी बॉडी पर हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई डायबिटीज की और ओबेसिटी की, तो डायबिसिटी की बात हमने इन शॉर्ट कर ली है, लेकिन अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया है, लोगों के लाइफस्टाइल ख़राब हो चुके हैं, रात को देर तक जागते हैं, कई लोग तो काम ही रात को करते हैं, इसके अलावा खाना पीना जो है वो बाहर का बहुत ज़्यादा हो गया, जिसमें सॉल्ट बहुत आ गया है, इसके साथ साथ स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। अब ये हाइपरटेंशन किस तरीके से बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए।
1: जैसे आपने कहा कि जो डायबिटीज और ओबेसिटी एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ओबेसिटीज की वजह से हाइपरटेंशन की भी संभावना होती है, आपका बीपी भी ज़्यादा बढ़ सकता है। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका बीपी, पेशेंट को लगता है कि मेरा बीपी बढ़ गया है तो मुझे ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, तो लेटेस्ट अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की लेटेस्ट गाइडलाइन आई है कि स्टेज वन हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं, जिसमें बीपी आपका 130/139 ऊपर का होता है और नीचे वाला बीपी आपका 90 से कम होता है लेकिन 80 से ज़्यादा होता है। मैं ये स्पेसिफिक इसलिए करना चाह रहा हूँ कि पेशेंट अपना बीपी देखता है तो उसको पता होता है कितना आ रहा है। तो अगर आपका बीपी स्टेज वन हाइपरटेंशन है, और जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ सॉल्ट इनटेक, हमारी कंट्री में वैसे भी हिडन सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, हमारे पिकल्स में, पापड़ में, और हमारे फास्ट फूड्स में, और बहुत सारी तली भुनी चीज़ें जो हमारे कल्चर में, हमारी मम्मियाँ, हमारे दादियाँ जो बना के हमको खिलाती हैं, वो बहुत ही खतरनाक होता है हिडन सॉल्ट। तो इसमें भी ये गाइडलाइन है कि आप सॉल्ट इनटेक को भारत में लेस देन 2.5 ग्राम पर डे, या उसके भी नीचे अगर कोई हाइपरटेंसिव है तो 1.3 ग्राम पर डे। तो आप कह सकते हैं कि एक स्पून का 1/4 पार्ट या 1/3 पार्ट आपको खाना है
0: पूरे दिन।
1: तो सॉल्ट इनटेक हिडन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स को, जिनको सॉल्ट इनटेक की ज्यादा आदत हो जाती है, वो खुद ही एक्स्ट्रा एड ऑन सॉल्ट इनटेक कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और आपका बीपी, जैसे मैंने कहा कि 139 के नीचे है, और आप अगर फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, सॉल्ट इनटेक को 6 महीने के लिए कर्टेल करते हैं, तो ये गाइडलाइंस कहती है कि आप अपनी पिल्स के बर्डन को अवॉइड कर सकते हैं और आप बीपी को बिना पिल्स के भी मैनेज कर सकते हैं और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि आपको बीपी की दवाई की जरूरत पड़े ही ना, क्योंकि आप अपने बीपी को ऑलरेडी नॉर्मल रेंज में ला चुके होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूछा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपका बीपी एक साइलेंट किलर होता है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आपके बीपी के वार्निंग साइंस नहीं आते हैं। इसलिए बीपी को एनुअली, या मैं कहूंगा हर 6 महीने में एक बार चेक होना ही चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल, यानी थोड़े थोड़े टाइम में ब्लड प्रेशर को जरूर चेक करते रहें। डॉक्टर साहब, वार्निंग सिचुएशन क्या होती है ब्लड प्रेशर के केस में? जैसे लोगों का बीपी कई बार 150 तक पहुंच जाता है, कई बार 140 पे ही लोग बहुत घबरा जाते हैं, सो वार्निंग सिचुएशन क्या होती है?
1: इसको मैं एक तरह से ये कहना चाहूँगा कि ये बेसिकली एक डिजिटल नंबर है, या एक जो नंबरिंग को अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 3 अलग अलग समय पे 140/90 या 140/90 के ऊपर चला जाता है, तो 100% उनको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और वो बीपी की दवाई लेने के लिए उनको लेनी पड़ती है। तो किसी का भी बीपी अगर 140/90 या इसके ऊपर जाता है तो उनको दवाई के लिए बीपी की दवाई लेनी पड़ती है। किसी को सीवियर हेडेक होता है, दिखने में तकलीफ होती है, पैरों में दर्द होता है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, या चेस्ट पेन होता है, मैंने जैसे कहा कि साइलेंट किलर है, जनरली ये सिम्टम्स आते नहीं है। तो अगर आपका बीपी, डॉक्टर आपको एक बार ये बता देता है कि आपको बीपी के चेंजेस हैं, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत सारे टेस्ट करके हम लोग ये देखना चाहते हैं कि बीपी के साथ अंगों को नुकसान तो नहीं हो गया, जिसको हम ऑर्गन डैमेज बोलते हैं। तो अगर किसी के ऑर्गन डैमेज हो गया तो उसको तो बीपी की दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन मैंने कहा कि वार्निंग साइंस बहुत कम आते हैं, जनरली पता चलता ही नहीं है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो ही पता चलता है। इसमें भी ये बात है मैम कि कई बार इसमें अलग अलग टर्म है, कि एक होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब आपका बीपी बढ़ता है लेकिन घर पे नहीं बढ़ता है। एक होता है मास्क्ड हाइपरटेंशन, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जब आप डॉक्टर के वहां जाते हो तो नहीं बढ़ा हुआ होता है, लेकिन घर होते हो तो बढ़ा हुआ होता है।
0: ऐसा क्यों होता है?
1: ये पेशेंट आके बोलते हैं, आपने सुना कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और मास्क्ड हाइपरटेंशन। अब इनको पता लगाने के लिए अलग अलग बीपी, जो बीपी भी एक तरह से आपके साथ गेम खेलता है हाइड एंड सीक का, तो इसको पता लगाने के लिए, और आप इसके आपके अंगों को कभी नुकसान ना हो और बीपी 100% है कि नहीं, ये जानने के लिए हमारे पास एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ABPM। तो अगर कोई भी पेशेंट 48 घंटे के लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या ABPM घर पे करता है, तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर रात को जंप तो नहीं कर रहा है घर पे, जो कि डॉक्टर के पास नहीं कर रहा है, मास्क्ड हाइपरटेंशन। तो आप इसमें अलग अलग तरह के जो बीपी होते हैं उनको भी पता लगा सकते हो, और वो पेशेंट लॉन्ग टर्म तक अपनी जो डैमेज करता है बीपी उसको रोका जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको डॉक्टर एडवाइस करें एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग उनको करना चाहिए, जो आपने पूछा भी, और बार बार घर पे ब्लड प्रेशर चेक भी नहीं करना चाहिए, 2 बार से ज्यादा ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो एंजाइटी घबराहट से भी बीपी बढ़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे शुगर होती है तो चेक करते हैं, या बीपी होता है तो बार बार चेक करते हैं, तो उससे स्ट्रेस से भी मुझे लगता है इन चीजों पे काफी वाइटल्स पे,
1: जैसे मैं फाइट फियर एंड फ्लाइट, ये तीनों चीजें हमारा वो वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसको कि आपकी घबराहट में एक्टिवेट होना है। तो अगर आप घर पे 2 बार से ज्यादा ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो, और आपका बीपी बढ़ता है, तो उसका हम बोलते हैं होम कफ हाइपरटेंशन। तो आपको बीपी 2 बार ही चेक करना है, और मुझे लगता है आपको बीपी जब आप कंफर्टेबल 10 मिनट रिलैक्स होके बिना सोचे हुए बैठे हुए हैं तब आपको करना चाहिए, कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है।
0: जी बिल्कुल, तो बीपी को बार बार चेक ना करें, डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें, और अगर कोई सिम्टम आपको नजर आ रहा है तो प्लीज उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में आए, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, सब के बारे में आपने विस्तार से बताया। उम्मीद है कि जो फेस्टिवल सीजन है, बाकी जो हमारे पूरे देश में साल भर अलग अलग त्यौहार रहते हैं, उस पर जो एक्स्ट्रा खाने पीने की चीज़ें बनती हैं वो तो लोग खाएं, लेकिन साथ में एक्सरसाइज को ना छोड़ें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, तीनों जो आपने बीमारियां बताई हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीजेस की कैटेगरी में आती हैं और लाइफस्टाइल को ठीक रखना ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। सो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और अब टाइम है आपसे इजाजत लेने का। ऑल इज़ वेल में आज बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना है और सुनते रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो न सिर्फ मानवता फैलाता है लेकिन मानव अधिकारों की जानकारी भी आप तक पहुँचाता है। सो ये अलग अलग चोले पहनकर कोशिश एक ही करते हैं कि दुनिया तक न सिर्फ बहुत सारी जानकारी पहुंचे, लेकिन उसी के साथ साथ ये पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को उनके अधिकारों को पहुंचाना उन तक और साथ के साथ उनके अधिकार उन तक मिले, इसको इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत सी एसोसिएशन है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन। जी हाँ, ये ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। और अगर आप सभी जानते हैं तो आपने गेस कर लिया है कि आज मानवता की राह पर हम किन के साथ चलने वाले हैं। दोस्तों, एक खास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो न सिर्फ मानवता की राह पर चल रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक सीख भी है। सो आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी से। एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के, करते हैं इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। एडवोकेट अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू भावना जी, आपने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया बहुत अच्छी बात है।
1: अशोक जी, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन ये एक बड़ी खूबसूरत सी एसोसिएशन है, ढेर सारे लोगों की मदद कर रही है, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि ये एक नेत्रहीन की लाठी है, उन सभी लोगों को राह दिखाने की कोशिश कर रही है जिन्हें राह पता नहीं है। मुझे बताइए कि ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन का गठन कब हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है?
2: भावना जी देखिए, सोशलिज्म तो मैं रग रग में भरा हुआ है, 1985 से मैं इस सोशलिज्म के कार्य में व्यस्त हूँ, लेकिन पिछले 4-5 सालों से मैं महसूस कर रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो देश के लोगों को देश की भाषा में और देश की बेसिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर सके। इसको मद्देनजर रखते हुए हम कुछ साथियों ने मिलकर ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट एसोसिएशन का 2020 में गठन किया है और पिछले 5 सालों से हम लोग इसके अंतर्गत जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को मानवाधिकारों के प्रति बेसिक जानकारी हो, क्योंकि हमारे देश में जो मानवाधिकार हैं पूरे विश्व से कम 50 साल बाद जाकर लोग अलर्ट हुए हैं मानवाधिकारों के प्रति। अभी भी बहुत से लोगों को अपने मौलिक अधिकारों का तो पता है लेकिन मानवाधिकारों का नहीं पता कि मानवाधिकारों के अंतर्गत हमें किन किन विषयों की आजादी है, हम किन चीजों को समर्थ हैं सरकार से प्रशासन से लेने में। तो इस बात की हम अलख जगाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से हमने मांग भी की है कि मानवाधिकार विषय को बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए
1: जी।
2: ताकि बच्चे शुरू से ही जब वो अपनी केजी नर्सरी या फर्स्ट या सेकंड क्लास तक पहुंचे तो उनको इन चीजों की अवेयरनेस हो जाए कि ये मानवाधिकार हमें मानवाधिकार आयोग से मिले हुए हैं।
1: सो भाई देखिए, अगर हम असल में देखें तो ह्यूमैनिटी हम तभी फैला पाएंगे ना जब हमें अपने ह्यूमन राइट्स बताओगे। सो एज ए ह्यूमन हमारे अधिकार क्या है, व्हाट आर आवर राइट्स? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें पता है कि हम एक इंसान है और हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, पर कुछ हमारे मौलिक अधिकार भी हैं, उसके साथ साथ हमारे कुछ मानव अधिकार भी हैं, और क्या हम इन मानव अधिकारों को अचीव कर पा रहे हैं? सो जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में क्या हमें ये अधिकार मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कौन सा ऐसा दरवाजा है जिसे हम खटखटा सकते हैं, कहाँ जाकर हम इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है ना ये आपको बताता है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट एसोसिएशन। सो कोशिश कर रहा है लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की और एक बहुत ही खूबसूरत सी, लेकिन कहना चाहिए बहुत ही अच्छी सी पहल है। सो इस पहल के साथ आप सभी भी जुड़ सकते हैं। कैसे, पूछूंगी ये सवाल, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आज एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी से पूछने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। सो आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो वन ऑफ रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।
3: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
4: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
3: हाँ गुरुदेव, ना इज्जत की चिंता ना

राजा बन के हम सन्यासी काम है चलते रहना, मौका है वीर बना लो

महाराज पधारे, चिंता चरस चिलम और चेले साथ साथ में सारे।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ। ये नेशनल प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, अब मुझे बताइए कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप लोग लेते हैं, एक अच्छी बड़ी टीम है आपकी, और आप सभी मिलकर कोशिश करते हैं कि लोगों को उनके मानव अधिकार पता लगे। सो इसके तहत किस प्रकार के इनिशिएटिव्स आप लेते हैं?
1: देखिए भावना जी, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोगों को उनके मूल अधिकारों के बारे में जागरूक करें कि उसका किस चीज के प्रति। इंसान का जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत से ऐसे अधिकार हैं, जैसे हर इंसान को दुनिया में आने का अधिकार है, उसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। मृत्यु के उपरांत उसका संस्कार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ये भी उसका एक मौलिक अधिकार है, चाहे वो इस दुनिया में नहीं रहा।
0: जी।
1: कोई भी व्यक्ति उसको दाह संस्कार को नहीं रोक सकता किसी भी सूरत में। और इस जन्म और मृत्यु के बीच में उसको पढ़ने का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने का अधिकार, ये सारे अधिकार मानवाधिकारों की श्रेणी में आते हैं। और ये तभी तक लोगों को अवेयरनेस मिलती है जब वो इसके बारे में जागरूक होंगे, तभी जान पाएंगे ना कि मेरा क्या अधिकार है और मुझे किस वक्त पर कौन से अधिकार का प्रयोग करें।
0: देखिए भाई, ये वाकई सही है, और इसके तहत बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। अब ये इनिशिएटिव्स कैसे लिए जाते हैं? सो ना सिर्फ जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन सभी लोगों को भी बताने की कोशिश की जाती है जिन्हें इन अधिकारों के बारे में जानकारी है ही नहीं। यहाँ पर मैं एक जरूर बात सोच रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लॉइट होते हैं क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है। और जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो मात्र इलिटरेट हो या फिर उनकी आजीविका कम हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़े लिखे भी हैं, आपके अंदर विजडम भी है और आपके पास पैसा भी है, पर क्योंकि आपको इन अधिकारों की जानकारी नहीं है, सो कहीं ना कहीं इन चीजों का खनन भी हो जाता है। सो कैसे पता लगे इसके बारे में और किस तरीके से आप इसे पूरा जान सकते हैं, ये बहुत सारी बातें बताई जाती हैं ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन द्वारा। सो ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो लोगों की जिंदगियां बदलने की कोशिश कर रही है, कैसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, अब बड़ा अहम सवाल है, आपकी एसोसिएशन बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल रही है, खास तौर पर उन लोगों को जिन्हें अपने मानव अधिकारों के बारे में जानकारी मिल जाती है। भाई, राइट टू स्पीच तो सबको पता है, लेकिन आज के जमाने में कहां पर बोलना है और कहां पर चुप रह जाना है, किन चीजों के बारे में बोलना है, कितनी फ्रीडम आपको जरूरी है पढ़ने की, लिखने की, साथ के साथ इस अपने ही देश में फ्री रहने की भी आपके पास ये अधिकार है, पर बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीली रह भी नहीं सकते हैं, कभी जाति के या फिर आप कहिए कभी धर्म के कारण अलग अलग चीजों में बांट दिया जाता है, संप्रदायों में बांट दिया जाता है। सो आप लोग किस तरीके से ये परसेप्टिव्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं?
1: देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अपना बाजू घुमाने का अधिकार है, लेकिन जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है वहाँ से आप बाजू नहीं ले जा सकते ना।
0: यस,
1: सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्पेक्ट ईच अदर। आप अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने आप को स्वतंत्र भी रखिए और सामने वाले जो आपका व्यक्ति है उसके अधिकारों की रक्षा करना भी आपका उत्तरदायित्व है।
0: जी,
1: जब तक हम लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं होंगे, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा नहीं जान कर पाएंगे, तो हम समाज में जागृति नहीं ला सकते।
0: जी,
1: मैं चाहूँ कि मैं किसी के अधिकार का हनन करूँ और दूसरा मेरे अधिकार की रक्षा करे, ये पॉसिबल नहीं है ना मैम।
0: एक्चुअली
1: तो हम लोग यही ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को कि आप लोग स्वच्छंद रूप से घूमिए, अच्छे बाग के माली बनिए, अच्छे फल फूल लगाइए, लेकिन सुगंध लेने का अधिकार सभी को दीजिए, ताकि देश का हर नागरिक स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए स्वच्छंद रूप से जी सके, उसमें किसी भी तरह का धर्म, जाति या लिंग भेद नहीं होना चाहिए।
0: वाकई बिल्कुल सही कहा। और अगर हम देखें तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी परेशानी यही है कि बहुत सारे धर्म हमारे देश में हैं, और जब हर इंसान अपने धर्म को फॉलो करता है सो उसका सारा का सारा दारोमदार ये होता है कि भाई मेरा धर्म सर्वोपरि है। बट जब हम दूसरों के बारे में सोचें तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक बैलेंस जरूर मेंटेन किया जाए, क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता जो मिली हुई है ना हमारे देश में,
0: जी,
1: उसमें सबसे बड़ी ये है कि हर बंदे को अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखने का अधिकार है, लेकिन उसको दूसरे के धर्म की आलोचना करने का अधिकार नहीं है।
0: Yes.
1: उसको अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखनी है, उसकी पूजा पद्धति जो भी है उसको अडॉप्ट करने का उसको अधिकार है, बजाय उससे दूसरे की किसी भी भावना को ठेस ना पहुंचे और उसके किसी चीज में खलल पैदा ना हो, तो ये जरूरी है।
0: So, दोस्तों, जब हम मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं सो ये बात जानना बहुत जरूरी है, और आज मुझे लगता है एडवोकेट अशोक जी ने एक बड़ी अहम बात कही है कि हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, हम अगर अपने दिल से उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन है, हमारी प्रैक्टिस है, कई बार वो हमारी सिर्फ एक फेथ भी हो सकता है, लेकिन हम उसे फॉलो कर रहे हैं ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है और ये हमारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इसके कारण हम किसी को यानी किसी और को ना तो हम परेशान कर सकते हैं और ना ही उसके कारण हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई मेरा धर्म ज्यादा अच्छा है या आपका धर्म खराब है। सो ये सब कुछ कहीं भी अलाउड नहीं है, खास तौर पर हमारे देश में। सो अगर आप इस देश में खूबसूरती से जीना चाहते हैं, अपने अधिकारों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि आपके अधिकारों के साथ कहीं कोई खिलवाड़ ना हो, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बने। आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का पहला कदम ले लिया है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन ने, और इस अलग को लेकर चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, ये कॉन्वर्सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फील गुड, फील लाइव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ। अशोक जी, आप एक लायन है, यानी आप लायंस क्लब संस्था के साथ जुड़े हुए हैं एक लंबे समय से, और उसी के साथ साथ आप ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन में एक्टिवली काम कर रहे हैं। पेशे से आप एक एडवोकेट तो हैं ही, मुझे ये बताइए आप इतना सारा धर्म का काम और साथ के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं?
1: मैम, ये बस आप लोगों की दुआ है कि परमात्मा ने कार्य सौंपा है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर जिस नेक कार्य के लिए हम इस दुनिया में आए हैं
0: जी,
1: अगर वो हमसे बेहतर तरीके से हो सकता है तो हो जाता है
0: जी।
1: मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं, बहुत लोग बहुत बहुत काम इकट्ठे करके चल रहे हैं, कोई 10 काम कर रहा है, कोई 5 काम कर रहा है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि जिस भी कार्य में जुड़ा हूँ उसको अपना 100% दूं, ताकि उस उद्देश्य को सफल कर सकूं जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है।
0: अशोक जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि लोग दो चीजों के पीछे भाग रहे हैं, या तो पावर या पैसा। लेकिन अगर मैं आपको कभी भी देखती हूँ तो आप हमेशा मानवता की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। यानी ना तो आप इस चीज को देख रहे होते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं इससे और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊंगा, या मुझे और बहुत ज्यादा नाम कैसे मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप लोगों तक हमेशा अच्छी सलाह, अच्छी जानकारी और शायद उनकी मदद करने में लगे रहते हैं। सो ये भावना कहाँ से आती है?
1: ये मैम, अगर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो मेरे दादाजी जब पाकिस्तान से आए थे
0: जी,
1: जब विभाजन हुआ था हमारे देश का
0: जी,
1: तो उनके जो सोच थी वो बहुत कुछ वहाँ छोड़ के आए थे
0: जी,
1: इतना कुछ कि आप सोच भी नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे ये बात की प्रेरणा दी कि बेटा, ये कुछ चीजें साथ नहीं जाती, साथ सिर्फ वही जाएगा जो आपने अपने नेक कर्मों से कमाया है। क्योंकि आज तक भी वो उस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज तक भी जिला मुल्तान में उनके बहुत से संपर्क के साथी हैं, जिनके कई बार कॉल और फेसबुक पे मैसेज या मैसेंजर पे मेरे पास आते रहते हैं कि हम आपके दादाजी को बहुत स्मरण करते हैं। तो ये चीजें जो मेरे मन में घुसी, तो उससे मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिससे मैं समाज के किसी भी उस व्यक्ति तक काम आ सकूं जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। आप जानते हैं कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार हर कदम पे पहुंचे, नहीं पॉसिबल है। आप मीडिया से जुड़े हैं, मैंने भी काफी साल मीडिया में काम किया है, हम लोग प्रशासन को जगाने का काम तो कर सकते हैं लेकिन प्रशासन को हर द्वार तक नहीं पहुंचा सकते
0: जी।
1: लेकिन सोशल संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि हम लोग जो हमारे संपर्क में साथी होते हैं ये छोटी छोटी गली या मोहल्लों में हर जगह से जुड़े होते हैं, इन्हें पता होता है कि किस व्यक्ति को किस जगह पे क्या जरूरत है
0: जी,
1: तो उसके माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। मानवाधिकारों की अलग हम जगा ही रहे हैं
0: जी।
1: हम छोटे छोटे बच्चों को जो जिनके स्कूल में किसी की फीस नहीं भरी जा रही उसकी फीस भरने में मदद करते हैं, किसी के पास गर्म कपड़े नहीं है उसको कपड़े देने का प्रयास करते हैं, किसी के पास पुस्तकें नहीं है तो उसमें उसकी मदद करते हैं, गरीब कन्याओं की शादी में मदद करते हैं। आज हमारा संगठन देश के 40 जिलों में इन कामों में लगा हुआ है।
0: जस्ट इमेजिन, मतलब सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि इमेजिन करिए इतनी सारी जगह पर आप कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीजें पहुंच पाए जो एक्चुअली हर इंसान का एक सपना होता है। सो एक अच्छी जिंदगी हर किसी का सपना होता है, बट परेशानी ये है कि अच्छी जिंदगी हर किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, हम थोड़ी सूझबूझ से, थोड़े अपनी मेहनत से और थोड़े से शेयरिंग से ये पॉसिबल कर सकते हैं। सो देखिए, भगवान ने जब देने के लिए शायद हाथ बढ़ाया, सो उन वो इक्वली हर किसी को बहुत कुछ चीजें नहीं बांट पाए और ये पॉसिबल भी नहीं होता है। सो हुआ क्या कि किसी के झोली में बहुत ज्यादा और किसी के झोली में बहुत ही कम, और कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इससे वंचित रह गए। लेकिन जिसके पास ज्यादा है, भगवान ने कभी भी नहीं रोका है कि आप उसकी झोली ना भर पाए या उसकी झोली में थोड़ा सा ना डाल पाए जो वंचित रह गया है या जिसके पास कम है। सो आई थिंक अशोक जी इस खूबसूरत सी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हर उस इंसान तक पहुंच जाएं जिसे उनकी, या फिर कहना चाहिए किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है, और ये अपने आप में वहाँ मदद बनकर पहुँच कर लोगों की बहुत सारी सहायता कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। Feel good, feel like.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, अब एक अहम सवाल, आपकी ये जो ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन है, आप इसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, बट जिस प्रकार से आप 40 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली एसोसिएशन काफी बड़ी है और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं। सो कितनी बड़ी टीम है आपकी और कैसे फंक्शन करते हैं आप लोग?
1: मैं कुल मिलाकर 1500 के लगभग सदस्य हैं हमारे इस संगठन के, जो अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं, हम एक ज्वाइंट नहीं कह सकते कि एक प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं। अब सपोज करिए दिल्ली में कुछ और है, मुंबई में कुछ और है, अहमदाबाद में कुछ और है, तो जिस जगह पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं। आज की बात में करूं तो आज अहमदाबाद में हमारा एक मेडिकल चेकअप कैंप लग रहा है
0: जी,
1: वहाँ पे हमारी टीम है डॉक्टर खान और मिसिस तशीबा खान करके
0: जी,
1: वो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप वहाँ लगा रहे हैं, जिसमें के बच्चों के दांतों का चेकअप होगा, जिन बच्चों के पास पेस्ट या ब्रश नहीं है उनको पेस्ट और ब्रश वितरित किए जाएंगे ताकि लोग अपने दांतों की संभाल कर सके। तो इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग काम होते हैं।
0: तो ये बहुत ही अच्छी बात है, 1500 डेडिकेटेड वॉलंटियर्स की टीम होना, जो न सिर्फ अपने कीमती समय में से, अपनी व्यस्त जिंदगी में से समय निकाल रहे हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमेजिन करिए कि इतनी बड़ी टीम के साथ कितना खूबसूरत और नेकी का काम किया जा रहा है। अशोक जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मान लीजिए कि कोई आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, कोई वॉलंटियर करना चाहता है या कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है और अगर हाँ तो कैसे?
1: और इसके लिए मैम हम कुछ ऐसा स्पेशल कंडीशन नहीं है, जो भी व्यक्ति के मन में भावना है कुछ दीन दुखियों की सेवा करने की, तो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वेलकम है उसका, हमारे साथ आए जुड़े। आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था है और उसमें हम, अगर आप चाहे तो हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं
0: जी,
1: फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके वो हमसे संपर्क कर सकता है, फिर उसके बाद जिस भी तरीके की वो हमें सहायता करना चाहे खुल के कर सकता है और हम उसके माध्यम से भी उसको सेवा कार्यों में जोड़ सकते हैं।
0: सो अगर आपको लग रहा है कि आप मोटिवेट हो गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी में पा तो बहुत लिया, चलिए कुछ दे कर भी आते हैं, इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, क्यों ना हम आगे बढ़कर किसी की मदद करें। सो अगर ऐसी भावना आपके दिल में आ गई है तो आरजे भावना आपको इनवाइट कर रही है कि आइए कदम बढ़ाइए ह्यूमैनिटी की तरफ, यानी मानवता की तरफ, और आप भी जुड़ सकते हैं नेशनल इस खूबसूरत सी पहल के साथ, जो अब हमारे देश के करीबन 40 डिस्ट्रिक्ट्स में है, ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन। सो एक नेशनल इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के साथ आप जुड़ सकते हैं, और इसके लिए अगर आप देश के किसी भी कोने में हमें सुन रहे हैं, सो आप जरूर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 8010781078 पर। जी हाँ, मानवता की राह पर मैं आपके साथ हूँ, आप हमें मैसेज करिए और बताइए कि क्या आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे बढ़कर ऐसे ही मानवता के ढेर सारे काम करना चाहते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक और छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाना, जुड़े रहना रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: बम्मक बम्मक बम्मक बम्मक
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने ढेर सारी बातें की एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी से, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, ढेर सारी बातें की, बहुत सारे लोगों को आपने मोटिवेट कर दिया, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतना सब कुछ जो पा लिया है जीवन में, इसे लेकर तो जा नहीं पाएंगे। सो चलिए कुछ यहीं पर कंट्रीब्यूट कर देते हैं। सो जाते जाते सभी लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या संदेश देकर जाना चाहेंगे आप?
1: देखिए, मैं चाहता हूं कि परमात्मा ने अगर हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने एक सामाजिक दायरे से, अपने पारिवारिक दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल के देने का सामर्थ्य है, तो कुछ ऐसा दे के जाइए, कुछ ऐसा करके जाइए जिससे ये समाज और ये मानवता आपको याद रखे। कल को आने वाले वक्त में लोगों को इस नाम से जाना जाए कि वो, देखिए, इंसान तो चला गया पर वो ये काम करके गया, और वो काम हमेशा युगों युगांतर तक जीवित रहना चाहिए। ऐसा जरूर हर इंसान को अपने लाइफ में एक कदम जरूर उठाना चाहिए जिससे वो किसी के काम आ सके, किसी के आंसू पोंछ सके और किसी निरीह व्यक्ति की रक्षा कर सके।
0: कितना खूबसूरत सा संदेश है। देखिए, ये तो फैक्ट है कि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी हम ऊंचाई पर होते हैं और कभी ऐसा होता है कि जीवन उथल पुथल भरा होता है। पर ऐसे में याद रखिए कि जब आप ऊंचाई पर हैं और जब आपके पास समय है, आपके पास निधि है, आपके पास किसी भी प्रकार का साधन है, सो आप लोगों की मदद जरूर करिए, जिससे उथल पुथल भरी जिंदगी पहली बात तो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो वो समय बहुत खूबसूरती से कट जाएगा। और आपके पास और कुछ नहीं लेकिन लोगों की दुआएं, प्यार और साथ जरूर होगा। और इसीलिए आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सिर्फ और सिर्फ लोगों से कंपटीशन करते हैं, आइए फिर से याद रखें कि हम इंसान हैं, थोड़ी सी मानवता फैलाएं। तहे दिल से धन्यवाद एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच भावना जी, आपने हम आपके माध्यम से हमारी संस्था बहुत लोगों तक पहुंचेगी और मैं चाहूंगा कि लोग हमसे जुड़े और हम इस संस्था को और आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।
0: वाकई सो दोस्तों, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, मानवता की राह पर चलना है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के साथ। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, सो मैं आरजे भावना ले रही हूँ आपसे इजाजत, होगी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। Feel good, feel light.

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर लें ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम जिसमें मैं आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाती हूं जो न सिर्फ सशक्त हैं, एम्पावर्ड हैं, लेकिन उनकी खुद की एम्पावरमेंट की एक बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी है। इस जर्नी को मैं आप तक लेकर आती हूं और महिलाओं तक ये संदेश देने की कोशिश करती हूं कि महिलाओं को अपने जीवन में किस तरीके से सशक्तिकरण को इम्बाइब करने की जरूरत है। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक आर्टिस्ट है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कौशल्या रेड्डी जी से जो एक रिनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये गुरु हैं और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था पद्म भूषण डॉक्टर राजा राधा रेड्डी ने 1976 में, और ये उसकी पहली डिसाइपल भी हैं। सो इस स्कूल की पहली 3 डिसाइपल्स में से रही हैं कौशल्या रेड्डी। लेकिन इसके अलावा इनका नाम हमेशा से जुड़ा रहेगा उस परंपरा सीरीज के साथ जो एक एनुअल परंपरा सीरीज है जो हर साल 1998 से नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस न्यू दिल्ली का हिस्सा बनी रही है। और इन्होंने न सिर्फ हमारी कला और संस्कृति को इस पूरे देश तक पहुंचाया है लेकिन विश्व के अलग अलग कोने तक पहुंचाया है। तो आज हम इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। अ हार्टी वेलकम टू यू कौशल्या जी।
2: नमस्कार भावना, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए।
1: कौशल्या जी, द प्रोग्राम इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड यू आर ए ट्रूली एम्पावर्ड पर्सन, सो नोइंग यू, मीटिंग यू एंड टुडे इंटरव्यूइंग यू इज अ प्लेजर। आई वांट टू नो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट, हाउ डू यू परसीव इट?
2: मुझे लगता है कि कोई हमें एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पे ही डिपेंड करता है कि हाउ वी कंडक्ट एंड हाउ वी प्लेस योर सेल्फ इन आवर लाइफ एंड हाउ वी अलाउ पीपल टू रेस्पेक्ट अस एंड मेक अस डू एंड एक्सेप्ट अस द वे वी आर। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अपने आप में बिलीव करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ्स को जानना चाहिए एंड उसी प्रकार से अपने आप को जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करना चाहिए, किसे हमें बताने की जरूरत नहीं है।
1: सो स्वीट, आई थिंक दिस इज सो वेरी क्लियर, दिस इज रियल एम्पावरमेंट। एन एम्पावर्ड वुमन वुड से दैट यू शुड नो हाउ पीपल शुड रिस्पेक्ट यू एंड इफ यू फील दैट यू आर नॉट respected equally or you're not respected in any place, I don't think that place belongs to you. And this is real empowerment where women really know how to live their lives on their own without the support, or rather saying without compromising with their happiness. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, यानी आपको एक बड़ा बेहतरीन सा गाना सुना रही हूँ। फील गुड, फील लव।

0: यानी वुमेन एम्पावरमेंट में। आपको भी पता है महिला सशक्तिकरण मेरे दिल के कितना करीब है। हमारे रेडियो मानव रचना का लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट यानी एक लंबे समय से इस कार्यक्रम को हम आप तक लेकर आ रहे हैं। ढेर सारी सशक्त महिलाओं से आप मिलते हैं। न सिर्फ वो सशक्त महिलाएं अपने जीवन के कुछ पन्ने पलटती हैं, आपको उनके बारे में बताती हैं, लेकिन साथ के साथ हमें जीवन को सही ढंग से कैसे जीना है इसकी भी सीख हमें दे जाती हैं। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक रिनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, कौशल्या रेड्डी जी। वैसे तो ये एक गुरु हैं और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल, लेकिन इसी के साथ साथ इनकी जो एनुअल परंपरा सीरीज है वो हमारे नई दिल्ली और कहना चाहिए उत्तर भारत में बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौशल्या जी, अब अगला सवाल, वीमेन आर ऑलवेज सराउंडेड बाई लॉट ऑफ चैलेंजेस, हाउ डू यू डिफाइन विच आर द चैलेंजेस दैट करेंटली वी आर फेसिंग? यू नो, दो वी आर सेइंग वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वी हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट येट यू नो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट वी हैव टू फेस।
1: मुझे लगता है कि जैसे कि वेन वी आर ट्रूली वी आर एम्पावर्ड, बट एट द सेम टाइम मेल शोवर्निज्म बहुत बड़ा चीज़ है हमारे सोसाइटी में। इसमें क्या होता है कि कई दफ़ा हम लोग दबाव में आ जाते हैं एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एंड इसमें क्या होता है कि यू हैव टू लर्न कि किस तरह उस दबाव में ना पड़ते हुए अपना बात क्लियर रखें और उस आदमी जो हमारे लाइफ में है या चैलेंजेस जो हमारे लाइफ में है उसको किस प्रकार से उस आदमी को बताए या उस इंसान को बताए या उस सिचुएशन को हम लोग हैंडल करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, हाउ वी पोजिशन आवर सेल्फ। इट इज़ अबाउट अपने आप में बिलीव करना, खुद कॉन्फिडेंट रहना और किसी के दबाव में ना आना, ना कोई सिचुएशन के दबाव में आना।
0: ये एक बहुत बड़ा संदेश है। मतलब सबसे पहली चीज कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है,
1: वेरी इम्पोर्टेंट,
0: बट द चैलेंजेस कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो महिलाओं में नहीं नजर आता है। बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो अपने ऊपर भरोसा कर पाती हैं क्योंकि बचपन से ही उन्हें ये भरोसा मिलता ही नहीं है, ये सपोर्ट उन्हें मिलता ही नहीं है। क्या कहेंगी आप?
1: ये सही कह रहे हैं आप कि ज्यादातर हमारे सोसाइटी में यही कहते हैं कि यू नो लेडी शुड बी गिविंग इन, हम हैं होम मेकर्स, ध्यान देना चाहिए, लेडीज यू नो संभालती हैं ज्यादातर, मेन आर नॉट यूज टू एडजस्टिंग। ये सब तो कहने के लिए ठीक है, बढ़िया है, बट इस वक्त फिलहाल जिस प्रकार से हमारी एजुकेशन हो रही है और जिस प्रकार से हम कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, जॉब में हो कोई भी करियर में हो, हमें दबाव में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, दैट वो इंसान जो हमें रेस्पेक्ट करें, जो इंसान हमारे काम को रेस्पेक्ट करें, हमें एक बॉडी कॉल दर्जा दें, वो जरूरी है। उस दबाव में ना पड़ते हुए वन कैन इंडिपेंडेंटली वेरी कंफर्टेबली लिव। सो आई वुड से कि बी इट इज नाइस बट येट एट द सेम टाइम डोंट गिव इन।
0: सो स्वीट एक्चुअली, मतलब मैं तो यही कहूंगी कि भाई रिस्पेक्ट डिराइव करना आना चाहिए, आपको ये तरीका आना चाहिए कि आप किस चैलेंज को चैलेंज समझ रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये एक्चुअली एक चैलेंज है तो उसे भी मोल्ड करके उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होता है, बस जरूरत ये है कि आप उस सिचुएशन को किस नजरिए से देख रहे हैं।
1: बट आप देखो भावना,
0: यस
1: लेडी, इनफैक्ट अगर लेडी का रोल जो है, नारी का रोल जो है, वही सबसे बड़ी मैनेजर है,
0: यस
1: लाइफ में। मैन कहाँ पे इतना कर रहा है, आदमी ने कितना एडजस्टमेंट किया है। एक माँ, एक बेटी के तरह हमने एडजस्ट किया है। एक नया घर में जाते हैं शादी करके, पूरा माहौल अलग रहता है, उसमें हम एडजस्ट होते हैं, उस आदमी को भी संभालते हैं जो अपनी माँ के ज़्यादा दबाव में या इन्फ्लुएंस में रहता है। देयर सो मच अ लेडी, द काइंड ऑफ लेडी मैनेजमेंट कर सकती है, नो अदर पर्सन कैन। द काइंड ऑफ द स्किल वी हैव, नो अदर ह्यूमन बींग हैज।
0: सो ट्रू। सो भाई, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हम ही सुपीरियर हैं। ये जो सुपीरियर जेंडर है ना, ये महिलाएं हैं। सो जब तक हम इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हमें ऐसा लगेगा ये समाज, ये सारी कुरीतियां या फिर ये सारी चीजें, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। लेकिन जिस दिन आपको पता लग जाएगा आप सुपीरियर जेंडर हैं, आपके लिए लाइफ और भी आसान हो जाएगी। वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.7 FM के साथ। फील गुड, feel like

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। दरअसल ना ये कार्यक्रम जो है महिला सशक्तिकरण का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वी के जरिए हम ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं जब एक साथ आ जाती हैं तो वो चीजों को बहुत हद तक बदल पाती हैं, यहाँ तक कि समाज को भी। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, एक रेनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, कौशल्या रेड्डी जी। कौशल्या जी, अब हम जानते हैं यू हैव बीन एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड आई हैव सीन वन थिंग। अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, सो इन ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ इफ यू सी इन रेस्ट ऑफ एनी प्रोफेशन वी हैव सीन दैट देयर इज लॉट ऑफ इनइक्वालिटी, बट आई थिंक आर्टिस्ट्स एंड डांस एंड म्यूजिक, रादर आई शुड बी सेइंग कल्चर, दिस इज द ओनली प्लेस वेयर एवरीबॉडी इज इक्वल। So how have you empowered so many women? You have been an integral part of Natya Tarangini Kuchipudi Dance School. How has been your journey and how was it, you know, to impart this beautiful art to so many other women?
1: Bhavna, ek baat to aapko bata do clearly. Purvakal, like 1960s or 70s mein, jyadatar male members were dancing.
0: Wow.
1: Dheere dheere, aur male members hi female roles play kar rahe the. आप देखिए ना, आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, इस वक्त फिलहाल ओनली गर्ल्स आर डोमिनेटिंग द आर्ट फील्ड एंड गर्ल्स आर टेकिंग द मेल रोल्स, उल्टा हो गया अभी।
0: यस,
1: एंड देखिए डांस और म्यूजिक के थ्रू जो अपने क्लासिकल आर्ट्स है ना, इसमें आपको बहुत कुछ सिखाता है। एक तो अपना गाथाएं के बारे में बताते हैं, बड़े हीरोज एंड ग्रेट स्टोरीज बताते हैं, महाभारत हो या द्रौपदी हो, सीता मैया हो, जो भी है, ऑल दिस यू नो दे से हाउ दे हैंडल इट, हाउ दे वेंट थ्रू द हार्डशिप एंड दे कॉन्कर्ड इट करके। एंड टू, इसमें कॉन्फिडेंस, डांस म्यूजिक इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन सोसाइटी, द वे यू मूव, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, इट हैज़ अ मेजर रोल व्हेन यू हैव दीज एजुकेशंस इन इट। तो क्लासिकल आर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ लेडीज कॉन्फिडेंस इन कंडक्टिंग हर सेल्फ सोसाइटी में एंड ऑन स्टेज। एंड देयर सो मेनी पेरेंट्स आजकल चाहते हैं कि हर बच्चा, आप बिलीव नहीं करोगे कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस सिखा रहे हैं कंपेयर टू अर्लियर। सो दैट इज बिकॉज दे बिलीविंग कि बच्चे में एक कॉन्फिडेंस, एक बच्चे में एक सोसाइटी में अपने आप को कंडक्ट करना एंड अब सोसाइटी में अपना सर उठा के जीना सिखाता है आर्ट्स। So that way, I'm very lucky that I'm heading this Natya Tarangini now. And उसी के द्वारा हम लोग अपने कलाओं को बहुत बढ़ावा देते हैं, जैसे परंपरा कर रहे हैं, 29 साल है ये साल परंपरा का। And we have always great masters आके यहाँ पे नई दिल्ली अपने कैपिटल में परफॉर्म करते हैं। The whole idea is best of the best अपने राजधानी को लेके आए और अपने सोसाइटी को दिखाए। आजकल यूथ, अपने यंगस्टर्स बहुत कुछ अपनी कलाएं के बारे में, अपने गाथाओं के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जानने चाहते हैं, अपने संस्कृति के बारे में जानने चाहते हैं। सो दैट वे आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि ये मुझे मौका दे रहे हैं वो।
0: वेरी वेरी नाइस। एक्चुअली कौशल्या जी, दिस इज वन बिग अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव एंड डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू होल्ड। जुड़े रहिएगा दोस्तों रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त है आपको सुनाने का एक और बेहतरीन सा गाना, बड़ा कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइक।

0: तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत सी कड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं कौशल्या रेड्डी जी से, जो एक रिनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, गुरु और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल। अब मजेदार बात मैं आपको ये बता दूं कि महिलाओं के लिए जब कभी भी हम क्लासिकल या ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स की बात करते हैं, तो न सिर्फ ये हमारे ट्रेडिशन को रिवाइव करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन साथ के साथ अगर आपने देखा हो तो नृत्य के जरिए आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जो आज के जमाने में सबसे बड़ी परेशानी है महिलाओं के लिए। सो महिलाएं बड़े स्ट्रेस्ड रहती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक हो सकती है उन्हें हील करने की। क्या कहेंगी कौशल्या जी आप? आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टेक्निक।
2: भावना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रेसर है, स्ट्रेस बस्टर है। क्योंकि देखिए ना, तब आप डांस कर रहे हैं या म्यूजिक कर रहे हैं, आप वो एक घंटा या दो घंटे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस वक्त आपको किसी भी प्रॉब्लम का, कोई चीज का कोई ख्याल ही नहीं आता है, इवन कोई थॉट ही नहीं आएगी आपके मन में। यू आर एक्चुअली, कहते हैं ये जो कला जो है, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग स्पेशली डांस, कहते हैं कि इट यूनाइट्स यू विद द ऑलमाइटी, भगवान के साथ आप एकत्र हो जाते हो। तो भगवान के साथ एकत्र हो कि आपका कोई ना परेशानी, ना कोई वट एवर वरीज हो या प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चीज़ उस एक दो घंटे में आपका लिए टोटली आप फ्री हो उससे। इसमें क्या होता है, मन की शांति, एक आराम, सम काइंड ऑफ तृप्ति, हैप्पीनेस आ जाती है। सो इससे बढ़िया कलाओं के क्रिएटिव आर्ट से बढ़िया और कोई चीज़ है ही नहीं। द बिगेस्ट, मैं कहूँगी, स्ट्रेस बस्टर खाली अपनी क्रिएटिव आर्ट्स में है। एंड दैट वे, दैट इज द रीजन, इवन कोविड के समय वी वर वेरी हैप्पी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट जनरेशन हमसे डांस सीखा, अभी सेकेंड जनरेशन भी आ रहे हैं उनके बच्चे।
1: वाओ,
2: बिकॉज दे बिलीव इन सच अ थिंग कि इसमें कुछ सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस है, आनंदम है आर्ट्स में।
1: एक्चुअली एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर एक महिला को एजुकेट करते हैं, इफ अ वुमन गेट्स एजुकेटेड, शी एजुकेट्स द एंटायर फैमिली, शी कैन एजुकेट द एंटायर सोसाइटी, एंड डेफिनेटली दैट गोज फॉर अ कंट्री। सो अगर आप कहीं परिवार की चार पांच महिलाओं को भी कोई खूबसूरत सा आर्ट फॉर्म सिखा देते हैं, तो आप सोचिए कि वो घर के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जेनरेशंस को कितनी खूबसूरत डांस फॉर्म से कनेक्ट कर सकती है। हमारे कल्चरल और क्लासिकल ट्रेडिशंस को जिंदा रखने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। सो मुझे लगता है नॉट ओनली इट हेल्प्स शेप देयर फ्यूचर, बट ऑल्सो इट हील्स देम एंड मेक्स देम मोर कॉन्फिडेंट। सो शायद कहीं ना कहीं हमें हर किसी को, मैं तो ये कहूंगी आप महिलाएं या पुरुष, किसी ना किसी तरीके के किसी डांस फॉर्म या किसी आर्टिस्टिक ट्रेडिशन के साथ जुड़े जरूर रहिए, और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजी भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत से एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं कौशल्या रेड्डी जी से, जो एक रिनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, जो गुरु और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल। अब हम बात करने वाले हैं उस परंपरा सीरीज के बारे में जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आने वाले समय में आप ये परंपरा की खूबसूरत सी सीरीज खुद विटनेस कर सकते हैं। सो हमारे नई दिल्ली में नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस 1998 से चला आ रहा है। सो आपसे जानना चाहूंगी कौशल्या जी, ये परंपरा सीरीज दरअसल क्या है, कौन सी परंपराओं की हम बात कर रहे हैं और किस प्रकार से आप अलग अलग आर्टिस्ट को यहाँ तक लेकर आती हैं?
1: देखिए, परंपरा आप तो जानते हो, इट इज कैरिंग ऑन एंड टेकिंग फॉरवर्ड
0: जी।
1: एंड इसमें जो है हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, डांस, कर्नाटक साउथ का म्यूजिक एंड साउथ का डांस, एनी डांस फॉर्म, एनी म्यूजिक। बेसिकली परंपरा हम लोग नाट्य तरंगिनी ओनली प्रमोट एंड प्रेजेंस क्लासिकल आर्ट्स। पहले अर्लियर जैसे अपने हरिप्रसाद चौरसिया जी थी, अमजद खान साहब थे, ये सब परफॉर्म किए हैं। एंड इसमें क्या है कि ऑडियंस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाके उनको एक्सपोज करें, उनको आनंद दें। देखिए, आप सभागार जाके बैठ जाते हो, वो दो घंटे में जो सुकून, हैप्पीनेस यू फील उस वक्त, दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट टू गिव टू द सोसाइटी। बिकॉज सोसाइटी में इतना स्ट्रेस हो गया, आदमी इतना परेशान है लाइफ में कि देर समय नहीं मिल रहा, एवरीबडी इज ऑन द रन, रैट रेस में फंसे हुए हैं। थोड़ा सा अपने आप को समय दे के अपना म्यूजिक और डांस को इंजॉय करते हुए यहाँ पे उनको आनंद दे, दैट इज द होल आइडिया। एंड ये 8 से 10 तारीख तक अक्टूबर में कमानी ऑडिटोरियम में हो रहा है। आपके लिए हम ला रहे हैं पंडित उल्लास खाशलकर जी पुणे से, देन वी आर गेटिंग गणेश एंड कुमरेश जी जो ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, and we have a very beautiful Bharatanatyam dancer Shijit and Parvati, and Rahul Acharya ek very stunning solo performer hai. So and jugalbandi hai jo north aur south ka jo hai tabla aur mridang ke beech mein percussion ka jugalbandi, different variety of programs laate hain taki society mein logon ko iska aanand uthane ka mauka mile। एंड हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये करने के लिए, एक सम काइंड ऑफ अ वेरी हैप्पी फीलिंग है टू ब्रिंग दिस टू द थिंग। ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में शादी कर रहे हैं हर साल, तो दिस इज द ब्यूटी एंड द आनंदम एंड द हैप्पीनेस वी गेट।
0: सो इमेजिन करिए ना कि अगर आपको ये मौका चुकना ही नहीं है, सो इस बार के इस खास फेस्टिवल का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि न सिर्फ हम अपने क्लासिकल आर्ट से जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम अपने ट्रेडिशंस को रिवाइव कर रहे हैं। और खूबसूरत बात यह है कि जैसे कौशल्या जी ने कहा कि आप डिस्ट्रेस हो जाते हैं, आप ऑडिटोरियम में जाते हैं और उसके बाद इस खूबसूरत से आर्ट फॉर्म को जब आप देखते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं उस ऑलमाइटी के साथ, आप उस डांस के साथ, उस रिदम के साथ, उस म्यूजिक के साथ, और आप बड़ा ही डिस्ट्रेस्ड और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को शायद कला और किसी ना किसी तरीके के इन फॉर्म्स के साथ जुड़े जरूर रहना चाहिए, तरीका कोई भी हो सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। ले रही हूँ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। आज हम बात कर रहे हैं कौशल्या रेड्डी जी के साथ, जो एक रेनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, गुरु हैं, आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल। कौशल्या जी, ढेर सारी बातें हमने आपसे की। इनफैक्ट वी केम टू नो अबाउट द नेशनल फेस्टिवल परंपरा सीरीज, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड सीरीज। बिसाइड्स दैट, नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल सिंस 1976, विच इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ, आई शुड से, यू नो, नॉर्थ इंडिया, विच इज नॉट ओनली गिविंग आउट ब्यूटिफुल क्लासिकल आर्ट बट इट इज एक्चुअली एम्पावरिंग लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम द सोसाइटी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। बट बिफोर यू लीव, वॉट इज वन मैसेज यू वॉन्ट टू गिव आउट टू ऑल?
1: आई वुड से, व्हाटएवर यू डू इन लाइफ, believe in yourself. That is what is going to make you achieve and make you happy in life. So be happy, be content in life. That is the most beautiful thing that you can gift yourself.
0: भाई वाकई खुशी एक ऐसी चीज है जो आप दुनिया में कहीं ढूंढने जाएंगे ना तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर इसे महसूस करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। तो खुश रहना बहुत जरूरी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन अपने आप को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फॉर्म से जोड़े रखिए, जो ना सिर्फ आपके लिए आराधना का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन साथ के साथ डिस्ट्रेस होने का, खुश होने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बहुत अच्छा लगा कौशल्या जी आज आपसे बात करके, ना सिर्फ इन आर्ट फॉर्म्स के बारे में पता लगा, जो बेहतरीन काम आप कर रहे हैं समाज के लिए उसके बारे में पता लगा, और साथ के साथ बहुत सारे लोगों तक इस खूबसूरत से नेशनल फेस्टिवल के बारे में पता लगा। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच भावना। आई होप मेरा टूटा फूटा हिंदी, साउथ इंडियन हिंदी वाज ओके।
0: डेफिनेटली इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड यू हैव रीच्ड द हार्ट्स ऑफ द लिसनर्स।
1: थैंक यू
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये प्रोग्राम जो पूरे घंटे का होता है जहाँ आप लोगों से द एनिमल वर्ल्ड में मैं बहुत सारी बातें एनिमल्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ, कुछ उनसे जुड़ी किस्से कहानियाँ भी आपके साथ में शेयर करती हूँ और इसी के साथ ही होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने। जी हाँ, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के पास आ चुकी हूँ लेकर के ढेर सारे गाने और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, और आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही डेंजरस बर्ड के बारे में। ये बर्ड कौन सी है ये आपको मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी डेंजरस बर्ड के बारे में सुना है? अगर आपने कुछ पढ़ा है या सुना है या कभी कोई किस्से कहानी आपने सुनी है तो आप हमसे शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपने किस बर्ड के बारे में सुना है। हो सकता है जिस बर्ड के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आपने भी उसी के बारे में ही सुना हो, तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए। हमारा नंबर है 8010781078। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप किसी बर्ड के बारे में या किसी एनिमल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों ने जिस एनिमल की फरमाइश की है मैं उसके बारे में बताऊं, तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज कीजिए। आप टेक्स्ट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप के ज़रिए से ये जानकारी भेज सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गाने के साथ। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रश 107.8 FM पर और प्रोग्राम है द एनिमल वर्ल्ड। और द एनिमल वर्ल्ड में मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसी बर्ड के बारे में जो कि बेहद खतरनाक होते हैं। जी हाँ, जब भी हम बर्ड का नाम लेते हैं तो हमें बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी, छोटी सी है ना, वो चिड़िए और जो बर्ड्स हैं वो हमें महसूस होता है, हमें उनकी वो उनका जो चेहरा है वो याद आता है। लेकिन कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं इस दुनिया में जो बहुत ही ख़तरनाक होती है, तो आज मैं आपको एक ऐसे ही बर्ड के बारे में बताने वाली हूँ। डरावनी आंखें, उभरा हुआ सर, मगरमच्छ की तरह ये ख़तरनाक दिखने वाला जो ये पक्षी है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। इसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक बर्ड में माना गया है और इसे कहते हैं कैसोवेरी। जी हाँ, और ये ना सिर्फ इंसानों को गहरी चोट पहुंचा सकता है बल्कि जान भी ले सकता है। जी हाँ, एक से ज़्यादा मामले ऐसे सामने आ भी चुके हैं इसको लेकर के, और ये अपने बड़े और नुकीले पंजों से मारकर बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देता है, इसलिए इसे ख़तरनाक पक्षी माना जाता है। तो कैसोवेरी के बारे में हम बात करें, क्या आपको आज से पहले इस पक्षी के बारे में मालूम था? अगर नहीं तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि किस तरह ये ख़तरनाक, यानी किस कदर ये हम सब के लिए ख़तरनाक हो सकता है। चलिए इसके बारे में और ढेर सारी बात करेंगे, उससे पहले इंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसी बर्ड के बारे में बता रही हूँ जो कि हर मामले में बेहद खतरनाक है, और इसका नाम है कैसोवेरी। ये आमतौर पर वैसे कहते हैं कि काफ़ी शर्मीले और मायावी होते हैं, वैसे खुद ये इंसानों से दूर रहना चाहते हैं, उनके सामने ये नहीं आना चाहते हैं, इसलिए इनसे कई बार डरने की ज़रूरत नहीं भी होती है। लेकिन इनकी जो संरचना है, जो बनावट है, वो तो ख़तरनाक है ही, मतलब आपको ये देखने में ही ख़तरनाक लगेंगे। अगर इनके भीतर से, अगर इनके अंदर से इंसानों का डर अगर निकल जाए तो ये और ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। जंगल में कैसोवेरी मिल जाए तो उस वक्त आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उस वक्त आप अलर्ट रहिएगा। ये अपने अंडों और चूजों की रक्षा करने के लिए किसी पर भी हमला कर सकते हैं और इनको बिल्कुल डर नहीं लगता है, फिर वो चाहे इनसे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। साइज में जितना बड़ा होता है इनको फर्क नहीं पड़ता है, बस ये हमला कर देते हैं। कैसोवेरी हमला करने से पहले गड़गड़ाहट की आवाज निकालते हुए गर्दन और सिर को नीचे करते हैं और ये चेतावनी दे रहे होते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ वरना मैं हमला कर दूंगा। तो ये इनकी चेतावनी होती है। इनके नाखून, अगर मैं आपको बताऊं तो एकदम खंजर जैसे होते हैं, 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। और पता ही है कि ये कितने लंबे नाखून, जो एक बार अगर धंसे तो कितने दूर तक, कितने गहरे जख्म कर सकते हैं। अगर ये किक मार दे तो इससे कई हड्डियां टूट सकती हैं सिर्फ इनकी एक किक से। और कहते हैं कि कैसोवेरी को जब इंसान कुछ खिलाते हैं तो उस समय ये ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इन्हें कुछ खिलाएंगे तो ये हमारे पालतू हो सकते हैं, या हम इनको प्यार कर सकते हैं, हम इनके सर पर हाथ फेर सकते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि कितना ख़तरनाक है। तो कैसोवेरी अगर आपको दिखता है तो आप दूर रहिए, अलर्ट रहिए, कब आप पर हमला हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरीके से जंगली होते हैं और इन्हें दोस्त समझने की गलती तो आप भूल कर भी ना कीजिएगा। तो आप दूर से देखिए लेकिन आप अलर्ट रहिए इसके लिए, और कुछ भी खिलाइए पिलाइए नहीं इसे, वरना ये आप पर हमला कर सकता है। तो कैसोवेरी के बारे में चलिए और बहुत सारी बात करेंगे, और साथ के साथ मैं आपको सुना रही हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने। तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड और मैं हूँ प्रांगा आपके साथ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैसोवेरी बर्ड के बारे में। देखिए, हर किसी को पक्षी पसंद होते हैं। आसमान में उड़ते हुए देखना और उनकी आवाज़ों को सुनना हर किसी को पसंद होता है। वैसे तो पक्षियों की प्रजातियाँ बहुत सारी होती हैं और हर पक्षी अपने आप में खास होता है। किसी की आवाज़ बहुत मीठी होती है तो किसी का रंग बहुत शानदार होता है, कोई बहुत खूबसूरत दिखता है तो किसी का आकार इतना छोटा होता है कि देखकर ऐसे ही वो बड़ा प्यारा लगता है। तो कई तरह के पक्षी हैं और उनमें से कुछ पक्षी जो बेहद शांत होते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं। और ऐसा ही एक आक्रामक पक्षी जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड में, यानी कि इससे बचने की ज़रूरत है। इंसान हो या बाकी कोई प्राणी, बाकी कोई जीव, सभी को इससे ख़तरा होता है और अपनी आत्मरक्षा के लिए ये उस पर जानलेवा हमला भी कर सकता है। और यही कारण है कि कैसोवेरी का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया है। ख़तरनाक पक्षी का खिताब जो है वो इसको दिया गया है। जी हाँ, वैसे ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी देश में पाए जाते हैं और इस पक्षी के शरीर के ऊपर नीले रंग के धब्बे होते हैं। और इनके वज़न की बात करें तो मादा कैसोवेरी का जो वज़न है वो 59 किलोग्राम तक होता है और नर कैसोवेरी का वज़न 34 किलोग्राम तक हो सकता है। और ये पक्षी अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं और ये तैरना बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, और इसी के साथ ही इनके खाने की बात करें तो ये मछली खाते हैं और पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। तो ये पानी के आसपास दिखते हैं क्योंकि मछली जो है वो इनका मुख्य भोजन होती है। तो इस तरह से अपने परिवार के साथ ये पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं। चलिए, इनसे जुड़ी और ढेर सारी जानकारी आपको दूंगी और साथ के साथ अभी चलिए एंजॉय करते हैं एक और गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रश्मि 107.8 ऑफ अंबर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड। और आज के प्रोग्राम में एक ऐसे पक्षी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हर मायने में बहुत खतरनाक होता है जी हाँ, और इसका नाम है कैसोवेरी। और ये अपने अंडों की रक्षा करता है जिस वजह से ये और ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। इनकी आँखों की बात करें तो ये बहुत खतरनाक होती है और इन्हें देखने पर ही हमेशा ऐसा लगता है कि ये कभी भी हमला कर सकता है। इनकी आंखें इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इनके सिर पर कुछ उभरा हुआ होता है जो देखने में किसी मुकुट के जैसा लगता है। और ये जो उनके सर पर होता है ये दरअसल इसलिए होता है ताकि इनके सर पर कोई चोट ना लगे। और इस पक्षी को ये काफ़ी प्रोटेक्शन देता है ताकि इनका सर जो है वो बचा रहे और किसी भी तरह की कोई चोट इनको ना लगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम पे लोग इन्हें पाला करते थे, बट ये बहुत खतरनाक होते हैं। और ये पक्षी कबूतर या मुर्गियों की तरह छोटा या पालतू नहीं बल्कि आकार में बड़ा और बेहद खतरनाक होता है। और ये अपने अंडों के आसपास भी किसी को आने नहीं देता है, और अगर कोई गलती से पहुंच गया तो उसको चोट लगना तय है जी हाँ। तो ये हर मायने में खतरनाक है। चलिए इनसे जुड़े कुछ और फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी रेडियो मानव रश्मि 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और प्रोग्राम है द एनिमल वर्ल्ड। और आज हम बात कर रहे हैं कैसोवेरी बर्ड के बारे में, जो बर्ड ज़रूर है लेकिन ये ख़तरनाक बर्ड है और इसका आकार भी बाकी बर्ड से काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये अपने अंडों की रक्षा के लिए घोंसलों को भी छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, और जब इनके बच्चे अंडों से बाहर जब तक नहीं आ जाते तब तक ये ज़्यादा खाना भी नहीं खाते हैं। जी हाँ, ये कम खाने में गुजारा करते हैं। तो ये अपने अंडों की रक्षा के लिए कहीं भी नहीं जाते हैं अपने घोंसले को छोड़ करके, और फिर चाहे कोई भी आ जाए उनसे ये लड़ने को पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। तो इस तरह की खूबियाँ इस बर्ड में, जिसका नाम है कैसोवेरी, इसके अंदर पाया जाता है। क्या आप कोई फैक्ट जानते हैं इससे जुड़ा, कुछ ऐसा जो आपने पढ़ा हो, तो हमसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सिर्फ कैसोवेरी के बारे में ही नहीं, आपने कोई भी एनिमल के बारे में कुछ भी ऐसा पढ़ा हो और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। तो इस नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए इंजॉय करते हैं अगला गाना रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

0: इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रिश 107.8 FM पर। मैं हूं प्रांका आपके साथ और अब मैं सुनाने वाली हूं आपको अगला गाना और लेने वाली हूं आप लोगों से इजाजत, क्योंकि मेरे चलने का वक्त हो गया है। तो आज का सफर यहीं तक। प्रोग्राम कैसा लगा हमें आप जरूर बताइएगा, और बताने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8010781078। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। देखिए दोस्तों, कोई भी कलाकार हो, हर कलाकार की जिंदगी में संघर्ष होता है और उस संघर्ष के बाद उसको वो कामयाबी मिलती है जिसका उसको इंतजार होता है, जिसका सपना उसकी आंखें देखती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे कलाकार के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि जिसने गरीबी और गुमनामी में बिता दिया अपना पूरा करियर, लेकिन फिर एक फिल्म ने रातों रात बना दिया स्टार। आखिरी सांसों के बीच मिला फिल्म फेयर अवार्ड। अब ये कौन है कि जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, बताऊंगा उनका नाम भी बताऊंगा, उनकी जिंदगी से जुड़े सारे किस्सों को आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं 1989 की। 1989 का वो साल और एक दिग्गज शायर और सॉन्ग राइटर बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी। फिल्म रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई। फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। फिल्म साल 1989 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इस फिल्म के पूरे 10 गानों ने धूम मचा दी थी। मेरे रंग में रंगने वाली, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, आजा शाम होने आई कबूतर जा जा जा, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, यानी कि ये सभी गाने मुंबई से लेकर गांव अंचलों तक गूंजने लगे थे। लेकिन इन गानों में अपनी कलम से जादू फूंकने वाला फकीर गीतकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसका नाम है असद भोपाली। असद भोपाली की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बात आज मैं आपसे करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है असद भोपाली के बारे में, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने लिखे, लेकिन उनका जो जीवन था बहुत ज्यादा संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जिनको सुनने के बाद हम ताज्जुब करते हैं, क्या वाकई में ये गीत असद भोपाली ने लिखे थे? अभी जिस फिल्म के बारे में आपसे बात कर रहा था, फिल्म मैंने प्यार किया, जिसमें सलमान खान थे, भाग्यश्री थी, और इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। इसी फिल्म का एक गाना था कबूतर जा जा जा, इस गाने को भी असद भोपाली ने ही लिखा था। लेकिन दोस्तों, इस तरह के गीत लिखने वाले के जिसके सभी लोग दीवाने थे, लेकिन अपनी कलम से इतना जादू फूंकने वाला फकीर गीतकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, गरीबी और गुमनामी में 40 साल बिताने के बाद जिंदगी को अलविदा कहने की आस में ये कलाकार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन अफसोस, गुर्बत में 40 साल काटने के बाद ये कलम का सिपाही अवार्ड लेने स्टेज पर नहीं जा सका। तो आज इसी गीतकार की जिंदगी की पूरी कहानी आपके साथ मैं साझा करूंगा। इन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी की भविष्यवाणी एक गाने में कर दी थी। असद भोपाली की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है दोस्तों। पूरी जिंदगी झोंकने के बाद अंतिम समय में उन्हें उसका फल मिला। बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: सुना दे।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना?

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, 100 से भी ज्यादा फिल्मों में 400 से ज्यादा गीत लिखने वाला ये कलम का जादूगर अपनी जिंदगी की भविष्यवाणी जीते जी करके चला गया। हम बात कर रहे हैं सलमान खान को सुपरस्टार बनाने वाले गीतकार असद भोपाली की। असद भोपाली ने अपनी जिंदगी पर एक गीत लिखा था, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। दोस्तों, इन गानों में दिल की कसक झोंकने वाले असद भोपाली हिंदी सिनेमा के ऐसे फनकार रहे जिन्हें जीते जी कभी भी मेहनताना नहीं मिला। 10 जुलाई 1921 को भोपाल में मुंशी अहमद खान के घर असद की किलकारी गूंजी थी और पुराने भोपाल की तहजीब में पले बड़े असद भोपाली बचपन से ही जहीन दिमाग के इंसान रहे हैं, काफी समझदार थे। स्कूल के दिनों में भाषाओं की जो तालीम है वो खूब मन से ली और पर्शियन, अरबिक, उर्दू और अंग्रेजी पर मास्टरी हासिल कर ली। लेकिन बचपन के बाद आती है जवानी। जवानी के दिनों की भी बात होगी, असद भोपाली की जिंदगी की बात होगी, असद भोपाली के लिखे गीतों का जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है आज असद भोपाली के बारे में, जिन्होंने हमारे भारतीय सिनेमा में एक से खूबसूरत गीत दिए हैं और उन गीतों को आज भी याद कर लो तो वो गीत नए नए से लगते हैं। जवानी के दिनों की कुछ बातें आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। अपनी जवानी के दिनों तक असद मिर्ज़ा गालिब के फैन हो गए थे आज के हमारे शायर यानी कि असद भोपाली। खूब शेरो शायरी और साहित्य में डूबे रहने वाले असद भोपाली ने खुद भी शायरी का पेशा अपनाया। असद भोपाली 21 साल की उम्र से ही मुशायरों में शिरकत करने लगे थे और बहुत सारे मुशायरों में लोग उनको खुद बुलाया करते थे और अपने शेरों सुखन से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। जब असद भोपाली अपनी शायरियां पढ़ते थे तो लोगों की तालियों की जो गड़गड़ाहट थी ना, उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचाती थी। इन्हीं तालियों के बीच असद की जवानी बीतने लगी और फिल्मी दुनिया में काम करने का ख्वाब भी पनपने लगा। असद जब 28 साल के हुए तो किस्मत ने उन्हें पुकार लगाई। तारीख थी 5 मई और साल था 1949 का। भोपाल में कोई बड़ा मुशायरा हो रहा था और इसमें 28 साल के असद भी शिरकत कर रहे थे। अब जब इस मुशायरे में असद भोपाली ने अपनी शेरो शायरी को लोगों तक पहुंचाया तो उसका असर लोगों पर क्या हुआ, जरूर बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी असद भोपाली के बारे में कि भोपाल में एक कोई बड़ा मुशायरा होने वाला था। वहां पर 28 साल के असद भोपाली भी पहुंचे थे। असद भी स्टेज पर आए और अपनी शायरी सुनाई। ऑडियंस में बैठे फजली ब्रदर्स और निर्देशक हसनैन को उनकी शायरी बेहद पसंद आई और उन्होंने असद भोपाली को अपनी फिल्म यानी कि दुनिया के लिए 500 रुपए देकर साइन भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसी फिल्म के गाने पहले आरजू लखनवी लिख रहे थे, लेकिन आरजू बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे और असद को मुंबई की माया नगरी का बुलावा आ गया। इसी सिलसिले में असद मुंबई पहुंच गए और दुनिया फिल्म के गानों से अपने करियर की शुरुआत कर दी। इस फिल्म के दो गानों के जरिए, रोना है तो चुपके चुपके रो और दूसरा गाना था अरमान लूटे दिल टूट गया, असद ने अपने हुनर का प्रमाण दे दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी का हुनर उसके खुद के छुपाने से नहीं छुप सकता। ऐसा ही असद भोपाली के साथ हुआ। साल थी 1951। 1951 में बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म यानी अफसाना के लिए किसी गाने लिखने वाले गीतकार को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात असद भोपाली से हो गई। उन्होंने असद भोपाली को इस फिल्म के गानों की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा कि आप ही मेरी फिल्म अफसाना के गाने लिखेंगे। और उनके इस ऑफर को असद भोपाली ने कबूल भी कर लिया। आगे क्या हुआ आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी असद भोपाली के बारे में कि एक बार उनकी मुलाकात बीआर चोपड़ा से हो गई, जो अपनी फिल्म बना रहे थे अफसाना, और इस फिल्म के गाने लिखने की जिम्मेदारी असद भोपाली को दे दी और असद भोपाली ने इस ऑफर को मंजूर भी कर लिया। दोस्तों, असद ने अपने हुनर के पिटारे से 6 गीत निकाले और फिल्म को हिट करा दिया। इस फिल्म के सभी गानों ने धूम मचा दी। यहीं से असद भोपाली की कलम की कला चारों तरफ गूंजने लगी। हालांकि असद के करियर का ग्राफ तो बढ़ने लगा, लेकिन तत्कालीन दिग्गज गीतकारों जैसे मजरू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर, राजेंद्र कृष्ण, कुमार बाराबंकी और प्रेम धवन की छाँव में असद भोपाली का जो हुनर था ना, वो दबा रह गया। करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में 400 से ज्यादा गानों को अपनी कलम से निकाल दिया। असद भोपाली करीब 40 साल तक फिल्मों में गाने लिखते रहे, लेकिन कभी भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। मुंबई के छोटे से घरों में असद भोपाली का जीवन बीत गया और फिल्म में उनके लिखे नगमे लोगों को दूर दराज तक ठंडक पहुंचाते रहे। असद भोपाली ने खुद ये माना कि जिंदगी ने उनके साथ न्याय किया, लेकिन ऊपर वाला किसी भी मेहनत का फल निराशा में नहीं देता। असद भोपाली साल 1989 आते आते काफी बीमार रहने लगे थे और लकवे से ग्रसित हो गए थे, लेकिन इससे पहले असद भोपाली ने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया के लिए 10 गाने लिखे थे और उन गानों को पूरे भारत में लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैंने प्यार किया के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गीतकार असद भोपाली के बारे में। असद भोपाली ने बेहतरीन बेहतरीन गाने लिखे। बी आर चोपड़ा जैसे

डायरेक्टर के साथ काम किया और इसके अलावा और भी लोगों के साथ काम किया असद भोपाली ने, और उनके गीत फिल्मों को हिट करा दिया करते थे। उदाहरण के तौर पर फिल्म मैंने प्यार किया को ले लीजिए। ये फिल्म असद की जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। जब इन गानों को तैयार किया गया और सलमान खान के करियर की दूसरी फिल्म में डाला गया तो कमाल हो गया। ये फिल्म तो सुपर हिट हो गई, लेकिन ये फिल्म यानी मैंने प्यार किया सलमान खान को रातों रात स्टार बना गई। फिल्म के सभी गाने लोगों के दिलों में बस गए, लेकिन इतने सालों के बाद भी इन गानों को उतना ही प्यार मिलता है और असद भोपाली को भी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि असद भोपाली को लकवा हो चुका था और वो अवार्ड लेने नहीं जा पाए थे। वाकई में दोस्तों असद को कभी भी वो मुकाम नहीं मिला, वो शोहरत और सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, और ये बात असद को खाए जाती थी। इसीलिए असद ने साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म एक नारी दो रूप में अपने दिल की कसक एक गाने में निकाल दी। गाने के बोल थे,

इसी गाने में असद भोपाली कहते हैं कि साथी मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। साल 1990 में संगीत का ये सितारा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन असद भोपाली की ये गीत इतने सालों के बाद भी उनकी यहाँ मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं और कहते हैं कि फनकार चले जाते हैं लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं बहुत सारी यादों का सिलसिला। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं आपकी बात आरएमआर के साथ। इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी वादे करते हैं, कभी आपके लिए हम लेकर के आते हैं जेंडर इक्वालिटी पे बात लेकर के आते हैं, तो इस बार हम बात लेकर के आए हैं, जो टॉपिक इस बार का है वो है कल्चर और हमारा ट्रेडिशन। देखिए भारत देश की अगर बात करें तो अलग अलग यहाँ पर कल्चर है, ट्रेडिशन है, और अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोग जो है वो रहते हैं, और बहुत सारे देखिए कल्चर को अलग अलग लोग जो है फॉलो करते हैं। हर सीमा रेखा के बाद एक अलग अंदाज होता है, खान पान चेंज होता है, और खाने का रंग और रूप और जो टेक्सचर है, और कपड़ों का रंग रूप हो गया, घरों का रंग रूप हो गया, सब अलग अलग बदल जाता है। आज हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ खड़ी बोली तो बोली जाती है लेकिन माँ की रोटियाँ बड़ी बड़ी नरम नरम है और बड़ी स्वादिष्ट है। लेकिन इस जो प्रांत है, ये जो राज्य है, इसका रंग रूप की अगर बात की जाए तो बड़ा अनोखा है, रंगीला है। बहुत मेहनती लोग भी रहते हैं, किसान हैं, तो वहीं खिलाड़ी भी इसी मिट्टी से निकले हुए हैं। मैं आज बात कर रही हूँ हरियाणा की। जी हाँ, आज है हरियाणा दिवस और 1 नवंबर कि वो ये दिवस जो है मनाया जाता है, ये दिन मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1966 ये वो दिन था जब हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई, पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना। आज हम इसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं, हरियाणा दिवस की बात कर रहे हैं, आज इसके इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में, खान पान, लोगों के बारे में, कहानियों के बारे में, ज़मीनों के बारे में बात करेंगे बहुत सारी। और इस प्रोग्राम में ना आज हमारे साथ एक और खास गेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आप इनकी आवाज़ को पहचानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत प्यार भी इन्हें करते हैं, ये और कोई नहीं बल्कि हैं आरजे सागर, जो कि ना सिर्फ एक रेडियो जॉकी हैं, एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और साथ ही एक फिटनेस कोच भी हैं। तो सबसे पहले तो सागर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच साक्षी फॉर योर काइंड वर्ड्स, इट मींस अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर एंड इट्स सच एन ऑनर टू सिट हेयर ऑन दिस सीट। जनरली हम शोज होस्ट करते हैं बट आज एक गेस्ट के तौर पर हम यहाँ बैठे हैं।
0: बिल्कुल। तो सागर, आप हरियाणा से हैं और मैं आज हरियाणा नहीं कहूँगी, इसे मैं हरियाणा ही कहूँगी, क्योंकि ये जो खड़ी बोली है ये ना सिर्फ देखिए हमें ये एहसास दिलाती है देसी होने का, बल्कि मेहनती और साथ ही साथ जो खिलाड़ी इस मिट्टी से जन्मे हैं उसका भी एहसास कराती है, महसूस कराती है। मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ और चाहती हूँ कि उसके जवाब आप दें। वैसे तो इस तरफ आप होते हैं हमेशा, माइक के शोर और इतने होते हैं और हमेशा से ही आप सवाल पूछते हैं, लेकिन आज आपसे सवाल मैं पूछ रही हूँ, तो आपकी इजाजत हो तो हम मैं शुरू करना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा एक बहुत छोटी सी चीज में ऐड करना चाहूंगा, वो हरियाणा नहीं होता है, वो होता हरियाणा ही है, अणा ही होता है वो
0: जी,
1: बट क्योंकि वो इतना खड़ी बोली है कि लोग उसको प्रोनाउंस कर नहीं पाते तो इसलिए वो हरियाणा बोल देते हैं। जैसे पुणे बोलते हैं, पुणे नहीं होता है, पुणे होता है, वो वहां का एक वर्ड है। सो लाइक दिस इट्स हरियाणा। यस प्लीज।
0: बिल्कुल। तो सागर, मेरा पहला सवाल आपसे, आज हरियाणा दिवस है और इस दिन को, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसके मायने क्या है आपके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न पूछा आपने साक्षी। मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि आज का वो दिन था 1966 को जब पंजाब से अलग होकर के एक नया राज्य जन्मा था जो कि है मारा हरियाणा। ठीक है, अब ये मेरे लिए बहुत खास इसलिए है क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, वो कल्चरल चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर हैं, बचपन से हमने देखी हैं, तो मेरे लिए हरियाणा एक तरीके से आप कह सकते हैं इश्क है। ठीक है, हमारा पहनना, खाना, बोली जो है, अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो हमारे लिसनर समझ नहीं पाएंगे, बट दो तरह की हरियाणवी बोली जाती है, एक तो ब्रिज टच होती है जो पलवल फरीदाबाद बल्लभगढ़ में बोली जाती है, कहाँ जा रहे हो रे, कहाँ को है रे तू, अच्छो कहा नाम ला ला तेरो। ठीक है, एक ये होती है जो हरियाणा फरीदाबाद पलवल एरिया में होती है, एक होती है रोहतक की तरफ सोनीपत तरफ, अरे कितका है तू, के नाम है तेरा, ठीक है, वो ज्यादा खड़ी हो जाती है। लोगों को लगता है कि वो बहुत रूड है, बट वो रूड नहीं है, वो हमारा एक्सेंट है, वो लहजा वैसा है, वो बोलते बहुत भले ही कितनी पोलाइट में बात करे, चा पीवेगी। ठीक है, अब ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, आई एम ऑफरिंग यू अ टी, लेकिन आपको सुनाई ऐसा दे रहा है कि अरे भाई के मारेगा वारेगा क्या, ठीक है, क्योंकि वो है, वो एक्सेंट ही वैसा, डायलेक्ट ही वैसा है हमारा. तो नो डाउट हरियाणवी मेरे लिए तो भाई देखिए बहुत खूबसूरत एक चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के जो मेरे लास्ट डेज हों वो भी मैं हरियाणा में ही व्यतीत करूँ, बिल्कुल अपने ट्रेडिशन के बीच में.
0: बिल्कुल. तो ऐसा होता है ना कि जब हम अलग राज्य से आते हैं, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो बिहार से आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो केरला से आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गोवा से आ रहे हैं, और आके दिल्ली में या मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जॉब करते हैं, दिल्ली NCR में आते हैं जॉब करते हैं. अच्छा ये होता है कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जब लास्ट डेज होंगे जैसे कि आपने कहा, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर अंत के अगर वो कुछ खास दिन हो तो वो अपनी मिट्टी में ही गुजरने चाहिए. मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, और वो ये कि जब हरियाणा की बात आती है, वो शब्द जब भी आप सुनते हैं, चाहे हम मूवीज़ में देखते हैं या हम कहीं कहीं सुनते हैं, आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, जब आप ये शब्द सुनते हैं, जब आप अपने राज्य के बारे में सुनते हैं, सबसे पहला जो वर्ड है या दिल में सबसे पहले क्या आता है वो बताएं.
1: दूध, दही, पहलवान, अखाड़े, कुश्ती, पुलिस, फौज, किसान, स्वांग, रागणी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूवीज में, खासतौर पर बॉलीवुड में, जिस तरीके का हरियाणा दिखाया गया है, मुझे लगता है कि वो उसका शायद 1% भी नहीं है. अगर आप हरियाणा सही मायने में देखने चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर मेले होते हैं, जैसे देवउठनी ग्यास होती है एक हमारे यहाँ पर, उसके मेले लगते हैं, ठीक है, और ऐसे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं साक्षी, जब गांव में मेले लगते हैं, स्वांग होते हैं, होली होती है हमारे यहाँ पर. तो मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से फैमिलियर हैं, पेटीकोट होता है एक ओढ़ना होता है और एक कमीज होती है.
0: करेक्ट.
1: औरतें पहनती हैं वो कमीज के नीचे पेटीकोट होता है और ओढ़ना पहन के, और वो नाचती है, और जैसे वो घूमर घूमर गाने में दिखाया है ऐसा एक वो बनता है, वो फॉर्मेशन होता है. और मर्दों का जो होता है वो कुर्ते पजामे या कुर्ते धोती होते हैं, नगाड़े बजते हैं, और डांस होता है स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में. मतलब आप लोग जैसे अमूमन पंजाब में उसको अखाड़ा बोला जाता है, अभी तो कॉन्सर्ट का एक कल्चर आ गया है. पहले अलग शब्द हुआ करते थे, हमारी गैदरिंग की अलग चीजें हुआ करती थी. उस टाइम पर हरियाणा में रागनियां हुआ करती थी, सोशल इश्यूज को जो आवाज दिया करती थी. जैसे एक मुझे रागनी याद आ रही है, पैसा धर्म नहीं होता, ईमान कहां से लाएगा, दवा मिलेगी पैसे से तू, प्राण कहां से लाएगा. इस तरीके से बहुत ऐसी मतलब सोशल चीजें हुई हैं जिनको आवाज दी गई. और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 40-50-60 साल पुरानी बात है. हरियाणवी कल्चर का ओरिजिन ऐसे हुआ है. तो वो तमाम चीजें जो हैं आती हैं जहन में, वो मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि मैं, मेरी मसल मेमोरी ही हरियाणा में मेरी जब से होश संभाला है वो उसी तरफ है. तो वो बहुत सारी चीजें मुझे याद आती हैं. जी
0: देखिए, जब आप सागर को जब आप सामने से देखेंगे, बाय फेस देखेंगे, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये इतना देसी आदमी है या इतना देसी है, क्योंकि पहनावा रंग रूप बहुत बदल जाता है जब हम शहर में आते हैं. हम यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपने पहनावे को चेंज करते हैं, लेकिन भाई दिल से मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल देसी है. और ये जो बोली है, ये जरूर आपको लगे कि ये रूड हो सकती है, लेकिन भाई कभी कभार ना बड़ी प्यारी भी लगती है. कई सारे ऐसे मैं जैसे आपने कहा कि 1% भी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जैसे कुछ भी दिखाया जाता है तो बड़ी खुशी होती है. अच्छा कोई भी अगर हरियाणवी लैंग्वेज में आके कुछ भी कहता है तो बड़ा प्यारा लगता है कि अच्छा हम मतलब अक्सर दिल से निकलता है कि ये बोली अगर सीख जाए तो मजा आ जाएगा. और मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए आप अपने बच्चों को, जो भी अभी मुझे सुन रहा है, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, तो आजकल के बच्चे हैं लैंग्वेजेस सीखते हैं, लेकिन कल्चरल जो अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, और अपनी जो घर की धरोहर, अपनी जो लैंग्वेज है, आप उन्हें ज़रूर सिखाइए. आजकल बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो गाँव की लैंग्वेज है ये नहीं सीखेंगे, गाँव के हम रीति रिवाज नहीं सीखेंगे, लेकिन ये दिल से कभी नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि दिल से तो देसी है, वही दिल से जो है वो आगे भी बढ़ता है. और लाइफ में अचीव करने के लिए ना आपको दिल से देसी होना जरूरी है, क्योंकि आपको हर एक एक्सपीरियंस उससे मिलता है. चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. आज मेरे साथ है आरजे सागर, तो बात कहीं यहीं पर होंगी, और आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: கூட்டங்கள்.
1: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
2: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। ये खास प्रोग्राम लेकर के आ जाते हैं और इस बार का टॉपिक है कल्चर ट्रेडिशन। और आज एक बहुत ही खास दिन है, आज है हरियाणा दिवस। आज इस दिन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा के ही एक कलाकार। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजे सागर। आप आरजे सागर की आवाज को सुनते हैं हर रोज रेडियो मानव रचना पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी आरजे सागर एक फिटनेस कोच भी हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, और साथ ही एक बहुत ही अच्छे इंसान है, देसी कलाकार है। मैं यहाँ पर कहना

0: कि सागर अब आपसे अगला सवाल मैं पूछती हूँ। आपने अभी रागनी की बात करी थी, आपने घूमर की बात करी, सांग की बात करी, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताइए कि ये सांग क्या है, क्योंकि अब मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं दिल्ली से आती हूँ, बट आई एम अ बंगाली, तो बंगाल का कल्चर मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इनके बारे में, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज के बारे में इतना नहीं पता है, रागनी क्या है या घूमर अच्छे से आप बताएं और सांग क्या है, क्योंकि आज भी लोगों के दिलों में, जो पुराने लोग हैं उनके दिलों में तो जगह ये बनाए हुए हैं, जो नए लोग हैं उनको समझाएं और उनको ये याद दिलाएं, उनके दिल में ये जगह बनाएं कि ये जो है ये भी आर्ट फॉर्म्स हैं और इसके लिए भी हमारे दिल में जगह होनी चाहिए और हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए क्योंकि ये हमारे राज्य से है।
1: जी जी जी। सांग का अगर आप सही मायने में देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन होता है स्वांग, पर क्योंकि हम हरियाणा से हैं तो हर चीज को हम ट्वीट करते हैं। स्वांग का अगर आप लिटरल एक मीनिंग जानना चाहते हैं तो वो होता है इमिटेशन। तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती आपको यही नजर आएगी, चाहे आप बंगाल से हैं, आप पंजाब चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह पर हमने अपने अपने कल्चरल साइड को एम्फेसिस करते हुए, अपनी वैल्यूज को दिखाते हुए, कोर प्रिंसिपल्स को दिखाते हुए अपनी फॉर्मेशन करी थी इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स। तो स्वांग उसी का नाम है। आप कह सकते हैं मिमिक्री भी उसमें होती है, स्टोरी टेलिंग भी होती है, डांस भी होता है, थिएटर भी होता है, इट्स अ काइंड ऑफ एन इवेंट। बंगाल में भी होता होगा, भारत के हर राज्य में आपको नजर आएगा। तो हरियाणा में उस थिएटर को, उस मिमिक्री को, उस एक्सप्रेशन का, मैं बोलूंगा उस एक्सप्रेशन को स्वांग नाम दिया गया है। रागनी इज स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं एक तरह से कॉन्सर्ट हुआ करता जो बहुत लोकल लेवल पर हुआ करता था, लेकिन रागनी का जो पॉइंट था वो ये था कि गैदरिंग हो, बुजुर्ग बैठे और जो सोशल इश्यूज हैं उनको आवाज दी जाए गाने के फॉर्म में। क्योंकि अगर आपने कभी गौर किया हो तो अगर मैं नॉर्मली एक बात बोलूंगा वो आपके जहन में शायद ना रुके, लेकिन अगर मैं वही बात गाना गा के बोलूंगा और गाना आपको अच्छा लगेगा तो वो बात आपके जहन में रुक जाएगी, चाहे वो धुन के माध्यम से रुके या उन शब्दों के माध्यम से रुके। जैसे एक और रागनी मुझे यहाँ पर याद आ रही है, बदल गया जमाना लोगों यार ना रहा इन, माँ के जाए भाइयां मैं भी प्यार ना रहा। सो बेसिकली द पॉइंट वाज कि आपस में भाई अगर लड़ रहे हैं, माँ के जाए भाइयां में मतलब एक माँ से जो जन्मे हैं भाई उनमें अब प्यार नहीं रहा, वो आपस में फूट पड़ चुकी है, लालच बीच में आ चुका है। फिर आगे उसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, खोलते हैं। रागनी का ये फॉर्म हुआ करता था, स्वांग ये हुआ करता था, इट्स लाइक गैदरिंग। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा साक्षी, वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना। हम एक साथ नहीं जन्मे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि ठप ठप हम ऊपर से गिरे हैं, हम इवॉल्व होकर के यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप इस पूरे फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं कि हरियाणा में स्वांग क्यों है, पंजाब में अखाड़ा क्यों है, या बंगाल में थिएटर क्यों है, या महाराष्ट्र में भी ऐसी चीजें होंगी वो क्यों है, तो आपको इवोल्यूशन पूरा पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम कई हजारों सालों तक ट्राइबल कल्चर से निकल के आए हैं, हम ट्राइब्स में रहा करते थे, तो हम सोशल क्रिएटर्स हैं, हमें एक साथ रहना है। हम लोगों ने दोस्तों से मिलना, परिवार से मिलना, सोशलाइज करना बंद कर दिया है, जो कई हजारों सालों से हमारे खून में, हमारे जेनेटिक्स में रहा है। अब बीते कुछ 10-15 सालों से ये चेंज हो गया है, तो उस टाइम पर भी इन चीजों को आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन करते हुए कि आपकी मानसिक हालत अच्छी रहे, अच्छी बातें आप सुने, अच्छी संगत में आप रहे और चार लोग अपनी बातें शेयर कर सके ताकि कुछ नया बन सके, प्लस कोई अपने अंदर में घुट ना रहा हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम आर्ट फॉर्म्स बनाई गई थी, गाना, थिएटर, मिमिक्री, या ठहाके लगाते थे, हंसी मजाक किया करते थे, वो सब चीजें। तो उसी का रिजल्ट है स्वांग, रागनी, या और जो भी दंगल हुआ करते हैं हरियाणा में, कबड्डी भी हुआ करती है, कुश्ती भी हुआ करती है, और बहुत सारी चीजें हैं। पॉइंट यही है कि आपका एंटरटेनमेंट होता रहे और आप ट्राइब के साथ जुड़े रहे वहां पर।
0: तो देखिए बदलाव तो काफी सारे हैं, और अब मैं यहाँ पर, अब हरियाणा की हम बात करें, इतना सब कुछ है। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए भी हरियाणा जो है वो जाना जाता है, चाहे हम नीरज चोपड़ा की बात करें या फिर हम साक्षी मलिक की बात करें, कई सारे जो भाई शूटर हम अभी बात करें, मनु भाकड़ की बात करें,
1: तो गीता बबीता दंगल बनी है,
0: दंगल बनी
1: है, बजरंग पुनिया है, बहुत सारे लोग
0: हैं। तो कितने लोग जो है इस मिट्टी ने जने हैं और कितने सारे जो है वो अब भी बन रहे हैं प्लेयर्स लाखों की तादाद में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जैसे अब बात करें, एक मॉडर्न साइड की भी हम बात करें, गुरुग्राम,
1: हाँ।
0: तो एक मॉडर्न सिटी है, और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा एक अलग हो गया राज्य है, लेकिन अगर मॉडर्न टच की भी बात की जाए तो वो गुरुग्राम आ जाता है, या फरीदाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक लग्जरी भी दिखने को मिलती है। तो आपके नज़रिए में ये जो परिवर्तन है, ये क्या बदलाव लेकर के आया है, और लोगों की सोच पर भी इसका कैसा असर रहा है?
1: देखिए, मैं मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, एक ऐसा सच है जो होता ही होता है, ठीक है, अच्छे के लिए हुआ है, रोजगार मिले हैं लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हरियाणा में, जैसे गुरुग्राम हरियाणा का एक हिस्सा है, ठीक है, और एक मेजर जगह है, अब गुड़गांव में अगर कोई इंसान हरियाणवी बोलता है तो एक तरीके से उसको जज कर लिया जाता है, जबकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसी भूमि में जन्मा है, उसी की जमीन पर वो सारी चीजें बनी हैं, तो वो वहीं का एक बाशिंदा है, ठीक है, वो अपनी भाषा बोल रहा है क्योंकि वो तो कई सदियों से वहां पर रहा है। लेकिन ये एक चीज है कि वो कल्चरल साइड वहां पर नजर कम आती है। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अभी भी हरियाणा के किसी भी गांव में आंख बंद करके घुस जाइए, सुबह 3 बजे से लेकर के 5 या 6 बजे तक, किसी भी गांव में, मैं कह रहा हूं यहां पर बैठकर, आपको हर गांव में उसके एंट्रेंस पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपको दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे, और ये पागल बच्चे होते हैं, जुनूनियत होती है इनमें, ठीक है, ये या तो मिलिट्री में जाना चाहते हैं, या ये पुलिस में जाना चाहते हैं, या एथलीट बनना चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई उन्हें सूझता ही नहीं है। और इसका एक रीजन है साक्षी, एक तो कुरुक्षेत्र से श्रीमद् भागवत गीता निकली है,
0: बिल्कुल,
1: ठीक है, श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में दिए थे, ठीक है, महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय, तो ये भूमि है, प्राउड की भूमि है, ये क्षत्रियों का एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर प्राइमरीली 4 जो है जातियों को अजगर बोला जाता है, उनको अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, ठीक है, ये क्षत्रिय हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, इसलिए आज भी आपको यहाँ पर वो नजर आएगा कि आज भी यहाँ के लोग वो वाली चीज रखते हैं, मतलब आपको लगेगा अकड़ू है, बट एक हरियाणवी ऐसा, मैं कहूंगा खून में एक चीज है मोस्टली जो आपको नजर आएगा कि वो प्राइड के लिए लड़ते हैं, जब भी देश की बात आएगी वो आगे आपको खड़ा मिलेगा, चाहे वो एथलेटिक्स की बात है, फौज की बात है, पुलिस की बात है, और ये मैडनेस जरूरी भी है अपने देश को लेकर के। तो हाँ, ये बात सही है कि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम कल्चर को भी अगर मैं 2 मिनट के लिए साइड कर दूं, मदर नेचर का बहुत नुकसान हुआ है साक्षी, हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में डिफॉरेस्टेशन बहुत भर भर के किया है, उसका प्रमाण ये हो रहा है कि आज ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहे हैं, कितने सारे ऐसे स्पीशीज हैं जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है ऑलरेडी, आज आप देखेंगे तो कितने सारे जानवर है, बंदर आपको नजर आते हैं, डॉग्स आपको नजर आते हैं, ये आपको नजर आते हैं तो आपको दिक्कत तो होती है, लेकिन रूट कॉज तक कोई जाना नहीं चाहता, कोई सोचना नहीं चाहता है कि इनका घर उजड़ा कैसे, क्या हुआ इनके साथ, पहले कहां रहा करते थे। तो वो एक मदर नेचर ने जो चीजें प्रिजर्व की हुई थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो दुख देती है थोड़ा सा मुझे, कि अगर आप एक फ्लैट बना रहे हो, 4 अगर आप पेड़ काट रहे हो, तो आप 10 पेड़ और कहीं लगाइए, ताकि बैलेंस बना रहे, ये एक चीज है।
0: देखिए, बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर, आरजे सागर मेरे साथ है, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी सवाल हैं, और कल्चर के बारे में, राज्य के बारे में, हरियाणा के बारे में, और भी कुछ बहुत सारी बातें जानेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं आपकी बात आरएमआर के साथ। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आरजे सागर, जो कि एक बहुत ही खास एक्सपर्ट बनकर आज हमारे शो में आए हैं, क्योंकि हरियाणा से हैं। और जब हरियाणा की दिवस की बात हो और कोई हरियाणवी हमारे साथ, कोई देसी कलाकार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सागर, आपसे हमारी बातें चल रही हैं, मैं अब अगला सवाल जानना चाहूँगी यहाँ पर। अब जैसे कि आपने अभी कई सारी चीज़ों पे बात करी है, आपने अरावली की भी बात करी है कि जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है या बंदर हो गए, हम देखते हैं, हम इरिटेट ज़रूर हो जाते हैं लेकिन रूट कॉज नहीं, हम जाना चाहते हैं वहाँ तक। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब बड़कल झील की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में बड़कल झील भी एक टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है। पानी जो है इसमें दोबारा से जो है उसको रिजुविनेट किया गया है अच्छे से, और मार्केट्स भी लगाई जा रही है, और एक बहुत बड़ा सरकार का भी प्रोजेक्ट है जो हो रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, आने वाले टाइम में हरियाणा की शान बनने वाला है।
1: जी अगेन मैं इवोल्यूशन पे जाना चाहूंगा कि हम लोग इवॉल्व होकर के यहाँ तक आए हैं, तो इतनी सदियों तक हम लोग रहे हैं जंगलों में, हम लोग रहे हैं नेचर के क्लोज, ठीक है। नेचर के बिना मुमकिन नहीं है यहाँ पर जीवन, ठीक है। और ये बात आप सभी लोग खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव हो, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, ब्रेन फॉग हो गया है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है, सिर्फ एक चीज करिएगा, कहीं पहाड़ों में चले जाइएगा, जंगलों में चले जाइएगा, किसी बीच किनारे जाकर बैठ जाइएगा, कहीं भी फॉर्म ऑफ नेचर ढूंढिएगा और वहां एक दिन या दो दिन व्यतीत करिएगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप हील्ड महसूस करेंगे। वो हीलिंग बेसिकली होती है, रीजन बीइंग कि हम लोग उसी एक मदर नेचर से निकल कर के आए हैं, इवॉल्व होकर के आए हैं। तो ये तो बहुत खूबसूरत एक स्टेप है। मतलब मैं तो अगर आप रेडियो मानव रचना का टैक्सी नंबर 107.8 सुनते हैं शाम को 5 से 8, तो मैं तो कितने यहाँ पर सालों से यही बात कह रहा हूँ, इसकी गुहार लगा रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से बोलता हूँ कि भैया नेचर को बचाइए, आपके आसपास होनी बहुत जरूरी है। और ये भगवान अगर आप मानते हैं तो आपको इन तत्वों को समझना होगा, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील, ये मिला करके जो है, इनके बिना जीवन मुमकिन नहीं है। और इनमें से कोई एक भी तत्व अगर हट जाएगा इस पृथ्वी पर से, तो जीवन खतरे में आ जाएगा, वो संतुलन खराब हो जाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है कि अगर एक झील बनाई जाएगी तो अल्टीमेटली वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, मोरओवर लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा वहां पर आने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रोजगार बहुत जनरेट होगा, काफी लोगों को नए साधन मिलेंगे। और ये खाली फरीदाबाद में नहीं हो रहा है, हरियाणा में नहीं हो रहा है, यूपी से भी ऐसे मैंने अपडेट्स देखे हैं जहाँ पर 100 से ज्यादा कुंड खोदे गए हैं जिनका, जहाँ पर तालाब बनाए जाएंगे और वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट अगर अभी हो रहा है तो लकीली, मतलब आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर दिस।
0: लेकिन जरूर हो,
1: बिल्कुल।
0: मैं सागर आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। अब हरियाणा की बात हुई है और देखिए, अब फीमेल्स की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं आप जानना चाहती हूँ, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए या फिर अब औरतों की बात की जाए, एथलेटिक्स जैसे कि उसमें विनेश फोगाट हो गई या फिर साक्षी मलिक हो गई, उन्होंने सोसाइटी में बदलाव लेकर के वो आई। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम में, क्योंकि एक ऐसे राइजिंग स्टार, क्योंकि ये एक ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने देश में नाम रोशन किया है, तो जहाँ पर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं गाँव में, कस्बों में ये भी सुनाई देता है कि लड़कियाँ चूल्हा चौका करें, घर से बाहर ना निकलें, तो वहीं ऐसी लड़कियाँ भी हरियाणा से बाहर निकली हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो क्या बदलाव कल्चर में भी क्या लेकर के आएगी, क्योंकि हरियाणा के कल्चर में एक ये भी छोटी सी बात ज़रूर आती है कि चूल्हा चौका है लेकिन ज्यादा घर से बाहर नहीं, लेकिन अब ये सोच जो है वो बदल रही है, तो इसमें आप कितना बिलीव करते हैं?
1: जी जी जी, फिर एक बार मैं इवोल्यूशन की तरफ चलना चाहूंगा। हम लोग हंटर गैदर्स हुआ करते थे, तो हुआ ये करता था इवोल्यूशन के टाइम में, क्योंकि प्रथाएं सारी वहां से बनी है साथ।
0: जी जी,
1: तो जब भी आपको किसी भी सवाल का जवाब ना मिले, मैं सबको सलाह दूंगा, प्लीज एक किताब है सेपियंस, पढ़िएगा। इवोल्यूशन को जितना आप पढ़ेंगे आपको आज की सारी दिक्कतों के समाधान वहां पर मिल जाएंगे। हम लोग क्या किया करते थे, हंटिंग किया करते थे, एक जमाना था, उस टाइम पर हमने नहीं सीखा था खाने को उगाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, फार्मिंग नहीं हुआ करती थी, तो हंटिंग किया करते थे। औरतों का काम था बच्चों की देखभाल करना, जो हम खाना लेकर के आ रहे हैं उसको पकाना, खाने योग्य बनाना और उसको सबको सर्व करना। मर्दों का काम हुआ करता था बाहर जंगल में निकलना, ठीक है, जंगली जानवरों से अपने

0: परिवार को बचाना, खाने का जुगाड़ करना, ठीक है, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनका जुगाड़ करना। और इसका इस तरीके से मत देखिए कि जेंडर बेसिस पर किया गया, सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई थी। कट टू द पॉइंट, आज हम आते हैं ये प्रथाएं उसके बाद यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होके आई, बट अब क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है तो ये प्रथाएं धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अभी बीते दिनों हरियाणा के एक गांव का मैं सुन रहा था किस्सा कि कोई महिला वहां पर सरपंच जो है वो चुनी गई, तो वो महिला ने क्या किया, सबसे पहली चीज वहां पर जो की गई वो की गई घूंघट हटाने की। तो पूरे गांव ने एक साथ घूंघट हटाया वहां पर, विच इज अ गुड थिंग। मतलब स्लो प्रोसेस है बट आ रहा है धीरे धीरे चेंज। पहले हुआ करता था यकीनन कि चूल्हा चौखा करना है, घर की देखभाल करनी है, बच्चों को पालो और खाना बना करके दो। लेकिन हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट की जहां तक बात है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट को अगर आप अलग से एम्फेसिस कर रहे हो कि हमें वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है, तो यहाँ पर एक सच ये भी है कि आप एट द सेम टाइम ये मान रहे हो कहीं ना कहीं कि वुमेन जो है वो कमजोर है, लड़कियां कमजोर हैं। मेरी ऐसी बिल्कुल धारणा नहीं है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, जिसको जो काम आता है अपनी स्किल के आधार पर उसको वो काम दे देना चाहिए। यही असली वुमेन एम्पावरमेंट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन भी होगा आपकी, अगर वहां पर कोई लॉजिकल बहस हो रही है या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, तो वहां पर भी उस फीमेल को उतना ही मौका दिया जाए जितना एक मेल को दिया जा रहा है। दिस इज द वुमेन एम्पावरमेंट। बाकी ये जो लड़कियां कर रही हैं, हमारी छोरियां हरियाणा से उठ के जो नाम कर रही हैं, विच इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, इससे और बहुत सारी लड़कियों को जो है अभी इंस्पिरेशन मिलती है। मोर ओवर पेरेंट्स भी जो है वो इंस्पायर होकर के अपनी बेटियों को बोलते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो, ये चेंज हो रहा है।
1: बिल्कुल। तो सागर, कुछ टाइम पहले ही मेरे पास एक लिसनर का कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि हम पहले स्कूल जो है वो बीच में छोड़ दिया था।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनसे रीजन पूछा, उन्होंने कहा कि बस अब एज हो गई है और मम्मी ने कहा है कि अब थोड़ा खाने वाने बनाने पे ध्यान दो, क्योंकि अब आगे अब कुछ रहा नहीं है, क्योंकि अब आगे जो है आपको शादी करनी है और आपको अपना घर संभालना है। अच्छा, कुछ टाइम बाद मैं ऐसे ही अपना बातें कर रही थी रेडियो पे और कई सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, हेल्थ के बारे में बताती हूँ, और ऐसे ही मैं कुछ बातें कर रही थी, तो कुछ टाइम बाद उस लड़की का फिर से मेरे पास कॉल आया। उन्होंने, लिसनर ने मुझसे कहा कि मैम थैंक यू। तो मैंने उनसे पूछा थैंक यू किस लिए, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सलाह देते हैं या कुछ कहते हैं तो हमारे पेरेंट्स उसे सुनते हैं, और आज फिर से मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि किसी को इंस्पायर करना है, चाहे बहुत ही छोटी सी, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानती, लेकिन हाँ कुछ बातें अगर आप तक पहुंचती हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए भी और सभी के लिए। इसी के साथ साथ सागर, जैसे कि आपने अभी कल्चर के बारे में भी कहा कि घूंघट की प्रथा हो गई या चूल्हा चौका हो गया, ज़रूर मेरा मानना ये भी है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल मुझे ये भी लगता है कि ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, लेकिन वो जो कुछ प्रथाएं ऐसी होती है ना कि जो महिलाओं पे जचती भी है, लेकिन इसमें अब जो कदम से कदम जो है महिलाएं भी मिला रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर हम अभी लखपति दीदी की भी बात करें, तो चाहे उनका पहनावा है, लेकिन पूरे देश में उन्होंने जो है अपना नाम बनाया, और साथ ही उन महिलाओं को भी लेकर के चल रही हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं, उन्हें भी काम करा रही हैं, और वो लड्डू या बहुत सारी ऐसी मिलत से चीज़ें बनाना, और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारे जो महिलाएं हैं हरियाणा की, वे आगे बढ़ रही हैं और इसी तरह से बढ़ती रहें और ऐसे ही पूरी दुनिया को इंस्पायर करती रहें, ना सिर्फ हरियाणा को बल्कि पूरे देश को। चलिए सागर, एक छोटा सा ब्रेक, इजाज़त हो आपकी तो मैं लेना चाहूँगी, और आगे कुछ और कुछ सवाल और हैं जो मैं जरूर जानना चाहूंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रश 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैनू रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। आज मेरे साथ है आरजे सागर। बहुत सारी सागर आपसे बातें हमारी चल रही है। आज हरियाणा दिवस है और इस मौके पर हरियाणा के बारे में हम बात करें, यहाँ के कल्चर के बारे में, फोक म्यूजिक, डांस। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने दो रागनी जरूर हमें बताई है। अच्छा, जब रागनी की या गीतों की बात होती है या कोई भी एक आर्ट फोक कल्चर की बात होती है, सबसे नज़दीकी अगर गीतों में से अगर मैं बात करूं, आपके दिल के कौन सा जो गीत है वो नज़दीक है, जो आप सभी को बस चंद दो लाइनें सुनाना चाहेंगे यहाँ पर?
1: हरियाणवी गीत
0: जी।
1: दिलराज कौर एक हुआ करते थे सिंगर
0: जी।
1: उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाए थे, मैं अपने बचपन में सुनता था, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये भी है कि मेरे पिताजी उस टाइम पर सुना करते थे उनको, और बचपन से वो आपकी मेमोरी में बैठ जाती है। तो एक गाना है, हालांकि फीमेल पर्सपेक्टिव से वो गाना गाया गया है, लेकिन आर्ट फॉर्म का कोई जेंडर नहीं होता, तो कोई भी उसको गा सकता है। जैसे मेरा चुंदड़ मंगा दे रे ओ नंदी के बीरा, तन्ने न्यू ढूंगे पैराकू ओ नंदी के वीरा। बेसिकली वो अपने पति को एड्रेस कर रही है, नंदी के वीरा मतलब मेरे ननद के भाई। ठीक है, तो वो इस तरीके से है। एक और है, वो है का, हाँ, रे मेरे दिल पे लिख दिया नाम गुलाबी छोरी ने, अरे रे मेरी बहू बना दे राम गुलाबी छोरी ने। मस्ती के साथ गाते थे उन गानों
0: बिल्कुल।
1: हाँ,
0: तो ये मस्ती है वाइब जो है ये अभी स्टूडियो में भी बिल्कुल बरकरार है। सागर, कुछ और भी सवाल है, मतलब काफी अच्छा तो लग रहा है आप हमारे साथ है, लेकिन जाने का भी टाइम हो रहा है, तो कुछ आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ से अब फ्यूचर की ओर देखें, अगर आप हरियाणा को अब देखें, तो आने वाले सालों में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हरियाणा और कैसे डेवलप होना चाहिए, या कल्चरली तौर पर, फोक आर्ट म्यूजिक के तौर पर, और किस तरह से आप, क्या एंगल, किस एंगल से देखते हैं हरियाणा को?
1: मुझे ऐसा लगता है जो होना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि कोर वैल्यूज को रखते हुए मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एथलीट्स हैं, कुछ बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं, तो उनको स्टेडियम्स मिलने चाहिए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, ताकि देश के लिए और ज़्यादा मेडल्स हम लोग लेकर के आ पाएं। इसके अलावा स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मोरओवर, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा आज भी इंडिया का हिस्सा है, मतलब मोस्टली पॉपुलेशन जो हमारी है भारत की, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग। उसमें बहुत बदलाव होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। क्योंकि साक्षी, ये बहुत दुखद बात है कि एक किसान इन्वेस्ट करता है, मतलब स्टार्टअप के तौर पर देखिए कि अगर कोई आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वो एक बंद फैक्ट्री में है, बिकेगा, आप उसको मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, आप उसको अंदर बंद करके रखेंगे तब। लेकिन एक किसान की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, वो अपनी लिटरली सारी मेहनत से जो है बीज लेकर के आता है, पूरी मिट्टी खोदता है, बीज बोता है, फसल उगती है, और उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चौड़े में पड़ी हुई है, ओपन में। अब धूप अगर ज्यादा हो जाएगी बर्बाद हो सकती है, बारिश ज्यादा हो जाएगी बर्बाद हो सकती है, ठीक है, हो सकता है फसल ना होगे, हो सकता है कीड़ा लग जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना स्टेक पर है, आप सोचिए कि रातों रात सब खत्म हो जाता है एक बाढ़ से या सूखा पड़ जाने से, और उसके बाद फिर ऐसा भी नहीं है कि आप एक रात में फसल उगा सकते हैं, वापस से उसको 6 महीने 7 महीने का वो जो लूप है उसको रिपीट करना पड़ेगा, वही मेहनत उसको करनी पड़ेगी। तो ये मेरा एक पेन पॉइंट रहता है हरियाणा के लिए भी, क्योंकि वो मेरा स्टेट है, मैं यहां जन्मा हूं, लेकिन ये हरियाणा तक सीमित नहीं है, पूरे देश की बात करूंगा, जहां भी फार्मिंग होती है, हर जगह पर इतनी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि फार्मर्स प्रिडिक्ट कर पाए वेदर कैसा होने वाला है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, और क्या फसलें मैं उगा सकता हूँ, कितने टेन्योर में वो उग सकती है। मुझे लगता है कि ये अपलिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरओवर, मैं ये भी चाहूंगा कि जब मेरे बच्चे हों, मैं उनको सब सिखाऊंगा, हिंदी सिखाऊंगा, अंग्रेजी सिखाऊंगा, टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा, जो भी होगा दुनिया में सब सिखाऊंगा, एट द सेम टाइम हरियाणवी सिखाऊंगा, स्वांग बताऊंगा, रागड़ी सुनाऊंगा, ताकि ये जो कल्चर है ये कैरी फॉरवर्ड हो सके, ये यहाँ पर गायब ना हो।
0: बिल्कुल। तो सागर, आपके साथ आज बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हरियाणा दिवस को और ज़्यादा एक महत्व अगर जो मिला है, और साथ ही आपने हर एक चीज़ के बारे में बहुत खुल के बताया है, चाहे वो रागनी की बात की जाए, गीतों की बात की जाए, यहाँ के कल्चर की एवोल्यूशन पीरियड से लेके अभी तक की सारी जानकारी आपने दी है, मैं तभी दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो आखिरी एक लाइन हरियाणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: दूध दही का खाना, यो है हमारा हरियाणा, ये है जी, यही है हमारा है ही ये प्रोसेस ऑर्गेनिक है, इसीलिए आपको हट्टे कट्टे यहाँ पर लोग नजर आते हैं, क्योंकि खाना बहुत ऑर्गेनिक है और वो बचपन से डाला जाता है। मतलब पिज्जा नहीं खाते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे घर में टमाटर और मिर्च की चटनी बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है चूल्हे के ऊपर, और उसमें जो मक्खन होता है वो निकाल के ताजा रखा जाता है और उसके ऊपर वो चटनी रख के खाई जाती है। अरे साहब कभी आइए, अंगे खाइए दूध के साथ, आपको हम दिखाते हैं कि मजा क्या होता है। आप भूल जाएंगे तमाम चीज केक का स्वाद, आप भूल जाएंगे तमाम पिज्जा, और आपको मिलेंगे जो फायदे। तो ये है जी हमारा हरियाणा।
0: बिल्कुल, यही है हमारा हरियाणा। और इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। तो चलिए आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मैनवरेश 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम।
1: वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आरजे सागर आज का हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम फील गुड फील लाइव। शो की बात करेंगे यहाँ पर एक प्रोसेस के तौर पे हम इस शो को आपको समझाते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले इस पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री के बारे में कौन कौन सी कंपनीज हैं कैसे वो ऑपरेट कर रही हैं क्या उनके पीछे का प्रोसेस रहा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल गेट टू नो अबाउट द इंडस्ट्री जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो बात करेंगे बिना किसी देरी के फिलहाल मैं आ चुका हूँ इतना ही आपसे कहना है मेरा सलाम कबूल करिए लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद मेडटेक की बात होगी क्योंकि आज की जो कंपनी है वो मेडटेक में डील करती है। पहले इंडस्ट्री आपको समझाएंगे उसके बाद फाइनली विल मूव ऑन टू द कंपनी वो बताएंगे कौन सी है। तो आज जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके पहले हम उस कंपनी जिस इंडस्ट्री में डील करती है उस इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। सो इंडस्ट्री है मेडटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी। जरूरत बहुत है इस इंडस्ट्री को समझने की और अपने आप में बहुत क्रूशियल है ये इंडस्ट्री क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटीज हमारे आसपास आज की डेट में है चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हो या फिर वो नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हुई हो या फिर कोई भी किसी तरह की महामारी अगर दुनिया में आती है तो ये इंडस्ट्री हमारी हेल्प करती है उससे कोप अप करने में। सो दैट्स हाउ ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी हुई है सीधे तौर पर। अब इसको थोड़ा सा हम डिकोड करके टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे। मेडिकल टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम रेफर करेंगे जो डेवलप करती है मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है तमाम तरह की चीजें जैसे डिवाइसेस हो गए टूल्स हो गए सॉफ्टवेयर्स हो गए टेक्नोलॉजीज हो गई। कुल मिलाकर मोटिव ये होता है कि डायग्नोस कर पाए डायग्नोस करना ट्रीट करना मॉनिटर करना मेडिकल कंडीशंस को ताकि लोग ठीक रहे ओवरऑल वेलबींग हमारी काफी अच्छी रहे। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी एक रेंज मिल जाती है लिटरली वाइड रेंज मिल जाती है चाहे आप बात करें किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की चाहे आप बात करें किसी सॉफ्टवेयर की या फिर जो आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं टेलीमेडिसिन के कि अपने घर पर बैठकर हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे हम अपने घर बैठ के दवाइयां ऑर्डर कर रहे हैं तो दवाइयां हमारे डोर स्टेप तक जो पहुंच रही हैं वो भी आप मेडटेक में ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है इस इंडस्ट्री में वो हम सब कुछ मेडटेक में कंसीडर करेंगे। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं लाइक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को एक सरल वे में लेकर आना। अगर किसी इंसानों की प्रॉब्लम है तो अच्छे से उसको डायग्नोस करना अगर किसी चीज की स्टार्टिंग बॉडी में हो गई है जो आम तौर पे होता है कि पहले ऐसा हुआ करता था इनिशियल स्टेजेस में हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाते थे प्रॉब्लम्स क्या हैं लेकिन अभी क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हमारे पास आ गई है कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं पूरी बॉडी का चेकअप करके कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या प्रॉब्लम है। और इसके अलावा कुछ और मेजर चीजें हैं जैसे कि सर्जिकल रोबोट्स आ गए हैं सर्जिकल रोबोट्स जो काफी एक्यूरेसी के साथ काफी प्रिसीजन के साथ जो है सर्जरी करते हैं जिससे रिकवरी भी जल्दी हो जाती है डैमेज भी कम से कम होता है और जो सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना एंड एमआरआई मशीन्स जो अपने आप में बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो अचीवमेंट या फिर माइलस्टोन है हमारे लिए कि बॉडी में अंदर क्या चल रहा है उसके एक एक सेल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाना अच्छे से रीड कर पाना। तो इस तरह की जो ये चीजें हैं ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं और ये सब कुछ हमें दिया है मेडटेक इंडस्ट्री ने यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी। आज की जो हमारी कंपनी है वो इसी इंडस्ट्री में डील करती है कंपनी के बारे में बाद में बात करेंगे फिलहाल इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे। अब समझते हैं मेडटेक इंडिया में क्या है एग्जैक्टली। देखिए मेडटेक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है उसके पीछे बहुत सारी चीजों का हाथ है मतलब लिटरली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब इसमें एक तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही ज्यादा जो है वो डिमांड बढ़ेगी और उसके हिसाब से इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहेगी। देन इसके बाद क्रोनिक डिजीज या फिर कहीं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। ये हमने आम तौर पे बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि 12 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ या 14 साल की उम्र में एक बच्चे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई या 16 साल की उम्र में एक बच्चे को थायराइड हो गया मल्टीपल चीजें। स्ट्रेस बहुत बड़ा एक एलिमेंट हो गया है हमारी लाइफ में जिससे कोप अप करने के लिए हमें जरूरत होती है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो इस एक इंडस्ट्री को इतना तेजी से ग्रो करा रही हैं और ये बहुत इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। अगर दूसरे वे में इसको देखा जाए तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री जितनी ज्यादा एडवांसमेंट यहाँ पर होती जा रही है हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती आ रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, प्लस सरकार की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो काफी सपोर्ट करती हैं इस इंडस्ट्री को। आप ये कह सकते हो कि इंडिया एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जो मेडटेक हब बनाता जा रहा है इस इंडस्ट्री को पूरे एशिया में। मतलब पूरे एशिया में अगर आप उसको फिगर आउट करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एशिया क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एक मार्केट है हेल्थ केयर का, लेकिन इंडिया उसमें बहुत स्किल्ड कंसीडर किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ पर लिटरली एक स्ट्रांग बेस है स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, साथ साथ स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं इंडिया में। अभी लिटरली बहुत अच्छा लगता है देख के कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक स्टार्टअप लेकर चल रहा है और वो उसको फिक्स कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ के निकाले हैं। ऐसी मल्टीपल इनोवेशंस हमने देखी है इस हेल्थ केयर सेगमेंट में जिन्होंने लिटरली लोगों की हेल्प करी है और हमारी ओवरऑल वेलबींग काफी अच्छी की है। सो दिस इज मेडटेक इंडस्ट्री इन इंडिया जो बहुत तेजी से, आप कह सकते हो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। आज हम इस इंडस्ट्री को डिकोड करेंगे यहाँ पर, और अभी तक हमने मेडटेक इंडस्ट्री को समझ लिया है। अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स की तरफ आएंगे जो आप कह सकते हो कि सब पॉइंटर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और अच्छे से इंडस्ट्री का एक इंसाइट लेने में। अब हम बात करेंगे की सेगमेंट्स की। मेडटेक इंडस्ट्री के की सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब उन वर्टिकल्स को मोटे मोटे तौर पे हम देखेंगे कि जहां पर कोई स्कोप है या जहां पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जिन सेगमेंट्स में हम इस इंडस्ट्री को बाइफर्केट कर सकते हैं। पहला आता है डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग। इसमें हम कंसिडर करेंगे MRI, CT स्कैन्स, एक्सरेज और जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं और एक ट्रीटमेंट को प्लान करने में हमारी काफी मदद करते हैं। जो मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज में अब पॉसिबल है कि हम उसको एनालाइज कर पाएं और फिगर आउट कर पाएं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने वाली है या स्टार्ट हो चुकी है बॉडी में, उसके लिए बहुत सारी एडवांसमेंट हमने कर ली। देन सेकंड वर्टिकल जो है वो है मेडिकल डिवाइसेस। इस सेगमेंट में आपको तमाम रेंज देखने को मिलेगी उन डिवाइसेस की जो हमारी हेल्प करते हैं, लाइक जो हमारे क्रूशियल मूवमेंट्स होते हैं, बहुत क्रिटिकल जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स की जब जरूरत होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, या स्टैंड्स जो आमतौर पर देखा जाता है जब बाईपास सर्जरी की जाती है, जब किसी के हार्ट में ब्लॉकेज आती है तो स्टैंड डाले जाते हैं सो दैट कि ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा ना हो और जो ब्लॉकेज है वो भी ना हो और इजीली जो है लोग वहां से कोप अप कर पाए उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जो उनके सामने आई है। देन पेसमेकर्स जो इसी एक वर्टिकल में फॉल करते हैं। उसके बाद थर्ड जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है अपने आप में वो वर्टिकल है वियरेबल टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत आम हो चुका है फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉचेस, इसके अलावा भी ऐसे हमारे पास वियरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजों को खुद से एनालाइज कर सकते हैं। और ये लिटरली बहुत प्राउड वाली बात है और बहुत अमेजिंग बात है कि यार अभी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में आ गई हैं। जैसे मल्टीपल टाइम्स हमने आपको अपने शोज में ये बात बताई है कि कोई इंसान गया माउंटेन ट्रैकिंग पे या माउंटेन क्लाइंबिंग पे और वहां पर जाकर उसको अचानक से कुछ फील हुआ, कोई पैनिक वाली सिचुएशन या अचानक से उसके जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत शूट अप कर गया या ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो गया बहुत ज़्यादा, तो ऐसा बहुत जगह से मल्टीपल टाइम्स अपडेट आए हैं कि स्मार्ट वॉच जो उसने पहनी हुई थी उसने नियर बाय रेस्क्यू टीम को एक मैसेज भेजा, एक SOS का मैसेज गया और इंस्टेंटली रेस्क्यू टीम वहां पर आई, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया और उस बंदे ने मतलब अपनी कॉन्शियसनेस वो खो चुका था, उस बंदे ने कोई मैसेज इंटेंशनली नहीं भेजा था, जस्ट बिकॉज कि वो जो स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी उसने वो सब कुछ आइडेंटिफाई किया, सिग्नल गया, रेस्क्यू टीम आई, उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया और समय रहते उन्हें बचा लिया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, यकीन मानिएगा। सो ये वेरिएबल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, लाइक ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने में एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने में, इसी के साथ हार्ट रेट हमारा अगर इरेगुलर हो रहा है तो उसको मॉनिटर करने में। देन इसके बाद फोर्थ वर्टिकल आता है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन यानी कि आप समझ सकते हो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी

लिटरली बहुत अपलिफ्ट किया है इस एक मार्केट को। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हेल्थ आईटी एंड एआई। इसी एक पर्टिकुलर वर्टिकल में हम इस चीज को देख सकते हैं कि पेशेंट्स को मैनेज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं एंड इसी के साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही थी पास्ट में और अभी जो बॉडी साइन दे रही है वो क्या साइन दे रही है या किस एक दिशा की तरफ जो है हमें वो लेकर जा रही है। इससे पेशेंट को टाइमली ट्रीट किया जा सकता है और बीमारी के रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है। So all these are the key segments जो medtech industry में fall करते हैं। First हमने आपको बताया diagnostics and imaging, second हमने आपको बताया medical devices, third बताया wearable technology, fourth बताया telemedicine and fifth बताया health IT and AI। अब देखिए इनमें से किसी को भी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कम महत्वपूर्ण है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक वर्टिकल, हर एक सेगमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, बशर्ते हम उन चीजों की जो वैल्यू है उसको अच्छे से समझ पाए। अभी तक हमने इंडस्ट्री को समझा ओवरऑल, हमने फिर इंडस्ट्री को समझा कि इंडिया में इसका स्टैंड क्या है अभी, फिर हमने समझा की सेगमेंट्स को, उन वर्टिकल्स को जिनमें ये इंडस्ट्री डील करती है या फिर जिनमें आप इसको बाइफर्केट कर सकते हो। अब बात करेंगे हम की ड्राइवर्स की। की ड्राइवर्स यानी कि जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं, जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है। तो पहला की ड्राइवर आता है राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स। अब देखिए जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, या फिर आप कह सकते हो नीड्स हमारी बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से सप्लाई प्रोवाइड करना। मोर ओवर जिस तरीके से हमारे सामने नए नए चैलेंजेस हर रोज आते हैं, नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए दिन खड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ नया डिटेक्ट किया जाता है, तो उस एक पर्टिकुलर चीज के साथ या उस एक पर्टिकुलर बीमारी के साथ कोप अप करना, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की सच में जरूरत होती है और ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऐसे में जो राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स हैं वो लिटरली हमारी काफी हेल्प कर रही हैं इस एक इंडस्ट्री को आगे भी ले जाने में और साथ साथ नई चीजों की तरफ हमें पुश करने में, मतलब नई टेक्नोलॉजीज, नई एडवांसमेंट या नई इंप्रूवमेंट या कुछ नया इनोवेटिव हम लेकर आए। जैसे आमतौर पे भी देखने को मिलता है कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये बहुत ही आम चीजें हो गई है, आमतौर पर देखने को मिल जाती है, पहले रेयरली हुआ करता था और एक सर्टेन एज ग्रुप को टारगेट किया जाता था कि इस एज में हो सकता है, लेकिन आज ये बोल पाना बहुत गलत होगा कि इस एज ग्रुप में हो सकता है, क्योंकि हमने 10 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हमने 14 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको ब्लड प्रेशर बहुत इरेगुलर है, हमने 16 साल के बच्चे को देखा है जिसको थायराइड है। ऐसे आप किसी एज ग्रुप में डाल सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल लाइफस्टाइल प्लस पॉल्यूशन प्लस स्ट्रेस प्लस ये कॉम्पिटिटिव मार्केट से हमारी होती जा रही है, इन सब की वजह से ये मल्टीपल कंडीशंस अर्ली स्टेजेस में बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। लकीली हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेकेंड आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर है एज अ की ड्राइवर जो इस इंडस्ट्री को रन करता है। पहला तो मेक इन इंडिया एक मूवमेंट है जो हम अपने ही देश में अपनी चीजें बना पा रहे हैं, अपने ही देश की चीजों को हम प्रमोट कर रहे हैं। सेकेंड आता है डिजिटल इंडिया जिसने बहुत हेल्प करी है, मतलब जो हम स्पेशली बात करेंगे टेलीमेडिसिन की, कि लोग अपने घर पे बैठ के कंसल्ट कर पा रहे हैं, तो वो हो पाया है डिजिटल इंडिया मूवमेंट की वजह से। देन उसके बाद आता है आयुष्मान भारत जिसमें एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलता है मेडटेक इंडस्ट्री को, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी काफी मदद मिलती है, नई इनोवेटिव चीजें मिल रही हैं और लोगों के पास एक्सेस है हेल्थ केयर का। पहले हुआ करता था कि बहुत लिमिटेड लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज का एक्सेस था, लेकिन जब से हम लोग डिजिटल हो गए हैं, जब से हम लोग टेलीमेडिसिन जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तब से रिमोट एरियाज में भी बैठकर लोग दिल्ली या मुंबई या कहीं पर भी किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की ड्राइवर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एआई बहुत ही अब कॉमन चीज हो गई है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नई है हमारे लिए, हालांकि इतनी पुरानी नहीं हुई है, बट स्टिल हमने बहुत तरक्की कर ली है इस एक फील्ड में। मशीन लर्निंग, आईओटी, इन्होंने मेडटेक इंडस्ट्री को लिटरली बहुत एक नया आप कह सकते हो मुकाम दिया है, क्योंकि नई एडवांसमेंट, नई चीजें लेकर आना, अर्ली स्टेज में चीजों को डिटेक्ट कर पाना, प्लस उसको काफी पर्सनलाइज्ड वे में देखना कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक्स क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हो पाया है टेक्नोलॉजी की वजह से। देन उसके बाद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ये तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की तरफ से इंडिया में मेडटेक जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, इन्वेस्टर्स को काफी लुभा रही है ये एक इंडस्ट्री, जिसकी वजह से ये इतना आगे बढ़ पा रही है। देन उसके बाद लास्ट जो आप की ड्राइवर कहेंगे इस एक इंडस्ट्री में, दैट इज ग्रोइंग अवेयरनेस। लोग भी अब जागरूक होते जा रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ लोग जो है अब जाने लगे हैं, साथ साथ लोग अब समझ पा रहे हैं कि यार

अर्ली स्टेज में अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को हमने डिटेक्ट कर लिया सो इट्स गुड फॉर अस। शायद इसी वजह से लोग स्मार्ट वॉचेस या फिटनेस ट्रैकर या जो भी वेरिएबल टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको वेयर करना पसंद करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर बॉडी में है तो अर्ली स्टेज पे उन्हें वो साइन मिल जाए और आगे चलकर वो परेशान ना हो जब वो बीमारी बहुत बढ़ चुकी हो। तो ये सब वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इंडिया में इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है, फिर आप कह सकते हो वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स। और इसमें अब हम बात करेंगे करंट टेक्नोलॉजीज की। ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर आप करंट ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं इस एक इंडस्ट्री की, जस्ट इन केस अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला है AI एंड मशीन लर्निंग, जो आमतौर पर हर एक इंडस्ट्री के साथ अब हम एसोसिएट कर रहे हैं और हर जगह पर हमें इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इसमें प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम एनालाइज कर पाएंगे, जिससे डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो पेशेंट के हिसाब से बनाया जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है 3D प्रिंटिंग। जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, इम्प्लांट्स हैं, इवन ह्यूमन टिश्यूज हैं, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिससे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और कॉस्ट को भी रिड्यूस करने का पूरा एफर्ट वहां पे जो है वो किया जा रहा है, ताकि लोग उसको एक्सेस कर पाए। मतलब लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी का कोई ना कोई ऐसा पार्ट खो देते हैं किसी ऐसे अनफॉर्चुनेट चीज में, एक्सीडेंट में, तो उसके बाद वो लाइफ टाइम उस चीज के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि यार कोई रिप्लेसमेंट दे दो, लेकिन एक्यूरेसी की कमी हुआ करती थी। बट लकीली अभी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं 3D प्रिंटिंग की वजह से कि काफी एक्यूरेट, मतलब आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि यार ये सच में रियल है या फेक है, मतलब कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। इम्प्लांट्स ऐसे ऐसे आ गए हैं, सर्जिकल जो चीजें आ गई हैं उन्होंने काफी हेल्प करी है लोगों को। कुल मिलाकर लोग जो फ्रीली कॉन्फिडेंटली जीना चाहते हैं वो करने में काफी हेल्प करती है 3D प्रिंटिंग। उसके बाद थर्ड वियरेबल डिवाइस, जिसकी हमने बात करी थी, जो हमारे वाइटल साइंस को मॉनिटर करता है, हमारी फिटनेस को ट्रैक करता है और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसका डेटा हमें प्रोवाइड करता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको काफी मदद मिलती है ये आइडेंटिफाई करने में कि किस दिशा में काम करना है और एग्जैक्टली क्या काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपकी हेल्प करते हैं टॉप नॉच डॉक्टर्स से कंसल्ट कराने में, इवन दो आप अगर एक लिमिटेड बजट लेकर चल रहे हो तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि कौन से डॉक्टर हैं, उनके रिव्यूज क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पढ़ाई की है, कितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ वहां पर मिल जाता है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां पर जाना है, किस डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट करना है, जिससे आपकी फिजिकल विजिट जो है वो बच जाती है और आप टाइम भी अपना काफी सेव कर लेते हो, आपको किसी पर्टिकुलर डे या वीकेंड का वेट नहीं करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है दैट इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्जिकल रोबोट्स क्योंकि एक नया ट्रेंड बन चुका है और इससे काफी मदद मिलती है एक्यूरेटली ऑपरेट करने में, साथ साथ रिकवरी काफी जल्दी हो जाती है। एंड इसी के साथ ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो काफी हेल्प करते हैं प्रिसाइज ऑपरेशन करने में या मेडिकल प्रोसीजर्स जो है उनको काफी सेफ और एक्यूरेट बनाने में। देन उसके बाद लास्ट टेक्नोलॉजी है बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसमें देखिए मैनेज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है हेल्थ डेटा को, जिससे एक डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है, सरकार को भी काफी मदद मिलती है, साथ साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी काफी मदद मिलती है, और अगर किसी को भी इस एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ डेवलप करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, तो उनको काफी मदद मिलती है, एक डेटाबेस उनके हाथ में है। सो ये हैं वो तमाम टेक्नोलॉजीज जो अभी ट्रेंडिंग है और जिनके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। तो अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है तो आप इन फील्ड्स में, इन टेक्नोलॉजीज में देख सकते हो। आई होप इट वर्क्स। अब इसके बाद आगे अगर बात करें तो नीड क्या है इसकी इंडिया में। देखिए सबसे पहली चीज एक्सेसिबिलिटी। बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है हमारे देश की आज भी जो रूरल एरियाज में रहती है। रूरल एरियाज मतलब लिमिटेड एक्सेस, चाहे वो किसी अच्छे टाउन के या अच्छे शहर के कितने ही करीब क्यों ना हो या कितना ही दूर क्यों ना हो, स्टिल देर आर लिमिटेशंस, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके लिए इन चीजों को एक्सेसिबल बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हर एक इंसान तक इनका फायदा पहुंच सके। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी चीजों को फिक्स कर सके बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। देन टेलीमेडिसिन उसमें एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, एंड मेडटेक के जो बाकी सॉल्यूशंस हैं लाइक पोर्टेबल डिवाइस हो गए, ये सब उस गैप को फिल करते हैं। इसलिए जरूरी है इंडिया में मेडटेक के ऊपर काम करना। सेकेंड अफोर्डेबिलिटी। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं, जिससे वो ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है। अगर मैं बात करूं एक ब्रॉडर व्यू में, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को ट्रीट करना है या डायग्नोस करना है तो कम टाइम में अच्छे से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा प्रिसीजन के साथ हम वो कर सकते हैं।
बिकॉज हमने टेक्नोलॉजी में इतना काम किया है, इतना इन्वेस्ट हमने ऑलरेडी किया है उस एक फील्ड में, जिसकी वजह से काफी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों की ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, जिसको जहां पर नीड है वो उसको ठीक कर सकता है, फिक्स कर सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड, क्वालिटी ऑफ केयर। अब एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स आ गए हैं, वेयरेबल डिवाइस आ गए हैं, AI ड्रिवन सॉल्यूशंस आ गए हैं, इससे ओवरऑल हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हुई है। जैसे कि अर्ली स्टेज डिटेक्शन, बेटर मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, मतलब अब अच्छे से हम उसको देख सकते हैं, अच्छे से उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बिहाफ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हाउ टू प्रोसीड, आगे चलना कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको कंसिडर करना चाहिए कि ये हमारी नीड है, हमारे देश की नीड है। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पैंडेमिक रिस्पॉन्स। COVID-19 के बाद से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, उस टाइम पर भी, उसके बाद भी हुई, जहां पर मेडटेक ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया उस क्राइसिस के टाइम पे भी, जहां पर डॉक्टर्स के साथ वर्चुअली अपॉइंटमेंट लेकर डिस्कस करते थे, एंड उसके बाद भी, क्योंकि वो एक चीज हमारी लाइफ का पार्ट बन गई, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम बहुत ट्रेंडिंग एक चीज बनी, बहुत बड़ी एक चीज निकल के सामने आई। देन उसके बाद सब कुछ हमने देखा कि डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स हमें मिल गए एंड टेलीमेडिसिन का आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल गए, कुल मिलाकर पेशेंट्स को ट्रीट करने में काफी सहूलियत हो गई। पेशेंट्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, डॉक्टर्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, इट्स अ विन-विन सिचुएशन। हुआ क्या, सिंपली टेक्नोलॉजी को वहां पर अलाइन किया गया और उससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को नई शेप मिली। सो दैट्स हाउ हम कह सकते हैं कि इसकी नीड है, ये हमारे पास। इम्पैक्ट भी इसका देखने को मिला, मतलब काफी हमने एक्सेस को इम्प्रूव होते हुए देखा कि इम्प्रूव्ड एक्सेस है हेल्थ केयर का, हमने देखा कि बेटर हेल्थ आउटकम्स हैं, हमने देखा कि पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा एम्पावर हो गए हैं पहले से, उनके पास ऑप्शंस ज्यादा आ गए हैं, हमने देखा कि एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो गई है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, हमने बहुत सारी चीजें देखी है। तो ऐसे मेडटेक जो एक पूरी इंडस्ट्री है, उसने हमारी लाइव्स की जो ओवरऑल वेलबींग है उसको काफी इंप्रूव किया। आइंद्रा सिस्टम्स बेंगलुरु बेस्ड एक मेडटेक स्टार्टअप है, 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। AI का इस्तेमाल करती है ये कंपनी, और पर्टिकुलर यहाँ पर एक कॉज है जिसको लेकर बहुत जानी जाती है पूरी इंडस्ट्री में, और वो है सर्वाइकल कैंसर। इनके कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सर्वस्त्रा है, जहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है सर्वाइकल कैंसर की, और अर्ली स्टेज पर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर डिटेक्ट किया जा सकता है, दैट मींस कि अर्ली स्टेज पर उसको हम क्योर भी कर सकते हैं। जब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं तो उस टाइम पर हमारे हाथ से गाड़ी बहुत दूर तक जा चुकी होती है। सो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इनके प्रोडक्ट्स हैं जो AI पावर्ड हैं, जैसे ऑटोमेटेड स्टेनर्स हैं, टेलीपैथोलॉजी सिस्टम्स हैं, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एक इस तरीके से लेकर आए हैं कि सोशल इम्पैक्ट ये लेकर आ सके। अच्छा, बहुत खास चीज, बहुत खूबसूरत चीज ये है कि इनका जो मिशन है, जिसकी वजह से कंपनी को इन्होंने स्टार्ट किया, दैट इज कि ये क्वालिटी हेल्थ केयर को एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। और ये बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, बेंगलुरु क्योंकि इंडिया का सिलिकॉन वैली जो है कंसिडर किया जाता है। बट स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये कंपनी हेल्थ केयर में स्टार्ट नहीं हुई थी। इनिशियली जो इस कंपनी के फाउंडर्स हैं, मिस्टर आदर्श नटराजन एंड मिस्टर अभिषेक मिश्रा, वो कंसल्ट करते थे फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर अ डिफरेंट प्रॉब्लम, जहां पर सब्सिडी लीकेजेस हुआ करते थे मिड डे मील स्कीम में, स्कूल्स की जो हुआ करती है। सो इन्होंने एक टचलेस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जो अटेंडेंस की ट्रैकिंग करता है। आप ये कह सकते हैं कि ये इनका पहला एक प्रोडक्ट था जो सक्सेसफुल हुआ। उस टूल का नाम था दृष्टि, जहां पर इनकी जो जान पहचान है वो AI से हुई, और मार्केट जो है इन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगी, और मार्केट जो है वो इनको समझने लगी। तो ये सब चीजें हुई। देन उसके बाद फंडामेंटली चीजें इन्होंने अपनी ठीक करी सारी, और उसके बाद ये फर्दर ग्रो करते गए, और 2014 में कुछ इनक्यूबेटर्स के माध्यम से, उनके हेल्प से, लाइक विल ग्रो है, एंड्रा है जो है वो शिफ्ट हुई टू मेडटेक, जो एक अलग ही स्टोरी है, मतलब एक पूरी नई जर्नी इनकी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर अभी तक का पॉइंट ये कि 2012 में कंपनी स्टार्ट हुई, जहां पर इन्होंने पहले सरकार के बिहाफ पर काम किया, एक ऐसा इन्होंने डिवाइस बनाया जो अटेंडेंस को ट्रैक करता है, ताकि किसी तरीके का घपला ना हो सके मिड डे मील स्कीम में जो स्कूल्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। फिर 2014 में जब तक ये मार्केट को समझ चुके थे, AI मॉडल्स को समझ चुके थे, डेटा को समझ चुके थे, फिर इन्होंने अपना मेडटेक स्टार्टअप जो है वो शुरू किया विद द हेल्प ऑफ विल ग्रो। एंड
कुछ और इंक्यूबेटर्स थे। तो इसके पीछे का जो आइडिया था वो हम आपको बता चुके हैं, टू यू नो मेक क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां पर हम बात करें तो लगभग 60,000 लोग लिटरली मतलब हाई कॉस्ट की वजह से या लेट डायग्नोसिस की वजह से एनुअली अपनी जान गंवा देते हैं, ये इनकी कंपनी के हिसाब से एक आंकड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर इन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और वहां पर इन्होंने एआई को इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट्स हाउ दे आर वर्किंग। आइए थोड़ी सी बात करते हैं इनके बैकग्राउंड की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मिस्टर आदर्श नटराजन की। ही इज द सीईओ एंड आप कह सकते हैं द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आइंद्रा। इन्होंने अपनी एमबीए की डिग्री अचीव की है आईआईएम बेंगलोर से, जो आप कह सकते हैं इंडिया टॉप बिजनेस स्कूल्स में इसको कंसीडर किया जाता है, जहां से इनकी फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हुई इन स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप। और आइंद्रा कंपनी को स्टार्ट करने से पहले मल्टीपल कंपनीज में इन्होंने काम किया, ठीक है, जहां पर इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं आईटी में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में है। काफी सारी अचीवमेंट्स हैं इनके खाते में जिनके बारे में मुझे लगता है कि रेलिवेंट नहीं होगा आपको बताना। तो इनका काफी सारा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, हमेशा से एक स्मूथ एक्सपीरियंस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पर मेजर एक इनका माइलस्टोन आप कहेंगे मिड डे मील स्कीम को एक्सपोज इन्होंने किया, जहाँ पर बच्चों को जो चीज़ें वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पा रही थी, वो खाना, वो जो मील्स उनके लिए बनाई जाती हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे घपले हो रहे थे, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, ठीक है। हालांकि इनका होम टाउन मैंशन नहीं है, बट ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम कि डीपली रूटेड इन बेंगलोर, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस जो है वहीं पर इन्होंने गेन किया है। इसके बाद थोड़ी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। एविड रीडर हैं, एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, ही लव्स टू ट्रैवल, स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, इस तरह की चीज़ें, और पैशन हम देख सकते हैं डीप टेक एंड सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स। दूसरा नाम आता है अभिषेक मिश्रा, ही इज़ द को फाउंडर एंड आप ये कह सकते हैं बैकबोन ऑफ आइंद्रा सिस्टम्स। ही इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ NIT जालंधर, एक और बहुत ही खास इंस्टीट्यूशन जो कि पंजाब में मौजूद है जालंधर में। तो वहाँ से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो की। इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं इन कंप्यूटर विजन एंड AI, वो सारी चीज़ें बहुत पहले से समझते आए हैं, जिसकी वजह से ये टीम बहुत अच्छी बन पाई। तो इनका भी बहुत क्रूशियल एक पिवोटल रोल है इन डेवलपिंग आइंद्राज इनिशियल AI प्रोडक्ट्स दृष्टि, एंड लेटर देन इसके बाद फर्दर जो इस कंपनी का एक बैकबोन कंसिडर हम करते हैं सर्वस्त्रा, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो करता है टूल, उसको इन्होंने बनाया। सो दैट्स हाउ यू नो दे आर जस्ट वर्किंग टुगेदर एंड मेकिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स। इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है इन AI एंड कंप्यूटर विजन, अर्ली प्रोजेक्ट्स इनके काफ़ी सक्सेसफुल माने जाते हैं इनके स्कूल डेज से, बहुत पहले से टेक को लेकर जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे हैं और उन सब प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं जहाँ पर टेक को लाया गया, जिसकी वजह से स्केलेबल AI सॉल्यूशन से बना पाए, चाहे वो मिड डे मील की हम बात करें या फिर अभी जो है हेल्थ केयर के लिए कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ दे वर्क। देन इसके बाद एक और टीम मेंबर हैं काफ़ी टैलेंटेड, मिस्टर चैतन्य, एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इनका जो पैशन है वो रोबोटिक्स में है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस में है, जहाँ पर ये हार्डवेयर वाली चीज़ें जो हैं वो सारी देखते हैं। ही इज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 ईयर्स इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ऐसे करके तीन लोगों की टीम है जो बन के आई। इनिशियली दो लोग थे जो मेन विजनरी आप कह सकते हैं, जिनकी वजह से कंपनी स्टार्ट हुई, आदर्श नटराजन एंड मिस्टर अभिषेक मिश्रा। तीसरा नाम हमने अभी आपको बताया जो बाद में जुड़े इनके साथ, लेकिन काफी इनकी मदद हुई उससे, मिस्टर चैतन्य। आइए थोड़ी सी बात करते हैं की ड्राइवर्स की। भाई कौन से वो ड्राइवर्स हैं जिनके बलबूते पर ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है। पहली चीज है डीप टेक्नोलॉजी। इनका जो AI का यूज है, कंप्यूटर का जो विजन है, कंप्यूटेशनल पैथोलॉजी है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत फास्टर वे में डायग्नोस कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन एरर्स को कम कर सकते हैं और जो टर्न अराउंड टाइम होता है टेट, उसको भी काफ़ी कम कर सकते हैं। इनका फोकस है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, जहाँ पर ये ऐसे पोर्टेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अफोर्डेबल भी हों और एक्सेसिबल भी हों, जैसे विजन एक्स है, एक इंटेलिस्टेन है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो डायग्नोस कर सकती हैं इन अनडिजर्व्ड एरियाज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी वजह से इनका तीसरा की ड्राइवर काफ़ी खास हो जाता है, अ सोशल इम्पैक्ट। एज अ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज है ये कंपनी, बट यहाँ पर एक मिशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान ये बचा रही है, यहाँ पर अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वैसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में कभी सुना है या बात की है, या केवल एक नाम सुना है उसके बियॉन्ड आप नहीं जानते होंगे, बताइए जरा हमें 8010078107 पे।
इसके बाद फिफ्थ इनका जो आप कह सकते हैं की ड्राइवर है, दैट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इन्होंने काफ़ी सारी यू नो ऐसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई है अपनी, जो हेल्थ केयर में काफ़ी आगे हैं, काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं, काफ़ी इनोवेटिव कंपनीज हैं और इनकी टीम ऑब्वियसली काफ़ी टैलेंटेड है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आज हमने आज की पूरी कहानी से काफ़ी कुछ सीखा है। अब इसी नोट पर हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे। तो दो लोग जो अलग अलग चीज़ों को समझते हैं, विजन लेकिन सेम रखते हैं, वो मिलकर के आए, उन्होंने एक कंपनी खड़ी करी, मार्केट को समझा, गैप को समझा, एंड देस नथिंग लाइक अ परफेक्ट प्रोडक्ट। हमेशा स्कोप होता है चीज़ों को बेहतर बनाने का। ये एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है आपको एज अ थंब रूल लिख लेनी चाहिए कहीं पे, क्योंकि जितने भी केस स्टडीज यहाँ पर हमने डिस्कस किए आज तक, सब में ये चीज़ निकल के आती है, कॉमन होती है कि आपके कुछ फेलियर्स होते हैं, मल्टीपल चीज़ों के अटैम्प्ट होते हैं, उसके बाद जाकर आप सक्सेसफुल होते हैं और वहाँ पर जाकर आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगती है। तो सारे एक्सपीरियंस आपके काम आते हैं। अब इसी नोट पर कि इस शो को आप लोगों को अच्छे से समझा पाया मैं, क्योंकि एक एजुकेशनल शो है, इजाज़त चाहूँगा आपसे, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: वेल हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय भारत। इस वक्त आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ, जो कि है आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी और शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ये शो बहुत स्पेशल हो जाता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। रीजन बीइंग, यहाँ पर हम लोग काफी सारी चीजों की बात करते हैं जिनके बारे में अमूमन बात नहीं होती है, या फिर ये कहूं कि अगर आप किसी तरीके से कोई ऐसा राबता नहीं रखते हैं यू नो लॉ एंड ऑर्डर से, कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो जाहिर सी बात है इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए बनी तो होंगी पर आप उनसे वाकिफ नहीं होंगे। इसी एक उद्देश्य के साथ हम इस शो को लेकर के आते हैं और यहाँ पर हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मानव रचना यूनिवर्सिटी से अमूमन जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो यहाँ पर शामिल होते हैं और जो अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ यहाँ पर आते हैं। हम हर बार एक नए मुद्दे के साथ यहाँ पर बैठते हैं और कोशिश सिर्फ एक कि आपको हम एक जागरूक नागरिक बना सकें और आपके लिए क्या क्या चीजें इस देश में मुहैया कराई जाती हैं आपको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके बारे में डिस्कशन कर सकें। आज फिर एक बार हाजिर हैं हम यहाँ पर लेकर एक और खास शो। आज हमारे साथ हैं मिस्टर आदित्य, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आदित्य सर जो हैं अगेन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मानव रचना यूनिवर्सिटी से हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और आज हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। खास तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द बातें घूमेंगी और मैं आपसे सलाह ये भी देना चाहूंगा आप सभी को, अगर आप भारतीय एक नागरिक हैं, कभी भी आपको जीवन में मौका मिले, एक बार भारतीय संविधान को पढ़िएगा जरूर। उसमें क्या लिखा गया है, क्या वो चीजें हैं, कैसे वो आज भी आपके लिए रेलिवेंट है, तमाम चीजें आपको समझ में आएंगी। इट्स लाइक द सोल ऑफ आर डेमोक्रेसी, तो इसलिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नाउ ऑन दिस नोट, बिना किसी देरी के स्वागत करेंगे आदित्य सर का और अपने शो को स्टार्ट करेंगे। सो हाय सर, वेलकम टू आवर शो।
1: हेलो सर, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो। पिछली दफा हमने शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी, आज दोबारा मुझे मौका मिल रहा है आने के लिए, सो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट वी आर टॉकिंग।
0: जी सर, हम लोग बात करने वाले हैं काफी सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले तो मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूंगा। यू एज एन एक्सपर्ट मुझे प्लीज ये बताइए कि हर एक नागरिक के लिए, हर एक सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना कितना जरूरी है, जस्ट वेरी बेसिक क्वेश्चन।
1: सर, टू आंसर दैट क्वेश्चन, सबसे बुनियादी चीज जो एक नागरिक कर सकता है वो ये है, क्योंकि देश के बनने के बाद जो पहला काम हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स ने किया था वो यही किया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश चलाना है तो हमें एक रूलिंग डॉक्यूमेंट तो बनानी पड़ेगी, और वो सिर्फ गवर्निंग डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ सरकार की मदद के लिए नहीं है, वो सबसे पहले अपने सिटीजन्स को राइट्स देते हैं, कुछ उनसे ड्यूटीज की कुछ उम्मीदें रखते हैं, और साथ ही साथ बताते हैं कि इस देश के तंत्र चलेंगे कैसे। तो अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो अमूमन तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि आपके हक में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इस डॉक्यूमेंट ने आपको दिया है, और जिस वक्त में ये बना था डॉक्यूमेंट वो भी वक्त काफी इंपॉर्टेंट है। 1947 ऑनवर्ड्स हमने बनाना शुरू किया था जब दुनिया भर में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, हम बहुत सारे सिविल राइट्स को लेकर जागरूक हो चुके थे, वेस्ट से हमने बहुत सारे आइडियाज लिए, हमने एशिया की बहुत सारी कंट्री से आइडिया लिए, तो हमने फिर अपने लिए एक देश बनाया। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये देश कैसे हमारा है, कितना हमारा है, और कहाँ पे दूसरों के राइट्स शुरू हो जाते और हमारे खत्म हो जाते।
0: जी, बहुत सुंदर। जब हम लोग बात भारत की करते हैं, हम लोग बात डेमोक्रेसी की करते हैं, हम लोग बात संविधान की करते हैं, तो एक फ्रेज बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं, अमूमन कहा भी जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वन स्टेटमेंट?
1: सर, ये जो लाइन है यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। एक्चुअली एक पूरा प्रीफेस है, जैसे हम प्रियम्बल कहते हैं, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 1 से पहले ही शुरू हो जाता है, जो कि हमें बेसिकली एक डिक्शनरी देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की। ये समझ, मतलब आई डोंट नो ये कितना अप्रोप्रिएट होगा, बट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डेटिंग प्रोफाइल होता किसी डेटिंग ऐप पे, तो ये उसका बायो होता, क्योंकि ये सारे एसेंशियल पॉइंट्स बताता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमारा देश है कैसा, हमारे देश ने किन किन चीज़ों को चुना है अपने लिए। मैं अभी आगे इस सेशन में इसी की बात ज़्यादातर करूँगा कि कैरेक्टर हमने अपने देश का कैसा चूज़ किया है। तो हमने सबसे पहले हमारे पावर के सोर्स की बात की है कि इस देश को इसकी शक्ति, इस देश को इसके कानूनों की शक्ति कहाँ से मिलती है, और जवाब आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि इस देश में जो भी पावर का सोर्स है वो हम लोगों से ही मिला है। इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग कि हम एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बनेंगे जहाँ वोटिंग होगी, जहाँ पे कानून यानी रूल ऑफ लॉ होगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर को हम सबसे पावरफुल मानते हैं या चीफ मिनिस्टर को पावरफुल मानते हैं, तो इनकी भी जो अथॉरिटी है वो हमारे ही थ्रू होके जा रही है. तो वी द पीपल दो चीजें बताती है, सोर्स ऑफ पावर भी और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी. क्योंकि अगर मैं रीड आउट करूं तो इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाटएवर व्हाटएवर. यानी कि ये संविधान हमने खुद को दिया है. हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उनको 2 साल 11 महीने 17 दिन का वक्त दिया और कहा कि हमें एक संविधान चाहिए इस देश को चलाने के लिए. सो वी द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमको हमेशा रिमाइंड कराता रहता है कि ये ताकत हमने खुद को खुद से दी.
0: सो वंडरफुल. वी में आपको साथ साथ एक सेंस ऑफ यूनिटी मिलता है. आप इंडिविजुअल नहीं रह जाते हैं, आप एक भारत के नागरिक बनते हैं जहां पर पूरे समूह को, पूरी ट्राइब को, पूरे देश को आपको एक साथ ध्यान में रखकर सोचना होता है. और वही एक सही विचारधारा हो सकती है व्हेन इट कम्स टू अ कंट्री. कि फॉर एग्जाम्पल अमूमन अपने शोज में हम लोग बात करते हैं सिविक सेंस की, जिसके बारे में बीते कुछ टाइम से बहुत तेजी से कुछ चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही
1: है.
0: कहीं पर कुछ भी कर देना, गंद फेंक देना. अभी बेंगलुरु का एक किस्सा मैं देख रहा था परसों, वहां पर ये हुआ था कि एक जगह पर बिल्कुल हाईवे पर साफ सुथरी जगह है, वहां पर 4 लड़के आए, आकर अपना कुछ गार्बेज डंप किया और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके सामने डांस कर रहे हैं. ठीक है, दे आर हैविंग दिस इल्यूजन कि दिस इज कूल. नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन वी टॉक अबाउट इट. कि जब हम एज अ कंट्री सोचते हैं तो हमें बेसिक सारे क्लियर रखने होते हैं, उसके लिए हम सबको यूनाइटेड होकर सोचना होता है. वी टॉक अबाउट इट मे बी इन सम अदर शो, बिकॉज सिविक सेंस इज अगेन अनदर बिग इशू जिसके बारे में बात होनी चाहिए. और एनीवेज मूविंग ऑन सर, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ टर्म्स सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जैसे प्रीएम्बल में इनको इस्तेमाल किया गया है?
1: सर, ये कुछ इनिशियल शब्द हैं जो कि हमारे प्रीएम्बल में इस्तेमाल होते हैं. इनमें से तो कुछ पे आज की तारीख में झगड़े भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, जैसे भी हो रहा हूँ. ये इनिशियल ड्राफ्ट में दो शब्द नहीं थे, सेक्युलर और सोशलिस्ट. इनकी बात मैं थोड़ा अलग से करूंगा. बट ये जो सारे शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से डिफिकल्ट शब्द भी हैं, तो इनको एक सरल मायने देना चाहूंगा मैं. सॉवरेन बस ये कहता है, क्योंकि हम तुरंत ब्रिटिश राज से आज़ाद हुए थे, तो जो पहली चीज़ हमने खुद के बारे में कही वो ये थी कि हम इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इंडिपेंडेंट हैं. सॉवरेन शब्द का यही मतलब है कि हम स्वाधीन हैं, हमें बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है ना अंदर से कोई कंट्रोल कर रहा है. कोई क्राउन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जो हमें चला रही है. यूनियन ऑफ इंडिया एक सॉवरेन स्टेट ऐसे बना. फिर हमने बात की कि हम किस प्रकार की गवर्नेंस चाहेंगे. क्या यहाँ रूल ऑफ पीपल होगा या फिर जैसे राजा, राजा के बाद राजकुमार ही राजा बनता है, वो वाला सिस्टम अपनाएंगे या कोई तीसरी चीज़ करेंगे. तो हमने कहा नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम्स भी हैं. तो हमने कहा कि हम डेमोक्रेसी को एम्पावर करेंगे और इसलिए हमने एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चुना अपने लिए, डेमोक्रेसी, जैसे हम जमहूरियत भी कहते हैं. और रिपब्लिक जो शब्द है ये उसका एक्सटेंशन ही है. रिपब्लिक कहता है कि हमारे जितने लीडर्स होंगे वो इलेक्टेड लीडर्स होंगे, सेलेक्टेड लीडर्स नहीं होंगे. यानी कि एक चुनाव के बाद हमें पता चलेगा अच्छा लोगों ने इनको एक जनमत दिया और फिर वो बनते हैं. तो रिपब्लिक मींस हैविंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ये वो चीज़ है. अब मैं जो जो बचे कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स हैं उन पे आना चाहूँगा. सेक्युलर और सोशलिस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है एक्चुअली, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ह्यूमेन शब्द है, इंसानियत की तरफ ही हमें ले जाता है. लोगों को एक गलत फहमी है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आपको हर धर्म का सम्मान कर रहे या हर धर्म का पालन करना है. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं हो सकता है. द स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन. सरकार का कोई रिलीजन नहीं और वो किसी रिलीजन को ना प्रमोट करेगी ना डिस्करेज करेगी. स्टेट शैल नीदर प्रमोट और डिस्करेज एनी रिलीजन. सो व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट टू द पीपल? जनता क्या करेगी? आपका जो भी धर्म है आप उसे उसका पालन कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आपको बाकी धर्मों का पालन करना. हाँ, कुछ लॉज हैं डिफेमेशन के या हेट स्पीच के, कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि खराब माहौल हो जाए समाज का, आप किसी और समाज के या रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट सेक्युलरिज्म द वर्ड इज स्ट्रिक्टली फॉर गवर्नमेंट. सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा. छुट्टियां अगर मनेगी एक साल में तो सारी हॉलीडेज की मनेगी. इसलिए आप देखते भी होंगे कि पीएमओ से जब ट्विटर पे विशेष आती हैं तो वो सारे रिलीजन की आती हैं. तो वो है सेक्युलरिज्म. और आखिरी और सबसे प्यारा वर्ड है सोशलिज्म. ये दोनों वर्ड 1942 अमेंडमेंट यानी 1976 के बाद ऐड हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. सोशलिज्म का मतलब ये है कि हमारे देश की जो भी पूंजी है वो इक्वली डिवाइड होगी लोगों में. सोशलिज्म एक तरीके से आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म का ही दूसरा छोर है, ऑपोजिट छोर है. तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपके 5 लोगों के ग्रुप की हाउस पार्टी हो रही है जिसमें से एक काफ़ी अमीर खानदान से आता है, एक मिडिल क्लास से आता है, कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो हम सबका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, प्रपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे, यानी कि जिसकी जितनी क्षमता है और उस हिसाब से हम उसका योगदान लेंगे भी और उसको सपोर्ट देंगे भी। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे सोशलिस्टिक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं, जो नरेगा है या महात्मा गांधी नरेगा स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। इनमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पूरे पॉपुलेशन को इंक्लूड करें और क्लास के बेसिस पे, इनकम क्लास के बेसिस पे, इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये गोल है। और हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, यानी कि हम थोड़े से कैपिटलिस्ट हैं, थोड़े से सोशलिस्ट हैं, हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल भी है और रैन बसेरे भी हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों स्पेक्ट्रम को कवर करने की कोशिश की है, एटलीस्ट हमारे प्रीएम्बल के थ्रू। तो ये पांच शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। हमारे नेबरिंग कंट्रीज सेक्युलर कंट्रीज नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री, इट्स एन इस्लामिक स्टेट। तो कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने अपना रिलीजियस नेचर डिफाइन कर लिया है। हमने कहा 1947 के बाद हमारी सरकार का कोई रिलीजन नहीं होगा, हमारे देश में सारे रिलीजन के लोग रह सकते
0: हैं। वो जो लीडर हैं जो सरकार को चला रहे हैं, दे कैन हैव देयर ओन बिलीव्स बट दे कांट बी बायस्ड।
1: जी, मतलब अगर मैं इसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उनको हिंदू धर्म का पालन करने से कोई नहीं रोक सकता। बट जितने भी सरकारी काम होंगे, सरकारी ऑर्डर होंगे, जो कानून बनते हैं, उनके थ्रू कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जितने भी इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, सरकार के काम हो रहे हैं, सरकारी काम में कोई, जैसे कि कल को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गजट ऑफ इंडिया से एक पर्टिकुलर धर्म के जो फेस्टिवल्स के हॉलीडेज हैं उनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। या फिर गवर्नमेंट स्पेसिफिक फंड से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही हेल्प मिलेगी, ऐसा कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि ऐसा हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कैरेक्टर डिफाइन किया। बट हाँ, ये जितने गवर्नमेंट के लोग हैं, ये इंसान भी तो हैं, और इंसान है तो अपने प्राइवेट लाइफ में अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो हाँ, अपने प्राइवेट लाइफ में जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो जिस धर्म के आप हैं, जो भी पालन करना आप कर सकते हैं। When you are representing the government of India, जब आप स्टेट के हैसियत से आते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें।
0: So, sir, please correct me if I'm wrong. क्या ये बोलना गलत होगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं?
1: जी।
0: या फिर इसको सही तरीके से पोर्ट्रे किया जाए तो ये बोला जा सकता है शायद कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो अभी करंट प्रधानमंत्री।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये नहीं बोला जा सकता है कि आप उस औहदे को नहीं बोल सकते।
1: नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन भारतीय सरकार किसी धर्म को का पालन नहीं करती है, ना प्रमोट करती है, ना डिस्करेज करती है। जैसे कि कल को कोई वैकेंसी आती किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें ये केवियट नहीं लगाया जा सकता कि एबीसी धर्म के लोग तो अप्लाई कर सकते हैं, बट डीईएफ के अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक गवर्नमेंट फंक्शन है और गवर्नमेंट फंक्शन में हमने इंश्योर किया कि सेक्युलरिज्म मेंटेन रहे। तो एक जो मिसकंसेप्शन इस वर्ड का, जो कि मोस्टली ऑनलाइन दिखा है पिछले 5-10-15 साल में, जब से इंटरनेट ज्यादा एक्सेसिबल हुआ है, लोगों को लगता है कि आप पे एक बर्डन डाल दिया है हमारे संविधान ने कि आप सारे धर्मों का पालन करें। ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म मतलब कि आप अपना काम करें, सरकार किसी के साइड नहीं है, सरकार किसी धर्म का मतलब किसी धर्म को अपोज भी नहीं कर रही है, प्रमोट भी नहीं कर रही है।
0: सो वंडरफुल। दोस्तों, ये मुझे लगता है बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर इनकी समझ हम सब में आ गई तो आधी से ज्यादा जो हमें सोशल मीडिया पर कॉन्ट्रोवर्सीज दिखाई देती हैं, बहस के जो मुद्दे दिखाई देते हैं, जो मतभेद आपको दिखाई देते हैं, वो शायद अवॉइड हो सकते हैं इन छोटी सी चीजों को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया या भारत या इंडिया, तो वहां पर आपको बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही रेफर कर रहे हैं, भले ही आप इंटेंशनली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आता है वहां पर। और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रोड मैप बना करके हमें दिया है, मुझे लगता है वही एक सही विकल्प है, अगर सही तरीके से शांतिपूर्वक अगर हमें तरक्की के रास्ते पर चलना है, वृद्धि के रास्ते पर चलना है। ऑन दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम आदित्य सर से बात कर रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी कुछ डिस्कस करना है हमें, और मुझे भी हर बार यहाँ पर इस शो में खासतौर पर इतना कुछ नया जानने को मिलता है। हर बार जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने अपने फील्ड्स के मास्टर होते हैं, एंड आई एम श्योर आपको भी मजा आता होगा। जस्ट इन केस इफ यू हैव समथिंग विच यू वांट टू शेयर विद अस, मे बी विद मी और मे बी विद आदित्य सर, सो यू कैन लेट अस नो ऑन 8010781078। फिलहाल स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

जैन फकीरों में, जैन परंपरा में इस तरह के विचार चलते हैं। हर शिष्य अपने ढंग से धन्यवाद देता है जब ज्ञान को उपलब्ध होता है। कभी कभी तो बड़ी अजीब घटनाएं घट जाती। एक युवक बोकोजू अपने गुरु के पास वर्षों रहा ध्यान की समाधि की तलाश, और जब भी वो कुछ खबर लेके जाता कि बड़ा अनुभव हुआ कि गुरु उसको चांटा रसीद कर देता। ये पहले तो बहुत चौंकता था, फिर समझने लगा, औरों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा जो पहले से ऐसे गुरु के चांटे खाते रहे थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उसकी बड़ी कृपा है, वो मारते ही तब जब उसकी कृपा होती, किसी पे नहीं तो वो मारते ही नहीं, फिजूल पे तो वो खर्चे क्यों करे, एक चांटा भी क्यों खर्च करे, तुम तो उसकी बड़ी कृपा है। और वो मारता इसलिए कि तुम जो भी ले जाते हो वो अभी सच नहीं है, काल्पनिक है। कभी वो पहुंच जाता कि बड़े प्रकाश का अनुभव हुआ गुरुदेव और एक चांटा, कि कुंडलनी जग गई गुरुदेव और एक चांटा, कि चक्र खुलने लगे और वो चांटा। वो जो भी अनुभव ले जाता और चांटा खाता, तब तो उसे भी समझ में आने लगा कि बात तो सब, ये सब तो काल्पनिक जाल ही है। जहां तक किसी चीज का अनुभव हो रहा है वहां तक अनुभव हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो भी अनुभव हो रहा है वो तुमसे अलग है। कुंडलनी जगी तो तुम तो देखने वाले हो, तुम तो कुंडलनी नहीं हो। वो जो देख रहा है भीतर की कुंडलनी जग रही, वो तो कुंडली नहीं हो सकता ना, कुंडली तो विषय हो गई। जिसने देखा कि भीतर तीसरी आंख खुलने लगी, वो तो तीसरी आंख से भी उतना ही दूर हो गया जितनी इन दो आंखों से दूर है, वो तीसरी आंख भी अलग हो गई। जिसने देखा कि भीतर कमल खिलने लगा, वो देखने वाला तो कमल नहीं हो सकता ना, वो देखने वाला तो पार और पार और पार। उसका तो पता तब चलता है जब न कमल खुलते, न प्रकाश होता, न कुंडलनी जगती, न चक्र घूमते, कुछ भी नहीं होता, सन्नाटा छा जाता है, अनुभव में कुछ आता ही नहीं, सिर्फ वही बच जाता है साक्षी, उस शून्य का साक्षी रह जाता है। ऐसा कहते हैं 20 साल तक बोकुजू ने चांटे खाए, और आखिरी बार जब वो आया तो पता है कैसे उसने धन्यवाद दिया, आके एक चांटा अपने गुरु को जड़ दिया। गुरु खूब हंसा, कहते हैं गुरु लोटा, प्रसन्नता में लौटा, उसने कहा तो हो गया आज तो, धन्यवाद कैसा होगा कहना मुश्किल है। ये ठीक धन्यवाद था, 20 साल चांटे खाने के बाद आज कुछ कहने को था भी नहीं। जैन परंपरा अनूठी है, फकीरों की सारी परंपराएं अनूठी। मैं एक जैन फकीर के संस्मरण पढ़ रहा था। वो फकीर अमेरिका गया हुआ था और वहां एक हिंदू सन्यासी से निमंत्रण मिला कि मुझे मिलने आओ। पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि हिंदू सन्यासी और कोई नहीं, बाबा मुक्तानंद होने चाहिए। नाम उसने नहीं लिखा है, लेकिन हुलिया और ढंग जो वर्णन किया है वो मुक्तानंद का, और ये भी लिखा कि वो अंग्रेजी नहीं बोलते। मुक्तानंद ने बुलाया होगा, निमंत्रण दिया फकीर को आने को। फकीर आया तो मुक्तानंद बैठे एक ऊंचे सिंहासन पर, और उसके नीचे एक आसनी बिछा दी फकीर के लिए। मुझे लगा कि मुक्तानंद ही होने चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी उन्होंने यही किया, मुझे भी बहुत निमंत्रण दे देकर बुलाया। और जब मैं गया तो एक आसन पर बैठे और एक आसनी नीचे रख दी उन्होंने बैठने के लिए। फकीर बैठ गया, मुक्तानंद ने कुछ मिठाई फकीर को भेंट की, तो फकीर के साथ एक शिष्य आया था, उसने कहा कि नहीं वो मिठाई नहीं लेंगे, उन्हें डायबिटीज है। तो मुक्तानंद ने कहा कि डायबिटीज तो 3 मील सुबह पैदल चलो, आसन व्यायाम करो तो ठीक हो जाएगी। अभी बिल्कुल अंधेपन का सबूत है, क्योंकि आदमी जो सामने बैठा है वो परम दशा में, उसको ये बताना कि 3 मील पैदल चलो, आसन व्यायाम करो, योगासन सीख लो, मूढ़ता का लक्षण। वो फकीर हंसा, उसने कहा डायबिटीज बड़ी प्यारी है, भगवान की देन। ये सब अनुवाद किया जा रहा है, एक मुक्तानंद की शिष्या अनुवाद कर रही है, मुक्तानंद हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, और वो जो फकीर अंग्रेजी में बोल रहा है वो हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। तब मुक्तानंद ने कहा कोई जिज्ञासा, अभी तो उसको बुलाया खुद, अब उससे पूछते हैं जिज्ञासा, कुछ पूछो, कोई प्रश्न वगैरह हो तो वो हल कर दे। तो उस फकीर ने जैन ढंग से कहा कि ईश्वर है या नहीं, अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, और अगर कहा नहीं है तो
तो भी एक तमाचा मारूंगा। बोलो। वो जो अनुवाद कर रही थी महिला वो तो बहुत घबरा गई कि ये कोई बातचीत, अगर कहा है तो एक तमाचा मारूंगा, अगर कहा नहीं है तो भी एक तमाचा मारूंगा, बोलो। तो वो महिला तो थोड़ी घबराई कि इसका अनुवाद करना कि नहीं, और उसने भी चौंक के देखा कि ये बात क्या है, उस फकीर ने कहा अनुवाद कर नहीं तो तू नाहक पिटेगी। तो घबरा के उसने अनुवाद कर दिया। जब ये अनुवाद मुक्तानंद ने सुना तो वो तो बहुत घबरा गया कि ये कौन सी तत्व चर्चा है। तो उन्होंने कहा आप कोई दार्शनिक नहीं मालूम होते, ये कौन सी तत्व चर्चा है, मगर ये तत्व चर्चा है। जैन फकीर ये कह रहा है कि हां कहो तो गलत, ना कहो तो गलत, क्योंकि हां कहो तो द्वैत आ गया, ना कहो तो द्वैत आ गया। दोनों हालत में चांटा मारूंगा, अगर हां कहा तो चांटा मारूंगा, ना कहा तो चांटा मारूंगा। वो ये कह रहा है कि दोनों हालत में तुमने गलती की, क्योंकि परमात्मा के संबंध में ना तो हां कहा जा सकता है ना कहा जा सकता है, चुप्पी ही मौन ही एकमात्र सही उत्तर है। लेकिन इससे तो बात बिगड़ गई, ये चांटा मारने की बात तो कुछ जची नहीं। तो जैन फकीर ने लिखा अपनी डायरी में कि बाबा ने जल्दी से घड़ी देखी और कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है, बस सत्संग समाप्त हो गया। हर परंपरा के अपने ढंग होते, लेकिन परंपरागत ढंग सीख लेने से कुछ सार नहीं है। तिब्बत में जब ज्ञान हो जाए तो एक ढंग होता है गुरु को धन्यवाद देने का, लेकिन अगर ढंग सीख रखा परंपरा से तो ढंग ही झूठा है, ये काम थोड़ी आएगा। तो तुम ये तो पूछो ही मत कि कैसे धन्यवाद दोगे, तुम तो इसकी ही फिक्र करो, धन्यवाद की क्या फिक्र है, ना भी दिया तो चलेगा। पूछा है स्वामी स्वरूप सरस्वती ने, और मैं तुमसे कह देता हूँ धन्यवाद दिया तो एक चांटा मारूंगा और नहीं दिया तो भी मारूंगा। धन्यवाद की तो फिक्र छोड़ो, परमात्मा को पा लेने का सवाल है, उसको पा लिया तो धन्यवाद हो गया। तुम आओगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम बैठोगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम ना आए तो भी धन्यवाद आ जाएगा। तुमने कहा कि नहीं कहा फिर अर्थहीन है, तुम्हारा होना कह देगा। जब गुरु देखता है कि किसी शिष्य को हो गया तो क्या तुम सोचते हो तुम बताओगे तब उसे पता चलेगा, तो गुरु ही नहीं है। तुम्हारे बताने से पता चला तो फिर क्या खाक गुरु। सच तो यह है कि जब तुम्हें होगा तुम्हारे होने के पहले, तुम्हें पता चलने के पहले गुरु को पता चल जाएगा कि हो रहा। रिंझाई के संबंध में ऐसी कहानी है कि जब उसे ज्ञान हुआ तो रात के 2 बजे थे, बैठा था ध्यान में, अचानक सब द्वार दरवाजे खुल गए। कर रहा था मेहनत कोई 12 वर्षों से, जब द्वार दरवाजे खुल गए 2 बजे रात, तो उसके मन में ख्याल आया कि जाऊं और अपने गुरु के चरणों में सिर रखूं, लेकिन 2 बजे रात उनको जगाना नींद तो ठीक नहीं। जब उसने ऐसा सोचा तो हैरान हुआ कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, दरवाजा खोला तो गुरु सामने खड़े। गुरु ने कहा तो अरे ना समझ, तू क्या सोचता था कि तुझे ज्ञान होगा और हम सोए होंगे, इतनी बड़ी घटना घट रही हो, जब तेरे साथ साथ जोड़ दिया तो सब तरह जुड़ गए, तुझे इतनी बड़ी घटना घट रही हो और हम सो सकते, और क्या तू सोचता है तुझे पहले पता चलेगा फिर हमें पता चलेगा। तुम चकित होगे जान के कि पश्चिम में बहुत से प्रयोग चल रहे हैं, माँ और बेटों के बीच में कोई एक अज्ञात सूत्र रहता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से तो जुड़ा रहता है, बच्चे की नाभि माँ के पेट से भौतिक रूप से जुड़ी रहती है, डॉक्टर उसे काटता है, लेकिन एक और कोई स्वर्ण सूत्र है जो जुड़ा ही रहता है, जिसको काटा नहीं जा सकता। इस पर बहुत प्रयोग चले, विशेषकर सोवियत रूस में बहुत प्रयोग हुए हैं और बड़ी हैरानी के परिणाम आए। वो प्रयोग ये है कि अगर बेटे और माँ में बहुत लगाव हो तो तुम हजारों मील दूर ले जाके बेटे को सताओ, माँ को अनुभव होने लगता है कि बेटा सताया जा रहा, उसे कुछ तकलीफ शुरू हो जाती, वो बेचैन होने लगती, फिर आदमी तो बहुत विकृत हो गया है, इसलिए पशुओं पर प्रयोग किए गए। एक बिल्ली को ऊपर छोड़ दिया गया घाट पर और उसके छोटे बच्चे को एक पनडुब्बी में समुद्र की गहरी सतह में ले जाया गया मील भर नीचे, और ये जो ऊपर बिल्ली छोड़ी गई है इस पर सब यंत्र लगा के रखा गया है कि इसके मन की दशा का पता चलता रहे, कभी ये परेशान होती बेचैन होती छोटी सी भी बेचैनी। और जैसे ही उस बच्चे को नीचे सताया गया, उसकी गर्दन मरोड़ी गई,
थी वो एकदम परेशान होने लगी। एक मील का फासला, पानी की अतल गहराई में बच्चा, जैसे ही उसकी गर्दन छोड़ी गई वो फिर ठीक हो गई, फिर गर्दन दबाई गई वो फिर परेशान हो गई। फिर तो इसको बहुत प्रयोग किए गए और ये अनुभव में आया कि जहां प्रेम है वहां एक स्वर्ण सूत्र जोड़े रखता है। तो ये तो माँ और बेटे की बात है, तुम गुरु और शिष्य की बात तो पूछो ही मत, क्योंकि ये प्रेम तो कुछ भी नहीं है उस प्रेम के मुकाबले। ये तो शरीर का ही प्रेम है। गुरु और शिष्य के बीच तो एक आत्मिक नाता है, आत्मा का एक संबंध है। जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा, तुम सोचते हो तुम्हें पहले पता चलेगा, तो तुमने गलत ही सोचा। तुम्हारे गुरु को तुमसे पहले पता चल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें धन्यवाद देने का गुरु मौका न दे, तुम्हें तुम्हारे धन्यवाद देने के पहले धन्यवाद दे दे। इस चिंता में पड़ो मत। असली चिंता दूसरी ही है कि कैसे उसे पालो। धन्यवाद गैर धन्यवाद तो शिष्टाचार उपचार की बात है। पांचवा प्रश्न, कभी आप कहते हैं अकेलापन स्वभाव है, कभी आप कहते हैं स्वतंत्रता स्वभाव है, कभी आप कहते हैं प्रेम स्वभाव है, कभी आप कहते हैं आनंद स्वभाव है, कृपा करके समझाएं। मैं जो भी कहता हूं वह एक ही है, बहुत ढंग से कहता हूं। समझो, जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है, तो मैं कह रहा हूं ये मार्ग ध्यान का, अकेलापन यानी ध्यान, अकेले रह गए, असंबंधित, असंग, कोई दूसरे की धारणा ना रखी, पर को भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, क्योंकि वो भी पर, वो भी दूसरा, अकेले रह गए, बिल्कुल एकांत में रह गए। जैन बौद्ध इस तरह चलते, अकेले रह गए, इसलिए उनके मोक्ष का नाम कैवल्य, बिल्कुल अकेले रह गए, केवल चेतना मात्र बची। अकेलापन स्वभाव है, जो अकेला हो गया तो दूसरी बात उसमें से निकलेगी, स्वतंत्रता स्वभाव है। जब तुम अकेले रह गए तो तुम स्वतंत्र हो गए, अब तुम्हें कोई परतंत्रता ना रही, क्योंकि कोई पर ही ना रहा, दूसरे पर निर्भरता ना रही, तुम मुक्त हो गए, तुम स्वतंत्र हो गए, तुम्हारा अपना स्वच्छंद तुम्हें उपलब्ध हो गया, तुम अपना गीत गुनगुनाने लगे, अब तुम उधार गीत नहीं गाते, अब तुम दूसरे की छाया की तरह नहीं डोलते, अब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, अब तुम अपने भीतर से, अपने केंद्र से अपने जीवन का रस बहाने लगे, तो स्वतंत्र हुए। फिर तीसरी बात मैं कहता हूं प्रेम स्वभाव है, जो स्वतंत्र हो गया और अकेला हो गया वही प्रेम देने में सफल हो पाता है, क्योंकि उसी के पास प्रेम देने को होता है। तुम तो प्रेम दोगे कैसे, तुम तो मांग रहे हो, दोगे कैसे, तुम तो चाहते हो कोई तुम्हें दे दे, तुम्हारे पास ही होता तो तुम मांगते क्यों, तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तो मांगते हो। हम वही तो मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो स्वतंत्र हो गया, एकांत में डूब गया, अपनी मस्ती में खो गया, उसके पास प्रेम होगा, वो प्रेम बांटेगा, लेकिन उसका प्रेम तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं होगा, वो देगा बेशर्त, वो किसी को भी देगा, वो ये भी नहीं कहेगा किसको दूं किसको ना दूं, उसकी कोई सीमा ना होगी, वो बांटेगा, वो उलीचेगा, जैसे एकांत में खिला हुआ फूल अपनी सुगंध को हवाओं में बिखेर देता, किसी को मिल जाए ठीक, न मिले ठीक, किसी के प्रयोजन से नहीं बिखेरता। सुगंध में किसी का पता नहीं लिखा होता कि फलाने के घर जाना, कि मेरी प्रेसी वहां रहती है सुगंध वहां जाना, कि मेरा प्रिय वहां रहता है वहां जाना, बिखेर देता जिसको मिल जाए, फूल खिल गया अब उसको क्या प्रयोजन। जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया उसका प्रेम खिल जाता है, उसका फूल खिल जाता है, और जिसका फूल खिल जाता है, चौथी बात आनंद स्वभाव है, जिसका फूल खिल गया वो आनंदित है, बिना भीतर के फूल के खिले कब कोई आनंदित हुआ है। तो जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है, स्वतंत्रता स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, तो मैं एक मार्ग की बात कर रहा हूँ, वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। उसमें अकेलापन पहले आता, फिर स्वतंत्रता आती, फिर प्रेम आता, फिर आनंद आता। दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में प्रेम पहले आता, प्रेम स्वभाव है परमात्मा के प्रति, इतने अनन्य प्रेम से भर जाना है कि तुम्हारा मैं भाव समाप्त हो जाए, तुम्हारा मैं समर्पित हो जाए। और जिसके जीवन में प्रेम आ गया, परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पण आ गया, ऐसी प्रार्थना आ गई कि अपने अहंकार को उसने सब भांति समर्पित कर दिया, उसके जीवन में अनिवार्य रूपेण

और जो अकेला है वही स्वतंत्र है, वही स्वच्छंद है। तो ये दूसरा सूत्र भक्ति का प्रेम स्वभाव है, प्रेम से पैदा होता आनंद, आनंद स्वभाव है, आनंद से पैदा होता एकाकीपन, अकेलापन, एकांत, तो अकेलापन स्वभाव है, और अकेलापन यानी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। किसी भी मार्ग से चलो, दो ही मार्ग है, या तो शुद्ध रूप से अकेले बचो तो तुम पहुंच जाओगे, या अपने को बिल्कुल गमा दो, खो दो तो तुम पहुंच जाओगे, या तो मिट जाओ तो पहुंच जाओगे, शून्य हो जाओ तो पहुंच जाओगे, या पूर्ण हो जाओ तो पहुंच जाओगे। जैन और बौद्ध चलते हैं ध्यान से, अकेले हो गए, मैं को शुद्ध करते हैं, परिपूर्णता पर लाते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई चलते हैं प्रेम से, अपने को समर्पित करते हैं। समर्पण में अहंकार धीरे धीरे खो जाता है, रेखा भी नहीं बचती। जिस दिन अहंकार खो जाता है उसी दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। छठवां प्रश्न, लाओसु जब अपना देश छोड़कर जा रहे थे तब देश के राजा ने उन्हें कहलाया कि आपने जो कुछ प्राप्त किया है उसकी चुंगी चुकाए बिना आप नहीं जा सकते, उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा है कि जब तक आप संबोधि का दान औरों को नहीं देते तब तक आप भी मोक्ष महल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह संदेह रहित बात है प्रभु, पूछा है बोधिधर्म ने। संदेह तो थोड़ा रहा होगा, नहीं तो पूछते नहीं। संदेह रहित बात में पूछना क्या, थोड़ा संदेह होगा। उसी संदेह के कारण ये भी कहा है कि संदेह रहित बात है, नहीं तो ये भी ना कहते। बात प्यारी है, बात महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लाओसु को रोका था देश के राजा ने क्योंकि वो बिना एक पंक्ति लिखे अपने अनुभव की भागा जा रहा था, हिमालय में जा रहा था। उसने चुन रखा था कि जाके हिमालय में ही कब्र बने, इससे सुंदर जगह मरने को और हो भी क्या सकती। तो चीन छोड़ के जा रहा था, दक्षिण की तरफ भाग रहा था, उसको राजा ने रुकवा लिया। राजा भी बड़ा समझदार रहा होगा, इतने समझदार राजा मुश्किल से होते। राजा और समझदार, जरा ये बात साथ साथ घटती नहीं। समझदार राजा होगा, उसने खबर भेजी, पुलिस के आदमी दौड़ाए, घोड़े दौड़ाए और उसको ठीक सीमा पर रुकवा लिया, चुंगी चौकी पर, जहां से बाहर जाने के लिए आखिरी दरवाजा था। और रुकवा तो उसने कहा कि जब तक तुम लिख न जाओगे जो तुमने जाना, उसने जिंदगी भर लिखा नहीं, और जब भी लोगों ने पूछा टाल दिया, और जब भी बहुत लोगों ने कहा तो इतने ही कहा कि सत्य कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजा ने कहा तुम छोड़ के ही जा रहे हो देश, तो अब बिना कहे ना जा सकोगे, लिख दो जो भी जाना है फिर जा सकते हो, अगर नहीं लिखा तो बाहर न निकलने दूंगा। उसे जाना तो जरूर था, मजबूरी में वो चुंगी चौकी पर ही 3 दिन रुका और उसने अपनी अद्भुत किताब ताओ ते किंग लिखी। 3 दिन में लिखी थी, छोटे से सूत्र, जल्दी से उसने लिख लिखा के दे दिया। पहला ही सूत्र उसने लिखा कि सत्य कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखकर आगे कहता हूं। तो उसने पहले ही साफ कर दिया मामला, उसने चुंगी चुका दी, मजबूरी थी इसलिए चुकानी पड़ी, वो भाग गया, फिर निकल गया। तुम कहते हो कि जैसा लाओसु को उस देश के राजा ने चुंगी चुकाए बिना नहीं जाने दिया, उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा। यहाँ जरा बात उल्टी, परमात्मा ने मुझे रोक के नहीं रखा है, परमात्मा को मैं रोक के रखा हूँ कि जरा दरवाजा अभी मत खोलना। जहां तक चुकाने का सवाल है, मैंने मूलधन भी चुका दिया है, ब्याज भी, चक्रवृत्ति ब्याज भी चुका दिया है, जितना लिया था उससे बहुत ज्यादा चुका दिया, इसलिए परमात्मा मुझे रोके ये तो सवाल ही नहीं। मैं ही रोक के बैठा हूँ कि जरा और थोड़ा बांट दूं। मेरे जाने की नाव तो आके किनारे लगी खड़ी, मैं ही समझा बुझा के रोक रहा हूँ माझी को, गिजरा और ये थोड़े लोग और आ गए हैं, इनको थोड़ा और समझा। आखिरी प्रश्न, भगवान आपने चमचे और चमचागिरी जैसे साधारण शब्दों का उपयोग किया, इससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ, ऐसा आपने क्यों किया? पहली तो बात, तुम शब्दों में भी शूद्र और ब्राह्मण बनाए बैठे, आदमियों में भी वर्ण बनाए, शब्दों में भी बना लिए, तो चमचागिरी या चमचा तुम्हें लगता होगा शूद्र शब्द है, इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। मेरे लिए कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं। रही बात शब्दों की, तो शब्द का अर्थ ही होता है जो अभिव्यंजक हो, जितना अभिव्यंजक हो। अब

0: ऊंचे से ज्यादा अभिव्यंजक शब्द खोज सकते हो, इस बात को किसी और शब्द से कह सकते हो, इससे ज्यादा ठीक मौजूद शब्द इस बात को कहने के लिए दूसरा नहीं है। इसलिए शब्द सार्थक है। और तुम सोचते हो नया है तो तुम गलती करते हो। आदमी जितना पुराना है उतना ही पुराना है। कभी कुछ और कहा होगा, कभी कुछ और कहा होगा, लेकिन चमचा गिरी पुराना शास्त्र वेद से भी ज्यादा पुराना। अगर तुम वेद में भी खोजोगे तो तुम्हें चमचागिरी मिलेगी। इंद्र की प्रशंसा चल रही, स्तुति चल रही, वो भी भय के कारण, घबराहट के कारण, लोभ के कारण कि करोगे प्रशंसा तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। स्तुति चल रही है। स्तुति पुराना शब्द है, अब उसने अर्थ खो दिया। जब शब्द कोई प्रचलित होता है, लोक व्यवहार में होता, तब उसमें प्राण होते। अब चमचागिरी शब्द के लिए बस दूसरी एक शब्द है जो उसके करीब आता, हालांकि उतने करीब नहीं आता है, वह है मक्खन बाजी। लगा रहे हैं मक्खन। तो पहली तो बात यह कि मेरे लिए साधारण असाधारण कुछ भी नहीं है। शब्दों में क्या साधारण असाधारण, या तो सभी शब्द साधारण है, क्योंकि उसको तो किसी शब्द में कहा नहीं जा सकता। सत्य तो किसी शब्द में नहीं आता, इसलिए सभी शब्द साधारण है। या फिर सभी शब्द असाधारण है, क्योंकि जो भी कहा जा सकता है वो सभी शब्दों में कहा जा सकता है। जो शब्द भी बोलते हैं, जिन शब्दों में भी वाणी है, वो सभी असाधारण है। मगर वर्गीकरण नहीं करूंगा। अच्छे और बुरे ऐसे शब्द नहीं है। अच्छे और बुरे तुम्हारी धारणा में तुम्हें तकलीफ हुई होगी, ये मैं मानता हूं। तुम्हें लगा होगा कि जिस व्यक्ति को तुम भगवान कहो उसने चमचे जैसे शब्द का उपयोग कर लिया, तो तुम अपने भगवान की धारणा को थोड़ा बदलो। तुम्हारे भगवान की धारणा रक्तहीन है, मुर्दा है। तुम अपने भगवान की धारणा में थोड़ा रक्त डालो, थोड़ा जीवन डालो। तुम्हारे भगवान की धारणा शाब्दिक है, कोरी है, प्रज्वलित नहीं है। उसे प्रज्वलित करो। बुझी बुझी है, आग नहीं है उसमें। तो तुम घबरा जाते हो, जरा सी एक छोटा सा शब्द और तुम घबरा गए। और फिर तुम्हारे भीतर एक गहरी आकांक्षा छिपी रहती है कि अगर मौका मिल जाए तो तुम मुझसे बदला ले लो। बदला इस बात का कि मैं तुम्हें रोज सलाह देता हूं। तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम मुझे सलाह देने का मौका नहीं चूकते। कोई मौका मिल जाए जिसमें तुम्हें मेरी भूल चूक मिल जाए तो तुम जल्दी से बताना चाहो। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है कि शिष्य को भी शिष्य होने में बड़ी अड़चन रहती है। बनता है शिष्य मजबूरी में, बनना तो गुरु चाहता है। सुना है एक सूफी फकीर के पास एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि परमात्मा को पाना है तो सूफी फकीर ने कहा शिष्य बनना पड़ेगा। तो उसने कहा शिष्य बनने में क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या करना होगा? तो फकीर ने कहा कि 3 साल तक तो पूछने ही मत, झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना, गायें चरा लाना, घोड़ों की देखभाल करना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, इस तरह के काम। फिर 3 साल के बाद जो ठीक होगा हम बताएंगे। उसने कहा तो मामला जरा लंबा दिखाई पड़ता है, 3 साल यही करना है तो और गुरु का क्या कर्तव्य? शिष्य का तो ये कर्तव्य, गुरु का क्या कर्तव्य? तो गुरु ने कहा गुरु का कर्तव्य बैठे रहना मस्ती से, लोगों से कहना ये करो, वो करो, ऐसा करो, इसको वहां भेजो, इसको वहां भेजो। तो उसने कहा फिर ऐसा करे, मुझे गुरु ही बना दे, ये काम ज्यादा रुचता है। तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं कि तुम्हारे मन में भी गुरु बनने का भाव तो छिपा बैठा है। और कभी कभी मैं ऐसी बातें कहता हूं, मैं जानना चाहता हूं किस किस के भीतर गुरु भाव छिपा बैठा। मन को दुख हुआ, मन को दुख होने का कारण यह है कि तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी ना हो तो मन को दुख हो जाता, तुम जैसी अपेक्षा रखते हो। और एक बात तुम खूब समझ लो कि मैं तुम्हारी कोई अपेक्षा कभी पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां मैं तुम्हारी अपेक्षा पूरी करने में उत्सुक ही नहीं हूं। तुम्हें पूरा कर सकता हूं लेकिन तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता। और तुम्हें पूरा कर सकता हूं इसीलिए कि तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने लगूं तो तुम अधूरे रह जाओगे। अब तुम चुन लो, तुम्हारी अपेक्षाएं तो मुझे तोड़नी होंगी, जगह जगह से तोड़नी होंगी। तुम्हारी धारणाएं तो सब तरफ से उखाड़ देनी होंगी। तुम्हें तो मुझे धीरे धीरे उस जगह ले आना जब तुम्हारे भीतर कोई धारणा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, निर्धारणा। उस घड़ी में क्रांति घटेगी, दिया जलेगा। लेकिन तुम छोटी मोटी बातों पर हिसाब लगा के बैठे हो। मैंने सुना एक साधु आटा मांगने घर के सामने रुका। सास मंदिर गई थी, घर में बहू थी। उसने कहा महाराज आगे जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत मालूम होती थी साधु, फिर कुछ और बोला नहीं और ज्यादा फजीहत कराना ठीक भी ना थी। वो वापस लौट गया। जब वो वापस लौट रहा था तो मंदिर से लौटती हुई सास रास्ते में मिली। सास ने पूछा क्यों बाबा मेरे घर गए थे क्या? साधु के हाँ कहने पर उसने पूछा तो फिर बहू ने क्या कहा? सास ने कहा कि बहू ने कहा कि बाबा महाराज आगे जाओ कहीं और जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत है। सास एकदम गुस्से में आ गई। उसने कहा वह कौन होती है मना करने वाली? मेरे रहते वो है कौन मना करने वाली? घर का मालिक कौन है? तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। साधु बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचा कि जब बुला कर ले जा रही तो कुछ देगी भी। दोनों जब घर पहुंच गए तो सास ने गुस्से में बहू से पूछा, बहू तुमने महाराज को आटा देने से मना किया था, मेरे रहते तू कौन है मना करने वाली? माफी मांग साधु महाराज से। बहू ने माफी मांगी। साधु तो बड़ा खुश हुआ। और जब बहू माफी मांग चुकी तो सास ने कहा महाराज जाओ, अब मैं कहती हूँ कहीं आगे जाओ। औपचारिकता पूरी कर दी, अब मैं कहती हूँ कहीं और आगे जाओ। बहू कौन सी कहने वाली? औपचारिकता तो उलझे हो तुम अगर मेरे पास तो तुम्हारी दशा दयनीय। औपचारिकताएं छोड़ो, यहाँ कोई शिष्टाचारों के नियम पूरे नहीं किए जा रहे, यहाँ किसी क्रांति की तैयारी हो रही है। बड़ा झंझावात है, उसमें बहुत कुछ उखड़ जाना है, तुम्हारे सब नियम धर्म उखड़ जाने। फिर अगर देखने की क्षमता हो तो हर चीज में कुछ अर्थ दिखाई पड़ेगा, और देखने की क्षमता ना हो तो बड़े बड़े शब्दों में भी कुछ नहीं। तुम्हारे विचार के लिए ये बटरिंग व्रत कथा तुमसे कहता हूं। मंगलम इमीजिएट वासे मंगलम बटरिंग गिरता है, मंगलम चमचा है चंपी, मंगलम फल प्राप्ता है, अथ चमचा है उबाचा है। जीह के श्रव नहीं मात्र से कटहीं कलेश विकार, तेही बटरिंग व्रत की कथा सुनो क्लर्क नर नारी। हंसा भूखे मर रहे कौओं के हैं ठाट, हरिश्चंद्र की हो गई आज खड़ी फिर खाट। एक पंक्ति में दे रहा बटरिंग व्रत का सार, मक्खन मालिश के बिना है ये व्रत बेकार। जो भी तेरा है ऑफिसर उसके पांव पकड़ ले प्यारे, उसकी पत्नी के चरणों को उनके साथ जकड़ ले प्यारे। आते हुए सलाम मार दे, जाते हुए सलाम मार दे, बिछा पलंग पर चद्दर दरिया, पहुंचा सब्जी की टोकरियां, त्योहारों पर भेज मिठाई, उपहारों की कर सप्लाई। कुछ ही दिन ऐसा करने से तुझे तरक्की मिल जाएगी, तेरी किस्मत की ये खिड़की खुलते खुलते खुल जाएगी। बटरिंग की महिमा अनंत मौसो लिखी न जाए, सुख भोगई इही लोक नर अंत बास पद पाए। बटरिंग व्रत की कथा को विरचित कभी बेचैन, पढ़ई सुनई जे क्लर्क जन चैन करें दिन रैन। इति श्री क्लर्को खंडे बटरिंग व्रत कथायाम अंतिमो अध्याय श्री हरे नमः।
1: एक बार भगवान कपिलवस्तु गए, उनके शिष्यों में एक स्थिर अनुरुद्ध की बहन रोहिणी वहां रहती थी। उसके परिवार के सभी लोग स्थिर अनुरुद्ध को मिलने आए लेकिन रोहिणी नहीं आई। अनुरुद्ध चिंतित हुए, उन्होंने अपनी बहन को बुलवाया। वह आई भी तो मुंह ढक कर आई। स्थिर अनुरुद्ध तो बड़े चिंतित हुए। उन्होंने उससे पूछा कि पहले तो तू आई नहीं, अब आई भी है तो मुंह ढक कर आई है, इसका कारण क्या है? रोहिणी ने कहा मेरा चेहरा अनायास विकृत हो गया है, सारे चेहरे पर फफोले हो गए, मैं छवि रोग से पीड़ित हूं, इसलिए पहले आई नहीं लज्जावश, आपने बुलाया तो आई हूं लेकिन मुंह ढक कर आई हूं। ये मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। स्थिर अनिरुद्ध ने उससे कहा, छोड़ इसकी फिक्र, भगवान का आगमन हुआ है, उनके 10,000 भिक्षु गांव में हैं, उनके ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है, तो उस भवन को बनाने में लग जा। रोहिणी के पास इतने रुपए थे भी नहीं, लेकिन उसने अपने सारे जवाहरात, अपने सब गहने बेच दिए और भिक्षुओं के निवास के लिए भवन बनवाने में लग गई। भवन बनाने का काम ऐसा था कि भूल ही गई अपने रोग को, और आश्चर्य की घटना घटी कि निवास बनवाते बनवाते ही 99% रोग अनायास ठीक हो गया। लेकिन वह अभी भी भगवान के दर्शन को नहीं आई थी, तब भगवान ने उसे बुलवाया और पूछा, क्यों नहीं आई? उसने कहा, बनते मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गया था, उसी से लज्जित होकर नहीं आई। अब स्थिर अनुरुद्ध की दवा से 99% तो ठीक हो गया है, लेकिन 1% अभी भी बाकी है। ये कुरूप चेहरा आपको कैसे दिखाऊं, इसलिए बचती थी। आपने बुलाया तो आई हूं, क्षमा करें। भगवान ने पुनः पूछा, जानती हो ये किस कारण हुआ? नहीं बनते, वह बोली। भगवान ने कहा, रोहिणी तेरे क्रोध के कारण, यह अत्यंत क्रोध का फल है, और इसीलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला है, और क्रोध तो अहंकार का परिणाम है। तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था, उस अहंकार पर पड़ी चोट के कारण ही क्रोध होता था। भिक्षुओं के लिए भवन बनाने में तू भूल गई अपने को, तेरा अहम भाव विस्मृत हो गया, तू ऐसी संलग्न हो गई इस करुणा के कृत्य में कि अहंकार को खड़े होने की बचने की जगह ना रही, इसलिए देख रोग अपने आप दूर हो चला है। लेकिन पूरा दूर नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार तेरा छूटा तो, लेकिन बोधपूर्वक नहीं छूटा है, इसलिए 1% रोग बचा है। करुणा तो तूने की, लेकिन करुणा जानबूझकर नहीं की है, मूर्छा ने की है, भाई ने कहा है इसलिए की है, तेरे भीतर से सहज स्फूर्त नहीं है, इसलिए 1% बच रहा है। जाग, जो अभी तू करुणा कर रही है होश से कर, और जो अहंकार अभी तूने ऐसा काम में भूल के भुला दिया है उसे जान के ही त्याग दे। और कहते हैं इस बात को सुनते सुनते ही रोहिणी का सारा रोग चला गया। तब भगवान ने ये गाथाएं कही। आज की पहली 4 गाथाएं रोहिणी को कही गई थी। पहले तो इस कहानी को ठीक से समझ लें, ये अपूर्व है, इसमें पड़ा हुआ मनोविज्ञान गहरा है। मनस्विद जो अब खोज पा रहे हैं वे सारे सूत्र इसमें मौजूद हैं। पहली बात, आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन उसकी बीमारियों का 90% कारण है। 90% बीमारियों के आधार में मन है, इसलिए इलाज से बीमारियां बदल जाती हैं, ठीक नहीं होती। एक बीमारी हुई, इलाज कर लिया, दवाओं ने उस बीमारी को रोक दिया, दूसरी तरफ से बीमारी बहने लगी, क्योंकि मन तो वही है, मन तो बदला नहीं, मन की तो कोई चिकित्सा हुई नहीं। समझो ये रोहिणी किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ गई होगी, ये तो भला हुआ कि बुद्ध जैसे डॉक्टर के हाथ में पड़ गई। ये किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ती तो डॉक्टर क्या करता, इसकी चमड़ी का इलाज करता। चमड़ी में रोग था नहीं, चमड़ी में केवल परिणाम था, रोग मन में था, मन का रोग चमड़ी पे फफोले होकर निकल रहा था, तो कोई चिकित्सक इसके चेहरे के फफोले ठीक कर देता। ये भी हो सकता था प्लास्टिक सर्जरी कर देता, इसके सारे चेहरे की चमड़ी बदल देता, तो ये रोग कहीं और से प्रकट होता, हाथों में छाजन हो जाती, कि पैरों में लकवा लग जाता है, कि आंखें अंधी हो जाती हैं, कि कान बहरे हो जाते हैं। ये रोग किसी और दरवाजे को खोज लेता है। रोग तो मिटता नहीं तो दरवाजा तो खोजता है। असल में जिसको हम रोग कहते हैं वो रोग नहीं है, रोग का लक्षण। साधारण चिकित्सक लक्षण से लड़ता है, महाचिकित्सक रोग के मूल से लड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक आदमी का मन न बदला जाए तब तक किसी बीमारी से वस्तुतः छुटकारा नहीं होता। इसलिए तुमने भी देखा होगा, एक दफे बीमारी के चक्कर में पड़ जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं दिखता। किसी तरह एक बीमारी से निकल नहीं पाते कि दूसरी घर कर लेती है, कि दूसरे से निकल नहीं पाते कि तीसरा घर कर लेती है। ऐसा लगता है एक कतार है बीमारियों की, तुम एक से निपटे कि दूसरी बीमारी पकड़ती है। जब तक ठीक थे ठीक थे। इसलिए लोग कहते हैं बीमारी अकेली नहीं आती, कहावतें कहती हैं बीमारी अकेली नहीं आती, संग साथ में और बीमारियां लाती है। दुख अकेला नहीं आता, साथ में भीड़ लाता है। इसका कारण न तो दुख है न बीमारी है, इसका कारण यह है कि मूल को हम छूते नहीं। समझो कि एक वृक्ष की जड़ों में रोग लग गया है और पत्ते विकृत होकर आने लगे हैं, पूरे खिलते नहीं, पूरे खुलते नहीं, हरियाली खो गई है। तुम पत्ते काटते रहो या पत्तों पर मलहम लगाते रहो या पत्तों पर जल का छिड़काव करते रहो, गुलाब जल का छिड़काव करो, तो भी कुछ बहुत होगा नहीं। जड़ जब तक आमूल स्वस्थ ना हो तब तक कुछ भी ना होगा। मनुष्य की जड़ उसके मन में है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है। मनुष्य यानी जो मन में रुपा है, मन में गड़ा है। उर्दू का शब्द है आदमी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं, उसमें बहुत गहरा अर्थ नहीं है। उसमें जो अर्थ भी है वो छिछला है। आदम का अर्थ होता है मिट्टी, जो मिट्टी से बना है उसको कहते आदमी, क्योंकि भगवान ने पहले आदमी को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें श्वास फूंक दी, इसलिए उसका नाम आदम। फिर आदम के जो बच्चे हुए उनका नाम आदमी। आदमी मिट्टी से बना है, मतलब आदमी देह है। हमारी पकड़ इससे गहरी, हम कहते मनुष्य। अंग्रेजी का मैन भी संस्कृत के मन का ही रूपांतर है, वो भी महत्वपूर्ण है। हम कहते मनुष्य, हम कहते मिट्टी नहीं है आदमी। आदमी है मन, आदमी है विचार, आदमी है उसका मनोविज्ञान। जैसे ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी आदम को पहला आदमी मानते हैं, हम नहीं मानते, क्योंकि आदम होना तो आदमी का ऊपरी वेश है, वो असली बात नहीं। असली बात तो भीतर छिपा हुआ सूक्ष्म रूप है। मनुष्य का अर्थ ही होता जिसकी जड़ें मन में गड़ी। लेकिन आधुनिक खोजें इस सत्य के करीब आ रही है। आधुनिक खोजें ये बात स्वीकार करने लगी कि आदमी शरीर पर समाप्त नहीं है, ना तो शरीर पर शुरू होता है ना शरीर पर समाप्त होता है। शरीर तो घर है जिसमें कोई बसा है। फिर हम ये भी नहीं कहते कि आदमी मन पर समाप्त हो जाता, हम कहते मन में गड़ा है तो मन से भी पार। इसलिए आदमी है तो आत्मा। अब इन तीन शब्दों को ठीक से लेना, आत्मा मन देह। मन दोनों के बीच में, मन को तुम शरीर से जोड़ दो तो संसारी हो जाते हो और मन को तुम आत्मा से जोड़ दो तो सन्यासी हो जाते हो। मन के जोड़ का सारा खेल है। आत्मा भी तुम्हारे भीतर है, शरीर भी तुम्हारे पास है, बीच में डोलता हुआ मन है। इसलिए मन सदा डोलता है, डमाडोल रहता है, मध्य में लहरें लेता रहता है। अगर तुम्हारा मन शरीर की छाया होकर चलने लगे तो तुम संसारी, अगर तुम्हारा मन आत्मा की छाया होकर चलने लगे तुम सन्यासी। कुछ और फर्क नहीं है। मन अगर अपने से नीचे की बात मानने लगे तो संसारी, मन अगर अपने ऊपर देखने लगे तो सन्यासी। सन्यास की धारणा इस देश में पैदा हुई क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई कि मन दो ढंग से काम कर सकता। मन तटस्थ है, मन की अपनी कोई धारणा नहीं है। मन ये नहीं कहता ऐसा करो, तुम पर निर्भर है। तुम चाहो तो मन को शरीर के पीछे लगा दो तो शरीर की गुलामी करता रहेगा। मन तो बड़ा अद्भुत गुलाम है, उस जैसा आज्ञाकारी कोई भी नहीं। तुम उसे आत्मा की सेवा में लगा दो, वो आत्मा

सेवा में लग जाएगा। तुम उसे लोभ में लगा दो, वो लोभ बन जाएगा। तुम उसे करुणा में लगा दो, वो करुणा बन जाएगा। सारे धर्म की कला इतनी ही है कि हम मन को नीचे जाने से हटाकर ऊपर जाने में कैसे लगाते हैं। और ख्याल रखना, जो सीढ़ियां नीचे ले जाती हैं वही सीढ़ियां ऊपर ले जाती, सीढ़ियां तो वही है। ऐसा भी हो सकता है कि दो आदमी बिल्कुल एक जैसे हों, एक जगह हों, और फिर भी एक सन्यासी हो और एक संसारी हो। ऐसा समझो कि किसी मकान की सीढ़ियां तुम चढ़ रहे हो, एक आदमी ऊपर से नीचे उतर रहा है, तुम ऊपर चढ़ रहे हो। 30 सीढ़ियां हैं, 15वीं सीढ़ी पर तुम दोनों का मिलना हो गया। तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, कोई नीचे की तरफ आ रहा है। 15वीं सीढ़ी पर तुम खड़े हो, दोनों एक ही जगह खड़े हो, लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं हो, क्योंकि एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगोगे, कोई तो फर्क नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ी तो 15वीं होगी, स्थान तो वही होगा, लेकिन फिर भी गहरे में फर्क, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, दिशा में फर्क, उन्मुखता भिन्न भिन्न है। जब मन देहोन्मुख होता है तो संसार, और जब मन आत्मानुमुख हो जाता है, रामोन्मुख हो जाता है, तो सन्यास। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संसारी और सन्यासी बिल्कुल एक जैसा लगे, एक ही सीढ़ी पर खड़ा हुआ मालूम पड़े, फिर भी अगर उनकी दिशाएं अलग हैं, उनकी आंखें अगर अलग दिशाओं में देख रही, तो वे भिन्न हैं, मौलिक रूप से भिन्न हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक हम मन को स्वस्थ न कर लें, तब तक शरीर की बहुत सी बीमारियां ठीक हो ही नहीं सकती। इसलिए पश्चिम में एक नए तरह की चिकित्सा पैदा हो रही, साइकोसोमेटिक। शरीर और मन दोनों का इलाज साथ साथ होना चाहिए, और शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का इलाज। बीमारी अगर मन में हो और शरीर पर केवल उसकी छाया पड़ती हो, तो तुम छाया को पोंछते रहो, मिटाते रहो, इससे कुछ भी ना होगा। मन से हट जाए तो शरीर तत्क्षण स्वस्थ हो जाएगा। तो इस कहानी का पहला तो यही अद्भुत अर्थ कि यह जो रोहिणी है, ये अत्यंत अहंकारी रही होगी। अहंकार स्त्री को होता है तो रूप का होता है, आदमी को अहंकार होता है तो नाम का होता है। दो ही अहंकार है, नाम रूप। इसलिए माया के सारे संसार का हमने एक ही अर्थ किया है, नाम रूप। रूप का अर्थ होता है देह, नाम का अर्थ होता है सूक्ष्म मन। मनुष्य का अगर वो पुरुष है तो बहुत लगाव होता है नाम से, प्रतिष्ठा, पद, पदवी, यश, धन, ज्ञान, त्याग, कहीं नाम। स्त्री का आग्रह होता है रूप पर, सौंदर्य। मुल्ला नसुद्दीन मुझसे बोला कि मुझे नौकरी मिल गई एक ब्यूटी पार्लर, एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में नौकरी मिल गई। मैंने उसे उस दुकान के सामने खड़ा कई बार देखा तो पूछा कि तू वहां खड़े तो रहता है, नौकरी क्या मिली, बाहर खड़ा रहता। उसने कहा यही मेरी नौकरी। मैंने कहा तेरा काम क्या? उसने कहा काम भी बड़ा सरल है, ऐसे बड़ा सूक्ष्म। फिर भी मैंने कहा मुझे कहो काम तेरा क्या है, मैं जब देखता हूँ वहीं तू खड़ा है बाहर। तो उसने कहा काम मेरा ये है कि जो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन के लिए आती हैं, जब वो भीतर जाती हैं, तो मेरा काम है उपेक्षा दिखलाना, नजर भी नहीं डालना, देखना ही नहीं कि कौन जा रहा कौन आ रहा। और जब वो सज धज के बाल ठीक करवा के बाहर निकलती हैं तो सीटी बजाना, ये मेरा काम है, ये मेरी नौकरी। इससे दुकान खूब चल रही है, क्योंकि स्त्रियों को समझ में एक बात आ जाती है कि अभी गई थी और ये आदमी देखा तक नहीं, और अब बाल वाल संवार के बाहर आ रही तो सीटी बजा रहा वही आदमी, तो जरूर सुंदर होकर लौटी। स्त्री का सारा आकर्षण रूप में, इसलिए स्त्री को बहुत फिक्र नहीं होती नाम की। इसलिए स्त्रियां कोई ऐसे बहुत काम नहीं कर रही जिनसे नाम मिले, कि कोई बड़ी किताब लिखनी, कि मूर्ति बनानी, कि पेंटिंग बनानी, कि महाकाव्य लिखना, कि दुनिया की कोई ख्याति मिल जाए, कुछ लेना देना नहीं। स्त्री को सारा प्रयोजन है सौंदर्य से। रोहिणी सुंदर स्त्री रही होगी, स्त्री थी,
सौंदर्य पर उसकी पकड़ रही होगी। और ये जो अहंकार हो, जैसा भी हो अहंकार, चाहे रूप का चाहे नाम का, जहां अहंकार है वहां क्रोध है, क्योंकि क्रोध का अर्थ ही होता है अहंकार को लगी चोट। तुम सोचते हो कि तुम बड़े ज्ञानी हो, किसी ने कह दिया कि क्या तुमने रखा ज्ञान, ज्ञान चोट लग गई। तुम सोचते हो कि तुम बड़े सज्जन हो और किसी ने कह दिया कि काहे के सज्जन, चोर बेईमान। तुम सोचते हो साधु हो, किसी ने कह दिया असाधु। तुमने सोचा कि सुंदर हो और किसी ने कह दिया असुंदर, तो चोट लग गई। तुम्हारी मान्यता को चोट लग जाए तो क्रोध पैदा होता है। तुम्हारी मान्यता को जो साथ दे दे उस पर बड़ा लगाव आता है। यही तो प्रशंसा से तुम इतने प्रशंसित होते हो। कोई कह दे कि हाँ तुम जैसा सुंदर और कौन, तुम बाग बाग हो जाते, तुम्हारी सब पखड़ियां खिल जाती, तुम खुश हो जाते। किसी ने तुम्हारे अहंकार को फुसलाया, राजी कर लिया। कुरूप से कुरूप स्त्री को भी कह दो कि तुम सुंदर हो तो वो भी इनकार नहीं करेगी। वस्तुतः वो कहेगी कि तुम ही पहली दफा पारखी मिले, अब तक कोई पहचान ही ना पाया। मैं तो जानती ही थी, लेकिन पारखी चाहिए ना, हीरे तो पारखी होते तो पहचानते। तुम बुद्धू से बुद्धू आदमी से कह दो कि तुम बुद्धिमान हो, बड़े बुद्धिमान हो, तो वो भी नहीं कहता कि देखो नाहक चापलूसी मत करो, मैं तो बुद्धू हूं, वो भी नहीं कहेगा। पागल से पागल को कह दो कि तुम जैसा जागरूक शांतचित्त आदमी और कहां है, वो भी अंगीकार करता है। अहंकार के अनुकूल जो पड़ता है वो हम स्वीकार करते हैं, और अहंकार को जो भरता है उसको हम मित्र कहते हैं, यद्यपि वो है तो शत्रु, क्योंकि वो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां से तुम बुरी तरह गिरोगे, जहां से ऐसे गिरोगे कि फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हें ऐसी जगह उठा रहा है जहां से गिरना सुनिश्चित है। अहंकार पर कोई भी फिर होकर रह नहीं सकता, वो जगह बारीक है, तुम्हें संभाल ना पाएगी, वहां से तुम गिरोगे। और आज जितने अहंकार से तुम्हारी तृप्ति हुई, कल और तुम मांगोगे और ज्यादा और ज्यादा। आखिर कब तक ये होगा? एक घड़ी आएगी कि तुम अपने ही अतिशय से गिरोगे, बुरी चोट खाओगे। जो जितने ऊपर अहंकार की चोटी पे चढ़ेगा उतनी ही बड़ी खाई में गिरने का खतरा मोल ले रहा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, गिरती आने वाली है। और तुम चकित होगे कि जिन्होंने प्रशंसा की थी वही निंदा में मुखर हो जाते। वो बदला लेंगे, जब प्रशंसा की थी तब भी बेमन से की थी, तब भी करनी पड़ी थी, कोई प्रयोजन थी, कोई प्रयोजन था इसलिए की थी, तुमसे कुछ लाभ था, तुमसे कुछ निकालना था इसलिए की थी, बदला तो लेंगे। कोई भी प्रशंसा प्रशंसा की तरह थोड़ी करता है, उसका कोई प्रयोजन, उसे तुम्हारा शोषण करना है, उसका काम निपट जाएगा तो वही बदला लेगा। जिसने तुम्हें आकर खूब आह्लादित किया था वही तुम्हें गालियां देगा, तब दिल को और भी चोट लगेगी। अपने ही पराये हो गए ऐसा लगेगा, मित्र शत्रु हो गए ऐसा लगेगा। और कहावतें कहती दुनिया की कि जिसके साथ नेकी करो वही बदी करता है। नेकी इत्यादि तुमने की भी नहीं है, उसने तुम्हारी प्रशंसा की थी, तुमने कुछ उस प्रशंसा के कारण कर दिया था, वो नेकी नहीं थी, वो सिर्फ सौदा था। और उस आदमी को तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ी थी, तुम्हारे सामने झुकना पड़ा था, इसलिए वो तुम्हें कभी क्षमा तो कर नहीं सकेगा, वो इसका बदला तो लेगा। जब भी अवसर आ जाएगा, ठीक समय होगा, वो बदला लेगा। तो रोहिणी को रूप का दंभ था, रूप के दंभ के कारण बहुत चोटें लगी होंगी, क्रोधित होती थी। अगर तुम्हें चोटें लगती हो तो एक बात ख्याल में ले लेना, चोट लगने का लक्षण अर्थ यही कि तुम्हारे भीतर अहंकार का घाव बहुत गहरा है, जरा सी बात भी अखर जाती है। अगर तुम्हारे मन में सम्मान की इच्छा है और अपमान से बचने का भाव है तो तुम अहंकार का पोषण कर रहे हो। फिर इन क्रोध और अहंकार के बीच में उसे छवि रोग हो गया, चेहरा विकृत हो गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चमड़ी की रोग तो 99% मानसिक होते, सभी रोग 90% मानसिक होते हैं, लेकिन चमड़ी के रोग तो 99% मानसिक होते हैं, क्योंकि चमड़ी
बड़ी संवेदनशील है और चमड़ी हमारी सबसे बड़ी इंद्री है। कान छोटा सा है, कान पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक ठीक लगाना पड़े तो ही चोट होगी। आंख छोटी सी है, आंख पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक लगना चाहिए। जीभ भी छोटी सी है, लेकिन चमड़ी तुम्हारे पूरे शरीर को घेरे हुए, ये तुम्हारी सबसे बड़ी इंद्री है। स्पर्श की इंद्री सबसे बड़ी इंद्री है, इस पर चोट बड़ी आसानी से लग सकती है, निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मन की चोटें आंख पर भी लगती हैं, कान पर भी लगती हैं, जीभ पर भी लगती हैं, लेकिन वो तो उनकी मात्रा बहुत छोटी छोटी है। लेकिन शरीर की चमड़ी का फैलाव बहुत है, उस फैलाव के कारण चमड़ी पर सर्वाधिक मन की चोटें पड़ती हैं। और चमड़ी का कोई भी रोग किसी इलाज से ठीक नहीं होता, लेकिन मानसिक इलाज से ठीक होता है। चमड़ी इस अर्थ में भी विचारणीय है कि तुम्हारी और जो इंद्रियां हैं वो चमड़ी के ही विशिष्ट रूप है। कान है क्या? चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। और आंख है क्या? आंख भी चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। चमड़ी ने ही अपने एक हिस्से को देखने में कुशल बना लिया है, वो आंख हो गई। और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को स्वाद लेने में कुशल बना लिया है, वो तुम्हारी जीभ हो गई। और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को विशेषज्ञ बना लिया है, नाक हो गई तुम्हारी, सुगंध के लिए विशेषज्ञ। ये एक्सपर्ट है, ये चमड़ी की विशेषताएं, लेकिन है सब चमड़ी के ही खेल। बच्चा जब पहली दफा पैदा होता है, माँ के पेट में बढ़ता है, तो पहले तो चमड़ी आती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे आंख उभरती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे कान उभरता, फिर चमड़ी में ही जनेन्द्री उभरती, फिर चमड़ी में ही जीभ नाक सब उभरते जाते, लेकिन सबसे पहले तो चमड़ी होती। तो चमड़ी बहुत मूल है और इसलिए स्पर्श बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो तत्क्षण स्पर्श करना चाहते हैं, हाथ में हाथ लेना चाहते हैं, गले से गले लगाना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो हम स्पर्श करना चाहते हैं, और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसके स्पर्श से हम बचते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध की है और उन्होंने पाया है कि लोग जिनसे बचना चाहते हैं अपने बीच और उनके बीच एक खास तरह की दूरी रखते हैं। ट्रेन में ही चाहे लोग खड़े कितनी ही भीड़ है तो भी तुम पाओगे हर आदमी अपने में सिकुड़ा खड़ा है, दूसरे को छूना नहीं चाहता। और जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है अगर उसे तुम छू लो तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो। क्यों? छू लेने का अर्थ हुआ कि तुमने उसकी सीमा रेखा में प्रवेश कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए, ट्रेसपास हुआ, तुम दूसरे के घर में बिना आज्ञा मांगे घुस गए। जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है उसको छू ले तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो कि माफ करना, भूल हो गई, जान के नहीं किया है। और अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री तुम ट्रेन में खड़े हो और तुमसे सट के खड़ा हो जाए और क्षमा भी न मांगे और ऐसा भाव दिखलाए कि बड़ा प्रेम में तुमसे खड़ा है तो तुम अत्यंत नाराज हो जाते हो, तुम अत्यंत क्रोधित हो जाते हो, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए ट्रेन या बस में इकट्ठे खड़े हुए लोग भी इस तरह खड़े होते हैं कि अगर शरीर भी छू रहे हैं तो भी उनके मन नहीं छू पाते, वो अपने कुछ सिकोड़े खड़े होते हैं। कम से कम इतना प्रदर्शन तो करते हैं कि हम तुम्हें छू नहीं रहे, अगर छू रहा है शरीर तो मजबूरी है, हम नहीं छू रहे और हम एक सीमा बांध के रखते हैं। तुमने देखा कभी किसी के साथ तुम बात खड़े होकर बात कर रहे हो तो सदा तुम जांचोगे कि एक सीमा तक तुम उस आदमी को बर्दाश्त करते हो, अगर वो उससे ज्यादा करीब आ जाए तो तुम पीछे हट जाते, एक सीमा होगी, समझो कि 12 इंच, तो 12 इंच तक वो आदमी अगर तुम्हारे करीब आ जाए तुम्हें कोई चिंता नहीं पैदा होती, कोई बेचैनी पैदा नहीं होती। 12 इंच के भीतर आना शुरू हो जाए, तुम्हारा बेटा हो तो ठीक, तुम्हारी पत्नी हो तो ठीक, तुम्हारा पति हो तो ठीक, लेकिन जिससे तुम्हारा कोई गहरा नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं, वो अगर 12 इंच या 10 इंच के भीतर आने लगे तुम तत्क्षण पीछे हट जाओगे। वहां तुम्हारी एक अज्ञात सीमा है, चमड़ी का एक अज्ञात क्षेत्र है जहां तक उसकी तरंगे फैलती है। उन तरंगों के भीतर कोई भी आ जाए तो हम पसंद नहीं करते, अशिष्ट मालूम होती है ये बात।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जब से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है, बहुत से हमें कॉल्स आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं और आप सबका एक बहुत लगातार रिस्पांस आता जा रहा है। ढेर सारा प्यार भी मिलता है, लेकिन साथ ही हमें बहुत बार दर्शकों ने लिखकर भेजा कि उनके अनुभव जो हो रहे हैं, जो आप लोगों को मिल रहा है, वो बहुत सुंदर है और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बार हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करें जो हो सकता है आप ही के जीवन में हुआ हो। तो आज एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, हम एक बात ये करना चाहेंगे कि जो लोगों का अनुभव हुआ है, जो परिवर्तन हुए हैं, वो जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे जितने और नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए।
2: आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि परमात्मा भी हमें हमेशा यही कहते कि ज्ञान तो है ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ज्ञान तब मेरे लिए पर्सनल हो जाता है जब वो मेरा एक्सपीरियंस बनता है। तब तक वो किसी और का ज्ञान है, जैसे या कहें पहले वो परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान, क्योंकि बाबा का ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि शिव बाबा ने कहा जो कुछ मेरा है वो आपका है, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी कब बनता है, जब मैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करती हूँ और फिर यूज़ करके सक्सेस मिलती है, एंड देन आई से इट वर्क्स। सो टिल आई कम टू दैट लाइन व्हिच सेज दिस ज्ञान वर्क्स, दैट्स द डे व्हेन आई से ओके, नाउ आई एम एट द राइट प्लेस, दिस इज एंड दिस इज गॉड। Even that, let's say the belief to the truth, वो जो journey है, because it starts with the belief कि ये ज्ञान जो है वो direct परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए truth कब बन जाता, when I see the transformation in myself, then I say कि you know जो देने वाला है वो जो doctor है, he is right because I'm getting cured,
1: right.
2: So it's a very big thing for any individual.
1: और शिवानी, ऐसा बहुत से लोग मुझे हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो कहते जा रहे हैं कि मेरे में परिवर्तन देख रहे हो, लेकिन मैं शो पर हूँ तो
2: आपके अंदर सब परिवर्तन देख रहे हैं। I must tell you कि wherever I have gone and whoever I have met, everyone talks about you and everyone says कनुप्रिया को हम देखते आ रहे हैं पिछले डेढ़ दो साल से, एंड वो तो बिल्कुल चेंज हो गई है, एंड यू मस्ट नो कि यू आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर बिकॉज दे सीइंग यू एंड दे से कि बहन के अंदर इतना चेंज आ गया है, उसको इतना समझ में आने लगा है, एंड दे ऑल्सो फील देर इज अ चेंज इन द वे यू आर प्रेजेंटिंग द होल ज्ञान, सो दे से कि बिकॉज दे आर सीइंग यू एज द एग्जाम्पल ऑन विच द ज्ञान हैज वर्कड। सी, इस साइड पर जो भी भाई बहने बैठते उनको तो वो देख ही तब रहे हैं आफ्टर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन आपको उन्होंने उस जर्नी पर देख लिया है कि व्हेन यू बिगैन विद इट एब्सोल्युटली रॉ, ओम शांति यू वर सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड टुडे व्हेन दे कैन सी दैट इट वर्क्स, तो आपको देखकर हर एक को बहुत प्रेरणा मिल रही है कि यस दिस कैन वर्क।
1: एंड इनफैक्ट ये हमें अनुभव तब होने लगता है जब हमारी सिचुएशंस जब आती हैं उनमें हमारा रिस्पॉन्स अलग होने लगता है, हम सिचुएशंस के ऊपर उतने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो ऐसा ही आप सबके साथ भी बहुत लोगों के साथ होता जा रहा है, और आज सिस्टर शिवानी के साथ हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, आप ही में से एक थी, समझा और फिर वो स्टेप उठाया। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमें अच्छा लगता है सुनना, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या ये मेरे जीवन में हो पाएगा जब मेरे जीवन में सिचुएशन आएगी। वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। हमारे साथ खास सिंगापुर से भारत आए हुए, इन दिनों भारत में है, समीना जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। आप ही की तरह के गेस्ट हैं, मतलब हमारे साथ, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं समीना जी, और एक परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे प्रोग्राम देखा?
3: आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे हुआ, लेकिन एक बार चैनल सर्फिंग करने के टाइम पे ये प्रोग्राम देखा और मुझे लगा दिस इज डिफरेंट, यू नो ये रिलीजियस टॉक नहीं है, कुछ और है। तो फर्स्ट एपिसोड देखा तो यू नो इट वॉज अ गुड थिंग, यू नो इट्स समथिंग डिफरेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये कहाँ क्या बोल के आ रहा है इन लोग। And then I felt ke this is just talking about life, jo hamari zindagi hai, hum उसे कैसे अलग बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, या यू नो इफ शी इज़ लुकिंग सो काम, मैं ऐसे बन सकती हूँ, बिकॉज यू नो हमारे जिंदगी में इतनी उथल पुथल होती है ना. सो आई फील के ऑल राइट, देन आई थॉट के ओके ये एक ही बार होगा. कभी और यू नो अनदर डे और टू टाइम वापस सर्व करने के टाइम पे वही उसी टाइम पे प्रोग्राम था. सो आई थॉट ओके दिस इज अ डेली शो, यू नो दिस इज नॉट अ वन टाइम शो, लेट मी सी. एंड एक फिर हैबिट बन गई. आप लोग अभी जो कहते हैं संस्कार, वो संस्कार बन गया कि नहीं मुझे देखना ही है, किसी भी तरह से मुझे ये टाइम निकाल के देखना है. एंड एवरी डे दैट आई सॉ मुझे लगा दिस इज डिफरेंट. ये जो कह रहे ये शायद अगर ये कह रहे और वर्क करता है तो इट इज इट कैन बी सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड आई थॉट ओके नथिंग टू लूज, नहीं काम करेगा तो नहीं काम करेगा, काम करेगा तो अच्छा ही है. तो स्लोली वेरी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग. रोज जो आपके प्रोग्राम आते उसमें से एक बात पकड़ के मैंने बोला ट्राई करते हैं इसे, ये वर्क है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक ट्राई करना था कि कैन यू समहाउ conquer your anger.
1: I know. That's the biggest thing.
3: Because that is such a immediate reaction. जब कुछ गड़बड़ होता है तो first reaction is anger, stress. क्या you know whether we have some sort of control over that situation. And every time a situation came जहाँ हम volatile हो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं या you know agitate हो जाते हैं, तो तब क्या हम वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं, यू नो. एंड आई फेल्ट दैट एक बार किया, दो बार किया, जब बहुत बार किया तब लगा इट इज़ सो मच बेटर कि तब नहीं होना है गुस्सा, सोचना है करना क्या है. एंड अब गुस्सा अंदर ज़रूर आता है लेकिन बहुत धीमे आता है, यू नो लाइक ओके एक बात को जो हम भड़क जाते थे बहुत बात पे, अभी यू नो थोड़ा वक्त देते हैं. ओके इट्स चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है ये टाइम, यू नो कि गर्मी ठंडी में सब काफ़ी काम रहते हैं लेकिन गर्मी में सबके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो इट्स रियली अ चैलेंज बट इट्स वेरी नाइस, क्योंकि यू नो जब हम थोड़ा शांत होते हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है. आई डोंट नो आई फील इट दैट यू नो जब हम आराम से बात करते तो सामने वाला अगर गुस्से में भी होगा तो उसे बुरा लगेगा. जब वो हमारे से गुस्से से बात कर, फिर उस खुद को लगता है कि शी इज नॉट स्क्रीमिंग तो कोई ज़रूरत है. और हमारे आदत है, एक्चुअली आदत ये भी है कि एवरीबडी नोज मी एज अ पर्सन हुज यू नो हु रिएक्ट्स वेरी क्विकली. सो दे फील के ये ड्रामा करिए, यू नो क्या हो रहा है, रिएक्शन नॉट स्पॉन्टेनियस एनी मोर. लेकिन आई थिंक स्लोली आई थिंक दे विल गेट यूज्ड टू इट, आई एम श्योर. एट लीस्ट आई फील गुड.
1: नो बट इट्स सो ब्यूटीफुल समीना, सो यू कमिंग ओवर एंड शेयरिंग दिस विच इज एक्चुअली सो रियल. लेकिन पहला कदम आपने उठाया, दैट वॉज सो इम्पोर्टेंट. शिवानी,
2: आई थिंक इट वुड बी नाइस इफ यू शेयर हाउ डिड यू एक्चुअली गेट द ज्ञान टू वर्क. You know, because I'll tell you, a lot of us watching the program, but then one is ki humne program dekha, suna, like you, bahut sare bhai bane regular bhi dekh rahe hain. But somewhere that little gap is there between program ko dekhna, sunna, parmatma se jo gyan mil raha hai, samajhna bhi, lekin to take it back to my life tomorrow. So what is it that probably inspired you to do it? And what did you do to do that, you know, to get it to work? Because otherwise, गुस्सा नहीं करना तो अभी पहली बार थोड़ी सुना आपने. आई एम श्योर इफ़ यू वर अ हॉट टेम्पर्ड पर्सन तो आपको बचपन से राइट फ्रॉम योर पेरेंट्स टू एवरीवन मस्ट हैव बीन टेलिंग यू कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो व्हाट इज इट दैट गॉट यू टू वर्क ऑन इट नाउ एंड यू नो हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट दैट आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस इज बिकॉज आई न्यू आई हैड नथिंग टू लूज. इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इट डजंट वर्क ठीक है, आई विल बी बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ. A lot of people are watching this program, they agree with it, but they don't make an effort to bring it into their lives. You know, isme effort chahiye. You have
1: to. What was that effort?
3: The effort was that the time when I started, I wanted this so much in my life is, there were many things, factors going wrong in my life and I had no control over it. Mujhe laga ki jaise, you know, I'm holding, jaise ret pakdi hui haath mein sab phisalta ja raha hai. Main pakad nahi pa rahi hu. You know, that I wanted to hold on to things.
1: Chizen situations hain wo.
3: Situations hain.
2: And that's what I think in this whole series that we've been doing. It's a new series. We've been talking ke jab hamara apne upar control nahi rehta hai, to jo first feeling aati hai, that is powerlessness. Ki mere control mein to kuch bhi nahi hai. Because we were trying to control other people and situations. And they are not in our control anymore. So suddenly you feel कि मेरी पूरी जीवन ही मेरे हाथ से निकल. My husband is not in my control. My children have grown up now. They are not in my control. And सबसे बड़ी बात, I am not in my own control. So you just feel, then what is in my control? You know, nothing seems to be in my control. And उससे एक बहुत feeling of कहें demotivation. You know, life is not enjoyable anymore when you feel कि nothing is in your control. So that's true. That's the time when it's really needed. So that when I come back into control, everything comes back into control.
3: I think that was the key thing, that if I felt, I, like Sister Shivani said many times, don't try to change everybody around you, try and change yourself. I said, okay, let me work reverse direction abhi. Ki agar mere mein thoda, you know, if I can change a little bit and mere mein badlaav aa jayega, to shayad wo thoda reflect hoga jo mere aas paas hai. Ye waise bhi mere control mein nahi hai, to main let it flow. I don't want to try very hard to change something that's going against me. If I let it go, let me see what happens. And when I did that, when I let go of all possibility to control things, I felt, and I just talked to God and I said, now you help me from here. Maine aapka haath pakda hai, aap mera haath pakdo. And jab maine wo kiya, to I felt that he actually held on to me and he said, okay, I'll show you the first step. चलना तुम्हें ही है लेकिन स्टेप्स मैं सिखाऊंगा. एंड वंस आई डिड दैट आई फेल नाउ आई नो माय पाथ. एंड व्हाट हैपेंस इज रिलीजन, बाकी सारे, आई एम अ मुस्लिम एंड इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. जो रिलीजियस चीज़ें वो कॉम्प्लिकेटेड, मुझे कुछ बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल जो मेरे समझ में आए, ऐसा मुझे चाहिए था जिससे मेरी जिंदगी, यू नो, हम एवरीबडी, हम जो भी यहाँ जो भी प्रोग्राम्स देख रहे, एवरीबडी वॉन्ट्स इन द न्यूक्लियर फैमिली टू बी हैप्पी. कोई ये सोचता नहीं है कि मुझे दुखी होना है. आई डोंट थिंक एनीबडी थिंक्स दैट. एवरीबडी वांट्स जस्ट टू बी हैप्पी.
1: वेरी ट्रू. हर कोई अपने एफर्ट्स जो है वो खुश रहने के लिए ही कर रहा है.
3: यस. सो आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी. आई वांटेड माय फैमिली टू बी हैप्पी, कंटेंटेड. एंद आई फील आई एम ऑलरेडी ऑन दैट जर्नी. आई फील कि जो भी मेरे हाथ से फिसला जा रहा था, फिसल गया था, जो चला गया था, वो धीरे कैसे, आई डोंट नो, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो वापस वापस लौट गया. इट्स अ टाइड, इट वेंट एंड इट्स रिटर्निंग.
2: बट व्हाट ऑल डू यू फील, यू वांट टू शेयर व्हाट यू फील हैड गॉन आउट दैट्स कम बैक.
3: अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज, जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था बिजनेस में भी, मेरे हस्बैंड्स को लॉसेस थे, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट. एंड वी वर बोथ डिप्रेस्ड, वी बोथ वर फीलिंग दैट, you know, we are good people. हमें सब लगता है, हम सब लोगों को ऐसे लगता है कि we are good people.
2: हमारे साथ गलत क्यों हो रहा
3: है? हमारे, you know, why should it happen? मैंने, हम लोग ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया है, ना किसी को चीट किया है, ना कुछ भी. तो हमारे साथ ये ये ये इतनी पनिशमेंट्स हमें क्यों मिल रही है? लेकिन now I realize that these were lessons and this was, जैसे परमात्मा हमें, ईश्वर कहो, ऑलमाइटी कहो, अल्लाह करो, जो भी, you know, he was actually kind of tuning us, training us for better times to come. And as you start the journey, and now I am a long way into the journey, I feel that there is no other way to live. You know, we are peaceful souls, we are happy souls, we don't have to be sad. You know, ये रोना धोना is not our life.
1: Very true. How beautiful. This is what I think.
2: This is what we've been saying every time.
1: We've been wanting people to come out and say.
2: Pain is not a part of
1: it. Yes.
3: No. Don't give pain to anybody, but don't accept pain also.
1: Yeah. You know. And
2: this is, you know, she's not even realized what she said, but this is what Shiv Baba says. Na dukh do, lekin na dukh lo. Majority लोग हम कहते हैं कि हमने दुख नहीं दिया, हम कुछ गलत नहीं कह रहे, लेकिन दुख लेना नहीं है. That part we didn't know. We knew this के दुख देना नहीं है. वो भी कभी कभी गलती से दे ही देते थे. लेकिन दुख ना लो. We didn't know that we had a choice there. We always thought कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो दुखी तो.
3: But if you're in soul consciousness, if you're conscious all the time, मुझे 24 hours लगता है कि the divine forces with me. वो मेरे साथ ही है. He is with me and therefore I will not do wrong and I will not be wronged. Wo hai, he is protecting me. Wo mere saath hi hai.

0: गुस्सा कहीं किसी पे आ गया या कुछ भी, आई विल टेल हिम कि आई हैव दिस इज व्हाट आई डिड टुडे बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम. So the conscious, like soul consciousness, I am in that soul consciousness. And because I'm in soul consciousness, you cannot do wrong. That's the thing.
1: See, that's like, drishti agar hamari theek rehti hai, ya hamara pura ehsaas rehta hai, to actually nothing can go wrong also. You know, ye bhi aapke par pura strong aapko ehsaas rehta hai ki kabhi kuch galat ho bhi nahi sakta.
0: Koi nahi sakta, yeah.
1: Bahut sundar, ab to main aapko sister Sameena bhi keh sakti hoon.
0: No, Sameena
1: hi toh. So much a part of the family.
0: Right? Yes, I am. That's true. I am a part of the family.
1: To apne sabhi darshakon ke saath hum ye bhi share karna chahenge ki Sameena ji Bharat jo is baar aayi hain, wo apne parivaar ke saath aayi aur Mount Abu gaye, Brahma Kumaris ke international headquarters. Wo experience kaisa raha?
0: Yeah, it was... मुझे पता ही नहीं था कि मैंने सोचा मैं एक आश्रम में जा रही हूँ. पहले तो मुझे वही लगा जब मैं गई और इट इज़ बिग, यानी इट्स ऑन अ बिग स्केल एंड इतने इतने लोग आते हैं वहाँ पे, इतने सारे भाई बहन हैं, यू नो, एंड इट्स इज़ ब्यूटिफुल. एक्चुअली जस्ट सीइंग एवरीबडी इन द वाइट, इट मेक्स यू फील वेरी, यू फील लाइक एंजल्स, यू नो, फ्लोटिंग अराउंड द प्लेस. यू फील सो ब्यूटिफुल. I had a chance to do meditation for many hours that way, you know, and it was jab sab milke meditation karte wo energy alag hoti hai, wo hum mujhe khud nahi laga ki main, you know, 40-45 minute baith sakti hu ek bar, you know, I'm very fidgety, to aisa laga ki main hat jaungi, log mujhe dekhenge ki kitni shift ho rahi hai yahan se wahan. Nobody is bothered over there because even the, you know, senior dadis jisse main mili, wo kehte hai ki ye apni personal journey hai, कोई आपको जज नहीं करने वाला है. आप जिस स्पीड से जाना चाहते जाओ, यू नो, एक बिल्कुल भी एक रिलीजियस फीलिंग नहीं था, सिर्फ स्पिरिचुअल फीलिंग थी दैट आई एम हियर एंड ही इज देयर एंड आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद हिम. दैट्स ऑल. आई वाज जस्ट देयर फॉर दिस कनेक्शन.
1: वंडरफुल. एंड यू फेल्ट दैट कनेक्शन?
0: यस, ऑल द टाइम व्हेन इट मेडिटेशन, ऑल द टाइम.
1: Acha, how about your family's response? I mean, not only your immediate family, but ab to ek kafi time baad aap apne parivar se milonge jab Mumbai gaye, that becomes more important. Ki wo jab aap keh rahe ho ki wo kitni acting kar rahi hai ya bhi bolegi ya abhi ye shor machane wali.
0: Yeah, yeah. My mother doesn't say it, but she herself feels good, you know, and she herself now is toned down. Yani kya hota hai kabhi kabhi, हम जब शांत हो जाते, सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाता है, you know, हम जब भड़कते तो वो ज्यादा भड़केगा, हम जब चिल्लाएंगे तो उससे ज्यादा वो चिल्लाएगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी हर्ड.
1: और दूसरी बात ये भी, वो आपको शांत करने के लिए भी और चिल्ला रहे होते हैं,
0: राइट,
1: यू नो, कि आपको कहते हैं आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, तो खुद भी बहुत हाइपर हो चुके.
0: आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एनी मोर, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है, यू नो, व्हाटएवर आई वांट टू से आई विल जस्ट से. आई डोंट हैव टू रेज माय वॉल्यूम टू बी हर्ड. व्हेन यू हैव अराइव्ड एट वेयर आई वांट टू गो, आई डोंट केयर व्हाट समबडी थिंक्स ऑफ मी. आई नो व्हाट आई एम नाउ. मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, ये मेरी जर्नी है, मुझे पता है. आई डोंट नीड समबडी टू एंडोर्स इट. It's not important.
1: Yes, that's a beautiful. Actually, we are spellbound. I am really happy.
2: This is high self-esteem. Mm. You see, now I'm not dependent on other people's opinion about me, because now I know who I am. This is what meditation does, and this is what the gyan does. It hits first on the self-esteem. Because low self-esteem is the cause of the whole list, yes, which comes after that, whether it's anger or pain. And low self-esteem means ego. And when we don't say finish ego. But what Baba's Gyan does is raises my self-esteem, what I feel about myself. And like you say, you know, now I don't care anymore. So it's not in the negative sense, yes, that now I don't care anymore, but it's actually that even if some people are still going to take their time, I'm okay. Yes. I don't need to prove anything to anybody. And that wo sirf wohi keh sakega jo andar se bhar gaya hai. You know, jab hum andar se khali hote hain, so we need to make noise. Like, lekin jab andar se bhar jate hain, now you take your time, I'll wait for you till you come to know.
0: But also ego, that's another thing.
2: Yeah.
0: We all celebrate ego, actually. We feel agar ego nahi hai to kuch nahi hai. This is, but we confuse ego with self-respect. My self-respect is where it is. But I have no ego issues. The reason I can say this is somebody tells me I'm an idiot,